ओम शांति। बाबा ने आकर हमारे स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ऊंचा उठा दिया है। हमारी हीन भावनाओं को समाप्त करके हमें महान बना दिया है। कहां हम मांगते फिरते थे और कहां हमें दाता बना दिया। मांगते क्या थे? रोटी पैसा नहीं, मान सम्मान, अनेक तरह की मदद। दूसरों की ओर प्यासी नजरों से देखते थे, उनकी ओर जिनके पास देने को कुछ भी नहीं है, जिनके मटके पहले ही खाली हैं। और बाबा ने आकर हमें याद दिलाया, बच्चे मंदिरों में तुम्हारी पूजा हो रही है, सभी तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं। हे देवी, हे देव, तुम तो दुखहर्ता हो, भाग्य विधाता हो, वरदाता हो, तुम तो देने वाले हो, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमें याद दिला रहे हैं। बाबा ने भी आकर याद दिलाया, तुम पूर्वज हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम्हें सबको देना है। संसार की अनेक आत्माएं दुख शांति में, समस्याओं और विघ्नों में, रोग और शोक में, स्वार्थ और परेशानियों में जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम उन सब के बड़े हो, तुम्हारे में देने की क्षमता है, क्योंकि बाबा ने तुम्हें भरपूर कर दिया है। तुम देते चलो, सम्मान भी देते चलो, स्वमान भी देते चलो, प्यार भी देते चलो। तुम सम्मान लेने वाले नहीं, देने वाले हो। तुम मान लेने वाले भिखारी नहीं, तुम देने वाले दाता हो। सोचो, तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे? वो तो आज देंगे, कल कुछ और देंगे, फिर कुछ और देंगे। तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है, स्वमान दे रहा है, ऊंचा उठा रहा है। तो आओ हम दाता बने। मन में किसी भी चीज की लेने की इच्छा न हो। जो रॉयल होते हैं, जो राजन होते हैं, उनकी आंख किसी में भी नहीं डूबती, अर्थात वो किसी की ओर भी प्यासी नजरों से नहीं देखते, वो किसी की ओर भी अट्रैक्ट नहीं होते। हम दाता हैं, हमारी नजर भी किसी में नहीं डूबनी चाहिए। हमारी नजर तो केवल एक में समा गई है, एक से ही सब कुछ लेना है, एक ही सबसे अधिक सुंदर है, वही सबसे अधिक प्यारा है, सत्यम शिवम सुंदरम है, बहुत कल्याणकारी है। जिसके मन में हमारे लिए कभी भी कल्याण की भावना नहीं होती। तो बाबा ने कहा, तुम दाता बन जाओ, संगम युग पर दाता बन जाओ, तो जन्म जन्म तुम्हारे राज्य में प्रजा भरपूर रहेगी। कितना सुंदर रहस्य सृष्टि का स्पष्ट कर दिया। किसी के राज में प्रजा भूखी, रोती, दुखी, अशांत रहती है, और किसी के राज में सब सुखी होते हैं, सुख चैन की बंसी बजाते हैं, गहरी नींद सोते हैं, निर्भय रहते हैं, देते रहते हैं। बाबा हम सभी में राजाई संस्कार भर रहे हैं। राजयोग इज द ट्रेनिंग टू एडमिनिस्ट्रेट द वर्ल्ड। राजयोग वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग है। जैसे हमारे यहाँ IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसे ही हम सीख रहे हैं, वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग मिल रही है हमें। बाबा हमें विश्व का राजभाग देने आया है। राजभाग देने से पहले हमें ट्रेंड कर रहा है, तुम्हें कैसे राजभाग चलाना है, और राजयोग उसकी सर्वोत्तम ट्रेनिंग है। तो आइए दाता बने, स्वमान में खड़े हो जाएं,
मैं सबको देने वाली महान आत्मा पूर्वज आत्मा हूँ, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे जुड़ा है सारा संसार, ये ईश्वरीय वाइब्रेशंस सभी आत्माओं को जा रहे हैं। अपने चारों ओर देखो, दृष्टि दे दो सबको, करोड़ों आत्माएं चारों ओर दिख रही हैं, बाबा की किरणें मुझे आ रही हैं, मुझसे इन करोड़ों को जा रही हैं। ऐसे दातापन का अभ्यास आज हर घंटे में दो बार करेंगे। ओम शांति।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जो इंसान काम से हार मान जाते हैं, काम करने से थकावट महसूस करते हैं, वे कैसे इंसान हो सकते हैं? इंसान का तो काम ही संघर्ष करना है, संघर्ष ही तो जीवन है। कुछ लोग तो ऐसी मिट्टी के बने होते हैं कि वे हारना नहीं जानते, हार स्वीकार ही नहीं करते, नहीं वे काम न करने के लिए बहाने बनाने पर विश्वास रखते हैं, वे केवल काम करने पर विश्वास रखते हैं। घर में बैठकर उबासियां लेने से उनका काम नहीं चलता, वे तो आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, किसी का सहारा लेना उन्हें पसंद नहीं होता। कुछ लोगों को यह शिकायत करते सुना है कि हमें तो जीवन में आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। ऐसा कहकर वे अपनी कमजोरी को छुपाने का प्रयास करते हैं, जबकि इससे ही उनकी सुस्ती, लापरवाही और उनके खोए हुए आत्मविश्वास का साफ पता चल जाता है। उन्हें अक्सर यही रोना रोते देखा गया है कि इन परिस्थितियों का मुकाबला करने की उनमें शक्ति ही नहीं। सच बात तो यह है कि हर असफल आदमी यही कहता नजर आता है, भैया क्या करें, हमें तो आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिला, हमें किसी ने चांस ही नहीं दिया। यदि हमें कोई मौका देता तो हम भी कुछ करके दिखा देते, किसी ने हमारी सहायता ही नहीं की, नहीं किसी ने हमारा उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया। जिधर भी देखते हैं उधर ही लोगों का मेला लगा हुआ है। एक जगह के लिए नौकरी की मांग होती है तो सैकड़ों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, नौकरी देने वाला भी भूल भुलैया में फंस जाता है। वह सोचता है किसे नौकरी दूं, किसको न दूं। जब एक स्थान के लिए इतने सारे लोग होंगे तो हमें कौन पूछेगा? अच्छा पद मिलेगा तभी तो हम नौकरी करेंगे, छोटी मोटी नौकरी करने से तो हमारी बेइज्जती होती है, अच्छे पद हमारे जाने से पहले ही लोग हथिया चुके होते हैं। जब सिकंदर एक शहर पर विजय प्राप्त कर चुका तो उससे किसी ने पूछा, यदि अवसर मिलेगा तो आप आगे वाले शहर को भी जीतने का प्रयत्न करेंगे? सिकंदर क्रोध से भरा भूखे शेर की भांति दहाड़ा, अरे यह अवसर क्या होता है, कौन किसे अवसर देता है, मैं तो अपने लिए अवसर स्वयं बनाता हूँ। यह बात न भूलें कि जो भी व्यक्ति स्वयं अवसर का निर्माण करते हैं, सफलता उन्हीं के पाँव में आकर गिरती है। तो आप भी अवसर की प्रतीक्षा न करें, बल्कि अपने अवसर स्वयं बनाएं।

जो लोग अवसर की प्रतीक्षा में अपना समय नष्ट करते हैं, वे कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। धीरे धीरे अवसर की प्रतीक्षा में ही अपने भविष्य को अंधकार में विलीन कर देते हैं, क्योंकि अवसर की प्रतीक्षा करने से परिश्रम करने की शक्ति नष्ट हो जाती है, आगे बढ़ने की भावना भी कम होनी शुरू हो जाती है। वे अवसर की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे रहते हैं, मगर अवसर खुद कहाँ चलकर आएगा। अवसर का निर्माण करने वालों के लिए कहीं भी अवसर की कमी नहीं होती। ऐसे लोगों के जीवन में कोई निराशा भी नहीं आती, उनकी हर इच्छा पूरी होती है। कुछ लोग अपने जीवन की नैया को भाग्य के सहारे चलाने का प्रयत्न करते हैं। वे सदा यही कहते नजर आते हैं, अरे भाई, नसीब में जो लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता, वह तो हर हाल में मिलेगा ही, हम क्यों अवसर ढूंढते रहें। ऐसे लोगों को कभी अवसर नहीं मिलता, भले ही वे सोने की खान के पास से होकर निकल जाएं, वह खान भी उन्हें दिखाई नहीं देगी। इसके विपरीत कुछ ऐसे साहसी लोग भी हैं जो बंजर भूमि में भी फसल पैदा कर लेते हैं। जंगल में लकड़ी काटने वाले बालक ने पढ़ाई के लिए क्या नहीं किया, स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात थी, उस बेचारे के पास तो किताबें तक खरीदने का प्रबंध नहीं था। परंतु उसे जब पढ़ने का शौक पैदा हुआ तो उसने आसपास के लड़कों से किताबें मांगकर पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे तैसे वह एक से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा तक की पढ़ाई कर चुका, तो उससे आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे जिन किताबों की जरूरत पड़ती थी उन्हें मांगने के लिए उसे कई कई किलोमीटर की दूरी तक जाना पड़ता था। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, नहीं अपनी पढ़ाई बंद की। उसकी मेहनत का यह फल था कि वह एक दिन वकील बन गया। और फिर आपको यह जानकर अत्यधिक आश्चर्य होगा कि वही जंगल में लकड़ी काटने वाला, किताबें मांगकर पढ़ने वाला बालक एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। क्या आप उसका नाम जानते हैं? वह निर्धन और किताबें पढ़ने वाला बालक था, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। क्या आप भी ऐसी हालत में इतने बड़े आदमी बनने का साहस रखते हैं? क्या आप भी ऐसी कल्पना कर सकते हैं? मैं समझती हूँ आजकल के बच्चों में ऐसा साहस ही नहीं है। ऐसे महान लोगों से प्रेरणा लेकर आप कुछ

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जब आप यह कहते हैं कि अब मेरे लिए तो कोई अवसर ही नहीं है, अथवा मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ या कैसे कर सकता हूँ, ऐसा कहने वाले तो करोड़ों लड़के लड़कियां हैं जो खेल शुरू होने से पहले ही हारने को तैयार बैठे हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि चांद पर मानव को उतारने की कल्पना करने वाले इंसान को लोगों ने पागल और सिरफिरा कहकर उसका खूब मजाक उड़ाया था। जो लोग स्वयं कुछ नहीं कर सकते, वे दूसरों का मजाक उड़ाकर ही अपना समय काट लेते हैं। वे तो तोते की भांति हर एक की रट लगाए रहते हैं। यह तो असंभव है, ऐसा कहां हो सकता है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपनी भावनाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो अपने मस्तिष्क के शब्दकोश में से इस असंभव शब्द को ही निकाल कर फेंक दें। अक्सर युवकों को ऐसा कहते देखा गया है, जब कोई भी युवक किसी बड़े पद की नौकरी के लिए जाता है तो वह अपने आप को उस योग्य न समझकर एक ठंडी आह भरते हुए कहता है, काश मैं भी इतना अधिक पढ़ा लिखा होता कि उस नौकरी के योग्य बन जाता। और कुछ युवक जब किसी कारोबार की बात सोचते हैं तो निराशा की स्थिति में यही कहते हैं, काश हमारे पास भी इतना धन होता जिससे हम अपना कारोबार कर लेते। ऐसे विचारों के लोग उन लोगों के उदाहरण अपने सामने क्यों नहीं रखते जो बहुत कम पढ़े लिखे थे, मगर अपनी तीव्र बुद्धि, प्रबल इच्छा शक्ति और अथक परिश्रम से राष्ट्रपति तक बन गए। इस संसार में ऐसे हजारों लाखों कारोबारी लोग भी हैं जिन्होंने शून्य से काम शुरू किया, मगर अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पर बहुत कुछ कमाकर करोड़पति बन बैठे। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हो चुके हैं जो बिना धन के ही बहुत बड़े धनवान बन गए। उनके पास कोई भी सहारा नहीं था, न धन था, न ही किसी और की सहायता, मगर उनके पास आत्मविश्वास था। उन्होंने इसी का सहारा लिया और इसी आत्मविश्वास के सहारे अनेक बाधाओं को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। शारीरिक कमजोरी या अंगहीनता उनके रास्ते की रुकावट न बन सकी। अंत में वही लोग

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

किसी विद्वान ने गलत नहीं कहा कि ईश्वर जिस किसी मानव को शिक्षा देना चाहता है तो वह उसे धन के विद्यालय में न भेजकर संकटों के विद्यालय में भेजता है, उसे जरूरतों और चिंताओं के विद्यालय में भेज देता है। गरीबी के कारण ही उसके अंदर के छिपे हुए गुण बाहर आते हैं, ऐसे गुण जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि गरीबी ही मानव जाति का महान विश्वविद्यालय रहा है। इस विश्वविद्यालय से निकले अधिकतर लोग महान बने हैं। इनमें कई राजनीतिक नेता, महान कलाकार, संगीतकार, चित्रकार बनकर उभरे हैं। आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन लोगों ने भी महान कार्य किए हैं वे भाग्यशाली और संपन्न घरानों में नहीं पैदा हुए थे। ऐसे महान लोगों के पास कौन से साधन थे? मानव जाति के इतिहास में इससे अधिक रोमांचक और आश्चर्यजनक घटना और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती कि उन सब ने कठिनाइयों के बीच रहकर बड़ी से बड़ी सफलताएं प्राप्त की। उन सब का प्रारंभ कितना निम्न और अंत कितना महान था। इस महानता के पीछे छुपा हुआ है उनका अथक परिश्रम, अनगिनत बाधाओं को पार करना, संघर्ष और इस पर भी धैर्य को न खोना। इन लोगों को पहले कहां आशा थी कि वे इतने बड़े कामों को पूरा कर लेंगे। पहले तो उन्होंने सरल काम को प्रारंभ किया जो धीरे धीरे काम करते करते स्वयं ही इतना महान बन गया कि उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। स्वयं ही प्रेरणा मिलती गई और उनका काम आगे बढ़ता रहा, और जब वे सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गए तो जमाना उन्हें देखता ही रह गया। किसी ने यह कल्पना भी नहीं की कि वे किन कठिन परिस्थितियों के साथ संघर्ष करते हुए सफलता के आकाश पर पहुंचे थे। भाग्य पर उन्हें भरोसा नहीं था, नहीं उन्होंने भाग्य के सहारे अपने ये काम शुरू किए। ये तो उनकी भावना थी, उनकी बुद्धि और भावना ने उनका साथ दिया। भाग्य के सपने उन्होंने न तो देखे थे, नहीं इस पर उन्हें विश्वास था। उनके सामने एक ही लक्ष्य था जिसे पूरा करने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति और गहरे आत्मविश्वास की जरूरत थी। प्रबल इच्छा शक्ति के साथ जरूरत होती है खून में गर्मी आने की। इस गर्म खून के साथ साथ अंग अंग में गर्मी आ जाए तो मन में भावनाओं के तूफान उठने लगे। जब तक वह प्रतिज्ञा न कर ले कि मैं अपनी आशा पूरी किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक वह अपने लक्ष्य की पूर्ति से वंचित ही रहते हैं। इसीलिए आपसे भी हम यही कहना चाहते हैं कि आप भी अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का प्रयास करें, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का प्रयास करें जिसे आपने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया है। आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: दादियां सभी के साथ एक मित्रवत ही व्यवहार करती, चाहे कोई बच्चा नया हो या पुराना। सभी को एक समान स्नेह देना दादी जी की मुख्य विशेषता रही है। दादियां युवाओं को देख बहुत ही खुश होती, उनसे बातें करना, उन्हें आगे बढ़ाना और सेवा समाचार लेने के साथ बहुमूल्य शिक्षाएं देना दादी जी किसी कार्य को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करते। सेवाओं में जो भी विघ्न बाधाएं आईं, उनको बहुत ही युक्ति से पार करना तथा सेवाओं का विस्तार करते रहना दादी जी की मुख्य विशेषता रहे। दादी जी कुमारियों को यज्ञ सेवा के साथ साथ रसोई की सेवाओं के बारे में बखूबी सिखाते। उनका मानना था कि एक ब्राह्मण को रसोई के कार्य भी आने चाहिए, जिससे वे बाबा को भोग लगा सकें और कभी भूखे भी ना रहना पड़े। बाबा, मुरली, मधुबन का जो समन्वय है वो दादी जी में बहुत ही देखने को मिलता है। दादी जी किसी कुमारी की बात बहुत ही ध्यान से सुनते, आराम का समय होने पर भी वो समय देते और उन्हें संतुष्ट करके ही जाते। आध्यात्मिक परिपक्वता की बात करें तो मैंने, मधुबन ने देखा है कि दादी जी की ये भावना रहती कि युवा अपनी स्व उन्नति पर भी ध्यान दें और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाएं। शक्ति वंदन के आज की श्रृंखला में हम दादी रत्नमोहिनी जी के जीवन के कुछ नए अनुभवों को लीना दीदी से सुनेंगे।
1: शक्तिवंदन में आइए सुनते हैं उन महानुभावों से जिन्होंने दादी रतन मोहिनी जी के अंग संग रहकर उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, उनके जीवन से ओतप्रोत होकर अपने आप को धन्य महसूस किया। सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं के मुखारविंद से।

0: दादी की मेमोरी भी बहुत अच्छी थी, हमारी बहुत सारी बहनों को दादी नाम से जानते थे और देखते ही नाम लेते थे कि भाई ये फलानी बहन है वो फलानी बहन है करके, जो एक टीम में मतलब एनर्जी देता है, क्योंकि जब आप सेवा की फील्ड में सेवा करते हैं तो एक टीम को लेके चलना मुझे अच्छा लगता है कि आप कोई सब डिसीजन लेना होता है, कई बार आपको डिसीजन लेना होता है, लेकिन जब एक ग्रुप है आपके पास और पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के सबकी ब्लेसिंग सबके राय को लेकर के आप काम करते हैं तो अच्छा होता है। तो और उन बहनों को जब आप दादी के पास लेके जाते हैं और दादी उनको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो दादी इस प्रकार से अप्रिशिएट करते रहे, मिलाते रहे, लास्ट में अभी तक भी दादी जैसे नहीं पहचानती हैं, भले शरीर की आयु के हिसाब से नाम नहीं याद रखती हैं लेकिन पहचानती, मैं जानती हूँ, और उनका वो जो टच है रूहानी टच वो बहुत अच्छा लगता है। ये था शॉर्ट में दादी जी के साथ का प्यार का। एक्चुअली हाँ, हम राजस्थान में थे तो दादी राजस्थान की जोन इंचार्ज बनी उस समय, उससे पहले निर्मला दीदी थे, लेकिन दादी जब बने तो एक अलग सा जैसे रिश्ता होता है ना भाई, जोन इंचार्ज बने, भले छोटे थे। मेरा भाग्य ये रहा कि मैंने जैसे बताया ना, सेवेंथ पढ़ते पढ़ते ही मुझे जैसे कि ब्रह्मा कुमारी, समर्पित ब्रह्मा कुमारी या सेंटर निवासी ब्रह्मा कुमारी बहन की तरह कंसिडर कर लिया गया था, और मुझे वो एप्रिसिएशन हर फेज पे मिलता गया, हर साल हर फेज पे जहाँ जहाँ जो दीदियां रही उन्होंने मुझे चांस दिया आगे बढ़ने का, क्लास कराने का, कोर्स कराने का, भाषण करने का, सेंटर पे रहने का, खाना बनाना सीखना से लेकर के सब चीजें। तो ये रहा। हाँ एक बात और, एक बार दादी जी, ये शांति वन की बात है, दादी जी थोड़े देरी से आई भोजन करने के लिए, और बालू भाई वो जो वहां पे खींच जो दादी को भोजन कराने वाले भाई लोग थे उन लोगों ने देखा कि रोटी नहीं है और शायद थोड़ी सब्जियां हैं कुछ, तो मैं किचन में गई और मैंने सिंधी मानी दादी के लिए बनाया। दादी ने वो एक रोटी खाई और बीच में से जो है उठ करके आई किचन में कि रोटी बना कौन रहा है देखने के लिए, और दादी ने कहा कि मैं रह नहीं पाई और मैं देखने आई हूँ कि रोटी बनाया किसने है, तो तुम बनाती हो, तुमको इतनी अच्छी रोटी बनानी आती है, वो भी सिंधी मानी बनानी आती है। वो मुझे मुझसे कभी नहीं भूलता है, क्योंकि सिंधी दादियों के साथ बचपन से ही रहने का सौभाग्य मिला। उसके बाद मेरे डैडी की ट्रांसफर पटियाला हुई थी और पटियाला में मिट्ठू दादी थे, और यहाँ जब आते थे तो संदेशी दादी जी के पास मेरी बुआ रहती थी भुवनेश्वर में, तो जब उड़ीसा आते थे तो दादी के पास भी रहना होता था बचपन से ही, तो सिंधी दादियों को नजदीक से देखा। मिट्ठू दादी की माता जी पप्पड़ माता भी वहां रहा करती थी। चंद्रमणि दादी से बहुत प्यार रहा, मनोहर दादी जी से बहुत प्यार रहा, क्योंकि पंजाब में ये दादियां होती थी, तो इनके लिए थोड़ा सिंधी सीखना, इनकी बातों को जानना। पप्पड़ माता जो थी वो हिंदी नहीं जानती थी, सिंधी में ही बोलती थी, तो फिर सिंधी मानी भी बनाना सीख लिया था बचपन से ही समझो। तो दादी ने मेरी रोटी की इतनी प्रशंसा की मुझे वो अच्छा लगा। और एक बार दादी के लिए भोजन बनाने का भी चांस मिला है, तो दादी ने भोजन खा के भी अच्छा बोला, जो मतलब आप जब ब्रह्मा कुमारी होते हैं और दादियां आपके भोजन को स्वीकार करके अच्छा बोल दें उससे ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है, जबकि रतन मोहिनी दादी जी खुद बहुत अच्छी कुक है और अच्छा भोजन मतलब भोजन की परख उनको अच्छी है, पर उन्होंने तारीफ की तो मुझे अच्छा लगा है हमेशा। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं दादी जी के साथ का, वैसे तो क्या कहें, हर बात को तो याद नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो बातें मेरे को याद आई मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो दादी के पास कई बार जाना हुआ इस नए भवन में जहाँ भी रह रहे हैं, उससे पहले वाले मकान में भी, तो टोली के साथ साथ कभी दादी भोजन पे भी बैठी होती थी तो बुला लेती थी, आओ बैठो भोजन करो साथ में। तो लीला बहन भी इस मामले में बहुत प्यारी बहुत अच्छी हैं, तो वो भी सब कुछ बड़ा अच्छा सुंदर अनुभव रहा। मेरे होते दादी भुवनेश्वर में आई हैं दो बार, और एक 2004 में आए थे, उस समय हमने एक यूथ प्रोग्राम रखा था और दादी उससे बहुत खुश हुई। एक स्पेशल डंप यार्ड जैसा गंदा सा एक जगह मतलब पता नहीं कैसा सा बन के रहा था, तो हमने म्यूनिसिपैलिटी से उस जगह को अडॉप्ट किया था, और दादी आएंगी करके उसकी सफाई करके वहां पे क्या कहते हैं वो हॉल क्या कहते ग्राउंड में प्रोग्राम किया था, दादी जी को जब ये सब बातें पता चली, दादी ने बहुत अप्रिशिएट किया। प्रोग्राम भी बहुत अच्छा गया, पूरा ग्राउंड भर गया था, बहुत सारे लोग आए थे। और ये जो प्रोग्राम यूथ विंग का जो प्रोग्राम किया था, उसके लिए भी दादी ने बहुत बहुत जैसे अप्रिसिएशन दिया और काम करने के लिए प्रेरणा दी। वो जो ग्राउंड जहाँ पे दादी रतन मोहिनी जी के लिए हमने प्रोग्राम रखा था, क्योंकि वो प्रोग्राम होके हटा था और वो ग्राउंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाबी वगैरह हमारे पास ही थी, 3 दिन के बोलने में दादी जान की हमारे पास आई। 3 दिन पहले ही बोला कि दादी उड़ीसा आ रही है करके, और 3 दिन में दादी जान की जी के लिए प्रोग्राम रखना था, कहाँ रखे। तो वही जो ग्राउंड था, चूंकि वो साफ सफाई करके रखा हुआ था, तो वहां पे हमने दादी जी का भी प्रोग्राम रखा। मतलब इतने कम समय में इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो दादी जानकी जी ने भी बहुत अप्रिशिएट किया था और याद रखा था। और मतलब दादी ने मुझे वहां से अच्छी तरह से पहचानना, जैसे नहीं याद रख के एक बहन को याद रखना, ये सब मिला था। तो ये भी समझो दादी रतन मोहिनी जी की देन देन रही। और फिर दादी जी आए थे हमारे पास, एक बड़ा सारा प्रोग्राम दादी जी के लिए किया था। तो ये दादी जी का भुवनेश्वर मेरे होते हुए 2 बार आना, ये दादी का प्यार ही था।
1: जैसे आपके जीवन में भी बहुत सारी, क्या कहे, लौकिक के हिसाब से प्रमोशंस एक जगह से दूसरी जगह पे, एक सेवा से दूसरी सेवा में, तो जब भी चेंजेस होते गए लाइफ में, अलग अलग जगह पे अलग अलग सेवाओं में, और एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी इंडिपेंडेंट सेवाएं हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग करना ये सब चीजें, बट जब आप सेंटर संभालने लगते हैं तो वो थोड़ा सा कारोबार अलग हो जाता है। कभी ऐसा हुआ दादी के पास आपको कोई सोल्यूशन लेने के लिए या फिर कोई ऐसे इश्यू को सुलझाने के लिए आप गए और दादी ने आपको बहुत ही ज्ञान युक्त और युक्ति युक्त सुझाव दिया? और
0: मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसपास ही होता है, और जब आप बड़ों के पास जाके वो चीज बोल देते हैं, तो वो जो उल्टी हो जाती है ना, वो आपको हल्का कर देता है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप दिखने लग जाता है। दादी जी के साथ मेरा ऐसा बहुत रहा कि कोई प्रॉब्लम लेके गई, आप ऊपर रीति से देखेंगे तो लगेगा दादी ने सुना भी कि नहीं सुना, और कितना कैसा रिस्पॉन्ड किया, बोला या नहीं बोला, दादी ने उस बात को याद रखा कि नहीं रखा। बट यू नो आई फाउंड द सॉल्यूशन, और दादी से जैसे नहीं बोलने के बाद मुझे उस बात का सॉल्यूशन मिला है। मुझे काफी सारी चीजें अभी याद आ रही हैं, क्या कहें, अब इतना बड़ा कारोबार, दादी के पास भी इतनी सारी सेवाएं हैं। कभी कभी एक आधी चीज में मुझे कंफ्यूजन भी रहा कि दादी ने मुझे ठीक टाइम पे क्यों सॉल्यूशन नहीं दिया। दादी मुझे अगर ठीक टाइम पे सॉल्यूशन देती थी तो बहुत अच्छा होता था, पर वो मेरी नादानगी थी, क्योंकि जिंदगी में बहुत चीजें आपको सीखना होता है, और सब चीजें अगर यूं चुटकी किया और आपको मिल गया तो आप बहुत चीजों से दूर रह जाते हैं। मतलब आपको नहीं पता चलता है कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स क्या हैं, और किस चीज में कितना पेशेंस आपको रखना पड़ता है, और किस चीज से क्या लर्न करना होता है, तो वो बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग कम रह जाती है। तो मैंने चीजों को कभी, जो चीज ऐसी रही तो मैंने नेचुरल वे में मैं ऐसे ही सोचा कि उस समय तो थोड़ी उतावलापना भी रहा कि भाई दादी मुझे जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन क्यों नहीं दे रही हैं, और इतना देरी क्यों लग रहा है। मतलब और ऐसा भी हुआ है कि मैंने दादी के हाथ को पकड़ के यूं यूं भी किया, दादी प्लीज मुझे इस चीज का सॉल्यूशन चाहिए और जल्दी से जल्दी दीजिए करके। तो दादी बहुत प्यार से मुस्कुराई, हंसी, और कभी कभी तो थोड़ा ना एक्सप्रेस करते हुए भी रीजंस एक्सप्रेस किया, जो मतलब चीजों को मुझे समझने में और अच्छी तरह से जानने में बहुत हेल्प मिला। और इट वाज लाइक दादियां जो थी बाबा की अनुरूप रही हैं, तो राइट टाइम पे उसका राइट सॉल्यूशन मिला। और ये जो जिद्दोजहद था, मतलब जो क्या कहे, उस समय का जो मेरा कश्मीर जैसे रही, जिसको कह सकते हैं, वो मेरे लिए फ्रूटफुल रहा। उसने मुझे भी बड़ा अच्छा ग्रोथ दिया, बड़ा अच्छा स्पेस दिया आगे बढ़ने के लिए, क्या कहे, स्पिरिचुअली मैच्योर होने के लिए। बाकी ये एक ही बात था जो, मतलब एक ही बात, एक ही इवेंट था जब मुझे थोड़ा ना बड़ा मेरे मन में रहता था कि दादी मुझे ये सॉल्यूशन आज का आज दे दे, क्यों नहीं दे रही है, इतना डिले क्यों कर रही है, दादी को इस मामले में डिले नहीं करना चाहिए, ये वो। लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट था, जो मैं आज अगर मैं मेरे से पूछा जाए सचमुच दिल से, तो ये था कि वो मेरा एक लर्निंग प्रोसेस था जिसने मुझे स्पिरिचुअली मैच्योर किया। जी
1: सो जब आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बातचीत करते हैं, आप जब 90s या 80s में आप जब पहली बार दादी से मिले,

0: ये बहुत ऊंचा था, बहुत ही ज्यादा ऊंचा, और ऐसा भी लगता था कि मधुबन में, आपको पता है जब फॉग आती थी तो क्लाउड हो जाता है, और उस समय सफेद साड़ी पहनी हुई जो दादियां हैं वो किसी परी से बिल्कुल कम नहीं लगती थी। मतलब मेरी जो स्मृतियां हैं, मुझे जो याद है, मेरी जो फीलिंग्स, मुझे अभी भी आप देख सकते हैं, मेरे एक्सप्रेशन से सोच सकते थे। तो मेरे लिए परीलोक की कहानी थी जैसे ये, और वो रियलिटी था जिसको, जो परियों की कहानी में पढ़ा करती थी, और वो जैसा कि रियल परियों के देश में मैं दादियों को पाती थी। दादी प्रकाशमणि जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, शी वॉज अ रियल एंजल। उनका पांव डालना, चलना, मुझे एक एक चीज उस समय की भी याद है, इतना मैं एडमायर करती थी दादी को। और दादी रतन मोहिनी जी, ऑफकोर्स क्योंकि उनका मुझे अटेंशन बचपन से मिला है तो बहुत बड़ी बात है। दादी, बड़ी दादी जी का अटेंशन मुझे सच पूछो तो 92 के बाद मिला, लेकिन जो मतलब 79 तो नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी 80-81 ऑनवर्ड्स जो मधुबन में लगभग हम हर साल जाते रहे, तो एक जो अटेंशन मिलना होता है, मैं शायद बहुत थोड़ी अटेंशन सीकिंग बच्ची रही होंगी बचपन में, क्या अभी भी, तो मेरे को दादी का अटेंशन बड़ा अच्छा मिलता रहा, तो मैं उनको एक परी की तरह ही देखती रही।
1: जी, आप जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की भी संस्था की सेवाएं की है, लीगल, फाइनेंशियल, ये सभी चीजें। एक स्पिरिचुअल लीडर एडमिनिस्ट्रेशन में होने में और एक नॉन स्पिरिचुअल लीडर एडमिनिस्ट्रेशन में होने में क्या फर्क आप महसूस करते हैं?
0: वो कंसर्ननेस, वो कनेक्टिविटी, वो दिल की धड़कन, समझ रहे ना, इट वॉज देयर। मैंने वो आदरणीय रमेश भाई जी में देखा कि रात नहीं दिन नहीं, आप अगर रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी उनको बुला करके किसी भी सेवा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ही वॉज लाइक देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू। और जैसे कि उसको कंसर्ननेस था, एक कनेक्टिविटी था कि हाँ ये मेरे बाबा का काम है और मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। सेम वॉज विद दादी प्रकाशमणि जी। मतलब दादी प्रकाशमणि ने एक-एक ब्रह्मा वत्स को, चाहे वो किसी देश का, किसी जोन का, कहीं का, छोटी बच्ची है, बड़ा बच्चा है, बड़े भाई बहने हैं, छोटे हैं, उन सबको बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दिया, बहुत प्यार दिया। सेम विद जगदीश भाई जी। मुझ मेरा बड़ा भाग्य रहा कि मैंने बड़ों को बहुत नजदीक से देखा है, जगदीश भाई जी बहुत नजदीक से देखा है। और जगदीश भाई जी से जो पहला वाक्य रहा हमारा बहुत नजदीक का, वो मैं 10th का एग्जाम देके, जब हम उड़ीसा आ रहे थे क्योंकि हर साल गांव में आना होता था आर्मी वालों को, तो उस समय दिल्ली में उनसे अपॉइंटमेंट लिया था एक 10th स्टैंडर्ड की बच्ची ने, और वो उसके लिए उन्होंने टाइम रखा हुआ था कि वो आएगी और मिलके जाएगी। मतलब उनको हर बच्चे में एक एक प्रॉस्पेरस बीके दिखाई देता था कि आगे जाकर के बहुत बड़ी ब्रह्मा कुमारी बनने वाली हूँ, ऐसा कुछ। मतलब हर बच्चे में वो पॉसिबिलिटीज देखते थे, क्योंकि मैं उनके लिए कोई बहुत स्पेशल नहीं थी और बहुत सिंपल बहन थी, सिंपल बच्ची थी मैं। लेकिन इस प्रकार से जो ये स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उन्होंने जो दादियां और बड़े भाई बहने जो भी हैं उनको हमने देखा, बहुत सारे दादी, मैं तो गिनती कर रही थी, नियरली 60 दादी और दादाओं को नजदीक से पालना पाने का मेरा सौभाग्य रहा। मैंने उनको देखा है नजदीक से, उनको उनकी पालना पाई है। मतलब somehow, some or the other way, समझो कनेक्टिविटी जो रही हमारी। और तो मैंने ये देखा कि उन लोगों ने यज्ञ को, या जैसे नहीं, विश्व को परिवर्तन करने का जैसा ठेका हमारे सिर पर है, तो और ये सब मेरे बाबा के बच्चे हैं, वो जो पूर्वज वाली जो बात हम कहें, तो जिनका जितना स्पिरिचुअल लेवल हाई, उनका वो स्पिरिचुअल स्मृति जो है, पूर्वज होने की जो स्मृति थी वो बहुत बड़ी। मतलब ऐसा है कि भाई ये बहन अच्छी नहीं है तो इनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में मैं इंटरफेयर क्यों करूं, ऐसी वाली बात नहीं थी। मैं कैसे इसको कन्विंस करूं कि इनका अच्छा हो करके। और आदरणीय रमेश भाई जी की बात कहूँ तो उन मतलब कभी कभी बड़े जोर से बोला करते थे, क्योंकि उनको सामने वाले व्यक्ति से नहीं लेकिन सेवा से कनेक्शन होता था कि वहां कोई गलती नहीं हो, कोई गड़बड़ी नहीं हो, और बहनें सेफ हों, सिक्योर हों, सब चीजें लीगली हो, तो उनका कंसर्न, उनका कनेक्शन, कंसर्ननेस उस प्रकार का रहता था। तो बाकी अगर स्पिरिचुअलिटी का लेवल हमारा कम है तो कहीं ना कहीं तेरा और मेरा वाला हो जाता है कि भाई ये मेरे हैं, वो मेरे नहीं हैं। और एक्चुअली वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, मैं अपने अनुभव से कहूँ तो, क्योंकि दादियों की ट्रेनिंग से एक बात मुझे पक्का मतलब ज्ञान रहा, उसमें बहुत स्पेशल

0: एक शाम को हम जगदीश भाई जी के साथ बैठे थे और वो जो एक शाम का 3-3.5 घंटे का जो समय उनकी जो ट्रेनिंग थी उसमें उन्होंने 4 कहानियां हम चार बहनों को सुनाया। पूरे पांडव भवन में सब लोग ज्ञान सरोवर चले गए थे और सिक्योरिटी वाले या 4-8 लोगों को छोड़ के हम ही लोग आंगन में बैठे थे समझो। और उस समय उन्होंने जो सीख दी है वो सीख यही है कि आप जितना ऊंचा जितना वाइड जितना ब्रॉड सोचते हैं, हाँ भाई मेरा तेरा के उस लिमिट से ऊपर होके जब सोचते हैं कि यज्ञ मेरा है, मैं यज्ञ की हूँ, और किसी भी जगह का जो भी भाई बहन है वो कहीं ना कहीं मैं उनकी पूर्वज हूँ, और वो जो कनेक्टेडनेस और अगर मैं मिठू दादी तक जाऊं तो नेचर के साथ भी जो कनेक्टेडनेस मिठू दादी जी की ट्रेनिंग का रहा उसमें उनकी ट्रेनिंग यही रही कि भाई बस जो सब कुछ अपना है मेरा है और मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी जो सेवा है मेरा जो डेडिकेशन है मेरा जो देन है वो यज्ञ को क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण था। पर कभी कभी अगर हम इतने नॉन स्पिरिचुअल नहीं है तो तेरे मेरे की लिमिट में आते हैं, ये मेरा एरिया है और ये मेरे भाई बहने हैं, ये मेरी सोच है और मुझे इनसे क्या फायदा होगा, ये सेवा में क्या अच्छा रहेगा क्या फायदा होगा, मतलब ये सब चीजें आती हैं। पर उन लोगों के यहाँ ये सब कुछ नहीं था, सेवा करनी सेवा करो, सब भाई बहने लगा रहे लगाओ, हमें अपने ऊपर बहुत कम खर्चा करना है और ये सब चीजें। हमने दादियों को देखा है कि वो जो सिलाई करके भी साड़ियों को ऐसे पहनते थे जैसे कि नई नई साड़ियों एकदम फर, और ये जो बनियान वगैरह फट जाए तो उसको इस प्रकार से रखते थे, मतलब हर एक चीज बहुत सुंदर होता था, कभी फटा हुआ नहीं पहनते थे, लेकिन 108 चत्तियों वाला पहनना पसंद, लेकिन कहीं से फटा हुआ नहीं दिखेगा, कहीं दाग नहीं दिखेगा आपको साड़ी में, साफ सफाई एकदम साफ होकर के साड़ी होगा, मतलब इस प्रकार की चीजें इन दादियों में बहुत रही जो कम खर्च वाला नशीन रही। आज तक भी हमने देखा बड़ों को कि वो जो लिफाफा आता है ना जिसके अंदर पोस्ट आता है वो लिफाफा भी नहीं फेंकेंगे, उसको भी साइड से काट के जो रफ जो लिखना होगा वो उसमें लिखेंगे ताकि आप उसको फेयर कर सकें कैसे कर। तो ये सब चीजें उनमें बहुत नेचुरल रही और कहीं ना कहीं वो सब चीजें उनकी देन हमारे में संस्कार की तरह भी है। मैं देखती हूँ कभी कभी अपने आप को तो मुझे सारा वसुधा अपना परिवार लगता है, भारत में जिस कोने में पहुंच जाऊं मुझे मेरा घर लगता है, देश विदेश में जहां भी जाने का चांस मिला है मुझे लगता है इतना नहीं, लेकिन सामने से भी मुझे लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप हमारी दीदी हैं हमारी बहन है, ये सेंटर आपका है, मतलब उस हिसाब से लोगों के भी रिस्पॉन्स मिलते हैं तो मुझे वो बहुत बहुत सुकून और बहुत खुशी देती है।
1: दादी के लिए आप कोई गीत गाना चाहेंगे? आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप गाएंगे तो अच्छा लगेगा।
0: दादी के लिए मैं गीत गाऊंगी, वो हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। तो दादी हर खुशी की हकदार है, ऑफकोर्स बाबा की ब्लेसिंग्स है, लेकिन मेरा उनके लिए गीत रहेगा, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे।
1: तो दादी की इस 100 साल की जर्नी के लिए आप अपनी तरफ से कुछ विश करना चाहे या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं?
0: देखिए यज्ञ की जो आदि रत्नों की दादी रतन मोहिनी आखिरी निशानी है, जब तक दादी है तो हम किसी को बता सकते हैं कि भाई आदि रत्न क्या होते हैं, दादियां कैसी होती हैं इत्यादि। तो इसलिए हम चाहते हैं कि दादी यूं ही हेल्दी वेल्दी हैप्पी हो करके हमारे बीच में रहें, और आज भी जो प्यार पालना थोड़ा सा भी मिल रहा है उसमें भी बड़ी तृप्ति की अनुभूति होती है, बड़ी खुशी की अनुभूति होती है, तो वो बनी रहे जी। और अभी सेंचुरी आने वाली है दादी की, तो बहुत उमंग उत्साह से दादी का ये दिन भी मनाया जाए, 100 साल पूर्ति का दिन जो है मनाया जाए जी। मुझे बहुत दिल है कि दादी अगर भुवनेश्वर आ सकेंगे तो जरूर दादी को हम भुवनेश्वर इनवाइट करना चाहेंगे, और फिर भी ड्रामा देखो जैसे सब चीजों को देखते हुए यज्ञ की इतनी अनमोल अमानत, तो जो भी हो सकेगा वो ठीक है।
1: थैंक यू सो मच दीदी।
0: थैंक यू कृष्णा बहन, ओम शांति।
2: जब भी किसी नई आत्मा से मिलते हैं तो दादी जी उसमें पहले से ही विशेष आत्मा बनने के लक्षणों को देख लेते हैं। दादी जी सेवाओं से ज्यादा आत्माओं के जुड़ाव पर ज्यादा महत्व देते। उनका मानना था कि कोई आत्मा बाबा से दूर ना हो, कोई कमी है तो भी समय अनुसार ठीक हो जाए। दादी रत्न मोहनी जी स्वाभिमान को सबसे आगे रखते, यज्ञ से प्राप्त वस्तुओं को आखिरी समय तक इस्तेमाल करने पर जोर देते, जिससे बच्चों में यज्ञ के प्रति समर्पण और सम्मान बना रहे। दादियों की त्याग, तपस्या और पवित्रता ही यज्ञ को सफलता के शिखर पर ले गया। आज जो हम ये सारे ही विस्तार देख रहे हैं, वो दादियों के अथक और निरंतर सेवाओं का प्रतिफल है। मैं मधुबन आबू की अरावली पर्वत पर स्थित होकर सारी ही कर्तव्यों को देखता हूं और मन ही मन ये सोचता हूं कि बाबा ने बच्चों को साधारण मनुष्य की श्रेणी से कैसे ऊपर उठा दिया है। जहां दुनिया एक ओर धन के पीछे भाग रही है, वहीं दूसरी ओर ये ब्रह्मावत्स ईश्वरीय सेवाओं में अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहे हैं। क्या ये कोई साधारण बात है? ये सब परमात्मा के द्वारा रचे जा रहे दिव्य कर्तव्य हैं, जिनको वही कल्प पहले वाली आत्माएं ही

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। ये जो पूरी श्रृंखला हमारी हमने तय की है, खुद को पहचानने से शुरू करके परमात्मा को पहचाना और फिर समय को पहचाना, काल चक्र के इस पूरे एहसास को समझा कि किस तरह से सतयुग और त्रेता युग में कैसे थे हम लोग, कैसी थी वो प्योर सोल्स, और किस तरह से द्वापर युग की शुरुआत हुई और साथ ही बॉडी कॉन्शियसनेस की शुरुआत हुई। आगे किस तरह से ये सफर बढ़ा, ये कहानी किस तरह से अनफोल्ड होती है, जानने की कोशिश करते हैं हर बार की तरह इस सफर की हम सफर। ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सचमुच अगर हम देखें सिस्टर शिवानी, जब तक हम खुद को पहचान रहे थे, परमात्मा की पहचान कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अनुभव हमारे साथ थे। लेकिन जब हम काल चक्र को देख रहे हैं, समय चक्र जो है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं, ऐसे अनफोल्ड हो रहा है ये पूरा का पूरा रहस्य। तो इस पर हम आएंगे कि किस तरह से ये अनफोल्ड हो रहा है और किस तरह से इसको भी क्या हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम द्वापर युग तक पहुंच चुके हैं और हमने ये जान लिया था कि अब धर्म और ईश्वर के एहसास की दोबारा
1: एक बात आप देखो, जो हम स्वर्ग को याद क्यों करते हैं, हम मुक्ति धाम को याद करते हैं ना, शांति धाम को याद करते हैं, इसी तरह हर आत्मा स्वर्ग को भी याद करते हैं
0: कि स्वर्ग था।
1: क्यों? कहीं ना कहीं
0: मेमोरी,
1: जिन आत्माओं के अंदर वो इम्प्रेशन होगा, जिन आत्माओं ने स्वर्ग नहीं देखा होगा, क्योंकि 33 करोड़ ना, त्रेता युग के एंड तक की पॉपुलेशन 33 करोड़, और हमें ये पता है कि हमें ये नॉलेज कौन दे रहा है, कोई मनुष्य आत्मा ये ज्ञान नहीं दे सकता है, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा स्टेज पर है। तो स्टेज पर होने के कारण या बैक स्टेज होने के कारण वो ये पूरे ड्रामा को नहीं जानता है, क्योंकि वो बैक स्टेज से कभी ना कभी स्टेज पर आ जाता है, और स्टेज पर आने के बाद वो अपने ही रोल को देखता है। लेकिन एक परमात्मा, वो निराकार, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा स्टेज से ऊपर है, वो इस ड्रामा के डायरेक्टर हैं, वो हर आत्मा के, हर एक्टर के रोल को देख रहे हैं। और इसीलिए जब वो स्वयं आकर हमें इस ड्रामा की कहानी कहें या हमें समय का ज्ञान देते हैं, तो वो एक्यूरेट होता है, क्योंकि जो स्टेज के उस पार बैठकर ड्रामा को देख रहे हैं, वो ड्रामा को एक्यूरेटली बता सकते हैं। जो खुद स्टेज पर है,
0: they can't,
1: because they can see one part of the stage. They cannot see the entire stage in that
0: perspective.
1: रोल में entangled है ना, तो वो हर एक आत्मा के रोल को नहीं जानते और ना वो समय को फिर पूरी तरह जानते हैं। इसलिए समय का ज्ञान, जबकि बहुत सारी आत्माओं ने भी हमें समय का ज्ञान तो दिया, अपने शास्त्रों में भी ये समय की बात तो लिखी है, लेकिन इतनी क्लैरिटी से नहीं, क्योंकि अब सबने हमें समय का ज्ञान दिया, क्योंकि हर आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं वो इम्प्रेशन
0: था,
1: तो वो इम्प्रेशन था, तो इसलिए उन्होंने बताया कि एक ऐसा समय था और एक ऐसा समय आने वाला है। दोनों बातें हमें बताई, धर्म स्थापक आए, शास्त्र लिखे गए, सब में ये था कि स्वर्ग था, पैराडाइज था, और सबने ये भी लिखा कि पैराडाइज आने वाला है, क्योंकि आत्माओं के अंदर वो रिकॉर्डेड था। लेकिन पूरी क्लैरिटी से जब वो ड्रामा के डायरेक्टर, या कहें डिटैच्ड जो है, जो एक्टर नहीं बनते, तो वो जब हमें ड्रामा की कहानी बताते हैं, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। एंड भले वो एकदम शुरू में लगे आपको कि नहीं, पर अगर आप थोड़ा सा भी इंट्यूटिवली उस पर सोचेंगे, इट्स ऑल्सो वेरी लॉजिकल, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि मैं आत्मा सबसे पहले एकदम प्योर थी। नई चीज से पुरानी होती है ना, ऑर्डर्ड स्टेज टू क्योटिक स्टेज, पुरानी से नई फिर एफर्ट से बनती है, लेकिन हायर से लोअर नेचुरल। तो मैं आत्मा आज डिस्चार्ज्ड हूँ, लेकिन जब मैंने सबसे पहला कॉस्ट्यूम लिया होगा फुल्ली चार्ज्ड, तो अब उसको सत्युग नाम है, सत्युग वो समय का नाम है, लेकिन ऑर्डर्ड स्टेज, आत्मा प्योर, प्रकृति प्योर, तो दुख का नाम निशानी, संपूर्ण सुख पवित्रता, उसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, और उस गोल्डन एज में, उस सत्युग में आत्मा के ऊपर बाह्य चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता,
0: कंप्लीट।
1: फिर धीरे धीरे वो थोड़ी सी प्योरिटी थोड़ी सी कम होने लगी, तो सिल्वर एज, त्रेता युग सिल्वर एज, सिल्वर पर थोड़े टाइम के बाद टार्निश होने लगता है, पानी का वायु का प्रभाव पड़ने लगता है, और फिर हम आए द्वापर युग में या कॉपर एज। तो इधर सत्ययुग और त्रेता युग में हमने 2500 वर्ष पूरे किए और अब द्वापर युग शुरू होता है। और जैसे हमने देखा बॉडी कॉन्शियसनेस, अटैचमेंट, और जहां ईगो आया तो ईगो एंगर आया तो दुख भी आना शुरू,
2: कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ।
1: और सबसे पहला फियर क्या हुआ ना कि मैं शरीर हूँ
2: और ये मेरे हाथ से चला जाएगा,
1: मैं शरीर हूँ, मेरी मृत्यु होगी, मैं अजर अमर हूँ, वो फिनिश हो गया, मैं शरीर हूँ, मेरी मृत्यु होगी, तो मेरे पास इतना ही समय है, इस समय में
2: सब कुछ मैं
1: सब कुछ कर लो। ये था कि ये जो चोला बदलना है वो इटर्नल होने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वो भूल गए हम। हमने सोचा इतने समय में सब कुछ करना है, तो होड़ शुरू हो जाती है ना, तब फिर ग्रीड, जेलेसी, अटैचमेंट सब, और जहां विकार आते हैं तो दुख, अशांति, परेशानी। और जैसे ही बच्चे को दुख हुआ तो हमने अपने पिता को याद करना शुरू किया, और वहां से परमात्मा को याद करना हमने आरंभ किया कि हे पिता अब मुझे इससे बचाओ, मैं फंसने लग गया हूँ। बट इट वॉज स्टिल जस्ट द बिगिनिंग, इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हमने परमात्मा के जो मंदिर बनाने शुरू किए, तो सबसे पुराने मंदिर शिव के मंदिर। क्यों? क्योंकि 2500 वर्ष पहले आत्मा के अंदर वो इम्प्रेशन था कि मेरा पिता पॉइंट ऑफ लाइट नाम शिव बाबा, याद था शिव मतलब पॉइंट, शिव कोई रिलीजन नहीं यहाँ पे, अगेन नॉट अ रिलीजन, पॉइंट ऑफ लाइट। 2500 वर्ष बीत गए, थोड़ा सा इम्प्रेशन बचा था, जैसे ही अपने पिता को याद किया तो किस फॉर्म में उसका स्वरूप बनाया,
2: एक ओवल
1: शेप, क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट पर तो कंसंट्रेट नहीं कर सकते थे, तो एक ओवल शेप्ड, जिसको हम फिर ज्योतिर्लिंगम वो बनाकर, तो सबसे पहला मंदिर सोमनाथ का मंदिर बना, फिर उसके बाद बाकी सारे मंदिर बनने शुरू हुए। अब साथ साथ ही कुछ पवित्र आत्माएं सृष्टि पर आने शुरू हो गई, बिकॉज वी हैव टू रिमेम्बर इट्स अ कंटिन्यूअस, टू थिंग्स आर हैपनिंग कंटिन्यूअसली, जो ऑलरेडी स्टेज पर हैं वो स्टेज पर ही रहेंगे और नए स्टेज पर
2: तो जो ऑलरेडी थे वो भूले थे, जो अब नए आते गए उन्हें याद रहा,
1: क्योंकि वो जस्ट घर से आ रहे थे ना। सी दैट इज हाउ इट्स सो यू नो, कि जो आ रहे थे उनको सब याद था, क्योंकि वो जस्ट अभी बैक स्टेज से आए थे, तो उनको पता है बैक स्टेज क्या हो रहा है, लेकिन जो इतने समय से, तो उनको भूल गया था। तो उस समय पर जो सबसे पहले सृष्टि पर आकर परमात्मा का परिचय दिया, इब्राहिम, यू नो द लॉ ऑफ गॉड जिसको कहा जाता है, वो इब्राहिम ने हमें देना शुरू किया, द राइट वे ऑफ लिविंग वो सिखाना शुरू किया, एंड दैट वॉज 500 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। ये द्वापर युग से हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री शुरू हो जाती है, सत्ययुग त्रेता युग कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है। तो इब्राहिम ने आकर सबसे पहले हमें ये जीने का तरीका, परमात्मा का परिचय ये देना शुरू किया। तब तक भारत में क्या हो रहा था कि परमात्मा को अलग अलग रूपों से याद करना शुरू किया, कि भगवान कौन है, भगवान ये है, नहीं भगवान ऐसे
2: जिसको
1: है,
2: जो समझ में
1: जिसको
2: आया।
1: जो समझ में आया, तो थोड़ी सी एक कॉन्फ्लिक्ट, एक कंफ्यूजन शुरू हुआ। तो उस समय गौतम बुद्ध सृष्टि पर आए और उन्होंने फिर जो हमें एट फोल्ड पाथ दिया, उन्होंने ये बताया कि सारी जो हमारी डिजायर्स है ये हमारी सफरिंग का कारण है, और उन्होंने हमें उससे मुक्त होने का रास्ता सिखाना शुरू किया। तो गौतम बुद्ध जब इस सृष्टि पर आए, दैट वॉज 250 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। सी 2500 ईयर्स यहाँ पूरा हुआ, उसके तुरंत से बाद इब्राहिम, उसके 250 ईयर्स बाद गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने आकर हमें राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट थिंकिंग, ये सब कुछ बहुत जीवन जीने की जैसे कला सिखाई, लेकिन राइट और रॉन्ग इसकी भी तो एक बहुत ड्यूअलिटी शुरू हो गई थी। तो जो उस समय दिया परिचय, लेकिन वो बहुत कुछ समय तो हमें सस्टेन कर पाया, लेकिन फिर बहुत देर तक वो भी हमें सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि लॉ ऑफ एंट्रोपी था दैट वी वर मूविंग फ्रॉम अ हायर स्टेज टू अ लोअर स्टेज,
2: और होना ही था। और ये जो आप चाहे इब्राहिम आए या बुद्ध आए,
1: लेकिन उनका रोल इस सृष्टि पर बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने आकर इस सृष्टि को थमाया है. ये विशेष आत्माएं, श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं जो सृष्टि पर आए, उन्होंने परमात्मा का परिचय दिया और हरेक ने यही कहा कि एक है, लाइट है, निराकार है, क्योंकि वो जस्ट आ रहे थे ना उनसे, और उन्होंने जीवन जीने का तरीका हमें सिखाया. तो वो अगर उनका रोल ना होता तो हम तो और भी बहुत ज्यादा घिरावट की तरफ. तो एक एक आत्मा का इस सृष्टि पर बहुत विशेष रोल था, और तब उनके आने से वो धर्म स्थापन होना शुरू हुआ. बुद्धिज्म, ये सारे धर्म स्थापन होने शुरू हुए. उसके बाद जीसस क्राइस्ट, जिसके लिए हम कहते हैं 2000 इयर्स बिफोर नाउ, 3000 इयर्स आफ्टर सत्युग, एंड 2000 इयर्स या 2008 इयर्स अभी से पीछे. दैट इज जब हमारा कैलेंडर चेंज हो गया कि हम एडी और बीसी के कॉन्सेप्ट में चले गए. तो जीसस क्राइस्ट ने आकर हमें लव, फॉरगिवनेस, जो चीजें समाज में ऐसे लग रही थी खत्म होती जा रही है, उन्होंने अपने जीवन से वो सिखाया. और जीसस क्राइस्ट ने आकर एक बहुत विशेष संदेश दिया कि पैराडाइज, दैट लॉस्ट पैराडाइज इज गोइंग टू कम अगेन. और वो पैराडाइज को गए हुए अभी 500 वर्ष ही हुए थे, क्योंकि त्रेता युग जस्ट फिनिश हुआ था, उसके 500 वर्ष बाद जीसस क्राइस्ट आते, 500 वर्ष ही हुए थे. तो उस आत्मा ने आकर ये विशेष संदेश सबको दिया कि वो पैराडाइज फिर से आने वाला है,
2: लौटेगा.
1: तो उसके लिए अपनी तैयारी शुरू करो. और उन्होंने ये भी बताया कि जो आत्माएं परमात्मा को, वो जो है जैसा है, उस स्वरूप में पहचान लेंगी, उससे संबंध जोड़ लेंगी, वो आत्माएं वो पैराडाइज में जाएंगी. तो जैसे कि पैराडाइज खत्म होते ही हमने पैराडाइज को फिर से याद करना शुरू कर दिया, बिकॉज इट वॉज अ ब्यूटिफुल पीरियड विच हैड जस्ट गॉट ओवर, सो वी स्टार्टेड रिमेम्बरिंग दैट. जीसस क्राइस्ट के 500 वर्ष के बाद शंकराचार्य भारत में, और शंकराचार्य ने आकर संन्यास धर्म का स्थापना की. तपस्या, यू नो, घर बार छोड़कर, घर गृहस्थ को छोड़कर जंगल में जाना, तप करना, जप करना. और ये जो संन्यास धर्म स्थापन हुआ, इसने सृष्टि को थमा कर रखा, क्योंकि पवित्रता का बल था इन आत्माओं के अंदर. लेकिन उसमें एक थोड़ा सा जो एक डिफरेंट बिलीफ एंटर होने लगा, वो यही जो हमने पहले भी देखा कि परमात्मा कोई हमारे से बहुत दूर है. हमें, क्योंकि हम लोग सब परमात्मा को ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पर्सनल जो रिलेशनशिप था वो एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था. शंकराचार्य के 100 वर्ष पश्चात मोहम्मद एंड इस्लाम धर्म, जो थोड़ा सा ऑलरेडी स्कैटर हो रहा था, वो फिर से री एस्टैब्लिश हुआ कि गॉड इज वन, अल्लाह. तो अल्लाह की याद फिर से आत्माओं को दिलाकर इस्लाम धर्म की स्थापना हुई. तो ये सभी जो विशेष आत्माएं इस सृष्टि पर आई, तो इन सब ने इस सृष्टि को, या कहें हम आत्माओं को, और जल्दी जल्दी नीचे गिरने से बचाया, क्योंकि हर एक के अंदर पवित्रता का बल था, उस सत्य पिता की पहचान थी, और ऑनेस्टी, ट्रूथ, लव, ये वैल्यूज जैसे कि एकदम पीक पर थी. तो आकर फिर ये रिलीजन सारे स्थापन हुए,
2: रिवाइव करवाते गए.
1: और इसी समय पर हमारे सब स्क्रिप्चर्स भी लिखने शुरू हो गए. सारे शास्त्र जो हमारे लिखे गए वो इसी टाइम पर लिखे गए. नाउ ऑल दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2000 इयर्स फ्रॉम टुडे. भक्ति हमारी बढ़ती गई. पहले हमने शिव की पूजा की, तो हमने ज्योतिर्लिंगम बनाए. फिर जैसे हमने देखा कि धीरे धीरे हमारा ज्योतिर्लिंगम पर भी बुद्धि एकाग्र नहीं हो रही थी. अब हमने किसको याद करना शुरू किया? वो ही जो अभी अभी होकर गए थे, क्योंकि वो जो आत्माएं थी जो सत्ययुग और त्रेता युग में थी, दिव्य आत्माएं, देवी देवताएं, डिवाइन सोल्स, उनके पिक्चर्स तो हमारे पास है ना. वो अभी अभी तो होकर गए हैं, और उनके अंदर वो दिव्यता थी जो आज मुझे अपने अंदर नहीं दिखाई दे रही है, और वो हमारे ही पूर्वज थे. तो हमने उनके चित्र, या कहें उनकी महिमा, या उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना शुरू कर दी. तो वहां से हम देवी देवताओं के मंदिर भी बनाने शुरू कर दिए. तो ये सारा कुछ जो हमने किया, ये परमात्मा को ढूंढने के लिए किया, परमात्मा से जुड़ने के लिए किया. लेकिन अभी वो समय नहीं आया था कि परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय दे. जैसे बच्चा खेलने लगता है, थोड़ा सा थक जाता है, तो पेरेंट्स कहते हैं खेल लो खेल लो. अब जब एकदम थक जाओगे तब आकर ले जाऊंगा. ऐसे समय बीतते बीतते हम कलयुग में आ गए.
2: और एक्चुअली काफी लंबा टाइम भी हो गया था ईश्वर को परमात्मा का सही परिचय लिए हुए, क्योंकि 2500 साल तो हमने याद ही नहीं किया.
1: 1250 वर्ष और ये द्वापर युग भी क्रॉस हो गया, तो 2500 वो, 1250 वर्ष ये, फिर कलयुग शुरू हुआ. तो कलयुग में क्या आत्मा और भी डिस्चार्ज होती गई. सोल कॉन्शियसनेस तो
2: सोल का तो कॉन्सेप्ट
1: ही खत्म. इसीलिए आज हम आत्मा शब्द तो याद है, लेकिन कभी ये नहीं याद होता कि मैं आत्मा. तो कलयुग में हम आ गए जहां हमारा सारा सुख बाहर ही डिपेंडेंट था. बॉर्डर्स क्रिएट हो गए, बंटवारे हो गए, सृष्टि पर, पानी पर, इवन आकाश में बॉर्डर्स क्रिएट हो गए. मानव मानव के बीच दुश्मनी और भी बढ़ती गई, भेद बढ़ता गया, डिफरेंसेस, रिच पुअर, वाइट ब्लैक, इवन ब्रदर सिस्टर्स, यू नो, एवरीवेयर, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप्स, बीमारियां हमारी. तो एक तरफ से टेक्नोलॉजिकली तो हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस किए, लेकिन सोल की क्वालिटी में हम एक्चुअली गिरावट की तरफ आ रहे थे. और फिर हमारा मंत्र बन गया, खाओ पियो मौज करो. क्योंकि जीवन कितना है,
2: इतना सा,
1: इतने में जो करना है,
2: एक जिंदगी मिली है, आराम से बिता दो. ये दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव ऑल बीन टॉकिंग अबाउट.
1: कितनी डीप स्लीप है, कितनी डीप स्लीप है. और इस डीप स्लीप में होने के कारण ना गलत करने से डरते ना कोई भय से मुक्त हो पाते.
2: किसने देखा है
1: ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, तो वो हमारा मंत्र बन गया. अब इतनी आत्मा कमजोर हो गई तो शरीर कैसे हो जाएगा, प्रकृति कैसे हो जाएगी. पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, प्रकृति को भी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया. तब ये शुरू हुआ ना अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ड्राउट, जो भी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, अननेचुरल डेथ, ये भी तो, क्योंकि कार्मिक अकाउंट, यस, कार्मिक अकाउंट बढ़ता जा रहा है,
2: इतना ज्यादा बढ़ता गया.
1: क्योंकि हर विक्रम जो करते गए. अब ये कलयुग शुरू हुए भी आज 1250 वर्ष होने वाले हैं ऑलमोस्ट,
2: फिनिश होने वाला है
1: आज. इसलिए लोग कहते हैं घोर कलयुग है. कलयुग भी, लेकिन
2: काली माँ जो है, रात की काली माँ सबसे स्या,
1: इसीलिए जब एकदम डिप्लीशन पर आते हैं ना, तो डिस्चार्ज और भी फास्ट होता है
2: एकदम.
1: और इसीलिए अब हम जो पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अब जो गिरावट है, जहाँ किसी भी संबंध में ट्रस्ट नहीं रह गया, किसी भी संबंध में प्योरिटी नहीं रह गई, हर रोज अखबार उठाओ तो ऐसा लगता है कोई ऐसे भी कर सकता है. वी आर रीचिंग एब्सोल्युटली, एंड द मोर वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड, इट्स गोइंग इवन फास्टर. छोटे बच्चों को डिप्रेशन, छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर, क्यों? बिकॉज द सोल, शरीर बच्चा है ना.
2: सोल तो इतनी पुरानी, इतने सालों से आ रही है और इतना कुछ देख कर, इतने संस्कार लेकर आ रही है,
1: और वो अपने लास्ट फेज में आकर पहुंच रही है, जहां उसको अब बहुत जल्दी बहुत कुछ सेटल करना है. तो ऑब्वियसली सुख भी है, भौतिक सुख तो है, लेकिन साथ में भोगना भी है. वो चुकतू तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट एट द लास्ट एपिसोड.
2: Now we gotta finish this off, actually.
1: Yeah, because now is the time we have reached at the absolute chaotic stage. Ab agar kuch nahi hua, to it'll finish. The law of entropy says that jis stage pe ab pahunch jayenge, higher source of energy, which is outside the system, will intervene. Aur usse fir ye chaotic stage fir se ordered stage mein pahunch jayegi. अब क्या होता है, कई बार जब हम जीवन में आजकल देखते हैं तो बहुत बार मन में आता है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है. बिकॉज हम समझ नहीं पा रहे कि अभी जो हो रहा है
2: अच्छा है, वो हो जाए.
1: इट इज अ सेटलमेंट ऑफ ऑल दीज बर्थ्स. सत्युग में हम 8 जन्म लेते हैं, क्योंकि आयु 150 वर्ष है. त्रेता युग में हम 12 जन्म लेते हैं. द्वापर युग में हम 21 जन्म लेते हैं. कलयुग में आकर हम 42 42 जन्म लेते हैं. कितने जन्म हो गए? तो ये अकर्म तो हुआ न्यूट्रल, लेकिन द्वापर युग और कलयुग में 63 जन्म हमने लिए हैं. 63 जन्म हमने विकर्म किए, बिकॉज वी वर इन द बॉडी कॉन्शियसनेस. इस समय आत्मा के ऊपर, फॉर द सोल्स जो शुरू से आई हुई है, 63 जन्मों का बोझ है तो आत्मा कैसे हो जाएगी.
2: गॉड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग सो हेवी.
1: नो इट्स नॉट टू फील हेवी, इट इज गुड टू नो व्हाट इज हैपनिंग.
2: नो बट इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली
1: एब्सोल्युटली कि ये इतना है, अब मुझे इसको चुक तो करना. तो अब क्या होगा, जैसे किसी सीरियल का लास्ट एपिसोड होता है तो वो लास्ट एपिसोड हर चीज वाइंड अप करते हैं. अगर कोई लास्ट एपिसोड को फर्स्ट टाइम देख रहा हो, उसने बाकी सीरियल नहीं देखा, उसको वो समझ ही नहीं आएगा.
2: क्योंस दिखेगा ना, क्योंकि सारे लूज एंड्स
1: उसको लगेगा ये क्या हो रहा है सारा, यू नो ये कहाँ से आ रहे हैं वो कहाँ से. लेकिन जिसने पूरा सीरियल देखा है उसको तो लास्ट एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा. वो कहेगा अच्छा इसकी भी स्टोरी पूरी हुई, इनका भी यहाँ क्लाइमैक्स पूरा हुआ. जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में थे हमें ये लग रहा था कि हम ये एपिसोड पहली बार प्ले कर रहे हैं, दिस इज द सीरियल, तो हमें लग रहा था ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों बोल के चले गए, ये क्या हो रहा है. जब हम सोल कॉन्शियसनेस में जाके अब अपनी पूरी जर्नी को देखते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट दीज आर ऑल दोज लूज एंड्स एंड ये टाइम है, ये मेरा वाइंडिंग अप एपिसोड है, क्योंकि नाउ द सीरियल इज गोइंग टू बिगिन अगेन. तो ये वाइंडिंग अप एपिसोड में जितने भी
2: लूज एंड्स हैं,
1: हिसाब किताब छोड़े हुए थे, वो सारे चुक तो होने हैं, सारे चुक तो होने. सो वी आर एक्चुअली एट द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि अभी तक आत्मा सिर्फ नीचे आती रही, हाईएस्ट स्टेज से लोएस्ट स्टेज, कोई एफर्ट नहीं करना था, नेचुरल. नए से पुराना, नेचुरल, पुराने से नया, करना पड़ता है. तो अब आत्मा अपनी लोएस्ट स्टेज पे है, लोएस्ट स्टेज से अब हमें अपने हाईएस्ट स्टेज पर जाना है.
2: नाउ इवन आई अंडरस्टैंड कि हमें ये काल चक्र या समय चक्र की सच्चाई जानना भी क्यों जरूरी था. यू नो कि व्हाटएवर इज हैपनिंग नाउ हैज टू हैपन, इट्स बेटर दैट इट्स हैपनिंग नाउ.
1: एब्सोल्युटली,
2: यू नो बिकॉज़ द टाइम हैज कम टू वाइंड अप.
1: एंड वी अंडरस्टैंड कि जैसे लोग में बहुत भय हो रहा है क्या होने वाला है, वी अंडरस्टैंड कि कुछ भी नहीं है, इट इज द एंडिंग अप, इट इज द क्लीनिंग अप. ये क्लीनिंग अप टाइम चल रहा है, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल टाइम आने वाला है.
2: अब नाउ द टाइम हैज कम एक्चुअली टू लिव विद दिस अवेयरनेस.
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि अवेयरनेस के साथ रहेंगे तब तो तैयारी करेंगे अपनी. तैयारी करने से क्या होगा, ये समय भी बहुत अच्छा बीतेगा, जो आने वाला समय है अभी अगले कुछ वर्ष बहुत इजी नहीं होंगे.
2: ज्यादा मुश्किल आने वाली है.
1: यू नो हमने खुद डिस्कस किया है ग्लोबल वार्मिंग, न्यूक्लियर वेपन्स, डिजीजेस, ये कोई किसी को डराने के लिए बात नहीं थी, बट वेक अप, दिस इज गोइंग टू हैपन. साइंस इज टेलिंग अस दिस इज गोइंग टू हैपन, एवरीवन इज टेलिंग अस दिस इज गोइंग टू हैपन, व्हाई एम आई क्लोजिंग माय आईज एंड स्लीपिंग. तो ये सब होने वाला है, तो डरना नहीं है, बट ऐसे समय में मुझे क्या करना है,
2: that becomes important.
1: मुझे, क्योंकि अगर अभी भी हमने परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ा तो जो भोगना हमें अब अगले कुछ समय में भोगनी पड़ेगी, ये बहुत चैलेंजिंग होने वाली है. और इसीलिए हमें अभी भी चैलेंजिंग लगती है. आज भी आत्माएं एकदम दुख के अति में पहुंच गए, इतने अति के कहते हैं बस अभी हमें जीना ही नहीं है. इससे ज्यादा अति नहीं हो सकती है. तो इसलिए ये समय को पहचानना है. और ये समय पर वो हमारा शिव बाबा फाइनली कहता है अब बच्चे थक गए,
2: अब मैं आ रहा हूँ.
1: और वो आ चुके हैं. वो आ चुके हैं, कहते हैं अब थक गए हैं, बिकॉज ही इज द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा, ही नोज व्हेन द ड्रामा इज गोइंग टू रिपीट नाउ, सो इट्स द राइट टाइम फॉर हिम टू कम इंटरवीन, कनेक्ट टू द सोल्स, चार्जिंग विल बिगिन अगेन. तो साइकिल है, वैसे का वैसे फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा. इसीलिए जब कई बार लोग कहते हैं ना, लेकिन डेस्टिनी है, सब कुछ तो प्री रिकॉर्डेड है,
2: भाग्य है बहुत ज्यादा. एक बहुत लोगों ने भी मुझसे सवाल पूछा है कि भाग्य क्या है, फिर अगर कार्मिक फिलॉसफी है तो भाग्य भी तो होता है. तो भाग्य क्या है और क्या ये सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ प्रीडिस्टाइंड है, तो फिर मैं क्यों एफर्ट कर रहा हूँ जब कुछ होना ही.
1: तो लेकिन इसको समझना पड़ेगा बहुत, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा डिटैच होकर समझे कि हर आत्मा के अंदर स्क्रिप्ट पूरी बनी हुई है. मतलब मेरा रोल पूरा उस सुषुप्त अवस्था में है. जैसे हम सृष्टि पर आए तो हमने उस रोल को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया. अब वो आप कह सकते हो कि ये प्रीडेस्टिन्ड था. अगर हम कहना चाहें कि क्या प्रीडेस्टिन्ड, तो वो रोल आपका प्रीडेस्टिन्ड है. लेकिन जब आप इस सृष्टि पर आते हैं और एक एक सिचुएशन आपके सामने आती है, आपको ये नहीं पता कि आपका भाग्य क्या है. लेकिन वो सिचुएशन, अब जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अब आप कैसे बोल रहे हैं, कौन सा कर्म इस टाइम कर रहे हैं, आप खुद चूज कर रहे हैं ना. तो यही आपकी डेस्टिनी बनता जा रहा है. अभी तो आप चूज करके करते हैं, तो हर एक्शन की मेरे पास चॉइस है. आई हैव द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू. आई हैव द पावर टू चूज व्हाट आई वांट टू डू. इफ आई सिट बैक एंड से डेस्टिनी, फिर तो हिलो भी नहीं वहां से. डेस्टिनी में होगा तो खाना आपके पास आ जाएगा. कोई भी कर्म नहीं करो. नहीं, डेस्टिनी मतलब यस एवरीथिंग इज फिक्स्ड बट येट एट द सेम टाइम एवरीथिंग आई एम डूइंग एज इफ इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम. हम डेस्टिनी किस चीज के लिए कहते हैं कि ठीक है ड्रामा हो गया, जो हो गई बात, जो हो गई उस पर चिंता नहीं करो.
2: फिनिश्ड
1: ड्रामा में ये होना था, हो गया. लेकिन अब जो मुझे करना है इसको मैं ड्रामा पर नहीं छोड़ूंगी. इसको मैं कहूंगी अब जो मैं पुरुषार्थ करूंगी वो मेरा ड्रामा बनता जाएगा.
2: एक्चुअली आवर थॉट क्रिएट्स आवर डेस्टिनी.
1: एब्सोल्युटली, व्हिच वी स्टार्टेड फ्रॉम. सो वी क्रिएट दैट डेस्टिनी एट एवरी स्टेप.
2: ब्यूटीफुल, वंडरफुल. इनफैक्ट लगता यही है, मुझे लगता है कि सभी दर्शकों के लिए भी इट्स अ रिवेलेशन. शायद ये जो ड्रामा था ये इतनी क्लैरिटी से नहीं था हमारे सामने. अगर हम सोल कॉन्शियसनेस की बात करें या परमात्मा की बात करें, वो हम फिर भी कुछ कुछ जरूर जानते थे. लेकिन ये जो पूरा ड्रामा सतयुग से लेकर आज तक का एक पूरा एक सफर है जो हमने तय किया है, हम आत्माओं ने तय किया है. अब कौन कब कब उतरी है ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये एक एक्सेप्टेबल पूरा सफर लगता है. अभी बाकी कुछ और बातें हैं सिस्टर शिवानी की. जैसे कि आपने कहा कि शिव बाबा आ चुके हैं, कैसे आए, क्या कह रहे हैं और कैसे. हमारा जो इंट्रोडक्शन वहां परम धाम का उनके साथ है वो तो हम जान गए हैं, अब उसको अनुभव भी करते हैं. लेकिन कैसे बाकी सारी बातें हो रही हैं, वो भी बाकी बातें बची हैं. अगली कड़ियों में उन्हें जरूर हम समेटने की कोशिश करेंगे. आपसे बातचीत रही, बहुत बहुत धन्यवाद.
1: ओम शांति.
2: ओम शांति. कालचक्र का ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है, जिसे वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है, एक नाटक, जिंदगी एक नाटक है, कब से सुनते आ रहे थे, आज वो सारे पर्दे खुलते गए हैं. और क्यों जरूरी था इसके इस सच्चाई को जानना, जहां हमने खुद को पहचानने की सच्चाई बहुत जरूरी थी, परमात्मा का परिचय बहुत जरूरी था, उसी तरह से ये समय चक्र, काल चक्र की सच्चाई को जानना भी जरूरी था, ताकि आने वाले वक्त के लिए जो ये वाइंडिंग अप टाइम है उसके लिए हम तैयार हो जाएं और एक नए युग के स्वागत के लिए हम खड़े हों. कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है आपका. हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. शिव बाबा धरती पर आ चुके हैं, अपनी बात कहते हैं. कहाँ हैं वो, कैसे आए हैं, कैसे हमसे मुखातिब होते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसे हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं, ये कुछ बातें हैं जो अभी भी हमारे दिल में है. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी की अगली कड़ियों में इन्हें जानने की कोशिश करेंगे. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे, शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का? हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज जैसे कि तारीख है 25 तारीख है 25 सितंबर और शुक्रवार का दिन है, तो आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रवार वैसे शक्ति का दिन होता है, तो शक्ति कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करूंगा कि सभी देवियों से आपको शक्ति प्राप्त हो और शक्ति की कृपा आप पर बनी रहे। तो आइए, अनंत चतुर्थी का भी खूबसूरत दिन है और गणेश विसर्जन का भी दिन है, तो निश्चित तौर पे आज जो है सभी के लिए खुशियां ही खुशियां है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब गणेश विसर्जन का उत्सव बड़े धूमधाम से किया जाता है और लोगों के घरों में खुशियां रहती हैं और एक बच्चों के अंदर ज़्यादा खुशियां रहता है, क्योंकि घर से बाहर निकलना होता है और जो है प्रसाद वितरण के साथ साथ गुलाल उड़ाना और थोड़ा सा मस्ती के साथ, प्यार के साथ, भक्ति के साथ घूमने का या फिर बाहर निकलने का मौका मिलता है। तो आइए, 8:19 हैं और आप सभी को अनंत चतुर्थी गणेश विसर्जन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और मंगल कामनाओं के साथ आइए एक खूबसूरत गीत भी सुनाते हैं, जिससे आपके लिए आज का ये दिन बड़ा ही आनंददायक हो। ऐसा मस्त होकर आप जो है एक धुंध में रहे। जो धुंध आपको जो है आनंदित कर दे, आह्लाद कर दे और खुशी से आपके मन ना छूटे, है ना। तो ऐसे ही कुछ भाव भरा गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ और ये गीत आपको बहुत पसंद आएगा। और बाल गणेशन का वो गीत मुझे याद आ रहा है जो गुड़ीलाल जी हमेशा याद करते हैं, तो वही गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और पार्वती का नंदन, है ना, वो वाला गीत आप सभी को खुशी से झूम झुमा देता है, तो वो गीत अभी आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सुनकर इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के।

0: रोशनी।
1: हाय,
0: बहुत दिनों बाद मिल रही हो। कहाँ थी इतने दिन?
1: हम लोग छुट्टियों में पंजाब गए थे।
0: वाओ, पंजाब, क्या क्या देखा वहाँ पर?
1: हमने अमृतसर का गोल्डन टेंपल देखा, जालियांवाला बाग भी देखा।
0: अच्छा, मैंने सुना है इसके बारे में।
1: मैं तो देख आई हूँ, अंग्रेजों ने चलाई हुई गोलियों के निशान अभी भी साफ दिखाई देते हैं।
0: हमारे विशाल भारत देश में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर आजादी के जंग के निशानियाँ अभी भी साफ दिखाई देते हैं। मैं ऐसी हर जगह पर जाना चाहती हूँ।
1: जरूर जाना, लेकिन जाने से पहले उनके बारे में पढ़कर जाना।
0: उफ, मुझे बहुत बोर होता है ये पढ़ना वरना।
1: अरे तो जिंगल टून्स है ना, अभी तक जिंगल टून्स के माध्यम से हमने प्यारी प्यारी कहानियाँ और गीत सुने हैं। इस बार जिंगल टून्स हमारे लिए लाया है देशभक्ति के गाने।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, ये खूबसूरत भजन आपने बड़ा अच्छे से सुना। और आइए इसके साथ ही मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, आज जैसे कि अनंत चतुर्थी है, अनंत चतुर्थी एक ऐसा समय आता है जहाँ पर इस व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से की जाती है। हेलो जी, नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, ओम शांति सुरेश।
0: ओम शांति सुरेश जी, अनंत चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी जी, आपको भी सर बहुत अच्छा कार्यक्रम चला दिया आपने, अच्छा गाना सुना दिया, नन्ना मुन्ना रायू हूँ, बहुत अच्छा गाना था
0: जी,
1: खड़ा हुआ। चलो आज मैं भी एक गाना सुनना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए शायद, तो वो गाना है जो भगत के बस में है भगवान। चलो,
0: हाँ जी, हाँ जी
1: जी जी, भगत के बस में है भगवान गाना है न?
0: कौन सा गाना है?
1: भगत के बस में है भगवान।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत कहते ना कि सच गाना है, यानी कि बना हुआ गाना है। एक जो उमर लाए थे माँ जी का, हर रोज जाता था, हर साल जाता था मथुरा हरिद्वार के, और जब बूढ़ा हुआ तो नहीं जा पाया, तो जब वहाँ से मथुरा से एक मूर्ति लाए थे कृष्ण भगवान की, और वो बीमार पड़े, पड़ गई मूर्ति, ऐसा कोई ऐसा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। ठीक है सर,
0: ठीक है,
1: ठीक
0: है। धन्यवाद, शुक्रिया सुरेश जी याद करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अनंत चतुर्थी की बात ये कर रहे थे और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और चतुर्दशी के दिन पुरुष दाहिने हाथ में तथा नारियां बाएं हाथ में अनंत धारणा करती है। अनंत कपास या रेशम के धागे से बने होते हैं जो कुंकुमी रंग में रंगे हो जाते हैं तथा इनमें 14 गांठें होती है। इन्हीं दागों से अनंत का निर्माण होता है। ये व्यक्तिगत पूजा है, इसका कोई सामाजिक या धार्मिक उत्सव नहीं है। अग्नि पुराण में इसका विवरण है। चतुर्दशी को दर्प से बनी श्रीहरि की प्रतिमा जो कलश के जल में रखी जाती है उसकी पूजा की जाती है। व्रति को धन के एक प्रसार आटे में रोटियां पूड़ी बनानी होती है जिनकी आदि व ब्राह्मण को दे देते हैं और शेष स्वयं प्रयोग में लाता है। तो इस तरह का जो अनंत चतुर्थी के दिन विशेष पूजा अर्चना का महत्व है। तो आइए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ, भगत के वश में है भगवान, ये खूबसूरत सा भजन आपके नाम अभी।

भावना की ज्योत को जला के देखिए और बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। इन पंक्तियों में जो सच्चाई छुपी है कि भक्त और भगवान का रिश्ता क्या होता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, जैसे श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए, किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर साग और रोटी खाई, किस तरह श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के कच्चे चावल खाए। भक्त और भगवान के इसी तरह के इस पावन रिश्ते को बताने के लिए जो मैं भजन सुनाने जा रहा हूं, वह किसी कवि की कल्पना नहीं बल्कि सच्ची घटना है, जिसमें एक ऐसी भगवान श्री कृष्ण की दीवानी

वो बड़ी हो गई और उसका विवाह भी हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े समय बाद प्रभु की असीम कृपा से बाल गोपाल हो गए, मगर फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। समय बीतता गया, बच्चों की भी शादी हो गई, मगर वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, फिर भी वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। परंतु कहा जाता है कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस महिला ने जब ये देखा कि उसका शरीर अब साथ नहीं देता, तो अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से अष्ट धातु की कन्हैया जी की मूर्ति ले आई और बड़े लाल प्यार से उसकी सेवा करने लगी। आइए, उस महिला की जिंदगी में ऐसी कौन सी घटना हुई, वह इस भजन के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या

क्या हुआ और कैसे हुआ? समय का चक्र चलता है और कुछ समय बाद जन्माष्टमी का दिन आता है और उसी दिन उस वृद्ध महिला का स्वास्थ्य खराब होने के कारण खटिया पर लेटे लेटे उसने अपनी बहू को आवाज दी और कहा, बेटी आज जन्माष्टमी का दिन है, तुम जरा लल्ला को स्नान तो करा दो और उसे चंदन का लेप लगा के सुंदर से वस्त्र पहना के उसे पल्ले में बिठा दो। बहू जो बहुत जरूरी काम में व्यस्त थी, कहा, माँ मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, मेरा काम खत्म होते ही मैं लल्ला का काम कर दूंगी। ये सुनकर उस महिला ने कहा कि मेरे घर पर हमेशा से पहला काम मेरे लल्ला का ही होता आया है, इसलिए सबसे पहले मेरे लल्ला का ही काम होगा, इसके बाद तुम कोई भी काम करती रहो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर बहू जो थोड़ा गुस्से में आ गई और झुंझला कर उसने कन्हैया जी की मूर्ति उठानी चाहिए और जैसे ही लल्ला की मूर्ति उठाई और मूर्ति उसके हाथों से गिर पड़ी। मूर्ति गिरते ही

घर वालों ने लाख कोशिश की उस महिला को समझाने की। घर में कोहराम भी मच गया, मगर उस महिला की समझ में नहीं आया। बेटा बार बार कह रहा था कि माँ, ये अष्ट धातु की मूर्ति है, ये जमीन में गिरने से कोई चोट नहीं लगती इसको। लेकिन वह तो कहने लगी, नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम तो डॉक्टर को बुलाओ।

बेटे को बुलाया और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अपने मोहल्ले में जाओ, दो चार डॉक्टर रहते हैं।

ब्रीफ केस उठाया और चल लगाता है और उसी मशीन से मेरे लाल की ठीक से जांच कर और देख मेरे लाल को क्या हुआ। डॉक्टर ने अपना बैग खोला, वो मशीन निकाली, एक सिरा अपने कान से और दूसरा सिरा लल्ला के सीने पे लगाया और सीने पे लगाने के बाद हाथ की नब्ज को पकड़ा और दूसरा सिरा जब सीने से लगाया

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए, भगत के वश में है भगवान, ये सुंदर सा भजन आपने सुना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है समाचारों का। समाचार सुनते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं।
1: समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में पहुंची। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यक्रम में सेवा यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। ये यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और 7 अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान युवा विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए स्थानीय लोगों से संवाद कर रहे हैं और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। सेवा यात्रियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ साथ स्कूलों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य सामुदायिक स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और सेवा कार्यों में हिस्सा लिया। वाराणसी और वडनगर के बीच विभिन्न स्थानों में चल रही इन मोटरसाइकिल यात्राओं का उद्देश्य युवाओं को जनसेवा और समाज से जोड़ना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल वडनगर से वाराणसी जा रहे सेवा यात्रियों से बातचीत की थी। उन्होंने यात्रियों से रास्ते के अनुभवों, लोगों के साथ उनके संवाद के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरने वाली ऐसी यात्राएं युवाओं को भारत की विविधता को नजदीकी से समझने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
3: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री अन्न यानी मिलेट्स के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहारिकता में लाया गया है।
4: भारत की पारंपरिक कृषि व्यवस्था में बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और राजगिरा सदियों से भोजन का हिस्सा रहे हैं। इन्हें श्री अन्न के नाम से आज व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाए जाने के बाद श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
5: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
4: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
6: इस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
7: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
8: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी में कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, IT, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरूआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
9: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीकी ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर, हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
10: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में बारिश का असर देखा गया है और 8000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बालेश्वर जिले के मथानी में जलका नदी में बाढ़ की गंभीर स्थिति है और बस्ता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिक्रिया टीमों को अलर्ट पर रखा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब जापान में जारी एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
11: जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दमखम आजमा रहे हैं। कमलजीत और सुरचित सिंह की जोड़ी ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
12: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री, जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। लोक सत्ते में हैं। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, यूसीआई पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमरीका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है, युद्ध अभ्यास में दिखी भारत यूएस की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनफिंग से मिलकर काम करने का वादा।
1: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
14: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। Lifestyle is not only about what we are eating, drinking, wearing. Lifestyle is about what we are thinking, speaking, behaving. That's my lifestyle.
13: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आचार्य बालकृष्ण हूँ। रेडियो मधुबन जो सुन रहे हैं, जितने भी हमारे श्रोता भाई बहन हैं, आप सबको बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। अगर नहीं होंगे तो आज हैप्पी होने का और हेल्दी रहने का मंत्र भी मिलेगा, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में विशेष आचार्य बालकृष्ण योगी जी सर आए हुए हैं। उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, जिन्हें आप हमेशा सुनते रहते हैं। आयुर्वेदाचार्य हैं और खास करके जड़ी बूटी की जब बात आती है तो उसका जो स्पेशलिस्ट है आचार्य बालकृष्ण योगी जी सर को याद किया जाता है, इवन इंडिया में नहीं विदेश में भी। और इन्होंने 330 ऐसे बड़े जो है

0: आयुर्वेद पर पब्लिश किया है पेपर्स, तो अपने आप में एक अनूठा जो है आयुर्वेद का जो अगर बात करें तो उसमें विशेष योगदान आज के समय में आचार्य बालकृष्ण योगी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इस विशेष एपिसोड में, विशेष मुलाकात में रेडियो मधुबन के स्टूडियो में।
1: रेडियो मधुबन जो सुन रहे हैं, जितने भी हमारे श्रोता भाई बहन हैं, आप सबको बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि सुनना ये हमारी कानों की क्षमता है, क्या सुनते हैं ये हमारी अभिरुचि है। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, मधुबन रेडियो आपको कहता है तो ऐसा ही सुनो जिससे आप मुस्कुरा सकें। ऐसा कुछ मत सुनो जिससे कि आपका जीवन जीवन की मुस्कुराहट जो छीन ले। तो चाहते तो मुस्कुराना है, पर जीवन में मुस्कुराहट आती कहाँ है? तो इसके कारण हमें लगता है जीवन में दूसरा कोई है जिसने हमारी मुस्कुराहट छीनी है। वास्तविकता तो यह है हमारा मार्ग गलत था, इसीलिए हमें हमारी मुस्कुराहट से वंचित होना पड़ा है। तो मुस्कुराहट के लिए बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, साधन हो सकता है। तो मुस्कुराहट के लिए यदि रेडियो भी साधन बन जाए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो आप सबको पुनः मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और जीवन की कटुता में भी मुस्कुराना सीखें, क्योंकि मुस्कुराने की बात हो तो दुनिया मुस्कुराती हो मुस्कुराती ही है, पर जहाँ मुस्कुराहट छीनने की बात हो
0: जी,
1: तो हमारे यहाँ कौन ऐसा है जो मुस्कुरा के दिखाए? तो मुस्कुरा के दिखाने के लिए जरूरी है हमारी आध्यात्मिक की आंतरिक क्षमता और शक्ति हम विकसित करें। इसके लिए भी ब्रह्म कुमारी की संस्थान में यहाँ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, आप बैठे हैं, तो वहाँ जीवन को मुस्कुराने लायक कैसे बनाया जाए, आध्यात्मिक रूप से, आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से कैसे सशक्त बनाया जाए, उसकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, टीचिंग्स होती हैं। क्योंकि संसार में बाहर की जो दौड़ है वो अंतहीन है, आप कितने भी दौड़ें उसका थाह नहीं पा सकते हैं, परंतु जिसका थाह नहीं पा सकते हैं हम उसमें दौड़ ज़्यादा लगाते हैं, जिसका अंत हमें मिल सकता है, यानी जिसकी थाह हमें लगानी चाहिए, जिसकी थाह पानी चाहिए, उसके लिए हम कम प्रयास करते हैं। तो हमारा निवेदन है अपनी अंतर की यात्रा को मजबूत बनाएं, अंतर की यात्रा की थाह पाने का प्रयास करें, क्योंकि अपने को पाओगे तो दुनिया आपके सामने होगी, दुनिया को ढूंढोगे तो अपने से भी वंचित रह जाओगे। तो इसलिए अपनी खोज करो, दुनिया आपके पास ही होगी, फिर मुस्कुराहट आपके साथी और सहचर होंगे।
0: क्या बात,
1: संसार के अंदर जितने भी कर्म किए जाते हैं वह एक मुस्कुराहट के लिए ही तो है, तो इसलिए उसकी खोज करो। तो मुस्कुराहट बेश कीमती है और जीवन में इसके लिए जरूरी है। मुस्कुराहट ऐसी चेष्टा और क्रिया नहीं है जो एक बार चेहरे पर दांत दिखा देने से और दूसरे ने देख लिया, वह तो आपका मुस्कुराहट का बाह्य रूप है, वो बाहर का स्वरूप है
0: जी जी,
1: जो आप दूसरे को दिखाते हो। कई बार लोग बहुत सारी पीड़ा को मन में लेकर के भी और बहुत सारे दर्दों को छिपा करके भी तो मुस्कुराते हैं, मुस्कुराहट वो दूसरों के लिए है,
0: खुद
1: तो मुस्कुराहट खुद के लिए बन जाए जिस दिन,
0: क्या बात,
1: तो आपकी सच्ची मुस्कुराहट है।
0: मैं चाहूंगा कि हमारे सभी आदिवासी भाई बहने सुन रहे हैं इधर आबरूड के इलाके में, मैं चाहूंगा उनके लिए जैसे वो पहाड़ियों में रहते हैं।
1: बिल्कुल, मैं आचार्य बालकृष्ण हूँ, आप लगभग मेरी आवाज़ से मुझे पहचान भी पा रहे होंगे, क्योंकि खेत खलिहान जंगल मेरा प्रिय विषय है। पेड़ों में, जंगलों में, जड़ी बूटियों में, पहाड़ों में भटकना मेरा शौक है। मैं रोज घूमता हूँ, लोग उसको भटकना कहते हैं, मैं उसको आनंदित होना कहता हूँ, क्योंकि जो सुख हमें सहज रूप से प्राप्त होता है लोग कई बार उसकी कीमत नहीं लगा पाते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हम उस कीमत को जानते हैं, इसीलिए इस दुनिया की खटपट में भी हम आनंदित रहते हैं। तो आप सब लोग भी देखो, प्रकृति ने आपको जो प्रकृति की जो सुंदरता है, प्रकृति की जो स्वच्छता है, प्रकृति की जो शुद्धता है, वो आपके लिए वरदान है। आप जिन भी क्षेत्रों में हैं, विशेष कर करके ग्रामीण क्षेत्रों में आप रहते हैं, वन जंगल खेत खलिहान से आप जुड़े हुए हैं, तो उसको बना करके रखने का प्रयास करना, क्योंकि दुनिया की शहरों की आपाधापी भागदौड़ी तो पेट भरने के लिए है, पेट तो पशु भी भरता है, पर हमारी सारी शक्ति और ऊर्जा पेट तक ही सीमित रह गई है। तो आनंद तो प्रकृति को देखो, जब अभी बारिश का मौसम है, जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो पत्तियां खिलखिला करके उठती हैं, तो खिलखिलाते हुए पत्तियां भी आपको ऐसा दिखाई देंगी जैसे मानो मुस्कुरा रहे हैं। तो प्रकृति मुस्कुराती है, इसलिए प्रकृति का संरक्षण करना, संवर्धन करना हमारा दायित्व है। तो प्रकृति के साथ रहना हमारा सौभाग्य है। तो प्रकृति का संरक्षण करिए, संवर्धन करिए, प्रकृति के साथ रहिए। और जो आपके आसपास हैं, ये सब औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, ये सब आपके लिए जीवन है। इनके गुणों को भी समझने का प्रयास करिए, क्योंकि राजस्थान यह भूमि वीरों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि है। गुजरात के ये बॉर्डर क्षेत्र में आप देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तरह की आध्यात्मिक ओराएँ हैं, शक्तियाँ हैं। बस आवश्यकता है घूंघट के पट को खोल करके आंतरिक अनुभूति को अनुभव करने का प्रयास करें। आहार में शुचिता, शुद्धता, क्योंकि शास्त्रों में कहा है अन्नमयी औषधि। वास्तव में औषधि कुछ नहीं है, औषधि तो अन्न है। क्योंकि अन्न शुद्ध खाते हैं तो दवाई की जरूरत नहीं है, और अशुद्ध अन्न लेते हैं तो दवाई काम करती नहीं है। तो बस इसका आप ध्यान रखें, आप ठीक से रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। हमारी भी आपको शुभकामनाएं। प्रातः उठें, आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योगाभ्यास करें डेली, तो आध्यात्म हमारी शक्ति है, ताकत है। ये हमारे ऋषियों की विरासत भी है, ये विधा हमें सहज रूप से प्राप्त है, और हम उस धरा में, उस भूमि पर निवास करते हैं, वहाँ रहते हैं। ये परमात्मा की कृपा है।
0: मैं चाहूँगा कुछ हेल्थ टिप्स भी ज़रूर दें। और जैसे आपने कहा कि जंगलों में रहना अपने आप में एक कुदरती स्थान के साथ जुड़ना है, तो यहाँ पर जो आदिवासी बेल्ट में जो लोग माताएं बहनें रहती हैं, कभी कभी आयरन की कमी बताते हैं, तो
1: यहाँ पर देखिए
0: वो सारी चीजें कैसे कर सकते?
1: पहले देखिए, हमारे यहाँ जो अभी आयरन की कमी होने लगी है, यदि थोड़ा पीछे जाकर के देखेंगे तो आयरन की कमियां पहले नहीं होती थी गांव घर खेत खलिहान में भी। हम लोग गांव में, जैसे इधर मैं जैसे अभी हम लोग हैं इधर आबू के क्षेत्र में, माउंट आबू के पूरे क्षेत्र में, आप यदि आप देखेंगे राजस्थान के ही आप देखेंगे तो बाजरा है, ज्वार है, ये जो मोटे अनाज हैं अभी, तो जिनको अभी श्री अन्न के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। रागी है, बाजरा है, मंडवा है, ये सब जितने भी अन्न हैं, जो मिलेट्स हैं, बाकी जो अन्न हैं, हमको उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको कैल्शियम की कमी है, आयरन की डेफिशेंसीज हैं, दूसरी जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मिनरल्स वगैरह की जो न्यूनताएँ हैं, वो अन्न से पूर्ति हो जाती हो सकती है, बशर्ते आप ज्यादा चढ़ाई चावल और गेहूं पर ना करें। तो चावल और गेहूं का सेवन कम से कम करिए, मोटे अनाजों का। अब राजस्थान का घाट कितना फेमस है, कितना हेल्दी और कितना स्वस्थ है, डाइजेशन के लिए, लीवर के लिए, और आपके जो है रक्त की वृद्धि के लिए। इसी तरह से ग्वार की, अब बरसात की ग्वार की फलियों की सब्जियां हैं, या टीट का अचार खाते हैं, वो चीज़ें हैं, ये सब आयरन को बढ़ाने वाले, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाले, रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाले। बस ये ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य जो है वो काली पीली हरी गोलियों में नहीं है, स्वास्थ्य प्रकृति के इन जो देन है, जो अन्न है, अन्न की जो विविधता है। हमारी पहली जो शक्ति थी अनाज की विविधता, हमारी ताकत थी, आज अनाज की विविधता खत्म हो गई है, हम सिर्फ चावल गेहूं पर आश्रित हो गए हैं। तो प्रयास करिए, अन्न और अन्न में भी हमको गेहूं चावल कम खाना है, बाकी चीज़ें ज़्यादा खाना है, हीमोग्लोबिन अपने आप बढ़ेगा। अभी जैसे चौलाई बहुत है खेतों में, और थोड़े समय के बाद फिर बथुआ आ जाएगा सर्दी में, तो ये चौलाई है, बथुआ है, पालक है, मेथी है, इन सारी चीज़ों का, जो हरी सब्जियां हैं उनका यहाँ पर बहुत होता है, मोरिंगा जिसको हम सहजना बोलते हैं, सहजना एकदम अमृत है। तो इन चीज़ों पर आप मत छोड़िए, जो हमारे यहाँ, आप इसके लिए बहुत सारा विज्ञान या नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पीछे लौटिए, अपनी दादा दादी के, नाना नानी के नुस्खों को आप ध्यान रखिए, वो लोग जो बताते थे उसी को करो, आँख मूंद करके करो, क्योंकि उन्होंने हज़ारों हज़ारों वर्ष अनुभव कर करके उन चीज़ों को पाया था, हमने बिना प्रयास के उसको गंवा दिया है। जो हमने पाया था उसको बचाना हमारे, यदि आप अच्छे पुत्र और पुत्रियां हैं तो आपका कर्तव्य है, उसको बचाने का प्रयास करिए, उसको बचाइए। बाकी जो है आप निश्चिंत रहें, आप स्वस्थ रहेंगे, हीमोग्लोबिन भी ठीक रहेगा, सेहत भी ठीक रहेगा, आपकी आंखें और आते भी दोनों ठीक रहेंगे।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपको सारी दुनिया सुन रही है, उन सभी के लिए एक मैसेज, एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे?
1: आप अपने दिनचर्या को ठीक रखिए, क्योंकि बीमार होकर के दवाई मजबूरी है, हम बीमार ना हो इसके लिए प्रयास बुद्धिमत्ता है, उसका पालन करिए, अपने दिनचर्या को ठीक करके आप आगे बढ़िए।
0: बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आचार्य बालकृष्ण योगी जी।
2: सर
0: निश्चित तौर पे आप सभी ने अभी आचार्य बालकृष्ण योगी सर को सुना और बहुत कम समय में बहुत छोटे मैसेज के साथ उन्होंने अपने हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने का संदेश दिया है। बहुत बहुत साधुवाद उनको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं, सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

0: बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हमारे साथ हम विशेष गुजरात लोटस हाउस से डॉक्टर निकम जी जुड़ गए हैं। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं और पहली बार ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़कर यहाँ माउंट आबू का अवलोकन कर रहे हैं और तेजल बहन आपको गाइड कर रही हैं और आप काफ़ी आनंद भी उठा रहे हैं आध्यात्मिक संस्थान का। तो आइए अगली आवाज आप सुनेंगे डॉक्टर निकम जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद महोदय। संस्कृत और संस्कृति के साथ हम जुड़े हैं तो ब्रह्मा कुमारीज में आत्मा के ऊपर, आत्मा के साथ परमात्मा को जोड़ने की बात, हम जुड़े हैं, हमारे साथ लोगों को जुड़ते चले जाए, यही मेरा अनुभव रहा। आनंद से अपना नाता पुराना है। संस्कृत को हमारी इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को देखें तो सुख हमेशा इंद्रियाजन्य है और आनंद हमेशा अलौकिक होता है जी। और आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है, आनंद आनंद ही होता है। तो सब आनंद में रहो, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी बातें आपने बताया और मैं चाहूँगा कि संस्कृत की जब बात आती है तो आज के समय में काफ़ी लोग जो है इसकी तरफ नहीं मुड़ते, लेकिन आपका कैसे जुड़ना हुआ संस्कृत तरफ, आपका कैसे अभ्यास कहाँ से शुरू हुआ वो थोड़ा सा बताएं।
1: संस्कृत के साथ मेरा नाता बचपन से है जी। बचपन में दादा दादी ने जो श्लोक सिखाए उसके साथ जुड़ना हुआ। बाद में स्नातक की पढ़ाई में संस्कृत आया और संस्कृत की मधुरता मैंने देखी, तब संस्कृत के साथ पूरी पढ़ाई करने का सोचा। स्नातकोत्तर में मैंने वेदांत के साथ संस्कृत में किया, मेरा पीएचडी भी कठोपनिषद पे है और संस्कृत बोलना मैं संस्कृत भारती से सीखा। तो सरस्वती देवी के साथ बहुत गहरा नाता, पढ़ने में और बोलने में जो आनंद होता है वो संस्कृत में है और कहीं नहीं
0: है। डॉक्टर निकम जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, बचपन से ही आपको संस्कृत जो है सीखने का मौका मिला तो आप इसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर गुजरात और राजस्थान के लोग रेडियो को सुनते हैं और राजस्थान में जो लोग हैं वो गुजराती गीत बहुत पसंद करते हैं, जब भी हम लोग प्ले करते हैं तो बड़ा आनंदित हो जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि आज के समय में अगर बच्चों को कहें कि हम लोग संस्कृत विद्यालय में आपको पढ़ने को भेज देते हैं तो मुश्किल से बच्चे तैयार होंगे। तो मैं चाहूँगा कि संस्कृत भाषा के प्रति उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व बताएँ और साथ ही साथ जो अभिभावक हैं उनको भी अपने बच्चों को संस्कृत भाषा सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें भी मोटिवेट करें और एक संदेश बच्चे और अभिभावकों के लिए आप दें।
1: संस्कृत हमारी सभी भाषाओं की जननी है। आपको कोई भी भाषा सीखनी हो तो आपका जो फोनेटिक्स है, स्वर पेटी है, वो पूरा खुला होना चाहिए। तो संस्कृत के श्लोक द्वारा ये पूरी प्रोसेस हो सकती है। संस्कृत इज ए साइंटिफिक लैंग्वेज। नासा ने भी अपने संस्कृत के बारे में बताया है कि संस्कृत ये परफेक्ट कंप्यूटर लैंग्वेज। तो हमारे बॉडी को भी एनर्जाइज करना है, आत्मिक भाव से जुड़ना है तो हम संस्कृत के साथ ही जुड़ सकते हैं। संस्कृत एक दैवी भाषा है जिसको बोलने और सुनने में इतना आनंद आता है कि आप वो भाव से जुड़े रहते हैं। तो आप सब संस्कृत सीखे, संस्कृत के साथ जुड़े, श्लोकों का अध्ययन करें, वही मेरी भावना है। धन्यवाद।
0: डॉक्टर निकुंज जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और बड़ी अच्छी बातें आपने बताया, संस्कृत का महत्व बताया, संस्कृत से हमारी जो है जीवन जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि संस्कृत जो है दैवी भाषा है और कंप्यूटर की भाषा भी है। बड़ा अच्छा लग रहा था सुनकर, इस महत्व को जानने से हमारे बच्चे शायद बिल्कुल आकर्षित होंगे और मैं चाहूँगा कि बच्चों को और अभिभावकों को कि संस्कृत के साथ जरूर बच्चों को जोड़े। ये हमारी भारतीय सभ्यता और जो मूल्य है भारतीय, उन मूल्यों को जो है जोड़ता है, संस्कृति से जोड़ता है, बच्चों के जीवन में नैतिक मूल्यों को आसानी से जो है जीवन में अपनाने की प्रेरणा संस्कृत देता है। तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ एक बार फिर से डॉक्टर निकुंज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद महोदय।

0: वो तुम्हारी रक्षा करेंगे और सुख दे देंगे जिंदगी में, इसलिए रहो सदा सनातन भगवान पर रखो विश्वास। कान कान में
1: अभी बजे हैं सुबह के 10।

अनंत चौदस का ये पर्व लाए खुशियों की सौगात। अनंत चतुर्दशी का ये पर्व लाए खुशियों की सौगात। जीवन में बनी रहे सुख शांति की बरसात। मन से मिटे सारे दुख हर चिंता हो दूर। अनंत प्रभु की कृपा से जीवन हो भरपूर। अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। घर परिवार में रहते देह के लगाव से मुक्त रहना यही है सच्चा सन्यास। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, खाते खाते और बोलते बोलते अगर नाक में पानी आ जाए, गला भर जाए, सर्दी जुकाम जैसा लगे, तो बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय आप सभी को देने वाली हूँ। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज का व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आप सभी को सिखाने वाली हूँ। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: गुड मॉर्निंग, आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, घर परिवार में रहते देह के लगाव से मुक्त रहना, यही है सच्चा संन्यास। घर परिवार में रहते देह के लगाव से मुक्त रहना, यही है सच्चा संन्यास। कैसे, जरा विचार करेंगे तो आज का विचार का विस्तार। चलिए, विचार करना बंद कर दीजिए और अब आप मनन करिए। आज का एक्सप्लेनेशन सुनिएगा कि कैसे घर परिवार में रहते हुए देह के लगाव से मुक्त रह सकते हैं। तो देखिए, शुकदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र थे। कहा जाता है कि वे जन्म से ही विरक्त और आत्मज्ञानी थे। संसार में उनका मन नहीं लगता था, देह अभिमान बिल्कुल नहीं था, वे निरंतर ब्रह्म भाव में स्थित रहते थे। किंतु एक सूक्ष्म संशय उनके भीतर रह गया था, यदि ब्रह्म ही सत्य है तो फिर संसार में रहकर कोई कैसे मुक्त रह सकता है। उन्हें लगता था कि गृहस्थ जीवन और आत्मज्ञान साथ साथ नहीं चल सकते। तब उनके पिता वेदव्यास जी ने कहा, इस संशय का समाधान राजा जनक करेंगे। शुकदेव जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, मैं वनवासी, विरक्त और सन्यासी और जनक एक राजा, गृहस्थ, राजमहलों में रहने वाले, वे मेरे गुरु भला कैसे हो सकते हैं। किंतु वे पिता की आज्ञा से मिथिला पहुँचे। जब शुकदेव जी राजमहल पहुँचे तब राजा जनक ने उन्हें कई दिनों तक प्रतीक्षा में रखा। पहले द्वार पर रुकवाया, फिर अतिथि कक्ष में, फिर विलास और वैभव के मध्य रखा। उद्देश्य था देखना कि उनके मन में कहीं आकर्षण, क्रोध, अपमान या अधैर्य तो नहीं उठता। किंतु शुकदेव जी पूर्णतः संभाव में रहे। फिर जनक जी ने एक प्रसिद्ध परीक्षा ली। उन्होंने शुकदेव जी के हाथ में तेल से भरा पात्र दिया और कहा, इस पात्र को लेकर पूरे नगर का भ्रमण करो, यदि एक बूंद भी गिरी तो सैनिक दंड देंगे। साथ ही नृत्य, संगीत, उत्सव, बाजार, शोर, सुंदर दृश्य, सबकी व्यवस्था की गई। शुकदेव जी लौट आए, तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी। राजा जनक ने पूछा, नगर में क्या देखा। शुकदेव जी बोले, मेरा ध्यान केवल तेल पर था। तब जनक मुस्कुराए और बोले, यही स्थिति ज्ञानी की होती है, वह संसार में रहता अवश्य है पर उसका चित्त ईश्वर में स्थित रहता है, लीन रहता है। राजा जनक को विदेह कहा गया है, अर्थ मतलब जो देह में रहते हुए भी देह भान से मुक्त हो। वे राजमहल में थे किंतु भीतर से इन सभी वैभव से मुक्त, यही भगवत गीता का कर्म योग है। योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करो पर आसक्ति से मुक्त रहकर। तब शुकदेव जी समझ गए कि मुक्ति केवल वन में नहीं, केवल बाह्य संन्यास में नहीं, बल्कि चित्त की आसक्ति रहित अवस्था में है। यदि मन मुक्त है तो राजमहल भी आश्रम है, यदि मन बंधा है तो वन भी संसार है। इस कथा का उद्देश्य गृहस्थ और संन्यास की तुलना करना नहीं है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। मुख्य संदेह यह है, बाहरी परिस्थिति बंधन नहीं बनाती, मन की आसक्ति ही बंधन बनाती है। इसलिए सनातन परंपरा में राजा जनक को राज ऋषि कहा गया और शुकदेव जी को जैसे महान आत्मज्ञानी भी उनके पास समाधान हेतु जाए। इसीलिए कहा गया है, घर परिवार में रहते देह के लगाव से मुक्त रहना, यही है सच्चा संन्यास। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और सुनेंगे फिर से एक बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर। सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब आपको देंगे बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। जी हाँ, बोलते बोलते या खाना खाते समय अचानक नाक से पानी आना और सर्दी जैसा एहसास होना, कई बार क्या होता है, मैं मतलब इसका उपाय बता रही हूँ कि ऐसा हो जाता है। किसी का फोन आया था कि अचानक ऐसा हो जाता है, तो बिल्कुल बोलते बोलते खाना खाते समय पानी आ जाता है और एक बार उठना ही पड़ता है नाक साफ करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आइए बहुत ही सुंदर उपाय बता रही हूँ। आप गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा करके पीजिएगा, दिन में एक दो बार आप भाप लीजिएगा। क्या करेंगे, गुनगुना पानी पीना है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, घूट घूट, ठीक है। दिन में एक या दो बार भाप लीजिए और बहुत ज़्यादा गर्म भाप नहीं लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म भाप, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम तो है नहीं, सहते सहते भाप लीजिएगा। फिर देखिए, बहुत ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी और अचानक ठंडी हवा से कुछ समय तक बचिएगा। क्या है, बहुत गर्मी लगती है तो कूलर, पंखा और एसी चालू कर देते हैं, एसी की सुविधा होती है तो एसी चालू कर देते हैं। फिर हम बाहर निकलते हैं तो बाहर की हवा गर्म लगती है, अंदर की ठंडी, तो ऐसी स्थिति में भी यह समस्या हो सकती है। तो ठंडी चीज़ों से बचना है, गर्मी लगती है, चलो बाहर मार्केट जा कर के आए और फ्रिज का पानी निकाल के पी लिया तो भी ये शिकायत हो सकती है। तो ठंडी चीज़ों से बचना है, ठंडा पानी से बचना है, ठंडी हवा से भी बचना है, ठीक है। यदि खाने के समय ही ज़्यादा होता हो तो बहुत मसालेदार या बहुत गर्म भोजन नहीं करना है, सहता सहता करिए, और बहुत मसालेदार आपको नहीं खाना है भोजन, और पर्याप्त आराम और पानी पीते रहिए। तो इस समस्या का समाधान यही है। फिर भी अगर यह समस्या बार बार होती है, कई हफ्तों से बनी हुई है, सांस लेने में परेशानी है, सीटी आती हो, तेज बुखार, चेहरे में दर्द या नाक से खून आए, तो फिर आप डॉक्टर से राय ज़रूर लीजिएगा। घरेलू उपाय क्या है, सपोर्ट के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सुंदर सा उपाय। और आइए अब आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर

चैप्टर बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। गणपति के गुण गाए गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे गुणों का घान। गण गाए गणपति का गुणगान, गाते गाते गूंजे गणों का ज्ञान। तो ये आज का टंग ट्विस्टर है, जिसको कम से कम दो बार बोल के सुनाना है, ज्यादा से ज्यादा 3 बार बोल के सुनाना है। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: गणपति बाप्पा का नाम हो तो हर काम आसान हो जाए। गणपति बाप्पा का नाम हो तो हर काम आसान हो जाए। बप्पा की कृपा से हर मुश्किल का समाधान हो जाए। जिस घर में गुंजे गणपति का जयकारा, उस घर में खुशियों का बसेरा हो जाए। तो आप सभी को अनंत चौदस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई आज भी गणपति जी का दिन ही है, आज लास्ट दिन है, आज विसर्जन का दिन है। और बाकी तो बहुत सारे भक्तों ने 5 दिन में बीच में कर लिया है विसर्जन, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो आज करेंगे। और जो पंडाल में जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बिठाते हैं ना, उनका विसर्जन आज होगा। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। और विषय आज का यही है कि हमें आज के दिन को कैसे हम खास बनाएंगे, किस तरह की सावधानी रखेंगे। और आज का टंग ट्विस्टर भी फिर से बोल के सुना रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर है। गणपति के गुण गाए, गणपति के गुणगान, गणपति के गुण गाते गाते गुंजे गुणों का गान, गण गाए गणपति का गुणगान, गाते गाते गुंजे गणों का ज्ञान। यह आज का टंग ट्विस्टर है, इसको आप 2 से कम बार नहीं बोल सकते और 3 से अधिक बार बोल के नहीं सुनाना है, ठीक है। तो आप चाहे तो उस मैसेज के द्वारा भी जवाब दे सकते हैं, और अगर आप जुड़ करके बोलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई।
2: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप?
2: बस अच्छे दीदी, बिल्कुल बैठे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, अच्छी बातें हो रही है। आज तो गणपति जी का लास्ट दिन है
1: जी, तो कैसा माहौल है आपके यहाँ पर?
2: हमारे तो दीदी यहाँ 5 दिन के बाद विसर्जन कर दिया था, 5 दिन रखा था।
1: अच्छा,
2: हाँ, लेकिन कई जगह पे आज लास्ट दिन है, तो कई जगह पे जैसे 10 दिन भी करते हैं, लेकिन हमारे जो गांव में तो 3 दिन रखते हैं, 5 दिन रखते हैं, 7 दिन रखते हैं, ऐसे रख के उसका विसर्जन कर देते हैं
1: जी।
2: तो चलो, मैं पहले तो आपको टंग ट्विस्टर सुना देती थी, एक बार आप बोल दीजिए, क्योंकि मेरे कोई गलती हो तो माँ फुल हो जाए, सुधार दूंगा मैं।
1: अच्छा चलिए ठीक है। गणपति के गुण गाए, गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे गुणों का गान, गण गाए गणपति का गुण गान, गाते गाते गूंजे गणों का ज्ञान।
2: अच्छा ठीक है,
1: हाँ जी
2: चलो मैं सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ
1: जी।
2: गणपति के गुण गाए, गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे गुणों का गान, गण गाए गणपति का गुण गान, गाते गाते गूंजे गुणों का ज्ञान। गणपति के गुण गाए गाए सॉरी गणपति के गुण गाए, गणपति के गुण गान, गुणगान के गुण गाते गाते गूंजे गुणों का ज्ञान, गण गाए गणपति का गुणगान, गाते गाते गूंजो गूंजे गुणों का ज्ञान। गणपति के गुण गाए, गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे गुणों का ज्ञान, गण गाए गणपति का गुणगान।
1: क्या बात है, हाँ जी हाँ जी, फिर भी चलिए अच्छी कोशिश की है आपने,
2: क्योंकि कभी कभी शब्दों में बोलने में थोड़ी सी गलती हो ही जाती है,
1: टंग ट्विस्टर है चीज ऐसी है।
2: इतनी कोशिश करते फिर भी पत्थर का तो प्रॉब्लम हो ही जाता है, फिर भी चलो मैंने तो कोशिश तो मैं करता ही रहता, चाहे मुझे थोड़ी मिस्टेक आए फिर भी
1: जी जी जी जी।
2: तो और जो आपने बताया दीदी कि आज के दिन का तो ध्यान रखना है, दीदी देखो कई दीदी ऐसे हादसे होते हैं जब गणपति को विसर्जन करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दो चार लोगों का दीदी पानी में डूबने की हम हर बार सुनते हैं
1: जी जी,
2: कि भाई ये पानी में डूब गया, विसर्जन करने के गए थे डूब गया। तो आप कितनी सावधानी रखे दीदी, लेकिन फिर भी ऐसा हादसा हो ही जाता है, इसका कारण दीदी यही है कि हम 10 दिन हम उसका गुणगान करते हैं, कितने रुपए का खर्च करते हैं, कितना भगवान का पाठ पूजा आराधना रात को बड़ी देर से तक जागते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, लेकिन फिर भी दीदी जब हम गणपति का जब विसर्जन करने जाते हैं
1: जी,
2: तो हमने कई ऐसे मोबाइल में देखा दीदी, लोग ऊपर से फेंकते हैं, जो फूल होते हैं वहाँ फेंक देते हैं, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने पूजा की है, दस दिन ऐसे फेंक देंगे, भगवान को ऐसे फेंकते नहीं है दीदी। तो कई लोगों को हमने ऐसे देखा कि बस जैसे जरूरत ही नहीं है तो फेंक देते हैं भगवान को
1: जी,
2: तो ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको जाके अच्छी तरह से पानी में उसका विसर्जन कीजिए, और जो कोई हम मंत्रों के साथ कीजिए, ऐसे तो नहीं है हम बस घर पे निकल गए फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है। भगवान को जब हम विसर्जन करते हैं तो उसको इसका मंत्रों का उच्चारण किया, आपको जो आए मंत्रों का उच्चारण करके ही उसका वस्तु विसर्जन करिए, वरना तो हम देखते हैं जब दशा माता व्रत होता है दीदी, आज भी बताओ मैं दीदी कि कई जगह पे ऐसी मूर्ति गंदगी में पड़ी है
1: जी जी जी,
2: तो ये भगवान या माता जी कैसे खुश हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे हादसे हो ही जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ जी।
2: लेकिन मैं तो यही कहूँगा आप इतने दिन तक आप पूजा करो तो इसके ऐसे तो सर विसर्जन करो कि भगवान भी खुश हो जाए, माता जी भी खुश हो जाए कि भाई बराबर है। तो बस मेरा तो एक ही मानना है कि आप भगवान की पूजा करो, तो इसका विसर्जन ऐसा करो कि भगवान दोबारा आपके घर अच्छी तरह से रह सके
1: जी,
2: वरना तो हम हमारे घर पे कोई भाई आता है तो हम ऐसे लाठी लेके मारेंगे तो क्या होगा, नहीं करना है ऐसा
1: जी।
2: तो भगवान है, भगवान की तो अच्छी बात मिल जाती है, तो उससे अच्छा विसर्जन करिए
1: जी।
2: नमस्ते दीदी,
1: हाँ जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, बहुत अच्छी कोशिश की आपने टंग ट्विस्टर सुनाने की, और बहुत ही अच्छी बात कही है कि देखिए गणपति जी को ऐसे, भले गणपति जी हो चाहे और भी प्रतिमाएं हो, गंदगी में पड़ी रहती है, कितने मतलब क्या कहेंगे, 10 दिन जिनको हम बड़े श्रद्धा भाव से पूजते, उनके पीछे इतना खर्च करते, इतने भावनाओं में बहते हैं, रात दिन भजन कीर्तन तपस्या करना, और फिर बाद में यह हश्र करना, क्या ईश्वर इस तरह खुश होंगे? अरे ईश्वर को खुश रखना हो तो भाव को अच्छा रखिए, और कम से कम आप विसर्जन कर रहे हैं तो ऐसी गंदगी में तो मत करिए कि पानी नहीं लगा तो गंदगी में फेंक दी, और विसर्जन जरूरी है क्या? देखिए मुझे एक बात याद आ रही, मैं आपको कहना चाहूंगी, एक बार व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, गणपति जी को बोला कि मैं जैसे बोलता हूँ वैसे आप लिखते जाइए, अगर आपने लिखना बंद कर दिया तो मेरा बोलना बंद हो जाएगा। गणपति जी ने कहा कि ठीक है, आप जैसे बोलते जाएंगे वैसे मैं लिखता जाऊंगा। तो इस तरह व्यास जी ने शुरू किया बोलना, और जैसे जैसे वो बोलते गए गणपति जी लिखते गए, 10 दिन तक ये सिलसिला चला। 10वें दिन गणपति जी की मिट्टी गर्म होने लगी, गर्म होकर के पिघलने लगी, तो फिर व्यास जी ने अपनी वाणी को विराम दिया और बोला कि आपको बहुत मतलब गर्म हो रहे हैं, आपको ठंडा करना जरूरी है। तो उन्होंने फिर गणपति जी को नदी के स्नान में, नदी के पानी से स्नान कराया, तो विसर्जन का तो यहाँ पर बात ही नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप विसर्जन करो, हर साल इतना खर्चा करो फिर आप जा करके विसर्जन करने जाओ, पानी में पॉल्यूशन फैलाओ, क्योंकि मिट्टी की प्रतिमाएं होती है तो अच्छी बात है कि वो चलो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन सेरेमिक की बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाते हैं, फिर देखिए ऊपर कैसे कैसे कलर लगाते हैं, पक्के कलर, तरह तरह के कलर, वो कलर भी तो पानी में ही जाता है ना, चाहे आपने भले मिट्टी की प्रतिमा बनाई, कलर से लेप किया, वो कलर भी पानी में जा रहा है, तो कितना नुकसान है। एक तो वैसे ही पानी की कमी होती जा रही, दूसरा शुद्ध पानी बहुत कम रहा, उसमें भी अगर हम पानी में गंदगी फैलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? इंसान तो नहीं पी पाएगा, लेकिन जानवर भी इस पानी को नहीं पी पाएंगे, पी लेते हैं तो उनका क्या हश्र होगा वो आप सभी जानते हैं। और फिर अगर विसर्जन नहीं हुआ, प्रतिमा पानी में नहीं गई, तो धक्के देना, पैरों से धक्के देना, और फिर भी नहीं तो इधर उधर फेंक देते हैं गंदगी में, फिर वो गंदगी होती रहती है। तो ये कोई त्योहार का अर्थ नहीं होता है, सच्चे दिल से करिएगा। आप जो कहते हैं ना कि सच्चे दिल से ही भावना ईश्वर तक पहुंच पाती है, बाकी हम कितना ही खर्चा कर ले, दिल में भाव नहीं है, देखा देखी है, भाई फलाने ने किया हमें भी करना है, वो उसे कैसे हम भगवान को खुश रख पाएंगे? हम तो देखा देखी कर रहे ना। हाँ, अंदर का भाव उपजा है, अंदर से भावनाएं बही है कि हम ये करें, तो आप दिल से करिए। और जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बिठाए, छोटी सी प्रतिमा को नहीं पूज सकते? छोटी सी मूर्त ला करके भी तो आप पूजा कर सकते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े शहरों में आजकल बड़ी प्रतिमाएं तो खैर बड़े बड़े चौगानों में तो लाते ही होंगे, आज भी लाते हैं, बाकी सोसाइटी वाले और अपार्टमेंट वाले तो छोटे छोटे गणपति बिठाते हैं और फिर टब भर देते हैं पानी का और पानी में ही विसर्जन कर देते हैं। टब में गणपति जी को बिठा देते हैं, फिर ऊपर से और पानी डाल देते हैं और फिर रख देते हैं, क्योंकि टब इतना गहरा तो होता नहीं है। लेकिन रात के बीच, क्योंकि वो मिट्टी गलते गलते गलते गलते पूरी गल जाएगी, रात के बीच वो पूरे गल गए और फिर उस मिट्टी को गमले में डाल दिया जाता है, फिर उस गमले में कुछ भी आप लगा सकते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। तो बड़ी प्रतिमाओं का भी तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, बड़े टब भी आते हैं, ड्रम आते हैं, ड्रम के अंदर उतार दीजिए मूर्तियों को और फिर वो गलते गलते वैसे ही भर जाएगा। तो देखिए ये मिट्टी भी काम आ जाएगी, गमलों में, खेतों में, नर्सरी में, बाग बगीचे में, सब में। और हमने 10 दिन जो इतने पॉजिटिव रूप से पूजा की और इतने गुणगान किए, आरती की, अर्चन किया, सब कुछ किया, तो वो सारे मिट्टी में क्या जाता है, हमारे सकारात्मक ऊर्जा चली गई। तो उल्टे जो आप जो भी लगाएंगे, फल, फूल, सब्जी, जो भी आप लगाएंगे वो भी आपकी अच्छी होगी, एनर्जेटिक होगी, क्योंकि आपके सकारात्मक, आपकी भक्ति की ऊर्जा उसमें गई हुई है। तो फल सब्जी जो भी लगा रहे हैं वो भी अच्छे लगेंगे और जल्दी से ग्रोथ करेंगे, तो कितना सारा फायदा हो जाएगा। एनवायरनमेंट भी हमारा शुद्ध बना रहेगा, कम से कम पौधा लगाने में हमारा सहयोग भी हो जाएगा। और हमने आराम से 10 दिन सेवा अर्चना भी की और वो मिट्टी भी काम आ गई, वेस्ट नहीं गई, कितनी अच्छी बात है। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्या बात है। मेरे को लगता है हमारे श्रोता बंधु विसर्जन में व्यस्त हो गए हैं, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अभी हाँ, सुबह से शुरू हो जाते हैं शोभा यात्रा, और शोभा यात्रा शुरू

होती है, धीरे धीरे बैंड बाजे डीजे बजते जाते हैं, भक्त जन नाचते गाते जाते हैं और सुबह के समय विसर्जन करते हैं, तो वैसे ही 2-2.5 घंटा रास्ते में लग जाते हैं। तो आज हमारे श्रोता बंधु शोभा यात्रा में होंगे। चलिए कोई बात नहीं, एंजॉय करिए इस त्यौहार का और यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: विघ्नों को हरने वाले मंगल के दाता है, गणपति बापा हर भक्त के भाग्य विधाता है। दिल से जो पुकारे बप्पा उसके साथ खड़े, उनकी कृपा से जीवन के रास्ते फूलों से भरे। तो पुनः आप सभी को अनंत चौदस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कंचन भाई मंडाली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते कंचन भाई।
1: नमस्कार बहन जी, सुप्रभात।
0: हाँ जी सुप्रभात, कैसे हैं आप?
1: बस बहन जी, आज तो गणपति दादा का विसर्जन का दिन है, चौदस है
0: जी।
1: जी चौदस तो हमारे यहाँ तो रविवार को कोई 10 दिन रखते हैं, कोई 14 दिन रखते हैं, ऐसा रखते हैं बहन जी। लेकिन हमारे ये सब युवाओं को ये करते हैं, हमारे दुकान के सामने तो रविवार को हमारे तो विसर्जन कर दिया था बहन जी। यहाँ नदी साबरमती पड़ती है ना, एक ही मूर्ति हमारे पूरे गांव में, एक सोनी महाजन थे इस साल तो गाता, तो पूरी मिट्टी की मूर्ति लाए थे छोटी सी
0: जी।
1: और सभी ने सुबह शाम आरती की, गरबा 10 बजे तक रखा था और धामधूम से ये गणपति जी का उत्सव मनाया था।
0: अच्छा, आपके यहाँ नदी है, विसर्जन क्या करते हैं?
1: उसी दिन शोभा यात्रा निकालते हैं, सभी डीजे लाते हैं, पूरे गांव में गणपति जी को फिराते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं और युवा लोग फिर यहाँ चौक में प्रसाद का आयोजन रखते हैं, तो प्रसाद सभी को बांटते हैं, ठीक है
0: जी।
1: बूंदी वगैरह को कोई ये लाते हैं और फिर साबरमती हमारे नजदीक पड़ती है, साबरमती नदी।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पानी इस साल तो था, यहाँ हमारी अपने गांव की नदी में तो इस साल नहीं था पानी बहन जी। तो जब गए थे हम भी साथ में ट्रैक्टर में गए थे, क्योंकि कोई हादसा ना हो जाए, मूर्ति को पूरी तरह गहरे पानी में ले जाए और इसका फिर से विसर्जन करे, इधर उधर नहीं रख दे, ऐसा हम बड़े बुजुर्ग है ना, वो पूरा ध्यान रखते हैं
0: जी जी जी।
1: ये इधर उधर रखते हैं, इसका क्या कारण है मैं बताऊं कि घर घर में गणपति ला देते हैं।
0: अच्छा,
1: घर घर लाके क्या करते हैं कि इसको पूरा विसर्जन विधि सब करते नहीं और इधर उधर नदी के डरते है और पानी से और इधर उधर रख के आ जाते थे, तो ऐसा ये नहीं करना चाहिए। सरकार ने भी कुंड बनाए हैं सिटी में, तो इसका विसर्जन करने के लिए ऐसे कुंड बनाए पानी के, लेकिन ये भी नहीं करते लोग।
0: तो अच्छी बात है ना, इतनी अच्छी व्यवस्था की है कुंड बनाने की, तो कुंड में ही करना चाहिए।
1: नहीं करते ना, हमने अभी मेरे सामने टीवी चालू ही है, तो ये जब आगे विसर्जन किया था तो काफी मूर्तियां कुंड के आसपास और जो रास्ता था इसमें रख दी थी।
0: अच्छा,
1: तो नहीं करना, हम लाते हैं तो कितना भाव ये उत्साह रहता है और जब विसर्जन करते हैं तो देखो ना, कई तो क्रेन में, सिटी में क्रेन में पुल पे थे, इसको धक्का दे के गणपति जी को नीचे गिराते थे। ये कोई विसर्जन है? आप अभी बता रहे थे कि वे असली क्या था, गणपति जी को नहलाए ये किया, ये ऐसा था, लेकिन लोगों ने साफ गए,
0: अर्थ का अनर्थ कर दिया, अर्थ का अनर्थ।
1: मैं तो बोल रहा हूँ, हमने तो बोला है बहन जी, जो दशा माँ का जो व्रत किया था मेरे घर से मेरी बहू ने
0: जी,
1: सुबोध की
0: जी,
1: तो मैंने बोला था कि भाई जो मूर्ति है ना, विसर्जन कर सको तो लाओ मिट्टी की, ठीक है, 4 बजे 5 बजे सुबह में पानी में नदी में जाना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: पूरे रात उपवास करना पड़ता है, जागरण, और 4 बजे 5 बजे नदी पे जाके विसर्जन करना पड़ता है सुबह में, तो ये सब करो तो लाओ, वरना एक फोटो।
0: अरे नदी में कोई जरूरी नहीं, घर पे भी आप टब में पानी भर के कर सकते हैं।
1: हाँ ये करो, तो अथवा तो एक प्रतिमा लाओ, फोटो लाओ माता जी का, जो दशा माँ का
0: जी,
1: ये रखो सामने, इसकी पूजा करो, ये करो, और फिर इसके घर में ही कोई निश्चित जगह पे रख दो, तो इसकी पूजा नित्य अगरबत्ती वगैरह होना होगी
0: जी।
1: ये विसर्जन करना ही है, ऐसा कोई ये नहीं है। हमारे तो क्या है कि भाई हमारे सुबोध के घर से है नहीं, खुद इनका दादा मिट्टी का काम करते हैं
0: जी,
1: जो बर्तनों का, तो उन्होंने बोला था पहले से कि मैं से एक छोटी मूर्ति दशा माँ की बनाऊंगा, पूरी मिट्टी की
0: जी,
1: कच्ची मिट्टी की, इसे ये करके भी नहीं दूंगा
0: जी,
1: तो उन्होंने खुद भेजी थी।
0: अच्छा,
1: तो ये मेरे बेटे, 2-3 बेटे थे, 2 बहुएं थी, तो लेके 4 बजे विसर्जन किया। मैंने पूरा ध्यान रखा था, मैं देखूंगा, मैं जाऊंगा, कई जगह पे आप गए थे, वीडियो मुझे बनाना लेके आना
0: जी।
1: ऐसा बुजुर्गों को करना है बहन जी, देखो वो तो एक अलग है, ठीक है,
0: इसको
1: पता
0: बिल्कुल
1: नहीं चलेगा कि कहाँ रखना है क्या करना है
0: जी।
1: बड़े बुजुर्गों को खूब ध्यान से ये उत्सव मनाना है, तो पूरी ध्यान से रखना है
0: जी,
1: और ये विसर्जन तक ही ये करना है इसको, और साथ में ही जाना है, ये तो दिन को होता है गणपति जी का विसर्जन, तो साथ में जाना है, चलो मैं भी आकर, और कोई गलत जगह पे रख दे तो उसको तुरंत बोलना है, ये समझ कर
0: जी।
1: ये मैं तो थोड़ा ये जो
0: गाइड करने वाले भी तो चाहिए ना,
1: टाइम निकालना पड़ेगा, बुजुर्गों को टाइम निकालना है, ऐसे तो कहीं भी पूरे दिन बैठे रहते हैं ना
0: जी,
1: चौक में चले तो कोई
0: चौक में बैठ करके बातें तो करनी होती है, तो इससे अच्छा किसी का भला हो जाए और अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए लोगों को।
1: साथ में जाने का क्या वो कष्ट होता है
0: जी।
1: ये मैं तो थोड़ी बात करना चाहता था रेडियो के माध्यम से, ठीक है
0: जी।
1: और ये प्रश्न तो आज का मैंने सुना था,
0: आज का टंग ट्विस्टर।
1: मैं पढ़ूंगा और जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
0: अच्छा ठीक है,
1: सभी दोस्तों को आपको आज गणपति उत्सव की ढेर शुभकामनाएं
0: जी, बहुत बहुत आभार कंचन भाई। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने विषय को अच्छा स्पष्ट किया है। अब कपासन से दीपा सोमानी सुनाना चाहती है टंग ट्विस्टर, उनके माध्यम से सुन लेते हैं।
2: ओम शांति, जय श्री कृष्णा। गणपति के गुण गाए, गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गुंजे गुणों का ज्ञान, गान गाए गणपति का गुण गान, गाते गाते गुंजे गुणों का ज्ञान, गणपति के गुण गाए, गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गुंजे गुणों का गान, गान गाए गणपति का गुण गान, गाते गाते गुंजे गणों का ज्ञान। ओम शांति, जय श्री कृष्ण।
0: बहुत सुंदर दीपा जी ने बोल के सुनाया है, कहीं पर भी अटके नहीं है, ढेर सारी तालियां। तो आज इस त्यौहार को हम धूमधाम से मना रहे हैं, अच्छी बात है, मनाइएगा। सारी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कंचन भाई ने भी कहा कि देखिए कैसे कुंड बनाए हुए हैं, फिर भी पास में छोड़ के चले जाते हैं लोग। अरे कुंड में उतार दो ना, क्या टाइम लगता है कुंड में रखने का, बनाए किस लिए है। अरे 10 दिन आपने अपना कीमती समय निकाला और इस तरह आपने तपस्या की, पूजा अर्चना की, गणपति के रात दिन सुमिरन किया और फिर उनको ऐसे छोड़ के जा रहे, बस 10 दिन की आस्था थी आपकी, अब कहाँ गई आस्था। भाई जब व्यवस्था करवाई गई है गांव वालों ने, गवर्नमेंट ने, जिन्होंने भी की हो, तो भी व्यवस्था अच्छी है ना, उसका फायदा लीजिए ना, ताकि न तो हमारे इष्ट देव का अपमान होगा और ना ही इस तरह मूर्तियां बीच में रहेगी और ना ही हम पाप के भागीदार बनेंगे। तो हर चीज़ को आप सिस्टमेटिक करिए, हर चीज़ को भले, और मैं तो कहूँ इससे अच्छा आप करिए ही मत, इस तरह इधर उधर छोड़ना है, लात मारनी है, धक्का देना है, करिए ही मत। कोई कसम थोड़े ना किसी ने दी है, लेकिन जब श्रद्धा भाव से किया है तो पूरी श्रद्धा भाव बनाए रखिए। ऐसे नहीं कि बस 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए बहुत हो गया बस, ये थोड़े ना होता है। घर में हम बच्चों को बड़ा करते हैं, पालते हैं, तो ऐसे थोड़े एक महीना दो महीना करके छोड़ देते हैं। लाइफ टाइम उनके पीछे कितना समय देते हैं, कितने रात दिन उनके पीछे लग जाते हैं, और ये कि 10 दिन में ही थक गए। इसलिए जो भी करिए आप तरीके से करिएगा, और जो भी विसर्जन के लिए जा रहे हैं, जैसे सुरेश भाई ने बताया है कि बहुत हादसे हो रहे हैं, तो सावधानी भी रखिएगा। कभी कभी क्या है कि भक्त लोग भावनाओं में इतने बह जाते हैं, इधर से डीजे बज रहा, उधर से बैंड बाजे, गीतों के मस्त उसमें बह जाते हैं लय में, तो अपनी सुध-बुध भूल जाते हैं, फिर वो कितने गहराई में जा रहे हैं पानी की पता ही नहीं चलता है, और गहराई में जा करके बैलेंस बिगड़ जाता है, हादसे हो जाते हैं। इसलिए संभल करके, सतर्क रह करके। हेलो,
3: जय माता दी, जय श्री
0: जी, जय श्री हरि, नमस्कार।
3: रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार
0: जी।
3: राइट हो?
0: हाँ जी।
3: अच्छा, तो क्या चल रहा है
0: आज? आप बोलिएगा, आज गणपति विसर्जन है, कैसे सावधानी रखनी है, कैसे विसर्जन करना है?
3: विसर्जन का तो देखिए, हम काफी समय से बोलते आ रहे हैं, तो ध्यान रखने की जरूरत ही है, क्योंकि एक तो खुद का भी ध्यान रखना है, औरों का भी ध्यान रखना है, अपनी वजह से किसी को नुकसान ना हो। लोग क्या नाचते हैं उस समय भी ध्यान नहीं देते, वो जब गुड़गुड़िया निकलता है
0: जी,
3: तो उस समय भी अपन को ध्यान रखना है कि आपने आजू बाजू कौन है। दूसरी बात यह है कि विसर्जन करने जाए तो पानी का विशेष ध्यान रखें, और जो जल मतलब जीव है, क्योंकि आजकल जगह जगह मगरमच्छ वगैरह भी जोड़े हुए हैं
0: जी,
3: तो ये भी सावधानी रखनी जरूरी है। थोड़े मतलब वो कहते हैं ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी,
0: सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी बनाए रखना है।
3: हाँ बिल्कुल, और देखिए हमने पहले भी कहा था कि केमिकल वाले वो मूर्तियां, अभी पानी भी नहीं है, तो प्योर मिट्टी की मूर्ति लाई होती तो आज काम में आती
0: जी,
3: केमिकल वाले वो गलेगी भी नहीं। और कुछ मैंने जगह ये भी देखा है दीदी, वैसे आपने बोला भी था कल
0: जी
3: कि गणपति को मतलब अपन ने 10-12 दिन पूजा है, और जब मूर्ति विसर्जन की बात आती है तो वो क्या नहीं रुकती तो पैर से धक्का मार देते हैं
0: जी,
3: तो ये नहीं करना है उनको, पप्पा को प्यार से लाए थे तो प्यार से विसर्जन करना है। तो बस यही छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप खुद और दूसरों का ख्याल रख सकते हैं, बस यही मैं तो कहना चाहता हूँ
0: जी। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। हाँ जी,
3: और हो सके तो वो गाना सुना देना, गणपति अपने गाँव चले।
0: अच्छा ठीक है,
3: आज जा रहे हैं ना गणपति बप्पा?
0: जी जी जी जी, तो कोशिश करेंगे,
3: चला देना कि गणपति अपने गाँव चले।
0: जी जी जी,
3: ठीक है
0: ठीक है। कोशिश करेंगे। आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और बस सभी का यही कहना है, और स्वयं ही तो कोई क्या कहेगा, खुद ही सोचिएगा कि क्या हम इस तरह 10 दिन पूजा अर्चना के बाद अपमान करते हैं, क्या अच्छी बात है? खुद ही थोड़ा सोचिए, उसके बाद आप करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, बाकी इस त्यौहार की पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विषय को यही समाप्त करते हैं और आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर है, गणपति के गुण गाए गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गुंजे गणों का गान। गण गाए गणपति का गुण गान, गाते गाते गुंजे गणों का गान। तो यह आज का टंग ट्विस्टर है। सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415, और यही पर अब एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड. और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का. तो हम जरूर आपको नए नए व्यंजन तो जरूर सिखाएंगे, परंतु आइए आज का टंग ट्विस्टर दोहरा देते हैं. आज का टंग ट्विस्टर है गणपति के गुण गाए गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे घणों का गान. गण गाए गणपति का गुण गान, गाते गाते गूंजे घणों का गान. यह आपको 3 बार बोलना है अधिक से अधिक, और कम से कम 2 बार तो बोल के सुनाना ही है. ठीक है, तो देखते हैं कौन सुनाते हैं. नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15. और अब आइए आशियाना के किचन में पधारिए. आज आपको सिखा देते हैं बिना चाशनी के मक्खन बड़े, जिसको राजस्थानी भाषा में खजूरिया कहते हैं. ये भी गणपति जी के भोग में लगाया जाता है. तो जैसे 5 दिन हम घर में बिठाते हैं, अलग अलग नैवेद्य तैयार करते हैं, उसमें ये नैवेद्य भी बनता है. तो बिना चाशनी के मक्खन बड़े, जिसको खजूरिया कहते हैं, कैसे बनाएंगे जानेंगे. आप ले लीजिए मैदा. 1 किलो मैदा ले रहे हैं तो आप लीजिएगा 250 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम ही घी. ठीक है, तो 1 किलो मैदा ले रहे हैं तो आप लीजिएगा 250 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम ही घी. अब आपको बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखा रही हूँ. आप क्या करेंगे, मैदे को छान लीजिए. छान करके जो 250 ग्राम घी लिया है उसका मौन डाल दीजिए मैदे में, और शक्कर, भले तो आप चीनी पाउडर लीजिएगा, भले आप थोड़े से पानी में शक्कर को अच्छी तरह घोल दीजिएगा. फिर इस पानी से आप इस मैदे को गूंध लीजिए. घी का मौन अच्छी तरह मिक्स करके फिर इस शक्कर वाले पानी से सारे मैदे को गूंध लेना है. थोड़ा सा टाइट गूंधना है, पूरी का बनाते ऐसा. ठीक है, और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, छोटे छोटे लुए, थोड़े थोड़े, जैसे हम पूरी बनाते ना छोटी पूरी, तो लुए कैसे लेते हैं, ऐसे लुए लीजिएगा. और ऐसे लुए लेकर के गोल गोल आप बना करके हल्का सा दबा दीजिए. इस तरह सारे ही मक्खन बड़ों का शेप दे करके आप रख दीजिए. और अब आप रखिए घी, फिर से कढ़ाई में गरम रखिएगा. जब ये घी गरम हो जाए तो धीमी आंच और मध्यम आंच में इन बड़ों को आप तल दीजिए. और तल तल के जब ऊपर से बादामी कलर के हो जाए फिर आप निकाल दीजिए. तो ये बन गए मक्खन बड़े बिना चाशनी के. ये अंदर इसकी मिठास रहती है. ठीक है, तो बनाने का तरीका फिर से सिखा रही हूँ. मैदे को आप छान लीजिए. छान कर इसमें जो हमने 250 ग्राम घी लिया है उसका मौन डाल दीजिए इसमें. अगर पिघला हुआ नहीं है तो थोड़ा सा पिघाल करके डालिएगा. और मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए. और शक्कर में, भले तो आप पानी, थोड़े से पानी में शक्कर गर्म मतलब डाल करके अच्छी तरह मिक्स करिए कि पूरा ही पानी शक्कर वाला हो जाए, शक्कर घुल जाए. या फिर चीनी पाउडर लीजिए, जिसको आप डायरेक्ट मैदे में डाल करके फिर पानी डाल करके गूंध लीजिए. अब वो आप पर छोड़ा कि आप क्या लेते हैं. ठीक है, पानी इतना ही लेना है जो मैदे में समा जाए. अगर ज़रूरत पड़ गई है तो ऊपर से दूसरा पानी डालोगे तो चलेगा, लेकिन बहुत सारा भर भतर के ले लिया पानी, फिर उसमें शक्कर डाल दी, फिर उस शक्कर वाले पानी से आपने मैदा गूंधा, तो फिर वो तो फीका पड़ जाएगा ना, क्योंकि पानी तो आपका बच गया, अब पूरी मात्रा तो अंदर गई नहीं. फिर अगर फीका लगे तो आप कहेंगे उषा दीदी ने कैसी रेसिपी सिखाई, ये तो कोई मीठी नहीं लग रही है. इसलिए ध्यान देना है, पानी में घुले उतनी ही शक्कर लेनी है. ठीक है, और इस पानी से फिर इसको गूंध देना है. और गूंधने के बाद 20 मिनट तक आप गीले कपड़े में ढक के रख दीजिएगा. और उसके बाद आप गोल गोल लुए की तरह तैयार कर लीजिए. छोटे छोटे लुए तोड़ करके पूरी बनाते ऐसे, इसके लुए तोड़ना है. गोल गोल बना करके हल्का सा दबा के रख दीजिए. और फिर आप घी गरम करिए, कढ़ाई में डालिए, घी गरम करिए. घी गरम हो जाए तो धीमी आंच और मध्यम आंच पर आप इन बड़ों को तल दीजिए. तल के निकाल दीजिए। बहुत स्वादिष्ट रेसिपी तैयार हो चुकी है, बहुत ही ये स्वादिष्ट लगेंगे। ठीक है, तो ये आप गणपति जी को भोग में लगा सकते हैं, भोग लगा करके ही खाइएगा। ठीक है, तो ये बन गया बिना चाशनी के मक्खन बड़े, जिसको राजस्थानी में खजुरिया कहते हैं। और आइए फिर से आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर है गणपति के गुण गाए गणपति के गुणगान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे गणों का गान। गणपति का गुण गान गाते गाते गूंजे गणों का गान। ठीक है, तो ये आज का टंग ट्विस्टर है। सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज का टंग ट्विस्टर सुना सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकालकर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। गणपति विसर्जन करिएगा लेकिन सावधानी पूर्वक, ठीक है। और रेसिपी में जो आपको बिना चाशनी के आपको ना ये बनाना सिखाया मक्खन बड़ा, जिसको राजस्थानी में खजुरिया कहते हैं, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं दोहरा रही हूँ। गणपति के गुण गाए, गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे गुणों का गान। गण गाए गणपति का गुण गान, गाते गाते गूंजे गणों का ज्ञान। गणपति के गुण गाए, गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे गुणों का गान। गण गाए गणपति का गुण गान, गाते गाते गूंजे गणों का ज्ञान। गणपति के गुण गाए, गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे गुणों का ज्ञान। गण गाए गणपति का गुणगान, गाते गाते गूंजे गणों का ज्ञान। तो मैं स्वयं के लिए भी तालियां बजा देती हूँ, क्योंकि भाई कभी कभी खुद के लिए। और बाकी सुनाया है सुरेश भाई झोटाना से और दीपा सोमानी कपासन से। आप दोनों ने ही सुनाया है, तो आप दोनों के लिए ढेर सारे टंग ट्विस्ट।

0: डॉक्टर के लिए और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई जोटाना से, कंचन भाई मंडाली से और सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। तो पुनः ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती इस प्रकार है, जब हमारे विचार में थोड़ी सी भी अशुद्धि नहीं होगी तभी हम सच्चे मानव कहलाएंगे, यही हमारा परम धर्म है। अब आपको गणपति जी पर प्यारा सा भजन सुनाएंगे सुरेश भाई जोटाना से, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे अंताक्षरी कार्यक्रम में, कल की थीम रहेगी पुराने पिक्चर के गीत, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटने की कोशिश करिएगा और अंताक्षरी में भाग लेने की कोशिश करिएगा। और आज के लिए इतना ही। सुरेश भाई स्वागत आपका फिर से रेडियो मधुबन में।
1: जी, नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते। तो आप गीत सुनाएंगे और मैं यहाँ से विदाई ले लेती हूँ, ठीक है? तो आप सभी को राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुना दीजिए सुरेश भाई।

आगेवान मारा देवता मेरे करो ने महाराज रे।

शंकर देव देवता मेरे करो ने महाराज रे बुद्ध सिंदूर नी सेवा चढ़े छे स्वामी तमने उधारा जड़म फूलड़ा नो हार देवता जड़म फूलड़ा नो हार देवता मेरे करो ने महाराज रे।

देवता दीदी बिना दाता रे देवता मेरे करो ने मारा।

0: नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है। क्या खूबसूरत नाम है। कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं और कोई उस सिचुएशन से उभर के बाहर आते हैं और कोई नहीं आ पाते। जो अपनी परिस्थितियों से उभर के बाहर आते हैं और एक उदाहरण सेट करते हैं तो कहते हैं इन्होंने क्या जिया है, मजा आ गया इनकी कहानी सुन करके। ऐसे ही कुछ उदाहरणों के साथ आज हमारे कार्यक्रम जीना इसी का नाम पे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर हमारे साथ है सुमन बहन जी। सुमन बहन ब्रह्म कुमारी मुख्यालय में माउंट आबू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक नर्स के रूप में। एक नर्स जो योगी जीवन जीते हुए अपनी सेवाएं कर रहे हैं और एक नर्स जो लौकिक दुनिया में रहते हैं, क्या अंतर होता है, आइए जानते हैं और बातचीत करते हैं आज की हमारी मेहमान सुमन बहन जी से। सुमन बहन, आपको रेडियो मधुबन पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, खुशी हुई आप यहाँ बुलाए
0: जी। हमें भी बहुत खुशी है कि आज एक योगी की कहानी और वो योगी जो साइंस के साथ भी ताल्लुक रखते हैं और साइलेंस के साथ भी ताल्लुक रखते हैं। तो सुमन बहन, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो लौकिक जर्नी है, आपने कहाँ पे जन्म लिया और आपके परिवार माता पिता क्या करते थे, और आपकी जो लौकिक परिवार है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय दें।
1: मैं ऐसे कर्नाटक से कारवार डिस्ट्रिक्ट में हलियाल करके आता है, वो भरे तालुक का प्लेस है, लेकिन वहाँ का सारा वातावरण यानी 30-40 साल पहले एक गांव का ही था, तो गांव के वातावरण में ही हम पले बड़े हैं। वहाँ ही लौकिक और जो अलौकिक ज्ञान को हम प्राप्त किया है। पिताजी ऐसे वुड मिल में काम करते थे और माताजी खेतीबाड़ी में। घर में गाय भैंस और वो दूध का सब व्यापार चलता था, तो उसी में ही हम छोटेपन से ही काम करके ही सीखने का एक पहले से ही नियम था, तो इस तरह हम पले बड़े हैं
0: जी। आप कितने भाई बहन थे?
1: हम तीन बहनें और एक भाई है, उसमें मैं ही थोड़ा पढ़ाई किया, क्योंकि उस जमाने में वहाँ लड़कियों को पढ़ाना इतना ये स्कोप नहीं था, सिर्फ लड़कों को थोड़ा पढ़ाते थे। लड़कियों को बस थोड़ा कोई प्राइमरी वगैरह पढ़ाया, पढ़ना लिखना आ गया तो बस हो गया और कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं बहुत मना स्ट्रगल करके बहुत जिद करके पढ़ाई किया है, और वो इतना सहज भी नहीं था क्योंकि हर बार यही होता था कि इनको स्कूल छुड़ावे, इनको कॉलेज छुड़ावे, और हमेशा ये कंडीशन होता था कि आपको ये काम करके ही जाना है, ये करके ही जाना है तो जाने का, हम जैसे बोलते वैसे ही कपड़ा पहनना है तो ही जाने का। तो मैं वो सारे कंडीशन को पूरा करते हुए भी मना, बस मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे पढ़ाई करना है, तो उस तरह मेरी पढ़ाई हुई थी। और मैं बहुत छोटेपन से ही बुक्स पढ़ने की बहुत आदत थी, तो मैं बहुत बड़े बड़े महारथियों का, दार्शनिक या जो फ्रीडम फाइटर्स है, उन लोगों के सभी बहुत सारे बुक्स पढ़ती थी, तो उनके जीवन से मुझे बहुत ऐसे एनर्जी फील होती थी कि मुझे सच में पढ़ना है, पढ़ाई से आगे बहुत कर सकते हैं
0: जी। तो फिर आपके भाई बहनों ने कहाँ तक पढ़ाई किया?
1: वो लोग ज्यादा से ज्यादा कोई प्राइमरी कोई हाई स्कूल के अंदर ही छोड़ दिया और वो अपने अपने गृहस्थी में चले गए।
0: तो फिर आपने कहाँ तक पढ़ाई किया?
1: मैंने ऐसे ग्रेजुएट किया है और बाद में ओपन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट भी किया, लेकिन उस टाइम में वहाँ एक रूरल एरिया को डेवलप करने के इसलिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स लेके आते थे, कुछ महीने के, कुछ साल के, कोई नर्सिंग का, कोई कंप्यूटर का पढ़ाते थे, तो उस तरह के मैंने फिर कोर्स कर लिया था साइड बाय साइड।
0: तो इतनी स्ट्रगल से आपने जो पढ़ाई किया है, फिर आपको कभी लगा नहीं कि मैं जाकर के नौकरी करूँ ये सब चीजें?
1: नहीं, थोड़ा सा आध्यात्मिकता का ये था, रुचि था, और दुनिया के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना, इस तरह की बुद्धि थी मेरा, सिर्फ मेरा जीवन का बहुत मैं कम सोचती थी। और पढ़ाई का मैं एक सुनाती हूँ, गांव में ऐसा पढ़ाई होती थी, एक हॉल रहता था, उसमें एक ही मास्टर जी, एक ही ब्लैक बोर्ड, और उस हॉल में 4 स्टैंडर्ड के बच्चे बैठते थे मना कोई क्लासरूम या पार्टीशन ऐसा कुछ नहीं है। जो सामने के कुछ बेंचेस होते थे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले, और बाद में कुछ होते थे वो सेकंड वाले, फिर इस तरह मना जिस बेंच पे वो बैठा है
0: वो उसका क्लास है
1: उसका वो क्लास है, ऐसे होता था। तो उस टाइम में पढ़ाई क्या किया पता नहीं इतने हॉल में बैठ के लेकिन मजा बहुत आता था, बहुत खुश रहते।
0: तो फिर इस बीच में आपको ब्रह्म कुमारी इसके साथ परिचय कैसे हुआ?
1: ऐसे मुझे पहले से आध्यात्मिकता को रुचि बहुत थी, लेकिन मैं कभी कोई ऐसी पूजा नहीं की, अब क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा रहता था कि कोई ना कोई एक सर्वोच्च शक्ति है, उसको मुझे पाना है। अगर मैं किसी एक मंदिर या एक पूजा एक पद्धति में मैं फंस गई, शायद मैं उससे वंचित हो रह जाऊंगी। और कुछ साल के बाद मुझे पता चले कि शायद मैं गलत आई हूँ और बाद में फिर चेंज करूँ, तो उतने साल मेरे वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं कभी भी उस तरह का नहीं किया है। और धर्म के हिसाब से मैं सभी धर्मों के बारे में भी जानकारी लिया था, जैसे मुस्लिम्स है, कुरान के बारे में, बाइबल के बारे में, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारा मैंने बहुत जानकारी लिया था। कि मुझे ऐसा लगता था अगर इस धर्म में फॉलो करने से भगवान प्राप्त होता है और मैं इस धर्म में जा रही हूँ, शायद मैं वंचित रह जाऊँगी। तो इसलिए मैं कोशिश करती थी सब तरफ से जानकारी करूँ और मैं उसमें बाद में चलूँ जब मुझे पता चले। तो मुस्लिम का जो होता है रोज़ा रखना और मुहर्रम और रमज़ान वगैरह, वो सब सेलिब्रेट करते थे, चर्च में भी जाते थे। तो इस तरह मुझे अंदर से एक खोज थी कि मुझे भगवान को खोजना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे पूजा पाठ करके या कोई एक मूर्ति एक कहानी के पीछे, नहीं, मुझे रियल में उसको पाना है, इस तरह का एक अंदर से भूख थी। तो इसलिए मैं बहुत ऐसे अंदर से एफर्ट करती थी। और उस टाइम में मेरे विचारों को समझने वाले नहीं थे, उनको लगता था कि ये कुछ अलग सोचती है।
0: आपके पूरे परिवार में?
1: हाँ, परिवार में कहीं भी मुझे इतना ये नहीं हुआ, जो मैं खुद बुक्स वगैरह पढ़ पढ़ के अपने आप को मोटिवेट कर लेती थी। मैं स्कूल की बुक्स बहुत कम पढ़ती थी, और जो दार्शनिक है बड़े बड़े होके गए हैं, स्वामी विवेकानंद है, फ्रीडम फाइटर्स की भी बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ लिया था, तो मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ बनना है।
0: बहुत अच्छा। तो फिर जैसे आपको आध्यात्मिकता में रुचि थी, तो ब्रह्म कुमारी से जो परिचय मिला आपको, उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी?
1: मैं 20-21 साल की थी, मैंने ग्रेजुएट भी हो गए थे। मना मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने से पहले, मेरी जो पहले मैंने बताया कि मेरे विचार ऐसे ऐसे थे, और उस टाइम में जैसे एक टिवाटे पर खड़ी थी मैं कि मैं किधर जाऊँ। मुझे कोई इस तरह का शादी करना ये करना उस तरह का तो था नहीं, लेकिन एक साधना का जीवन करना चाहिए, लेकिन मैं जाऊँ किधर, ऐसा कोई मुझे क्लियर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। और मैं थी 20-21 साल की, और मुझे कोई भी डिसीजन लेना उसी टाइम में लेना है। तो मेरे विचार ऐसा था कि अगर किसी और धर्म के थ्रू मैं परमात्मा को पा लूँ, तो उस टाइम में मैं ऐसी मेरी मेंटेलिटी थी कि मैं धर्म परिवर्तन करने के लिए भी रेडी थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, फिर मैंने देखा था कि और कहीं भी जाते तो थोड़ा स्त्री को दूसरी दर्जा दी जाती थी, और आध्यात्मिकता भी उसमें फिर मैं थोड़ा पीछे हट जाती थी, मैं शायद इसमें जाऊँ तो वहाँ फिर ना होवे। तो ऐसे एक उलझन के टाइम में मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था से मैं जुड़ गई। मैं जॉब के लिए गई थी, उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे और कुमार थे, तो उनका जो हाव भाव है पेशेंट पूरा होने के बाद, उनका पढ़ाई करने का, मेडिटेशन करने का, और महिलाओं के प्रति उनका रिस्पेक्ट, वो सभी देख के मुझे बहुत थोड़ा ये हुआ कि ये व्यक्ति कुछ अलग है दूसरों के। जैसे कोई लड़का जाता है पुरुष, तो हम वहाँ से जाने के लिए सोचना पड़ता है या थोड़ा अटेंशन से जाना पड़ता है, लेकिन उनके पास ऐसा नहीं लगता था, तो ये बहुत ऊंचे विचार वाले हैं ऐसा लगता था। और मुझे एक था ये कि भगवान के बारे में जो भी कोई कहानियाँ बताते थे उसको विरोध करना और ये सब पाखंड है, ये साबित करने का बहुत, वाद विवाद में आने का बहुत एक ये था, और मैं काफ़ी लोगों को हरा भी देती थी तो वो एक घमंड भी था मुझे। अच्छा, ये कोई ओम शांति करके कोई एक है और ये भी कोई अपना बाबा बोलते हैं, कोई भगवान मिला बोलते हैं, मैं इनको भी ये भूत छुड़ा सकती हूँ इस भाव से मैं उनसे बात करना शुरू किया था।
0: Okay, ये कौन सा साल रहा होगा?
1: ये 2001 का है।
0: अच्छा।
1: तो फिर मैं उनको भगवान के बारे में पूछना शुरू किया, तो उन्होंने ये एक बात बोला कि मैं भगवान को इतनी अच्छी तरह से संबंध में हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही मैं करता हूँ। एक तो मुझे अंदर से लगा ये व्यक्ति कहीं पहुँचा हुआ व्यक्तित्व वाला हो सकता है, या तो ये पागल हो सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान से हम इजीली बात कर सके। एक तो मैं इतना ढूंढ रही हूँ, भगवान है ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है, और उनको मिल भी गया और इतना वो लोग आराम से बात भी करते हुए, तो ये बात से मुझे थोड़ा सा अंदर से लगा कि ये व्यक्ति एक तो पागल हो सकता है या सच में पाया हुआ है। तो भगवान के बारे में मुझे बहुत क्वेश्चन थे, जैसे सभी को रहता है, ऐसी दुनिया क्यों बनाया है, दुखी है, ये है, जात पात धर्म में सब बटी हुई है, तो ये सभी बहुत क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन सभी सुन के उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चनों को सारा हम आंसर दे देंगे, सब आपको ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन आप चाहते क्या हो, आपका क्या सपना है कि भाई भारत कैसा होना चाहिए, दुनिया कैसा होना चाहिए आपके सपनों के हिसाब से। तो वो एक ऐसे दिया था मुझे, तो मैंने 5-6 पेज लिख के लेके गई थी कि मेरे सपनों का भारत इस तरह होना चाहिए। मैं स्पेशल मेरा महिलाओं का था, तो महिलाओं को रिगार्ड होना चाहिए, और हर एक इंसान इतना संतृप्त होना चाहिए, इतना भरपूर होना चाहिए, किसी और की चोरी करना, लूटना या जलस होना इतना कोई जरूरत ही न पड़े, इतना हर एक भरपूर होना चाहिए, और कोई किसी को शिक्षा देना जैसा कर्म होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह की बातें जो मैं कॉलेज से लेके आई थी दिमाग में, वैसे मैं लिख के दिया था। तो वो मेरा एसे देख के उन्होंने डिसाइड किया शायद इनको सच में एक भारत के प्रति या दुनिया के प्रति ऐसी भाव है। तो तभी उन्होंने बहुत इंटरेस्ट से मुझे कोर्स देना शुरू किया, लेकिन वो ज्ञान इतना सुनाते और मैं उनको इतनी क्वेश्चन पूछती डबल मैंने इतने क्वेश्चन थे, लेकिन वो बहुत संयमता से सारे क्वेश्चन सुनते थे। तो इस तरह मेरा ये ज्ञान में आ गई।
0: तो फिर फाइनली आपका निश्चय कैसे हुआ कि ये सत्य ज्ञान है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप हर धर्म को फॉलो कर रहे थे भगवान की खोज में, और जब आप बेसिक फंडामेंटल कोर्स करने के लिए आए हैं वो ब्रह्म कुमारी इसमें, तब भी आपके मन में बहुत सारे सवाल थे, तो निश्चय किस बात से हुआ और कैसे हुआ?
1: मैं और ऐसा मेंटेलिटी था कि कोई कुछ कह रहा है तो मैं इतना इजी मानने वाली नहीं थी। तो एक तो उनका जीवन देखा मैंने, वो डॉक्टर का जीवन देखा कि उनकी कितनी सिंप्लिसिटी है, विचार कितने ऊंचे है और कितना सेवा भाव, ये भी प्रभाव डाला। और उसके बाद जब ज्ञान दिया और मेरे सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल गया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहानियों में देवताओं का ही भगवान बोल की कहानियां बनाया है, वो सभी जो है मुझे उसकी क्लियरिटी हो गई, सच में एक निराकार परमात्मा वो रियल में कौन है, तभी तो ये सारे क्वेश्चन फिर ऑटोमेटिक स्टॉप हो गए मेरे। फिर भी मैं अगर इस संस्था को मैं अगर आगे बढ़ना है तो मैं इतना जल्दी डिसीजन लेने वाली जैसी नहीं थी। फिर मैं पहली बार यहाँ मधुबन आई, ऐसे सच कहूँ तो ये मधुबन में भी मैं ऐसे टेस्ट करने के लिए आई थी कि कोई ऐसा तो नहीं है कि भगवान आया करके किसी को बहला रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई ड्रामा कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं है। तो मैं वो सभी देखने के लिए यहाँ आई थी, और उसके पहले जो क्लास माउंट आबू जो आई थी।
0: अच्छा, वो कौन से साल में आए थे?
1: 2004 में मैं पहली बार आई।
0: अच्छा,
1: एक तो मुझे यहाँ का वातावरण और यहाँ के जो भाई लोगों का व्यवहार है ना, विनम्रता जो दुनिया में हम देखते हैं बहनों के प्रति उनका व्यवहार, और यहाँ देखते हैं बहुत ऊंचा, बहुत वो भी प्रभावित हुए। और जो पुरुष प्रधान समाज है, और वो कुछ साल पहले तो और भी था, अभी तो थोड़ा चेंज हो रहा है, तो उनका जो दबदबा था यहाँ ऐसा नहीं था, सभी को इक्वल रिक्वेस्ट होता था, कोई जात पात का नहीं था, कोई पढ़े लिखे अनपढ़ गाँव इसका कोई भेदभाव नहीं था। तो तब मुझे लगा कि ये जो चेंजेस है ये भगवान ही कर सकता है, कोई इंसान नहीं। और जो प्रभु मिलन डायमंड हॉल में होता है उसके 3 दिन पहले से कोई क्लासेस होते हैं, तो एक क्लास में सुना था कि भाई इतने ऊंचा हाईएस्ट अथॉरिटी से हमें मिलना है तो हमारी अपनी स्थिति भी कुछ ऊंची बनानी पड़ेगी। तो उसके पहले मैं 3 दिन अखंड मौन रखा था, सुबह 2 बजे से उठ के योग करना, खान पीन भी बहुत लाइट रखा था, और जितना हो सके मेरी एक अशरीरी स्थिति, एक बॉडीलेस स्थिति और जो निराकार है उसको मिलने के लिए मैं अपनी स्थिति को ऊंचा बनाऊं, तो ये बहुत किया था एक स्थिति में। तो उस स्थिति के साथ ही मेरा प्रभु मिलन के लिए मैं डायमंड हॉल में बैठी थी, और बहुत जैसे चारों तरफ से ध्यान रख के जो गुलजार दादी में आते हैं वो देखने के लिए कि ये सच में प्रभु अवतरण है और ये परमात्मा ही है जो मुझ आत्मा का पिता है। तो मैं उनकी एक बच्चा कहे, संतान कहे, तो मुझे महसूस होना चाहिए ना कि वो मेरा बाप है
0: जी।
1: तो ऐसे बुक्स में पढ़ने से तो नहीं है, मुझे आत्मा को भी महसूस होना चाहिए वो मेरा बाप है। दूसरों को महसूस हुआ होगा वो बाप कहते हैं, लेकिन मैं क्यों कहूँ। तो उस इरादे से मैं बैठी थी, लेकिन उस दिन जो भगवान का अवतरण हुआ तब मेरी स्थिति बहुत अलौकिक थी, बहुत डिवाइन। जो वहाँ वाइब्रेशन बने पूरे हॉल में 20-30 हज़ार लोग, पिन ड्रॉप साइलेंस, और जो मुझे दृष्टि मिल रही थी उससे मुझे मेरा शरीर इतना बहुत जैसे टच करूँ तो, हाँ मैं टच करूँ तो भी उसका फील नहीं होता था, और आंखों से इतनी आंसू बह रहे थे खुशी की, जैसे प्राप्त कर लिया है, जैसे एक भूख मिट गई है। तो मैं ऐसा सोचती थी कि मैं आंखें आंसू पहुँचने के लिए थोड़ा हाथ उठाऊँ तो थोड़ी कुछ सेकेंड की भी दृष्टि मुझे मिस ना हो जाए। तो वो प्रभु मिलन से मेरा पक्का हो गया कि भगवान सच में आया है, और उसका और मेरा एक बाप और अपने संतान का एक रिश्ता है। तो उसी दिन फिर मैं पक्का निश्चय कर लिया।
0: फिर आपके परिवार में इस ईश्वरी मार्ग पर चल रहे थे?
1: नहीं, कोई नहीं, मैं ही पहले थी।
0: अच्छा, तो फिर आपको छुट्टी कैसे मिली?
1: हाँ नहीं, बहुत अपोज हुआ, बहुत सारे एक समाज में भी एक ही दूसरा धर्म का है, कोई ब्रेन वॉश करते हैं शादी करना नहीं, ऐसे जो अफवाहें होते हैं वो सभी बातें हमारे सामने भी आई थी। लेकिन मैं तो भगवान का अनुभव का टेस्ट देख चुकी थी, इसलिए मुझे ज्ञान भी था कि मैं उनको आंसर दे सकूं। बहुत परेशानी हो गई, जैसे हमारे खान पान का शुद्धता होता है उसके लिए भी हमें ऐसे हुआ था कि 2 साल तक हम घर में दूध दही ये तो रहता था, लेकिन दूसरी चीज़ें बनाने का अलाव नहीं था। लेकिन बाबा का नियम था कि भाई उनको हम नैवेद्य ऑफर करके ही लेना है, तो वो करने नहीं देते थे जानबूझ के, ये कोई अलग बन रहे हैं। तो हम 2 साल तक दूध और केला चावल इसी में ही रहे थे। इतना वेट भी कम हो गया था, कईयों को लगता था कि इनके ऊपर कोई ने कुछ किया है
0: ये क्या?
1: लेकिन अंदर से मैं बहुत खुश थी, बहुत नशे में थी, बहुत पा लिया था। शरीर तो कभी पतला होता है कभी मोटा होता अलग बात है, लेकिन भगवान के रास्ते में मुझे चलना है, तो मैं तो अंदर से बहुत खुश थी।
0: तो फिर आपको ज्ञान मार्ग में चलने के लिए, नियम धारणाओं में आप जैसे चाहते हैं वैसे जीने के लिए इतनी चैलेंजेस थे, इन चैलेंजेस में से आपने समर्पित होने का संस्था में और एक अलौकिक जीवन जीना, एक योगी जीवन जीने का संकल्प कैसे किया, उसको कैसे सामना किया?
1: जैसे पहले ही सुनाया था कि मेरा अंदर से एक युद्ध चल रहा था आध्यात्मिकता का कि मुझे भगवान को पाना है। तो जैसे 20-21 साल में आ गई तो अपने आप को कुछ माना जजमेंट लेना पड़ेगा कहाँ जाना है क्या करना है। उस टाइम में मुझे ये मिल गया, तो जब मुझे अनुभव हो गया तो मैं उसी दिन लिख के भी दे दिया था कि जब अगर मुझे अनुभव हुआ कि यहाँ भगवान आया हुआ है तो मैं उसी दिन से ही मेरा जीवन इनकी सेवा में लगा दूंगी। अगर मुझे अनुभव नहीं हुआ मैं तो छोड़ूंगी ही, उसके साथ यहाँ जो भी आ रहे उन सभी को छोड़ाऊंगी, ऐसा मैंने बोला था। उन्होंने बोला कि बेशक आपको अगर अनुभव नहीं होता है तो आप दूसरों को भी सुना सकते हो। तो ये जो उनका कॉन्फिडेंट था वही मुझे ज़्यादा निश्चय करने में प्रेरित किया। फिर घर में तो फिर थोड़ा चलता ही है रोना धोना, क्योंकि मोह तो रहता है। फिर मैंने उनको भी यहाँ लेके आए, यहाँ दिखाया कि भाई आपको बेटी का एक ही आशा रहता है कि भाई अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, आगे जाके सुखी रहे, और हमारे बाद में भी ये और भी सुखी रहे, यही तो इच्छा रहती है। तो मैं उनको लाके यहाँ दिखाया, देखो इतना बड़ा घर है और परमात्मा हमारा साथी है और मैं इस तरह जीना चाहती हूँ। तो फिर जब खुद मम्मी पापा ने देखा तब फिर समाज का रिश्तेदार का वो ज़्यादा सुनने नहीं, फिर बाद में छुट्टी दे दिया। फिर मधुबन में भी सिर्फ 3 महीने के लिए सेवा के लिए यहाँ बुलाया गया था। फिर दादियों के पास हमें नर्सिंग सेवा की ज़रूरत पड़ती थी, उस टाइम तो ऐसा था हमें हिंदी ठीक तरह नहीं आती थी, फिर भी बाबा ने इतना सिखा लिया, सब अपनी सेवा में रख लिया। और जब पहली बार बाबा मिलन में आई थी तो मैं पांडव भवन में बाबा का कुटीर है, वहाँ ऐसे कहते हैं कि वहाँ जो भी संकल्प करते हैं उसको बल मिलता है या वो सफल होता है। तो मैं पहले बाबा मिलन में आई थी तो वहाँ बाबा के कुटीर में चिट्ठी डाल के गई थी कि मुझे अभी तो निश्चय हो गया, अभी मुझे मेरी सेवा शुरू हो जाएगी कि मैं आपका जो ज्ञान है वो सभी को देना है, तो मैं अगली बार जब आऊँगी तो मेरी जैसे 5 कन्याओं को रेडी करके लाऊंगी।
0: अच्छा,
1: हाँ तो वो फिर हो गया, अगली बार मैं आई तो मैं मेरे जैसे 5 लोगों को लेके आई, और मेरे लौकिक रिश्तेदार में ही बहुत सारे ज्ञान में आए, तो उसमें से हम 8-9 बहनें समर्पित हो गए हैं।
0: तो फिर आपके जीवन में प्रेरणा कौन रहे आपके लिए?
1: मुझे, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़ के मुझे बहुत सारे महान व्यक्तियों का ये रहा, लेकिन उसमें हमेशा मुझे ये लगता था कि ये लोग तो पुरुष है, तो स्त्री के लिए मैं आगे जाके फिर कहीं फेल ना हो जाऊं। तो कर्नाटक में एक साध्वी है अक्का महादेवी करके
0: जी,
1: हाँ, तो वो वचन वगैरह लिखते हैं जैसे पोएम छोटा, तो उन्होंने आध्यात्मिकता में बहुत अच्छा आगे गए है, भक्ति में बहुत ये थे, यानी 11वीं या 12वीं शताब्दी के है वो। उस जमाने में एक स्त्री इतना जंगल में अकेली जाके, एक श्री शैल करके है, वहाँ गुफा में जाके उन्होंने तपस्या किया है और वहाँ ही उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उनका जीवन मुझे बहुत ये हो गया, इम्प्रेस हो गया कि मैं उनकी जैसे बनूं, कि अगर 12वीं शताब्दी में वो कर सकते हैं तो मैं अभी कर सकती हूँ, तो मैं उनको आदर्श मानती थी।
0: तो सुमन बहन, जैसे आपने कहा कि आपको अक महादेवी आदर्श थी और बचपन से ही, लेकिन जैसे आप इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आई, राजयोग मेडिटेशन सीखा ब्रह्म कुमारी संस्थान में, और आप समर्पित होने का भी संकल्प लिया एंड परिवार से सामना करके ये सब चीज़ें, जब यहाँ पर आए, यहाँ पे भी तो आप आश्रम में एक नया जीवन है, आप दक्षिण भारत कर्नाटका से आए, यहाँ पे वेस्ट में राजस्थान में, और हेडक्वार्टर होने के नाते यहाँ पे हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर भाषा, हर कल्चर तरीके से, फिर आप यहाँ पे अपने आप को कैसे एडजस्ट किया और क्या क्या आपने अपने अंदर वो परिवर्तन देखा है इतने सालों से जब आप यहाँ पे रहना शुरू किया?
1: मुझे जो मुरलियों में आता है तूफान को तोहफा बनाने का, और आपके जीवन में जो भी एक घटना सिचुएशन आ रही है वो आपको कुछ ना कुछ सीख दे के जाएगी, तो वो सीख को मैं लेने की कोशिश करती थी। जब मैं यहाँ आई थी तो हम इतना नर्सिंग में कोई एक्सपर्ट नहीं थे, थोड़ा जो एक क्लिनिक में सेवा किया था तो उतना ही एक्सपीरियंस हमारे पास था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं हर जो भी सामने बड़े सेवा देते उसको पहले हाँ कहती थी, और एक था कि जो ईश्वर सेवा देता है तो उसकी शक्ति भी देता है, ये मुझे बहुत काम आया कि मैं उस इसमें चली जाऊँ और कोई भी तूफान आता है तो उसको तोहफा बना के ही छोड़ूँ, तो ये मुझे बहुत काम आया। तो यहाँ आने के बाद भाषा का थोड़ा सा होता था क्योंकि हम इतना वहाँ हिंदी यूज़ नहीं करते थे, लेकिन घर में मराठी बात करते थे तो हिंदी अच्छे समझ में आ जाता था, लेकिन बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे। फिर बाद में वेदर का भी, यहाँ बहुत ठंडी होती है और बहुत गर्मी होती है, तो वो भी थोड़ा सा छोटी मोटी ऐसे लगता था, लेकिन ज्ञान जो है और ईश्वरीय नशा जो है सभी क्रॉस करने में बहुत मदद मिलता था। और हमारी नर्सिंग की सेवा यहाँ आके अभी 20 साल हुआ है, तो इतने साल में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो यज्ञ के महारथी दादियाँ हैं, जो आध्यात्मिकता में अपनी बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुके हैं, उनके साथ ही रहा हुआ है, तो उनके साथ सेवा करते हुए मुझे मेडिकली बहुत अपडेट रहना पड़ता था, बहुत सीखना पड़ता था।
0: तो जैसे मेडिकल प्रोफेशन में भी एक्सलेंसी को प्राप्त किया और स्पिरिचुअलिटी में भी एक्सलेंसी को प्राप्त किया, क्योंकि जो इतने श्रेष्ठ योगी उनके साथ आपने जीवन बिताया और उनके अंग संग रहे, उनके शरीर की ख्याल रखने के लिए आपकी सेवा होती थी, तो फिर उनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ये सारी चीजें। तो ऐसा क्या चीजें है आप जो देखते हैं कि योगी जीवन में प्रकृति को जीतना, मतलब जैसे ये कहते हैं ना आध्यात्मिकता में कि आत्मा पुरुष है और ये शरीर प्रकृति है, पांच तत्वों का बना हुआ है, तो जिस तरीके से आपने इतने श्रेष्ठ और बड़े योगियों के साथ अपने जीवन बिताया, दादियों के साथ जिसने अपने जीवन के 70 साल 80 साल पूरा ही जीवन लगभग इस आध्यात्मिक मार्ग में अपना जीवन चलाया, तो क्या आप डिफरेंसेस देखते थे, क्या आपको सीखने को मिला है?
1: हाँ, वो बहुत डिफरेंस, क्योंकि मैं पहले वहाँ 5 साल लौकिक हॉस्पिटल में जॉब करते थे, वहाँ के जो पेशेंट थे, कुछ होता है तो उनका चिल्लाने का, उनका जो बात करने का, वो सभी एकदम दुख दर्द वाला ऐसा होता था, और उनको समझा के सेवा करना भी बहुत ये होता था। यहाँ हमने देखा तो कि दादियों के पास जैसे कुछ बीमारी होती है तो हम कोई मेडिटेशन वगैरह उस टाइम नहीं कर सकते हैं, ना कोई हम शांति का अभ्यास करेंगे, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन मना एक बुखार भी आया तो हमारा कॉन्शियस ज्यादा शरीर में ही रहता है। एक तो 10 लोगों को बताने में
0: मुझे बुखार
1: है, फिर क्या होगा, क्या खाने से क्या होगा, कौन सी लेना है, और शायद मुझे ऐसा तो नहीं होगा ना, इसी में ही हमारा ज्यादा बॉडी कॉन्शियस में ही ज्यादा रहते हैं जो पहले से भी। लेकिन दादियों का देखा, जैसे उनको शरीर में कोई मना चिकित्सा की जरूरत पड़े तो वो तुरंत उस शरीर से डिटैच हो जाते थे। तो हम कहते थे दादी ये ट्रीटमेंट करना है आपको, ये हुआ, अच्छा ये करना है तो ठीक करो, मना आपके हवाले वो शरीर को सौंप देते थे। कभी ऐसे सोचते नहीं कि शायद आप मुझे गलत ट्रीटमेंट देंगे, मुझे ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे, नहीं, उसमें कभी नहीं है। उनको लगता था कि ये बाबा के बच्चे हैं, अच्छे थे अच्छे ही हमारे लिए कर रहे हैं। वो हमने देखा। और कभी हम सुई लगाते हैं, कैनोला लगाते हैं, तो उसमें भी जैसे अगर वो नहीं लग गया या हम कोई डर रहे हैं थोड़ा सा लगाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी दादियों को एक ही प्रिक में लगना चाहिए, बहुत सॉफ्टली लगना चाहिए, वो बहुत ध्यान रखते थे, तो लेकिन अंदर से एक डर भी रहता था। लेकिन दादियाँ हमारे चेहरा देख के बता देते थे कोई बात नहीं, अब शांति से बाबा की याद में करो, तो ये हाथ में नहीं लगा है, कोई बात नहीं ये हाथ में लगा दो, मतलब इतना सहज वो खुद हमें सहज करते थे बहुत। तो वो देखने को मिला। और जब उनका जो रूटीन होता है अमृत वेला, मुरली का जो हमारे आध्यात्मिक स्टडी है, और शाम को मेडिटेशन करना, दुनिया को सकाश देना, ये सभी रूटीन उनके शरीर को कुछ भी होता रहे, कितने भी प्रोसेस से गुजरता रहे, लेकिन ये रूटीन में उनका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता था।
0: तो आप अपने जीवन में इसका प्रभाव कैसे देखते हैं?
1: हाँ, उससे मेरे में भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है कि कोई एक बात होती है उसको ज्यादा समय तक ना रखे, ज्यादा से ज्यादा रात तक वो बात रहेगी, उसके बाद वो मैं निकाल देती हूँ। क्योंकि दादियों को देखा है वो कोई बात लेके सोते नहीं थे। जैसे दुनिया में भी कहते हैं कि भाई 7 घंटा सोना है, 6 घंटा डीप स्लीप है, सभी आजकल बहुत उसके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं। लेकिन मैंने जितने भी दादियों को देखा है सभी 80 above 90 above 100 तक भी पहुंचे, तो उन लोगों की नींद होती 10-11 बजे से लेके 3 बजे तक, यही उनकी नींद का टाइम होता था। उसके बाद वो उठना, स्नान करना, फिर हॉल में आना, ये सभी होता था। दिन में भी अगर टाइम मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, इस तरह। फिर भी वो लोग 100 साल तक भी पहुंचे, और बहुत अच्छी तरह से उनका जो पे होते कि मेंटली कोई ये होता है वो होता, ऐसा कुछ नहीं था। दादियों का लास्ट डे तक उनका अच्छा रहा। तो तब मुझे ऐसा लगा कि भाई वो जो रात को बाबा के कमरे में जाके अपने दिन भर की दिनचर्या सुना के लिख के सौंप के बाद में सोते थे, तो वो ज्यादा इफेक्ट होता था हमें डीप नींद की। तो ये उनके हेल्थ के ऊपर भी बहुत असर पड़ता था, क्योंकि जो कल रात तक उनकी ऐसी शारीरिक स्थिति रहती थी कि कल क्या होगा क्या होगा, लेकिन जैसे ही वो एक डीप नींद हो गई और अमृत वेले का जो उन्होंने मेडिटेशन किया, तो ऑटोमेटिकली उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती थी। तो वो देख के मुझे भी उस तरह का बहुत अभ्यास करने का होता है, और मैं करती थी।
0: बहुत सुंदर। तो आपने अपने जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव देखा और एक संघर्ष को देखा, कब आपको ये फील हुआ कि मुझे ऐसा ही जीना है, इसे कहते हैं जीना?
1: मैं पहले तो सुनाया कि मेरा कितना उलझनों से, कितना स्ट्रगलों से जीवन जिया है। भगवान मिलने के बाद तो मुझे प्यार ही प्यार मिला है, और जो भी कोई परीक्षा कहते हैं वो कोई मुझे परीक्षा नहीं लगता था, वो बहुत सारे इतना एक सटीक ज्ञान था। तभी तो अंदाज वाला मैं लेके घूमती थी, शायद यहाँ होगा, शायद ये राइट होगा, लेकिन भगवान का ज्ञान मुझे सत्य ज्ञान मिलने के बाद, उस महावाक्य को मुझे सेवा में यूज करना या मुझे कोई उलझन आती है तो उसमें उसको यूज करने से मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे हमेशा एक होता था कि मेरे साथ स्वयं परमात्मा खड़ा है, तो मुझे बहुत सिक्योर फील होता था कि मैं उनको बोल सकती हूँ और उनके मत के अनुसार मैं कर सकती हूँ।
0: तो वर्तमान समय में आप क्या करते हैं?
1: मैं जैसे नर्सिंग का ही है, तो ऐसे जहाँ भी बड़ों के पास सेवा में भेजते हैं तो वहाँ जाती हूँ, लेकिन अभी यहाँ शांतिवन में एवर हेल्दी हॉस्पिटल में नर्सिंग की सेवा कर रही हूँ।
0: जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सुमन बहन, आज आए आप।
1: थैंक यू।
0: दोस्तों, ये था आज की कहानी आप सभी के सामने। आप सुन रहे थे सुमन बहन को, जो हमारी नर्स है एवर हेल्दी हॉस्पिटल में ब्रह्म कुमारीज में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। हम विदाई लेते हैं आप सभी से, जीना इसी के नाम से।
2: अभी बजे हैं दोपहर के 12, एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं जीवन रोशनी कार्यक्रम रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। दोस्तों, कई बार नई राहें हमेशा बाहर नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी एक नई राह हमारे अपने अंदर ही जन्म लेती है। लेकिन बात होती है सिर्फ एक बार एकांत में बैठ करके उस राह को देखने की, तलाशने की। एक ही परिस्थिति, एक ही साधन, लेकिन सोचने का तरीका नया हो सकता है तो परिणाम भी नया हो सकता है। यही है नवाचार। कुछ नया करने से पहले कुछ नए देखने की क्षमता भी होना बहुत जरूरी है। तो उस नए देखने की क्षमता को कैसे विकसित करें, कैसे हम इनोवेट करें, तो आज हम ये मूल्य लेकर के आए हैं। और हम सभी के समक्ष हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो है बीके रुचिका दीदी। और आप पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़ी हैं और 2010 से अब ब्रह्मा कुमारीज के अंतरालय मुख्यालय में माउंट आबू में हेडक्वार्टर में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपने MBA फाइनेंस की शिक्षा प्राप्त की और इसके साथ साथ इंटरनेशनल बैंक्स में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे समक्ष हैं, रेडियो मधुबन के साथ जुड़ी हुई हैं। वैसे जो भी सेमिनार्स आदि अकाउंट्स के रिलेटेड प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं यहाँ पर, तो आप उनको भी गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, स्पिरिचुअल सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी कराते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज रेडियो मधुबन पर।
1: थैंक यू। ओम शांति।
0: ओम शांति। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप इनोवेशन को कैसे समझाएंगे हमारे श्रोताओं को।
1: इनोवेशन इज समथिंग हम अपने में कुछ बदलाव करें जिससे कुछ बेटर हो। चेंजेस तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन जो बदलाव एक बेटर आउटकम हमें दे वो इनोवेशन है।
0: जी, बेटर आउटकम हमें,
1: बेटर आउटकम हमें दे
0: जी।
1: कुछ सुधार के लिए अगर हम अपने अंदर कुछ चेंज लाते हैं तो दैट इज इनोवेशन।
0: ओके। तो अगर सिर्फ नई चीज बनाने की वजह आप कह रहे हैं कि कोई चीजों को अगर हम हमारे दृष्टिकोण परिवर्तन करके देखते हैं तो उसे भी इनोवेशन कहेंगे।
1: जी, एक्चुअली चीज कब बनती है? हम अभी बाहरी रूप से अगर हम देखते हैं तो हम बाहर की चीजें देखते हैं कि ये नई चीज हमें बनी है, बट अगर उसका बैकग्राउंड देखें तो हमने अपनी सोच बदली, हमने अपने संकल्प बदले, हमने अपना दृष्टिकोण बदला, तो हम वो नई चीज प्रोड्यूस कर पाए।
0: जी,
1: अगर हम अपनी सोच ही ना बदलते तो कभी उस नई चीज का प्रोडक्शन या आउटकम कभी आता ही नहीं। कोई भी अगर बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग का नक्शा पहले हमारे माइंड की में बनता है।
0: जी,
1: उसका पूरा आर्किटेक्चर की कैसा होना चाहिए, बिल्डिंग कैसे दिखनी चाहिए, किसी भी चीज का अगर आविष्कार होता है तो पहले हमारे संकल्पों के द्वारा होता है।
0: जी, ओके। तो पहले अपने सोच में हम उसे देखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, नवीनता लाते हैं,
1: सोच में नवीनता लाए तभी वो बाहरी रूप से हमें दिखाई देगा।
0: जी, ओके। तो कई बार हमें समस्या का समाधान पता नहीं चलता, तो ऐसे स्थिति में तो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, ये वाली बात आती है, तो इस सोच को बदल करके हम कैसे सवाल पूछे अपने आप से?
1: जी, पहले हमने कभी नहीं किया तो वो तो एक रिजिडिटी हो गई कि हम करना नहीं चाहते, या अंदर एक डर है कि हमने पहले कभी नहीं किया और अगर अभी हम करेंगे तो पता नहीं हम सफल हो पाएंगे या नहीं सफल हो पाएंगे या उसका आउटकम क्या होगा।
0: जी,
1: तो सबसे पहले तो हम इस सोच को बदलें कि मैंने पहले नहीं किया, या अगर मैं करूँगा तो मैं फेल ना हो जाऊँ या कुछ गलत ना हो जाए। हर गलती जो है आविष्कार का एक पहला कदम है, नवीनता का एक पहला कदम है। तो सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा।
0: जी,
1: और ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन के अंदर बदलाव जरूरी है। जब तक हमें उसकी जरूरत फील नहीं होती या उस बदलाव से होने वाली प्राप्ति क्या है वो जब तक हमें समझ में नहीं आता तब तक हम कोई भी कदम उठा नहीं पाएंगे। वो अंदर मन में भय डर बना ही रहेगा। तो सबसे पहला जो चाहिए, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए। जो अंदर की इच्छा है कि वी शुड चेंज समथिंग, जैसे दुनिया में भी कहावत है ना, मूव यू आर नॉट अ ट्री।
0: राइट,
1: राइट। तो ट्री जो है वो मूव नहीं कर सकता, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव क्रिएटिविटी, वी हैव कैपेबिलिटीज। जब तक हम उस अंदर की अपनी क्रिएटिविटी को परखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बाहर नहीं लाएंगे तब तक हम कुछ नया कर नहीं पाएंगे।
0: जी, जैसे कहते हैं कि अपने अंदर की क्रिएटिविटी को परखने के लिए आप कहीं अकेले में चले जाओ, कहीं बैठो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कैसे हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचानेंगे?
1: जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि अकेले में चले जाइए। कहते हैं साइलेंस इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, साइलेंस इज द मदर ऑफ इनोवेशन।
0: जी,
1: अभी हम देखते हैं कि अगर हम थोड़ा भी हमें टाइम मिलता है तो हम सीधा अपना फोन उठाते हैं। अगर हम मान लो बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं बस का, हम अपने फोन में बिजी हैं। हम भोजन कर रहे हैं, अपने फोन में बिजी हैं। जैसे ही हमारा एक रिंगटोन बजा, छोटा सा मैसेज भी आया
0: जी।
1: हम तुरंत ईगर होते हैं उसको चेक करने में। कहीं थोड़ा सा भी हमें टाइम मिलता है, नींद नहीं आ रही, फोन उठा लिया, जल्दी आँख खुल गई, हमने फोन उठा लिया। हमने अपने को कहीं ना कहीं हमेशा ऑल टाइम ऑक्यूपाई रखा हुआ है।
0: राइट।
1: तो जब तक हम अपने आप को उन सब चीजों से फ्री नहीं करेंगे, कहते हैं द बेस्ट वे टू क्रिएटिविटी, बेस्ट वे फॉर इनोवेशन इज टू डू नथिंग।
0: ओके।
1: आप कुछ मत कीजिए। आपके मन में नए आइडियाज तभी आएंगे। अगर हमने पहले से ही अपने मन को इधर उधर व्यस्त रखा हुआ है तो मार्जिन ही हमने नहीं छोड़ी कुछ नया सोचने की।
0: जी।
1: हम नया तभी सोच पाएंगे, क्रिएटिव तभी सोच पाएंगे जब हम अपने आप को मार्जिन देंगे, अपने आप को टाइम देंगे, खुद से बात करेंगे, खुद को समय देंगे, तो हम कुछ नया सोच सकते हैं।
0: जी, तो नथिंग सोचने के लिए ना, जो हम पहले सोचा हुआ होता है या दिन भर में देखा हुआ होता है ना, तो जैसे आपने कहा कि आंख खुलते ही हम मोबाइल देख लेते हैं, तो वो सारी चीजें आती है फिर, कहीं सीरियल्स देखा हो तो ये सारे वेस्ट थॉट्स,
1: कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड ने वो सब चीजें एक्सेप्ट कर ली है और मन अपने आप ही उधर भागता है।
0: जी।
1: और हम इस चीज को नोटिस भी नहीं कर पाते हैं जब तक हम, वह दूसरा कोई व्यक्ति अगर हमारे नोटिस में नहीं लाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये खास नोटिस में हम ला रहे हैं कि हमारा मन इधर उधर व्यस्त है, हर चीज हमेशा अपने को ऑक्यूपाई करना चाहता है। तो मैं अपने आप से पूछूं, क्या मैं सच में फ्री हूँ? सबके लिए तो टाइम है मेरे पास
0: जी।
1: क्या मेरे पास अपने लिए टाइम है? जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, जब हम साइलेंस में बैठते हैं, एकाग्रता से बैठते हैं, अपने मन को फ्री करते हैं, हमें तभी कुछ नए आइडियाज टच होते हैं।
0: जी, तो अपने मन को ऐसे कंट्रोल में रखना या फिर नए आइडियाज के लिए शांत करना जरूरी है। तो अगर ये सारे वेस्ट थॉट्स, पास्ट की बातें, इधर उधर की बातें आए, तो क्या करना चाहिए फिर हमको उस वक्त?
1: वही जो मैंने बताया कि रियलाइजेशन, कि हमें अपने में कुछ चेंज लाना है। और सबसे बड़ा इनोवेशन बाहरी दुनिया का इनोवेशन नहीं है, सबसे बड़ा इनोवेशन मैं समझती हूँ कि अपने व्यवहार में इनोवेशन लाना, खुद में चेंज लाना। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका ये मोटो ही है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा बदले, सामने वाला व्यक्ति बदले, वो हमारे कंट्रोल के बाहर है
0: जी।
1: मैं खुद मेरे कंट्रोल में अगर नहीं हूँ, देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू चेंज?
0: राइट। जी।
1: राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसे आपने बोला वेस्ट थॉट्स, हम अपने को बिजी रखते हैं, तो उससे कैसे बचे? तो उसके लिए अपने ऊपर अटेंशन। और अगर कोई भी व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है तो ऑटोमेटिकली वो अपने लिए टाइम निकाल ही लेगा। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ अलग करना है।
0: जी।
1: और अगर ये अंदर से दृढ़ इच्छा है कि हमें करना है, तो ऑटोमेटिकली हम अपने लिए समय निकालेंगे।
0: जी। तो क्या अपने आप से बात करनी है उस समय जब इस प्रकार से ख्याल दूसरे आता हो और हम फोकस नहीं कर पाए, तब अपने मन से बात करनी होती है?
1: जी, पहले तो हम अपनी प्रॉब्लम समझे कि प्रॉब्लम क्या है। अभी क्या है, हमारा माइंड जो है बहुत जगह प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है। अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए उसका सॉल्यूशन निकालना कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। एंड मेन थिंग इज, सबसे पहले कि अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे करना क्या है, मैं चाहती क्या हूँ करना। अभी हम देखें बहुत सारे लोग जो है विदाउट गोल ओरिएंटेड।
0: जी।
1: कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, कोई बड़ा एम नहीं है। और व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति का जो सबसे अच्छा निवारण है
0: जी,
1: वो है अपने लक्ष्य को इतना महान बना लो कि आपके लिए व्यर्थ के लिए समय ही नहीं बचे
0: जी,
1: टाइम ही नहीं बचे। कहीं हम देखते हैं लोगों को इधर उधर बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं, कभी किससे बातें कर रहे हैं, और बातें भी क्या, परचिंतन, व्यर्थ। वही समय अगर हमारा एक गोल सेट होता कि मुझे जीवन में ये करना है, तो हम बहुत सारे व्यर्थ से, बहुत सारे परचिंतन से ऑटोमेटिकली बच जाते हैं।
0: ओके।
1: और हम जीवन में कुछ नया कर पाते हैं।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, अपने जीवन के लक्ष्य को रिवाइज करिए, और फिर अगर आपने सेट नहीं किया है तो सेट करना बहुत जरूरी है, तभी हम उसे फॉलो करते हुए इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और अपने मन के साथ अपने आप को बात करनी चाहिए, शिफ्ट करने के लिए व्यर्थ से समर्थ की ओर।
1: जी
0: जी। हर एक परिस्थिति के बारे में अगर बात करें कि परिस्थिति बार बार सामने तो आ ही रहेगी, जिंदगी है परिस्थिति आएगी, और पुराने तरीके के अगर हम काम ना करके उसको नए तरीके से इनोवेट करेंगे जैसे आपने कहा, तो कौन सी ऐसी आदत है जो पहले हमें परिवर्तन करना चाहिए, एक फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए?
1: मैं आपको अपने जीवन का अनुभव सुनाती हूँ. कई बार ऐसा होता है हम पास्ट की बातों को बहुत पकड़ के रखते हैं. कुछ भी बात होता है पुराना रेफरेंस, पहले आपने ऐसा कहा था, पहले ऐसा हुआ था, क्योंकि हम अपने बुरे अनुभवों को छोड़ नहीं पाते हैं.
0: जी,
1: अच्छे अनुभवों को इतना पकड़ के नहीं रखते हैं और बुरे अनुभवों को छोड़ नहीं पाते. तो पुरानी बातें बार बार बार बार रिकॉल होती है
0: जी,
1: जिससे हमारा समय भी व्यर्थ जाता है, एनर्जी भी व्यर्थ जाती है. तो अगर हम अपने जीवन की ये धारणा बना ले, एक छोटी सी धारणा
0: जी,
1: कि जो हुआ सो हुआ, उसको हम बदल नहीं सकते, वो तो हो गया, अभी हमारे हाथ में है ही नहीं बदलना. अभी हमारे हाथ में है कि आगे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट. पुराने को फुल स्टॉप लगाकर, बीती को बिंदी लगाकर, व्हाट नेक्स्ट, अभी मुझे आगे क्या करना है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड से स्विच करना सॉल्यूशन ओरिएंटेड की तरफ
0: जी,
1: दैट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इनोवेशन. पहले मैं अपने अंदर ही बदलाव लेकर आऊं.
0: राइट, ओके,
1: दिस इज इंपॉर्टेंट.
0: तो बार बार शिफ्ट ऑफ
1: एटीट्यूड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव.
0: जी, जब जब भी पास्ट की बातें, गिल्ट, जो भी चीजें हैं हमारी जिंदगी में वो आए, और तभी तभी ही हमें ये वाली टेक्निक सब
1: हमें लेट गो करना है. एक चीज हमेशा माइंड में रखते हुए कि पुराने को मैं बदल नहीं सकता, बट अपना फ्यूचर बनाना वो मेरे हाथ में है, प्रेजेंट मेरे हाथ में है, पास्ट मेरे कंट्रोल से बाहर है
0: जी.
1: तो रादर देन फोकसिंग ऑन पास्ट, अपनी प्रॉब्लम्स, हम अपना एटीट्यूड, अपना फोकस शिफ्ट कर ले अपने फ्यूचर की तरफ.
0: Okay.
1: अभी आगे मुझे क्या करना,
0: क्या
1: है?
0: करना है जी. तो घर हो, ऑफिस हो या परिवार हो, छोटी सी ऐसी कौन सी चीज, जैसे आपने कहा कि शिफ्टिंग करना है, लेकिन जिसमें हम आज से ही एक नया तरीका अपना कर बदलाव ला सकते हैं.
1: बहुत अच्छा सवाल है. जैसे बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, जितना हम हर छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, थैंक्स गिविंग फील करते हैं, उतना हमारे जीवन में अच्छी चीजें ज्यादा होती हैं.
0: ओके,
1: अगर हम एक अपना छोटा सा नेचर चेंज कर ले, नो कंप्लेंट
0: जी,
1: चाहे हम दिन फिक्स कर लें, लाइक टुडे इज संडे, एवरी मंडे आई विल नॉट कंप्लेन फॉर एनीथिंग. ये नवीनता लाकर के अगर हम देखें, भोजन चाहे हमें जैसा भी मिल रहा हो, पसंद आए या ना पसंद आए, ये नवीनता लाकर के देखें कि मुझे शुक्र करें परमात्मा का कि मुझे भोजन मेरी थाली में है, और हम उसको स्वीकार करें खुशी खुशी
0: जी.
1: रात को सोने से पहले सब परिवार वालों को हम थैंक्स करें, परमात्मा का थैंक्स करें उस दिन के लिए
0: जी.
1: हर छोटी छोटी बातों का थैंक्स करें. एक दिन रखें अपने जीवन में नो कंप्लेन डे, एक दिन अपने जीवन में रखें थैंक्स फॉर एवरी लिटिल थिंग्स. हर चीज के लिए हमें ग्रैटिट्यूड फील हो, अपने को भाग्यवान फील करें, भाग्यशाली फील करें कि आज जो मेरे पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है. ये छोटे छोटे से बदलाव हम जब अपने जीवन में लाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन कैसे बाकी लोगों से अलग होता है.
0: ओके, तो ये हम आज से शुरू कर सकते हैं. थैंक्स देना है, धन्यवाद देना है, और कृतज्ञता महसूस करना है अपने लाइफ में, और डे वाइज कर सकते हैं.
1: डे वाइज आप अपने गोल सेट कर सकते हैं. एक बड़ा गोल सेट करने के बजाय आप उसके छोटे छोटे गोल सेट कर सकते हैं, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे गोल्स में. जैसे हमें पता है हमारा नेचर कैसा है, सपोज मुझे गुस्सा अगर बहुत आता है तो अपने लिए खुद ही गोल सेट करें. ठीक है, हम एक महीने का टारगेट लेकर नहीं चलते, एक हफ्ते का टारगेट लेकर भी नहीं चलते, अगर हम हर दिन का टारगेट लेकर के चले, या अगर मुझे लगता है कि मैं फोन से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हूँ, तो उसमें आप एक दिन का, कुछ घंटे का आप एक टारगेट लेके चलिए, गोल लेके चलिए कि शाम को 4 बजे से 8 बजे तक, या फिर ड्यूरिंग द फैमिली टाइम जब हम परिवार के अंदर हैं
0: जी,
1: तो उस समय हम अपने परिवार वालों को ही समय देंगे. तो इससे हम देखेंगे हमारे घर का वातावरण भी चेंज होगा, और हमें चेंज देख करके, हमारे अंदर वो चेंज देख करके हमारे परिवार वाले भी वो चेंज अपने अंदर लाएंगे
0: जी. बिल्कुल. तो दोस्तों, आप आज से क्या करने वाले हो, आप हमें कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हो, 94-14-15-14-15 इस नंबर पर जी. कई बार हमारे पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं, लेकिन हम उन्हें लागू नहीं कर पाते हैं, उस आइडियाज़ को एक्शन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करें
1: जी? हमारे पास नए आइडियाज़ आ रहे हैं तो पहले तो यही प्रूव करता है कि हम लोगों से अलग सोचने की क्षमता रखते हैं, और हम कुछ नया करना चाहते हैं, हम कुछ नया सोच रहे हैं
0: जी.
1: अगर हम नहीं कारण किसी भी कारणवश अगर हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में नहीं ला पा रहे तो सबसे पहले तो उसके कारण हम ढूंढे कि क्या ऐसे कारण हैं। अगर उन कारणों के में मैं बदलाव कर सकता हूँ और कैसे बदलाव कर सकता है तो हम उसको सोचें
0: जी
1: क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज मेरे अंदर गुस्सा बहुत है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता तो हम क्या करते हैं हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। तो क्यों ना हम आज से ये चेंज करें दूसरों पे अपनी गलती या किसी की भी गलती शिफ्ट करने के बजाय अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हमारे हर व्यवहार के लिए हमारे हर एक्शन के लिए हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ।
0: जी ये हम भूल जाते हैं
1: और अगर ये हम खुद से प्रॉमिस करें कि मेरा व्यवहार मेरी जिम्मेवारी है अगर हम इस पे शिफ्ट करते हैं और इस पे बार बार बार बार अटेंशन देते हैं तो हम जरूर वो कर पाएंगे जो अभी तक हमें लगता था कि हम नहीं कर पा रहे।
0: राइट तो ये हमें याद रखना है कि जो ब्लेम गेम हम खेल रहे हैं

0: की बात है
1: जी, माइंड में ही ब्लूप्रिंट निकलता है,
0: माइंड में ही हमारा ब्लूप्रिंट निकल कर आता है। आज अगर मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ तो मैं फोन्स के या यूट्यूब के या इंटरनेट के मोहताज नहीं हूँ। अगर पहले जमाने में भी लोग सब सीखते थे, कुछ नया करते थे, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशन करते थे
1: जी,
0: तब भी उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। तो टेक्नोलॉजी के हम सोचते हैं कि बिना टेक्नोलॉजी के हम कुछ नया कर नहीं सकते, ये सिर्फ एक बहानेबाजी है।
1: राइट जी,
0: अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं, सच में करना चाहते हैं, और हमें गोल बहुत क्लियर है, हमारे स्पष्ट है, निर्धारित है, तो हम जरूर वो कर पाएंगे बिना पैसों के भी।
1: जी, जैसे कई गरीब घर के बच्चे होते हैं लेकिन बिना टेक्नोलॉजी बिना उसमें आगे बढ़ जाते हैं।
0: जी, खेल कूद में बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे कि बिना हाथ पैर के भी लोग अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन जीत रहे हैं।
1: राइट,
0: तो उनको तो अपने शरीर के ऊपर भी वो डिपेंडेंट नहीं है
1: जी।
0: तो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं है।
1: जी जी बिल्कुल, आप पायल नाग के एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों यूट्यूब पर, कि कैसे उन्होंने तीरंदाजी में गोल्ड लिया है। शीतल देवी भी जिनके हाथ पैर नहीं है लेकिन वो जीत रहे हैं। बिल्कुल, तो परिवार या वर्क प्लेस में जब कोई व्यक्ति नए तरीका या फिर नए आइडियाज देने लगता है तो बाकी लोग उसे थोड़ा पहले रिजेक्ट करते हैं, तो उस रेजिस्टेंस को कैसे हम फेस करें बताइए।
0: जी, कोई भी नया चेंज हमारे सामने भी कभी आता है तो हम भी उसे अपनाने में कभी झिझकते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं क्या उसके आउटकम्स होंगे या क्या उसके रिजल्ट्स निकलेंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हमारे मन में कुछ भी आइडिया आता है, ऑफिस में अगर हम अपने बॉस के आगे रखते हैं या परिवार में किसी के भी सामने रखते हैं और वो उसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम उनको 3 डे एज एन एक्सपेरिमेंट के रूप में ले सकते हैं। हम उन्हें ऐसा बोल सकते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं।
1: ओके,
0: अगर सही निकला, अगर उसका आउटकम पॉजिटिव हुआ और सबको पसंद आता है तो सब फॉलो करेंगे, नहीं तो हम कुछ और सोचेंगे
1: जी।
0: उसका अल्टरनेट कुछ सोचेंगे क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल रिजिड अप्रोच भी फॉलो नहीं करना है कि मेरा ही सुना जाए, मेरा ही माना जाए। वो कई बार क्या होता है, वातावरण को और ज्यादा खराब कर देता है
1: जी।
0: तो रैदर देन रिजिडिटी, मैं ही ठीक हूँ, मेरा ही आइडिया ठीक है, सी इनोवेशन के लिए हमें शेयर करना है
1: जी।
0: शेयर करके आपस में सबके आइडियाज ले रहे हैं, सबकी राय सलाह करके किसी भी एक आइडिया को, चाहे वो मेरा हो या किसी और का आइडिया हो, किसी भी आइडिया को हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ता सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर उसमें हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो जो सबका रेजिस्टेंस है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो भी एक दिन सबको एक्सेप्ट करेंगे
1: जी। तो अगर बार बार भी रिजेक्शन मिले तो भी हम इस चीज को अपना सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 3 दिन के लिए आप
0: जी जरूर
1: इस प्रकार से
0: सब एक्सपेरिमेंट करके देखें। बिकॉज कहते हैं ना, जो सामने दिखता है वो बोलता है। हम एक आइडिया दे रहे हैं, वो हमारी एक सोच है, हमारा एक आइडिया, बट जब तक हम उसको प्रैक्टिकल नहीं करते, प्रैक्टिकल ट्राई नहीं करते, तब तक लोगों को एक प्रमाण भी नहीं मिलता है
1: जी। तो ऐसे उदास होके छोड़ नहीं देना है लेकिन ट्राई करते रहना है। कई बार हम फीलिंग्स में आ जाते हैं कि मुझे रिजेक्शन मिला, फिर हम नई तरीके से सोचना छोड़ भी देते हैं कि मेरे आइडियाज तो कभी कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं क्यों सोचूं।
0: एक आइडिया नहीं तो दूसरा आइडिया, इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से, बट हिम्मत नहीं हारनी है।
1: हिम्मत नहीं हारनी, अपनी इनोवेशन के जो तरीके हैं, क्रिएटिव सोच है, उसे जारी रखनी है जी। तो पुरानी समस्या और नई सोच, क्या आप कोई सामान्य जीवन की समस्या लेकर के ये हमें एग्जाम्पल दे करके बता सकते हैं कि नई सोच से उसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है, कोई पुरानी समस्या है तो?
0: पुरानी समस्या, अभी तो लोगों की सबकी पुरानी समस्याएं ही चल रही हैं और सभी फोकस करते हैं समस्या पर ही, प्रॉब्लम पर ही फोकस करते हैं। लेकिन अगर हम उसी समस्या को दृष्टिकोण अपना बदल ले देखने का, जैसे वो एग्जांपल बताते हैं ना, दो व्यक्ति साइड बाय साइड खड़े होते हैं, बीच में 6 लिखा होता है, एक साइड से 6 है बट दूसरी साइड से वो 9 पढ़ने में आता है।
1: राइट,
0: जबकि सिचुएशन सेम है लेकिन दोनों अलग अलग नजरिए से उसको देखते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से। तो पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हुए अगर हम वही समस्या को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखते हैं तो मुझे लगता है वो समस्या रहेगी नहीं
1: जी।
0: बिकॉज वॉट इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज हमारा दृष्टिकोण, हमारा एक कमजोर दृष्टिकोण जो हम उसको नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं
1: जी,
0: तो वो हमें समस्या का रूप दिखती है। बट अगर वही हम उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल दें, पॉजिटिवली ले
1: जी,
0: तो वो समस्या है ही नहीं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, कई ऐसे कल्चर वाले घर होते हैं जिसमें वो पसंद नहीं करते कि घर की बहू बेटियां बाहर जाएं और कमाएं
1: जी,
0: जॉब करें, बहुत रिलक्टेंट होते हैं, तो उनकी वही पुरानी सोच है
1: जी
0: कि क्यों जाएं। लेकिन अगर हम अपनी सोच बदले जमाने के हिसाब से या आज की डिमांड के हिसाब से या सामने वाले की फीलिंग्स, इमोशंस और उनकी रिक्वायरमेंट्स को ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए,

0: प्रॉब्लम्स को अगर हम समझें तो शायद वो प्रॉब्लम जो आज कई घरों में इसी बात को लेकर के रोज झगड़े होते होंगे
1: जी,
0: सिर्फ एक दृष्टिकोण बदलने से हमेशा के लिए वो समस्या समाप्त हो सकती है
1: जी। तो इसीलिए पुराने तौर तरीके नहीं लेकिन नए तरीके से
0: सिचुएशन वही रहेगी, सिर्फ हमने उसको देखने का, हमने उसको सोचने का नजरिया बदल लिया है
1: जी। जैसे लड़कियों को खेल में आगे नहीं आने दिया जाता था, अब आने दिया गया है। और इसके साथ साथ इंडिया ने ये भी किया कि क्रिकेट में लड़के और लड़कियों की बराबर से सैलरी देने लगे हैं।
0: इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है जहां पे बिल्कुल जेंडर इनइक्वालिटी।
1: यस, तो जब मन तनाव में हो या फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो अपने ऊपर, तब क्रिएटिविटी और नवीन सोच कम हो जाती है ना, सोच नहीं पाते हैं। तो फिर ऐसे समय में माइंड को फ्रेश करने के लिए प्रैक्टिकल तरीका आप क्या अपनाते हो?
0: एक्चुअली इस क्वेश्चन में ही आपका जवाब है। आपने बोला तनाव से क्रिएटिविटी कम हो जाती है। इसको अगर आप दूसरे नजरिए से देखें, अपनी सोच बदल दें, तनाव से क्रिएटिविटी कम नहीं होती, क्रिएटिविटी ना होने से तनाव बढ़ जाता है।
1: राइट।
0: कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, लैक ऑफ समथिंग यूनिकनेस है। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ नवीन नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से हमको स्ट्रेस हो रहा है
1: जी।
0: वही पुराने पैटर्न्स के बीच में हम बंधे हुए हैं या वही पुराने पैटर्न्स हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हम उस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्ट्रेस इज नॉट द कॉज ऑफ लैक ऑफ क्रिएटिविटी
1: जी,
0: है ना। एब्सेंस ऑफ क्रिएटिविटी इज द रीजन फॉर स्ट्रेस।
1: राइट जी।
0: तो स्ट्रेस को अगर दूर करना है तो कुछ अलग सोचें, कुछ अलग करें, डेली रूटीन पैटर्न से बाहर निकल के सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, ताकि स्ट्रेस आने की मार्जिन ही नहीं रहे। अपने को इतना नवीन कार्यों में बिजी रख ले कि कुछ तो नया करना है, कुछ तो वो अंदर से एक ईगरनेस होनी चाहिए, एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम कुछ नया करें। चलो आज क्या करें खाली बैठे हैं तो
1: जी।
0: और ऐसा नहीं है कि सीखने को कुछ है नहीं, बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ नया करने को है, बहुत कुछ जानने को है। तो अगर हम अपने को, अपने मन को इन सब में बिजी रखेंगे तो स्ट्रेस का तो सवाल ही नहीं उठता है। स्ट्रेस भी तभी आता है जब हम खाली हैं।
1: खाली हैं तो इसलिए अपने मन को क्रिएटिविटी में लगाना है,
0: क्रिएटिविटी में लगाना है, तो स्ट्रेस का मार्जिन ही नहीं रहेगा, नेगेटिव वेस्ट का मार्जिन ही नहीं रहेगा
1: जी। जैसे एग्जांपल है कि आजकल रिलेशनशिप इश्यूज बहुत हैं, तो वो चाहकर भी अपने मन को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं कर पा रहे। घरेलू महिलाओं के बारे में बात करें, किसी महिला ने अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए जॉब छोड़ दी है, क्रिएटिविटी छोड़ दी है, लेकिन उन्हीं संबंधों में ही रस नहीं आ रहा है, तो क्या करें?
0: हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरों को सैटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। जैसे आपने बोला अपने परिवार वालों की खातिर नौकरी छोड़ दी कि वो संतुष्ट हो जाए
1: जी,
0: है ना। लेकिन खुद के लिए हमने क्या किया? हम कुछ ऐसा करें और करके दिखाएं। क्या है, जैसे हमने पहले अभी बात किया कि सबको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए
1: जी,
0: प्रूफ चाहिए, हर चीज का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, तो क्यों ना हम खुद को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि दूसरे भी हमसे इंस्पायर हो
1: जी।
0: इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करें, बट हम अपने जीवन के अंदर कार्य ऐसे करें, कुछ ऐसा काम करें कि दूसरे हमसे इंस्पायर होकर के वो सीखें।
1: तो इस तरीके से हम नया सोच के दृष्टिकोण का परिवर्तन करके हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन,
0: हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है
1: जी। तो इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या कनेक्शन है?
0: मैं समझती हूँ अगर फ्लेक्सिबल व्यक्ति नहीं है तो वो इनोवेशन कर नहीं सकता, वो रिजिडिटी है, वो जिद है। अगर कोई व्यक्ति इनोवेटिव आइडिया लेकर के आता है, सपोज अगर कोई एम्प्लॉय अपने बॉस के पास जाता है कि ये प्रोसेस चेंज करना है
1: जी,
0: तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर उसे लगता है कि मेरा ही तरीका सही है, और अगर उसका बॉस बोलता है हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे
1: जी,
0: और वो उसको मानने को तैयार नहीं है, फ्लेक्सिबल ही नहीं है, तो वो कभी इनोवेशन ला नहीं सकता
1: जी।
0: तो आपस में दोनों बहुत कनेक्टेड है। जितना हम फ्लेक्सिबल होंगे, जितना अपने को हम मोल्ड कर सकेंगे, उतना हम इनोवेटिव होंगे, उतना हम क्रिएटिव होंगे।
1: तो मोल्ड करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे जो भी कह रहे हैं उसमें हां जी करना है, लेकिन जहां पे ना बोलना है
0: जहां पर ना, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हमें ओपन रखने चाहिए
1: जी।
0: ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन लेकर के आगे बढ़ रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये
1: जी।
0: तो लेट्स बी ओपन टू आइडियाज, ये नहीं कि सिर्फ मेरा ही माना जाए। आई शुड नॉट ओनली बी अ गुड स्पीकर या गुड डिक्टेटर, आई शुड ऑल्सो बी अ गुड लिसनर। मैं दूसरों के आइडियाज भी एक्सेप्ट करूँ, उनको भी स्वीकार करूँ, उनको भी समझूं, दूसरों को भी मौका दूं। सी, शेयर करना इज समथिंग डिफरेंट, हम शेयर कर रहे हैं, अपने आइडियाज, बट सबके आइडियाज को सम्मान देते हुए अगर हम फ्लेक्सिबल रहते हैं आपस में
1: जी,
0: तो वो एक टीम का बहुत एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा बनता है, वर्कप्लेस का एनवायरनमेंट भी अच्छा बनता है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड भी रहता है, प्लस हम दूसरे के आइडियाज जब एक्सेप्ट करते हैं तो हमें भी कुछ सीखने को मिलता है।
1: बिल्कुल, तो इस प्रकार से हमें फ्लेक्सिबल,
0: बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना चाहिए हमें
1: जी। तो फ्लेक्सिबल व्यक्ति के लिए कोई अगर सोल्यूशन ढूंढना होता है तो आसान हो जाता है फिर।
0: बिल्कुल, फ्लेक्सिबल के लिए सोल्यूशन बहुत इजी है, वो क्योंकि एक चीज को पकड़ के कभी नहीं बैठा है,
1: he
0: is always open।
1: तो इसीलिए आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आप खुद भी कुछ नए नए सीख सकते हैं,
0: खुद भी हम संतुष्ट रहेंगे और दूसरों से हमें सीखने को भी बहुत मिलेगा।
1: यस, ओके। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ तो वो क्या अपनी इनोवेटिव थिंकिंग को विकसित कर सकता है, क्रिएटिव बन सकता है?
0: देखिए, क्रिएटिविटी तो हर एक में है, हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता है, कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, तभी हम सब अलग अलग हैं
1: जी।
0: तो मेरी क्रिएटिविटी किस में है
1: वो मुझे
0: ढूंढना है कि मैं कहाँ क्रिएटिव हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है
1: जी।
0: राइट, एक मछली है वो पानी में है, वो उड़ नहीं सकती
1: जी,
0: बट एक बर्ड है वो पानी में तैर नहीं सकता बट वो उड़ सकता है। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं एंड विच आर यूनिक इन देयर ओन वेज। हम ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे से कोई कम है
1: जी,
0: दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं, बेस्ट हैं। तो सिमिलरली हर मनुष्य, हर आत्मा जो है अपने आप में बेस्ट है, वो मेरे अंदर बेस्ट क्या है वो मुझे खुद ही आइडेंटिफाई करना है।
1: ओके,
0: और वो आइडेंटिफाई करने का हमें मार्जिन चाहिए, जैसे हमने पहले भी बात की कि साइलेंस इज द मदर ऑफ इनोवेशन। तो हमें अपने लिए टाइम देना पड़ेगा, खुद से बात करनी पड़ेगी, अपनी विशेषताओं को जानना पड़ेगा, और ना सिर्फ जानना पड़ेगा परंतु उन विशेषताओं को मैं कहाँ कहाँ यूज करूँ
1: जी
0: वो पता होना चाहिए, और कैसे यूज करें अपनी विशेषताओं को।
1: ओके, तो जो माँ बाप सुन रहे हैं आप उन्हें यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे के अंदर ये क्रिएटिविटी ना देखे कि वो कितने मार्क्स ला रहा है, वो प्रेशर ना डाले, उसकी क्रिएटिविटी में भी दूसरी जगह पे खेल कूद में या संगीत
0: जी,
1: में अलग फील्ड में,
0: अलग फील्ड में, क्योंकि हर एक की अपनी विशेषता है। तो हम कभी भी किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते कि आपको यही काम करना है,
1: इतने मार्क्स लाने,
0: इतने मार्क्स जी, प्रेशर नहीं डाले, कॉम्पिटिशन में ज्यादा नहीं जाए या कंपैरिजंस में नहीं जाए। कई बार कैसे होता है, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं कि वो देखो स्पोर्ट्स में इतना नंबर वन है, तुम क्यों नहीं क्रिकेट खेलते हो या तुम क्यों नहीं फुटबॉल खेलते हो, वो चैंपियनशिप जीत करके ला रहा है, वो यहाँ जा रहा है। हो सकता है आपका बच्चा पेंटिंग में बहुत माहिर हो सकता है आपका बच्चा डांसिंग में बहुत माहिर हो, सिंगिंग में बहुत माहिर हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटीज।
1: तो आप उसे ढूंढे,
0: उसे ढूंढे और उसी के ऊपर वर्क करके अपनी क्वालिटी को ग्रो करें, उसी में ही कुछ इनोवेटिव करें।
1: ओके जी, बिल्कुल। और जो ये सोचते हैं मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, ये नेगेटिव थॉट्स को,
0: ये नेगेटिव थॉट्स हैं। अपने लिए समय दें और समय दे करके हमारे अंदर क्या हीरे छुपे हुए हैं उसको तराशें
1: जी। आपने एक ग्रेटिट्यूड वाली बात कही थी, तो क्या अपने अंदर की अच्छाइयों के प्रति अगर हम कृतज्ञ रहते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी?
0: बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि हम जिस पे फोकस करते हैं तो वो चीज ऑटोमेटिकली बढ़ती है,
1: चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव,
0: चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर हम हमेशा नेगेटिव चश्मा पहन रखा है, दूसरों की बुराइयां देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर आ जाती हैं। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो हम जिस संग में, संकल्पों से भी, नॉट ओनली ह्यूमन हमारा संग है, हम संकल्पों से भी हम जिस संग में रहते हैं तो वो हमारे, हम उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम पॉजिटिविटी के संग में रहेंगे, अपने अंदर पॉजिटिव, दूसरों के अंदर विशेषता देखेंगे, तो हम उस चीज को अपने अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं
1: जी। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जैसा चश्मा हम पहनेंगे वैसे दिखाई देगा दुनिया
0: जी।
1: तो पॉजिटिव देखने की कोशिश करें। तो बच्चों और युवाओं में इनोवेशन की शक्ति विकसित करने के लिए पेरेंट्स को और टीचर्स को किस तरह से वातावरण को बनाना है, उनके एनवायरमेंट कैसे रखना है?
0: सी, एनवायरमेंट को बदलना हमारे ही हाथ में है। कई बार हम बोलते हैं कि हमें ऐसा वातावरण नहीं मिल रहा है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हम डेवलप नहीं कर पा रहे, हमारा नेगेटिव वातावरण है, या हमें पेरेंट्स या टीचर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं। तो व्हाट आई फील इज कि वातावरण को डेवलप करना वो अपने ही हाथ में है
1: जी।
0: और जहाँ तक ये बच्चों और युवाओं की बात है, डेफिनेटली इसमें पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कहते हैं जैसे संस्कार हम बच्चों को पहले से देते हैं तो वो संस्कार भी उनमें धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं
1: जी।
0: जैसे हमने घर में अपने बचपन से सीखा कि सुबह जैसे ही हमारी आँख खुलती थी तो वो मंदिर की आरतियाँ, घर में ही एक पूजा का स्थान था उसमें ही वो पेरेंट्स आरती कर रहे होते थे, घंटियां बज रही होती थी, एक बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स होती थी घर की. तो बचपन से ही वो संस्कार हमारे अंदर है कि शाम को मंदिर जाना है, और अगर सामने प्लेट आती है खाने की तो पहले परमात्मा को याद करना है, थैंक्स करना है. तो छोटी छोटी जो बातें हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं अपने बच्चों के अंदर, उनको ये चीजें सिखाएं
1: जी.
0: ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं, घर के अंदर आ रहे हैं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, हर बात पेरेंट्स को बतानी है, परमात्मा का धन्यवाद करना है, या सुबह उठ के ही घर में छोटा सा पूजा का स्थान बना सकते हैं जिससे उनके आदत पड़े, उनके संस्कार पड़े, कि वो डेली कम से कम एक बार तो परमात्मा के आगे जाकर के नतमस्तक हो.
1: राइट.
0: ताकि बड़े होकर वो भी अपने बच्चों को वो संस्कार दे सके.
1: जी.
0: तो बचपन से अगर हमारे अंदर ऐसे संस्कार है, सिमिलरली आज स्कूल में भी क्यों होता है, स्कूल में भी है, स्टार्ट ही स्कूल प्रेयर से होता है, असेंबली होती है, प्रेयर होता है, कि तो कुछ बेसिक ये संस्कार है जो सबके अंदर होने चाहिए. और स्कूल्स में तो आजकल बहुत ज्यादा इनोवेशन पे फोकस किया जा रहा है कि बच्चा जो है एक नई लर्निंग करे, हर दिन हर पल उसका लर्निंग में बीते.
1: जी. प्रोजेक्ट्स बहुत सारे,
0: इवन कुछ भी आप करते हो तो हर चीज में उनकी लर्निंग है, इन एवरीथिंग. इवन स्कूल्स में तो कई स्कूल्स ऐसे मैंने सुना है कि उनका भोजन भी आता है तो उसमें भी उनको कलर सिखाए जाते हैं कि आपको ग्रीन कलर की वेजिटेबल लानी है पूरी क्लास को. तो दिस इज हाउ दे आर लर्निंग कलर्स.
1: जी.
0: बिल्कुल. जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, प्री नर्सरी के बच्चे होते हैं, तो उनके खाने में भी उनको एक लर्निंग मिल रही है, यू नो. तो ऐसे हर चीज में हम इनोवेशन कर सकते हैं. कई बार क्या होता है, घर की महिलाएं भी हम देखते हैं काम करते करते बोरिंग तरीके से काम कर रही होंगी, कपड़े प्रेस कर रही है या बर्तन मांज रही है, तो क्यों ना हम ये बदलाव लाएं घर में भजन चलाते हुए, है ना, एक शाम का नुमा, शाम का जो वातावरण है, एक भजनों से, कीर्तन से, आरती से शुरुआत करें सुबह और शाम की, ताकि घर का वातावरण बदले. या हम कुछ काम भी कर रहे हैं तो गीत सुनते सुनते हम काम करें, उसको एंजॉय करें. जो भी हम काम कर रहे हैं उसको एक बोरिंग तरीके से नहीं करें. लेट्स चेंज.
1: जी बिल्कुल. नए तरीका अपनाते हुए करेंगे तो हम बोर नहीं होंगे,
0: हम बोर नहीं होंगे
1: चीज़ को, और फिर इरिटेशन भी नहीं होंगे.
0: वो माइंड को भी फ्रेश रखता है हमेशा, और काम कैसे चुटकियों में हो जाता है मालूम भी नहीं पड़ता है.
1: राइट. तो ये आप नए नए तरीका ढूंढिए, और हमें आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि क्या नए तरीके से आज इस हफ्ते आपने काम किया, आज से शुरू किया आपने. तो क्या जो स्पिरिचुअलिटी है, ब्रह्मा कुमारी इसके साथ आप जुड़े हुए हैं, तो हमारे इनोवेटिव थिंकिंग को बढ़ा सकती है?
0: बिल्कुल 100%. क्योंकि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी फोकसेस ऑन स्पिरिट.
1: जी.
0: स्पिरिट इज
1: हमारी आत्मा.
0: हु एम आई. जैसे जानकी दादी भी बोलती थी, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है. फोकस कहाँ है, मुझे क्या करना है, नॉट ऑन तुम क्या कर रहे हो या दूसरे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, नहीं, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, पूरा शिफ्ट खुद के ऊपर है.
1: जी.
0: तो जब हम पूरा फोकस और पूरा शिफ्ट खुद के ऊपर अटेंशन देते हैं, सबसे पहली बात, हमें दूसरों के लिए, दूसरों को देखने का मार्जिन ही खत्म. हम दूसरों को देख ही नहीं रहे, दूसरों की बुराइयों पर फोकस कर ही नहीं रहे हैं.
1: जी.
0: और अगर हमारा खुद पे फोकस है तो मेरी क्या कमियां हैं उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरी क्या क्वालिटीज है उसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, और कैसे दिन प्रतिदिन हम कुछ नया जीवन में कर सकते हैं.
1: जी.
0: मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में ही सब कुछ समाया हुआ है. सारा इनोवेशन इसी में समाया हुआ है कि मुझे क्या करना है, मैं हूँ कौन और मुझे करना क्या है. बिकॉज हमने पहले भी बात की कि गोल सेट.
1: जी.
0: अगर हमने गोल सेट कर लिया जीवन के अंदर तो हमारा हर दिन इनोवेटिव है.
1: तो ये पहले अपने आप से पूछना,
0: ये पहले मुझे क्या करना है. राइट.
1: जी. जैसे राजयोग करते हैं आप, तो उसे स्वयं को शांत करके, मन को स्थिर करके, तो कैसे आप नए नए इनोवेटिव तरीका निकालते हैं? क्या जीवन के हर सवाल का जवाब भी मिल जाता है?
0: जी बिल्कुल. जब भी कुछ ऐसा लगता है कि मन बहुत भारी है या मन में कुछ उथल पुथल चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन रूम में जाते हैं 5 मिनट के लिए. कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, हर चीज का सोल्यूशन साइलेंस में है.
1: जी.
0: साइलेंस में सबसे पहली बात तो हम अपने पुराने जो हमारे बहुत संकल्प चल रहे हैं, वेस्ट थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स, उस पे फुल स्टॉप लगता है. मेडिटेशन स्टार्ट्स विद अ फुल स्टॉप एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. तो फुल स्टॉप, जब हम पुराने जो हमारे उथल पुथल वाले संकल्प हैं उनको हम फुल स्टॉप लगाते हैं, एक माइंड एकाग्र होता है. फिर मुझे क्या करना है, क्लैरिटी आती है. क्योंकि एक शांत मन ही, एक स्थिर मन ही अच्छा सोच सकता है.
1: जी.
0: एक सही डायरेक्शन में जा सकता है. अगर मन में ऑलरेडी बहुत सारे सवाल है, हम कुछ अच्छा सोच नहीं सकते, कुछ क्लैरिटी नहीं आ सकती. तो मेडिटेशन इसमें बहुत हेल्प करता है. चाहे हम बीच बीच में भी एक घंटे के लिए हम ट्रैफिक कंट्रोल करें, अपने सब संकल्पों को स्टॉप करके, उससे क्या है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है.
1: जी,
0: तो अपने मन को स्टॉप करके, क्लियर करके, पुरानी सब बातों को फुल स्टॉप लगाकर, मुझे क्या करना है,
1: प्रेजेंट में क्या करना,
0: प्रेजेंट में क्या करना है. जो हुआ सो हुआ. ऑफिस में भी कई बार ऐसा होता है ना, गलतियां हो गई, बॉस ने डांट दिया, माइंड इतना अपसेट है, अभी डांट खाकर आए ऑफिस में, केबिन से, बॉस के केबिन से भी डांट खाकर अपनी सीट पर आए, मन हैवी है, फुल स्टॉप. अभी जो होना था हो गया,
1: गलती
0: गिल्ट में नहीं जाए, गलती तो हो गई. अभी मैं पास्ट को बदल नहीं सकता, व्हाट नेक्स्ट,
1: जी
0: व्हाट नेक्स्ट, सॉल्यूशन क्या है, तो उस पे अगर हम फोकस करें तो दिस वे मेडिटेशन जो है हमारी जो मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, हमें क्लैरिटी लाता है और हमें एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देता है.
1: जी बिल्कुल. तो ये मेडिटेशन आप सीखें और करें. अपने नज़दीकी जो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर है वहाँ पर भी आप सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं.
0: जी ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, अभी तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं
1: जिससे आप सीख सकते हैं. अगर घर में हर दिन होने वाला कोई काम बोरिंग लगता है, जैसे आपने कहा कि हम भजन वगैरह चला सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है बहुत समय लेता है, तो उसे कैसे बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
0: कुछ भी काम अगर समय लेता है, हमें लगता है कि हमारा टाइम एनर्जी उसमें ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो हम उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं.
1: जी.
0: कि इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, या इस काम को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, या अगर हम जल्दी करते हैं, फॉर एग्जांपल कई लोगों का एक माइंडसेट है.
1: जी.
0: मैं उसमें सहमत, मतलब मेरी बात से सहमत भी हो सकते, नहीं भी सहमत हो सकते. मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता रही हूँ कि जैसे कई सोचते हैं कि कपड़े हाथ से जो धोते हैं तो ही साफ होते हैं, मशीन से धोते हैं साफ नहीं होते. एक माइंडसेट बना हुआ है और सही भी हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, हो सकता है. लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी टाइम का शॉर्टेज है, वो अगर वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोकर और वो टाइम किसी बेटर चीज के लिए यूटिलाइज करता है,
1: जी,
0: तो आई थिंक वो एक ज्यादा बेटर आइडिया है, रादर देन फोकसिंग ऑन पुरानी मेंटालिटी कि यही हम इसी चीज को सही मानते चले. कई बार क्या है, हमें टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारे गैजेट्स हैं, उनका भी सहारा लेना पड़ता है.
1: जी.
0: या अगर कोई ये सोच के चले, नहीं फोन तो जो है बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना,
1: खराब चीज है
0: फोन, अगर हम इस माइंडसेट के साथ भी चलते हैं, बिकॉज हमने पहले भी बात की फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हम गैजेट्स यूज करते हैं और वो हमें कुछ बेहतर बना रहे हैं, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है या हमारा काम आसान हो रहा है, तो हम उसे इनोवेशन के लिए हम जरूर उसका प्रयोग करें.
1: जी बिल्कुल. तो इस तरीके से आप अपने टाइम बचा सकते हैं
0: और
1: हर बार सोचे कि किस तरीके से आप अपना टाइम बचाए, नए तरीके से.
0: जी जी
1: जी. तो अगर आज हमारे श्रोता अपनी जिंदगी की किसी एक पुरानी समस्या को दूर करना चाह रहे हैं और उसे चुन करके नए नजरिए से देखना चाहते हैं, तो आप ऐसे कौन सा 3-स्टेप इनोवेशन फॉर्मूला बताएंगे उनको प्रैक्टिकली करने के लिए?
0: देखिए, अभी तक जो हमने बात की तो उन सभी बातों का जो सार, मैं आपको 3 बातों में बताती हूँ. पहली बात, जो हुआ सो हुआ.
1: जी.
0: पास्ट इज पास्ट. फोकस ऑन द फ्यूचर. फोकस ऑन प्रेजेंट. जो हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा. हमें फ्यूचर पे भी उतना फोकस नहीं करना है जितना हमें प्रेजेंट पे फोकस करना है. राइट.
1: जी.
0: सेकेंड, हम अपना फोकस दूसरों की बजाय खुद पे शिफ्ट करें.
1: ओके. अपने ऊपर,
0: दूसरों को देखने के बजाय कि वो क्या कर रहा है, हम खुद पे अपना फोकस शिफ्ट करें.
1: जी.
0: कि मुझे क्या करना है, मैं खुद को देखूं, खुद की विशेषताओं को, खुद की कमी कमजोरियों में कैसे दूर कर सकता हूं, फोकस हम खुद पे शिफ्ट करें. एंड द थर्ड इज, हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने.
1: ओके. जी. तो वर्तमान को देखें, फिर अपने ऊपर देखें
0: और बार बार बार बार प्रॉब्लम्स को गाने की बजाय
1: सॉल्यूशन,
0: उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम उस पे फोकस करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं समझती हूँ अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं. अगर ये अपने जीवन की हम धारणाएं बना लें तो हम खुद अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज आ गया है. ये 3 बातें अगर हम ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते का सिर्फ एक्सपेरिमेंट करें अपने ऊपर, 1 हफ्ते का प्रयोग करें प्रैक्टिकल, तो हमें समझ में आएगा और उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हम देखेंगे कि मेरे अंदर कितना पॉजिटिव चेंज आया है.
1: जी बिल्कुल. तो अभी तो वक्त हो गया है कि हम यहाँ से अलविदा कहें, लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप, बोनस टिप्स देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को?
0: बोनस टिप इज जस्ट लाइक कि सबसे पहली बात, चेंज से पहले आता है रियलाइजेशन.
1: रियलाइजेशन, उसके लिए खुद के साथ बैठना पड़ेगा.
0: जी, जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे कि व्हाई चेंज इज इम्पोर्टेंट, व्हाई चेंज इज नीडेड. कई कहते हैं ना, जैसा चल रहा है चलने दो, क्यों नया करना है?
1: जी,
0: व्हाई इनोवेटिव, क्यों करें हम नया, क्यों नवीनता लाएं, जैसा चल रहा है हम संतुष्ट हैं. डोंट बी सैटिस्फाइड, ट्राई समथिंग न्यू. रुक नहीं जाना है हमें अपने जीवन में कि हाँ हम तो संतुष्ट हैं, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है.
1: जी
0: नो, इस सोच को भी बदले और एक नई सोच लाएं कि कुछ नया करना है. और रियलाइज करें कि जो भी हम नया करेंगे कि उससे हमें प्राप्ति क्या है.
1: जी,
0: उसके कितने बेटर आउटकम्स हो सकते हैं, तब हमें बाद में रियलाइज होगा कि हमने पहले क्यों नहीं किया.
1: जी, चाहे घरेलू महिला भी है, घर में रहते हुए बच्चों को पढ़ाने के तरीका पुराने काम नहीं आ रहा है तो नए तरीका ढूंढें.
0: जी,
1: या आप जॉब में जा रहे हैं, बोरिंग लग रहा है आपको, तो क्या नए.
0: जी, बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर, ऑफिस से लेकर, परिवार से लेकर, हर जगह हम कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं और करना भी चाहिए.
1: करना भी चाहिए. तो आप अपनी योगी लाइफ में भी नया करते होंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल. हम अपनी डे टू डे लाइफ में जब हम मेडिटेशन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक वही तरीके से, हम बहुत अलग अलग तरीके से उसको एंजॉय करते हुए. क्योंकि अगर हम नया नहीं करेंगे तो हम बोर हो जाएंगे. तो इसलिए नवीनता जरूरी है कि अपनी जिंदगी से हम बोर ना हो. हमारे मुंह से कभी ये शब्द ना निकले कि हम तो बोर हो गए.
1: जी,
0: आज तो बड़ा बोरिंग दिन है, क्या करें. वो हम मौका ही नहीं आने दें अपने जीवन के अंदर.
1: जी, सेवा वही होती है, रूटीन वही होती है,
0: रूटीन वही होता है, लेकिन तरीका अलग होता है.
1: तरीका अलग होता है. जी बिल्कुल. तो दोस्तों, कभी आप शांतिवन परिसर में आए तो ज़रूर विजिट करिएगा यहाँ के ऑफिसेस में. तो आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग तरीके से यहाँ पर कार्य भी करते हैं, और राजयोग के साथ, साधना के साथ, मेडिटेशन के साथ. तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं 94-14-15-14-15 इस नंबर पर मैसेज करके, या फिर कॉल या व्हाट्सएप करके. तो रुचिका दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए.
0: बहुत बहुत थैंक यू.
1: तो यहीं पर रुकते हैं, कार्यक्रम जीवन रोशनी है. अगला कार्यक्रम आप जरूर सुनिएगा, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में. तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. रेडियो मधुबन 107.8 FM. नमस्ते.

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष बनारस से बीके तापोशी जी हैं, जिनसे हम लोग बात करेंगे और निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लगेगा जब उनका एक्सपीरियंस आप सुनेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है बीके तापोशी बहन, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया है। आप सभी कैसे हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी अच्छे हैं और आपको सुनने का मौका मिल रहा है हमें, और भी अच्छा लग रहा है। और चिराग यादव जी ने याद भेजा है, हेलो दीदी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। चलिए, आपका इंतजार खत्म हो गया है और हम लोग अब बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जिस तीर्थ स्थल पे हैं, भारत का एक बहुत ही मुख्य जो है आध्यात्मिक स्थल जिसको कहा था बनारस, सुन के ही अच्छा लगता है, खुशी होती है, गंगा का किनारा और वो सारी चीजें जो हैं याद आती हैं। और बनारस अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत शहर भी है और वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पे एक आशा का केंद्र भी है। हर व्यक्ति चाहेगा कि एक बार जरूर बनारस गंगा स्नान करके आ जाए। तो आप उस नगरी से बिलोंग करते हैं और वहां पर रहकर जो आध्यात्मिक जो सेवाएं हैं वो काफी कर रहे हैं आप और दीदी मिलकर, तो निश्चित तौर पे हमें बहुत अच्छा लगेगा आज आपको सुनकर। जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए, वहां पर किस तरह से आध्यात्मिक सेवा केंद्र आप चलाते हैं।
1: ओम शांति एंड सभी को गुड इवनिंग। और जैसा कि अभी आपने कहा कि बनारस जो है एक आध्यात्मिक नगरी है, एक्चुअली सच में यही है। बनारस कहे, काशी कहे या वाराणसी कहे, बहुत प्रचलित स्थान है क्योंकि ये साधु संन्यासी महंतों जगत गुरु शंकराचार्यों का मेन स्थान माना गया है। क्योंकि इसको काशी को कहा जाता है शिव की नगरी, लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए काशी में आते हैं, काशी के दर्शन करने के लिए। और अभी स्पेशल ये बन गया है कि जब से हमारे माननीय श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सुंदर काशी विश्वनाथ धाम बनाया, कॉरिडोर बनाया, तब से ये स्थान का महत्व तो पहले तो था लेकिन और ही ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारे भारत की संस्कृति या फिर हमारे भारत का इतिहास देखने तो काशी नगरी सुप्रसिद्ध है, आध्यात्म नगरी इसको कहा जाता है। और इस आध्यात्म केंद्र को, स्पिरिचुअल केंद्र को बरकरार रखने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से जीवन में खुशियों को कैसे बरकरार रखे, इस उद्देश्य से एक सुंदर सा जीवन मूल्यों पर बहुत सुंदर शामनाथ बनारस में म्यूजियम खोला गया है। और इस बनारस जोन की संचालिका हमारे परम आदरणीय बड़े दीदी, इसको हम बड़े प्यार से कहते हैं, उनका नाम आदरणीय सुरेंद्र दीदी जी है। अभी एक महीने पहले उनका भी सेशन चला था जो पश्चिम नेपाल और पूर्वांचल की संचालिका है, तो उनके ही नेतृत्व में ये सारा कारोबार चलता है और बहुत जगह से लोग देश विदेशों से इस म्यूजियम का अवलोकन करने भी आते हैं। तो ये सुंदर सा आध्यात्मिक नगरी को और स्पेशल बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। तो अभी जो मुझे कहा गया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंस तभी व्यक्ति शेयर करता है जब उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है, जब उसके जीवन में कुछ स्पेशल मोमेंट होता है और जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती है, तब वो एक्सपीरियंस शेयर करता है। और वो चाहता है कि जैसे मेरे साथ अच्छा हुआ या मेरे जीवन में कुछ बदलाव आए जिससे मेरे संबंध और मधुर हो गए, ऐसे संबंध मधुर औरों के भी हो, जीवन में परिवर्तन हो, इसलिए व्यक्ति एक्सपीरियंस को शेयर करता है। जब मैं इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आई, इससे जुड़ी, तो सबसे पहले मेरे फैमिली वाले जुड़े, मेरे फादर जुड़े। और जब मेरे फादर जुड़े और उनके अंदर बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ओरा पहले से ही था क्योंकि वो आरएसएस में जम्मू कश्मीर के संगठन मंत्री रह चुके थे, तो फादर को स्पिरिचुअल टच पहले से ही था। जब वो इस स्पिरिचुअल ज्ञान को, ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, तो लाइफ में उनके बहुत चेंजेस आ गए। गुस्सा ना के बराबर रह गया और फैमिली में कुछ कुछ ऊपर नीचे कलेश जो होते थे वो एकदम खत्म से होने लगे। माता जी में परिवर्तन आने लगा, तो जब माँ बाप का इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है तो बच्चे अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो फिर मैंने देखा कि मेरे फादर बहुत ही बोल्ड है और बहुत ही शांत एंड कूल नेचर के हैं, बहुत अच्छा लगता था। तो जब मुझे लाइफ में एग्जाम फोबिया हुआ, बिकॉज मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, मुझे एग्जाम फेयर और साथ साथ स्टेज फेयर बहुत ज्यादा होता था, और फादर की इच्छा थी कि मैं जैसे आरएसएस का सीनियर लीडर, मेरी बेटी भी एक अच्छी स्पीकर, एक अच्छी वक्ता बने, लोगों को फेस कर सके, अपनी बातों को रख सके। लेकिन मुझे ये विल पावर एकदम जीरो लेवल का था। मैं कभी स्टेज को फेस नहीं कर पाती थी और ना ही मैं कभी एग्जाम को फेस करने की कोशिश भी करती थी कि एग्जाम ना हो तो बेटर हो। वो अंदर इतना फेयर क्रिएट करता था जो हमारे अंदर का विल पावर डाउन करता था। और जैसे ही विल पावर डाउन होना शुरू होता है तो हमारे अंदर की जो क्वालिटीज है वो अपने आप गायब होना शुरू हो जाते। हम अपनी क्वालिटी को पहचान नहीं पाते कि एक्चुअली मेरी क्वालिटी क्या है विल पावर के डाउन होने के कारण। मेरे फादर ने कहा, कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन करो, ब्रह्मा कुमारी सेंटर को ज्वाइन करो, सिंपली मेडिटेशन सीखो। घर में छुट्टी का दिन था और मैं जस्ट 9th क्लास हाई स्कूल में ही जाने वाली थी। मैंने ब्रह्मा कुमारी सेंटर ज्वाइन किया और मेडिटेशन सीखा, और मेडिटेशन से मेरा मन अपने आप शांत, एकांत और साथ में कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना बढ़ने लगा कि जो बच्चा 4 घंटा पढ़ाई करता था लगातार और उसको खाली एक पेज याद होता था, और मैं सिर्फ आधे घंटे में किताबों को अच्छे से स्टडी कर लेती थी, मेरी याद करने की मेमोरी पावर जो थी या कंसंट्रेशन पावर थी वो एकदम पीक पॉइंट पे चली गई। मुझे अंदर खुशी होती थी कि मेरी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो गई है, मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग करने की क्षमता आ गई है। मुझे सब्जेक्ट में सबसे मैथ बहुत टफ लगता था कि मुझे तो मैथ्स नहीं पढ़ने हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मैथ से ग्रेजुएशन भी करूंगी, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। और मैथ्स को मैंने स्पिरिचुअल से जोड़ा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट को मैंने स्पिरिचुअल से टैली किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने क्या सोचा कि मैथ्स में जैसे सपोज करते हैं, एजम्पशन करते हैं, लेट इज सपोज दैट एक्स बराबर दिस, उसी प्रकार मैंने सोचा कि जैसे मैथ्स में सपोज करते हैं और वो प्रूफ हो जाता है, उसी प्रकार जब मैं ये सपोज करूं कि वी आर द सोल, वी आर द एनर्जी, तो वो सपोज करते हैं तो जो फील करते हैं वो प्रूफ हो जाता है। और हम सभी ने साइंस में ये पढ़ रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी, हम सभी ने साइंस में पढ़ा। फिर हमने एनालाइज किया कि मैंने जो पढ़ाई किया है ये स्पिरिचुअल प्योर साइंस है। जो ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है एनर्जी, दैट मीन्स इट्स नॉट ए एनर्जी को हमने हमेशा सुन के रखा है कि एनर्जी का मतलब क्या है, ऊर्जा, दैट मीन्स उसको ना जलाया जा सकता है, मारा जा सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, इट्स नॉट अ क्रिएट, नॉट अ डिस्ट्रॉय, इट्स ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मेरे को समझ में ये तो प्योर मैथमेटिक्स है स्पिरिचुअल। और जब मैंने स्पिरिचुअल को अपने लाइफ में उतारा, मेडिटेशन करना शुरू किया, मेरे संबंध परिवार में बहुत अच्छे बन गए, क्योंकि बाई नेचर मैं पहले थोड़ा सा गुस्से वाली थी, थोड़ा सा छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव हो जाती थी, क्योंकि फादर का स्कूल चलता था तो अपने आप को भी एक रॉब होता था कि मेरे फादर का स्कूल है, मेरी दादी का स्कूल है, कोई कैसे मेरे बेंच पे बैठ गया, है ना, तो थोड़ा सा ईगो होता था, थोड़ा गुस्सा होता था। लेकिन ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन करने के बाद मेरा नेचर इस कदर परिवर्तन हुआ कि मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा, इतना चेंजेस कैसे अपने जीवन में आपने लाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्रह्मा कुमारी में अपने जीवन को समर्पित करूंगी। आज मुझे 10 साल से ऊपर हो गए ब्रह्मा कुमारी बनारस जोनल जोन में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था। मैंने लाइफ में जब इतने चेंजेस आए, नेचर इतना इंस्टेंट चेंजेस आ गए, क्योंकि मैंने ब्रह्मा कुमारीज का मेडिटेशन करने के साथ साथ कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो किया। वो रूल रेगुलेशन ये था कि मैं स्टूडेंट लाइफ में तो थी, मोबाइल भी देखती थी, बाहर कॉलेज में भी पढ़ाई करती थी, सबके कॉन्टेक्ट में थी, लेकिन अंदर अंदर मेरी एक जर्नी चलती थी, वो स्पिरिचुअल जर्नी थी। अंदर अंदर मेरी कन्वर्सेशन चलती थी उस परमात्मा के साथ, मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे लाइफ में कुछ चेंजेस लाने ही है, ऐसे लाइफ नहीं चलेगा। स्पिरिचुअल के साथ साथ एक यूथ आइकन बनना है जो तो बहुत सारे युवाओं को सही डायरेक्शन की तरफ ले जाए, क्योंकि कॉलेज लाइफ में जब हमने हम सभी थे तो कई सारे बच्चे के ऐसे केसेस आते थे कि किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने थोड़े से नंबर कम हुए तो उसने अपने आप को एक खत्म कर लिया, या एग्जाम के कारण वो एग्जाम छोड़ के भाग गया, या कोई ड्रग्स ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, या गलत संगत में जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इस भारत का भविष्य क्या होगा। यूथ जो हमारे भारत की शान है, आन है, आज वो मिसगाइड हो रहा है। इनको सही दिशा दिखाने वाला एक यूथ ही चाहिए, उसके जैसा ही होगा तभी वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैंने लाइफ में डिसाइड किया कि मैं स्टडी करने के साथ साथ स्पिरिचुअल स्टडी भी कर रही हूँ, लाइफ में परिवर्तन भी आ रहा है, और मैं यही कोशिश करती हूँ सभी युवाओं को, यूथ्स को बताने की कि आप अपने लाइफ में कुछ विशेष करें, स्पेशल तो करें, लेकिन हम कभी दिशा विहीन हो जाते हैं। रीजन इज दैट कि हम स्पिरिचुअल नहीं बन। लाइफ के 3 क्वेश्चन होते हैं, IQ, AQ एंड SQ। IQ that means intelligent quotient, EQ that means emotional quotient, and third is that SQ that means spiritual quotient. So हमारे पास intelligence ही बहुत सारी है। Emotionally हम कई बार mistakes कर देते हैं, लेकिन जब हमारा spiritual quotient मजबूत रहता है तो हम अपनी IQ को सही दिशा में और spiritual quotient के साथ अपने emotional quotient को भी सही direction में use करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर energy है, उसको डायरेक्शन चाहिए। या तो वो गलत डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, अदरवाइज वो पॉजिटिव में मूव करेगी। तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी लाइफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव की तरफ ले जाना है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे कॉलेज लाइफ की मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। वो लोग मेरे को कहते हैं यू आर जस्ट आइडियल फॉर मी। मुझे बहुत खुशी होती है, जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो एज ए स्टूडेंट थी, है ना, लेकिन मैं जब स्पिरिचुअल फील्ड में आई तो लोग मेरे स्पीच को सुनकर, मेरे बातों को सुनकर लाइफ में कुछ परिवर्तन महसूस किया, अपने लाइफ को चेंज किया, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि यही मेरे जीवन की दुआओं को कमाने का सही तरीका है। क्योंकि तो जीवन में मैंने सभी ने पैसा तो कमाया, लेकिन दुआएं नहीं कमाया, और ये दुआ ही दवा का काम करता है। इसलिए कहा जाता है जहां दवा काम ना करे वहां दुआ काम करता है। तो एक्चुअली मेरे जीवन में भी ऐसा रहा, जब हमारी परम आदरणीय बड़ीदी जी हमारे सेंटर पे आए तो उन्होंने कहा कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, आपको क्या करना है। और उनको भगवान का संदेश ही कहते हैं। वो वतन में गई, भगवान के पास गई, और आते ही पूछा उन्होंने कि आपको लाइफ में क्या करना है। मैंने कहा कि अभी तो मैं जॉब की तैयारी कर रही हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे ये जॉब करना है, मैंने माइंड में बहुत सारी प्लानिंग किया। दीदी ने कहा नहीं, आपको एक यूथ आइकन बनना है, कुछ तो करना होगा ना लाइफ में। उन्होंने मुझे पावरफुल दृष्टि दिया, एक ब्लेसिंग दिया, और मैं इंस्टेंटली अपने लाइफ को समर्पित कर दी कि नहीं, मुझे तो ईश्वरीय सेवा में हाजिर होना है। मेरे मॉम डैड दोनों ही शॉकिंग होंगे कि ये क्या बोल रही है, और फ्रेंड सर्किल में भी किसी को पता नहीं था कि मैं ब्रह्मा कुमारीज में डिवोटी होने जा रही हूँ, समर्पित होने जा रही हूँ। कई लोग कहे अरे ये साधु सन्यासी बन गई, अरे ये तो घर बार छोड़ दी, लेकिन एक्चुअली आज लाइव है और आई थिंक मेरे फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे, और मैं कोई सन्यासी नहीं बनी हूँ, मैं कोई साधु नहीं बनी हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल आइकन कहे या यूथ आइकन बनी हूँ जो सबको सही दिशा दिखाने वाली हूँ। मैं भी जॉब कर रही हूँ, मैं ईश्वरीय जॉब कर रही हूँ, और सोशल सर्विस है, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट लेकर, वो पेशेंट कैसा होता है, फिजिकल पेशेंट, लेकिन आज फिजिकली जो बीमारी हो रही है ना, मेंटल से कनेक्टेड है, क्योंकि मन की बीमारी का इफेक्ट ही हमारे तन पे पड़ रहा है। आज सारे लोग टेंशन में अपनी लाइफ को जी रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे हैं, खुशी को भूल चुके हैं, लाफिंग क्लब ज्वाइन कर रहे हैं हंसने के लिए, खुशी खत्म हो गई है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप स्पिरिचुअल को अपनी लाइफ में ज्वाइन करते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही नहीं कि आप घर परिवार को छोड़ो, देश दुनिया को छोड़ो, बिल्कुल नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब अपने जीवन में परमात्मा को जोड़ो, दैट्स इट। अपने जीवन में परमात्मा को जोड़ो उसकी शक्तियों को महसूस करो और सिंपल अपने लिए टाइम दो। अपने नेचर को परिवर्तन करो, अपने आप को और खूबसूरत बनाओ स्पिरिचुअल पावर से, है ना। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत अच्छी सी मेथड है। हमने सबको सिखाया, सोच समझ के बोलो, सोच समझ के करो, सोच समझ के देखो, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया कि सोच समझ के सोचो कि ये बात सोचने लायक है, ये थॉट सोचने लायक है। तो स्पिरिचुअल यही सिखाता है कि हमारे थॉट की क्वालिटी क्या है। इसलिए कहा जाता है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को
0: जी
1: बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो मंजिल स्वयं नजर आएंगे। तो हमें
0: बहुत
1: अपनी स्पिरिचुअल डायरेक्शन को बदलना है, स्पिरिचुअल जगह को बदलना है कि हम जब स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारे थॉट में चेंजेस आते हैं। कई बार मेरे फ्रेंड सर्कल भी कहते हैं कि नहीं मेरे लाइफ में बहुत बुरा बुरा हो रहा है, मेरा लाइफ बहुत स्ट्रेस है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। एक्चुअली हम सभी से यही कहना चाह रहे हैं, बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसको आवाहन कर रहे हो, क्योंकि आप बुरा देख रहे हो, आप बुरा सुन रहे हो। मोबाइल में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं और साथ साथ बुरा बुरा बोलते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव हो। इज दिस पॉसिबल? आप बुरा देख रहे हो, बुरा ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपके साथ फिर नेगेटिव ही होगा। इसलिए नेगेटिव ना देखना है, कोशिश करना है कि जिससे मेरे मन को हार्मफुल हो। जैसे आपको डायबिटीज है तो आपके पास कितनी भी मिठाई क्यों ना हो जाए, आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, इतने हेल्थ कॉन्शियस है। उसी प्रकार हमारा मन भी ऐसा ही है, हमारे मन को नेगेटिव टीचे टच ना करें। तो आपके पास बहुत सारे वीडियोस होंगे, कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस होंगे, कुछ टॉक्सिक वीडियो होंगे जो आपके मन

0: अच्छा, तो हिमाचल से भी संतोष जी जुड़ गए हैं और भोपाल से हमारे एक मित्र जो है वो भी जुड़ गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। कैसे हैं आप आशीष जी?
1: बहुत
0: कैसे हैं?
1: बढ़िया। ओम
0: और मैं
1: शांति भाई
0: चाहूँगा
1: जी।
0: कि ओम शांति जी, ओम शांति। और आप बताइए अपने बारे में, आप कहाँ पर हैं इस वक्त?
1: मैं इस समय वैसे ग्वालियर में रहता हूँ
0: जी,
1: और मैं जॉब करता हूँ बामौर में,
0: अच्छा।
1: और मैं अभी जस्ट ऑफिस से आया ही हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात।
1: और मुझे श्याम भाई ने बोला सिंगरौली से कि आज लाइव आप गाने का चांस मिल सकता है आपको, तो मैंने सोचा चलो दो लाइन बाबा की सुना दूँ आप सभी को।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं चाहूंगा कि आप, दीदी आ गई हैं तो उनके स्वागत में एक छोटा सा गीत आप पेश ही कर।
1: तो बाबा कोई भी सुना सकते हैं? हेलो, ओम
0: जी
1: शांति।
0: बिल्कुल।
1: ओके।

0: ओम शांति।
1: ओम शांति। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी खुश हैं आपकी आवाज सुनकर। और रमेश काका अफ्रीका से लिख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इस बात में मेरे बहुत सारे भाई बहने जो हैं वो आपको याद कर रहे हैं, और कर्नल सोलंकी सर भी आ गए हैं, वो भी याद भेज रहे हैं आपको। तो आइए मैं फिर से आप सभी को जोड़ना चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम में। वापस बीके दीदी को आपसे जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहला तो सवाल ये है कि आजकल खुश रहना आसान है, लेकिन खुशी को बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं, खुश हो जाते हैं, या कुछ हमारा प्रमोशन हो जाता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, फिर वापस दुखी भी हो जाते हैं। तो वो जो खुशी है, कंटिन्यू कैसे रहे, बरकरार कैसे रखें हम, इसका कोई विधि विधान है ब्रह्म कुमारी इसमें कुछ बताया हो तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि वो विधि विधान सुने आपसे। जी
2: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि वह एंजॉयमेंट का माहौल होता, कोई ओकेशन रहता, तब तो मैं खुश हो जाते हैं हम सभी लोग। रीजन इज दैट कि वह खुशी का कोई एक रीजन मिल जाता है, एक कारण मिल जाता है। उसी प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत सिंपल सा मेथड बताया गया है कि आप अपने थॉट को चेंज करें। थॉट्स को चेंज कैसे करें, खुद को पॉजिटिव कैसे बनाएं, खुशियों को बरकरार कैसे रखें। खुशियों को बरकरार रखने के लिए हम क्या सोचते हैं कि जब कोई व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग चलेगा तो मैं खुश होंगी, मेरे संबंध दूसरों के साथ अच्छे होंगे, मुझे रिस्पेक्ट दिया जाएगा तो मैं खुश होंगी, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होगा तो मैं खुश रहूंगी। तो हमने एक रीजन रखा कि अगर ऐसा होगा देन आई विल हैप्पी, ऐसा होगा तब मैं खुश होंगी। तो हमने एक रीजन बनाया, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत सुंदर सा ये तरीका बताया गया है कि बिना रीजन के, बिना किसी त्योहार के, बिना किसी ओकेशन के, तो खुश कैसे रहे। सिंपल सा मेथड कि जब हम खुद को, जब हम स्वयं को पहचानते हैं कि एक्चुअली में खुशी मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, मैं खुश रहकर जीवन जीता हूँ, ये जरूरी है, क्योंकि मैंने पैसा भी कमाया खुशी के लिए, जॉब भी किया खुशी के लिए, फैमिली भी बनाया खुशी के लिए, बाहर घूमने भी जाते हैं खुशी के लिए कि मुझे खुशी मिल जाएगी, लेकिन मेरा एम ऑब्जेक्ट क्या रहता है, खुशी। लेकिन आप देखें कि मेरा डेस्टिनेशन हैप्पीनेस है, लेकिन मेरी जर्नी जो है वो अनहैप्पी हो रही। क्या मैं खुश होकर जॉब कर रहा हूँ? क्या मैं खुश होकर अपने काम को कर रहा हूँ? क्या मैं खुश होकर जीवन को जी रहा हूँ? दिस इज द इम्पोर्टेंट। इस रीजन से मैं खुश होऊंगा, ये रीजन बिल्कुल हटा। फर्स्ट इज दैट कि अगर आप
1: जी
2: लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, जो व्यक्ति जैसा भी हो उसको इजीली एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, कैसा भी हो, आपके चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्किल हो, चाहे आपके कलीग्स क्यों ना हो। स्पिरिचुअलिटी ये सिखाता है जो व्यक्ति जैसा हो उसको इजीली एक्सेप्ट करें, बिना इरिटेट हुए, बिना चिड़चिड़ किए, बिना उससे आर्ग्यूमेंट करें, इजीली एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं या झेल रहे हैं या सहन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक्सेप्ट करना दैट मीन्स उसको दिल से स्वीकार। सपोज दैट कि आपके फैमिली में कोई है जो आपको बहुत इरिटेट कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है और आपसे टॉलरेंस नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप जान गए कि इस व्यक्ति का नेचर ही ऐसा है, इस व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है, तो आप क्या कहेंगे, किसका नेचर है, बेचारा बीमार है, मन से बीमार है। जैसे मैं एक मेडिकल कॉलेज में गई तो मैंने कहा कि आपके डॉक्टर आपको जब डांटते हैं तो आपको कैसा लगता है, बहुत इरिटेशन होता है और बहुत चिल्लाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं मेरे डॉक्टर। हमने कहा पेशेंट, पेशेंट का बेचारे बीमार है, वो तो चिल्लाएंगे ही, गुस्सा करेंगे ही। तो हमने पेशेंट को इजिली एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन डॉक्टर को नहीं किया। हम भूल गए कि डॉक्टर भी बेचारा मन से तो बीमार होगा ना। मन से वो बीमार है इसलिए वो इरिटेट हो रहा है, इसलिए वो चिल्ला रहा है या अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल रहा है, लेकिन पेशेंट के लिए हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो जब हम जीवन में एक्सेप्ट करना आ जाता है तो संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक्सेप्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक फैमिली में गई थी, वहां पे क्लासेस हो रहे थे, तो एक भाई ने कहा कि मेरी वाइफ बहुत चिल्लाती है, बहुत इरिटेट करती है, जब मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो मेरी वाइफ फोन पे जोर से बात करती है। हमने कहा तो कोई बात नहीं, आप बाद में मेडिटेशन कर लो। हम आपस में बातचीत कर ही रहे थे तब तक सब्जी वाला बेचता हुआ चला गया और जोर से चिल्लाया, सब्जी ले लो सब्जी ले लो। हमने कहा भाई साहब आपने इसकी आवाज सुनी, आपको किसी आवाज आई ना? सब्जी वाला है, उसका काम ही है, उसका धंधा ही है चिल्लाना। वो चिल्ला कर बोल रहा है, सब्जी बेच रहा है, अपना काम कर रहा है, हम लोग आपस में बात करें, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। मैंने कहा मुझे तो बहुत हो रहा है। हमने कहा कि जैसे आपको अपनी वाइफ की आवाज इरिटेट कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। आपका उनसे एक्सपेक्टेशन था, उम्मीद थी मेरी वाइफ मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरी वाइफ मेरे अकॉर्डिंग बोलेगी, मेरे अकॉर्डिंग करेगी। लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, इजीली उसको एक्सेप्ट करना है, तभी आज ये क्लैशेस होना बंद हो जाएगा। उस भाई ने एक्सेप्ट किया, सच में मैं अपनी वाइफ वाइफ को सोच रहा था मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, मेरे अकॉर्डिंग धीरे बात करेगी, जब मैं मेडिटेट करूँ तो शांत रहेगी, चुप रहेगी, लेकिन आज से मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। और सच कहे जब से उस भाई ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, आज वो ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में साथ में गए, दोनों में इतना अच्छी कॉम्बिनेशन हो गई, कोऑर्डिनेशन, कि दोनों साथ में मेडिटेशन करते, दोनों साथ में क्लासेस करते, तो कितना छोटा सा चेंजेस से लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, संबंध मधुर हो गए और दोनों स्पिरिचुअल पर्सन बन गए, काम भी इजी हो गए। तो फर्स्ट इज दैट, लोगों को आप एक्सपेक्टेशन ना करें, एक्सेप्ट करें। दूसरा, अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि जब तक संबंध हमारे दूसरों से अच्छे नहीं होंगे, हमारी खुशी भी गायब होने शुरू हो जाएगी किसी ना किसी कारण से। संबंध अच्छे कब बनेंगे? जब हमें झुकना आएगा, जब हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना आएगा, कोई बात नहीं पहले मैं। आजकल संबंधों में ऐसा ही होता है कि पहले हम क्या सोचते हैं, पहले आप सॉरी बोलो फिर मैं बोलूंगा। मैक्सिमम ऐसा ही होता है फैमिली में कि आपकी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, मैं कितना झुकूं, मैं कितना सॉरी बोलूं, मैं कितना अपने आप को नीचे रिग्रेट करूं, पहले आप बोलोगे तो मैं बोलूंगी। आप देखो कि जब कुछ आपस में अनबन होता है तो आजकल का फैशन क्या हो गया, बात करना ही खत्म कर देते, वो भी ड्यूरेशन बढ़ जाती है बात ना करने की। कभी कभी 7 दिन बात नहीं करते, कभी 2 दिन बात नहीं करते, कभी कभी महीनों तक बात नहीं करते, एक ही फैमिली में रह रहे हैं लेकिन आपस में ऐसे मुंह घुमा के रहते हैं कि हमें आपसे बात नहीं करना है। तो ये संबंधों में खटास आने का रीजन क्या है? हमारा ईगो, हमारा अहम, हमारा अहंकार। वो एक व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, उस एक पर्सन के लिए हमने ज्वेलरी, अपने गहने, सब कुछ बेच देते, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं अपने संबंध को, उस व्यक्ति को बचाने की। लेकिन जब अपने ईगो की बात आई तो हमने अच्छे खासे संबंध को भी तोड़ दिया। इसलिए जो ईगो है, अहंकार, जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं देह अभिमान, तो ये जो देह अभिमान जो आता है, वो देह अभिमान हमारे संबंधों को खराब करता है, हमारे संबंध को ईजी नहीं बनाता, बहुत डिफिकल्ट बनाता। तो कुछ भी हो जाए, सॉरी आप पहले कहें। इसलिए कहा जाता है झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो पहले आप झुके संबंधों को अच्छे बनाने के लिए। एक छोटी सी इंसिडेंट मेरे को याद आती है, थोड़ी हंसी मजाक वाली इंसिडेंट है कि दो कपल थे, आपस में अनबन हुई, बात करना बंद कर दिए, और फिर हस्बैंड को याद आता है कि अरे मुझे तो सुबह फ्लाइट पकड़नी है और मुझे सुबह जगाएगा कौन, तो बात तो करता ही नहीं था, उसने कसम खाया था कि मुझे बात नहीं करनी है उनसे। तो उसने क्या किया कि पर्ची में लेटर लिख के रख दिया बिस्तर के नीचे कि सुबह 4 बजे मुझे जगा देना, मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना है। तो 4 बजे से ज्यादा हो गए, 5 बज गए, और वो एकदम हड़बड़ा के उठता है और देखता है कि मुझे किसी ने जगाया नहीं। उससे मैं किचन में जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि 4 बजे जगा देना, तुमने जगाया क्यों नहीं। तो उसकी युगल कहती है बिस्तर में जाकर के देखो। तो उसने जाकर के देखता है कि 4 बज गए, अब उठ जाओ। तो उसने जैसे ना बोल करके उसको कहा मुझे जगा दो, उसी प्रकार उसने ना बोल करके उसको कहा कि आप उठ जाओ। तो ना बोलने से कितना बड़ा लॉस हो गया, उसकी फ्लाइट मिस हो गई, संबंधों में और कड़वापन आ गया। तो अगर किसी की भी गलती हो, सबसे पहले आप सॉरी बोल के उस संबंधों को जो खट्टे हो गए हैं उसको उसके अंदर मिठास लाए। हम जब पी से बात नहीं करते ना, तो अंदर अंदर सबसे ज्यादा उससे ही बात करते। अब देखिए, जैसे आप पी से बात नहीं कर रहे हो, आपस में झगड़ा हो गया और आपने मुंह फुला लिया, मुझसे बात नहीं करना उससे, लेकिन अंदर अंदर आप देखेंगे सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन उन्हीं के साथ होती है। ऐसा बोला, ऐसा किया, ऐसा नहीं बोला, कैसे बोल दिया मेरे को, ऐसे कैसे कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ ये हमारे संबंधों को और ही खट्टा कर देते हैं, और जिससे हमारी खुशी धीरे धीरे धीरे धीरे डिप्लीट हो जाती। तो अपनी खुशियों को अगर बढ़ाना है, बरकरार रखना है, तो एक्सेप्ट करना और अपने ईगो को कम करना, डाउन करना, अपने आप को नम्र करना, पोलाइट होना। और तीसरा है मेडिटेशन करना, ध्यान करना। ध्यान करने से हमारा मन एकांत और शांत होता है, सही जजमेंटल हम कर सकते हैं, जिससे हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आइए हम 2 मिनट रिलैक्स होके बैठेंगे, और ये मेडिटेशन हम सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी और अपने जीवन को खुश रहना पाए। सब रिलैक्स होके बैठेंगे, कंफर्टेबल होंगे, आप आंखें भी बंद कर सकते हैं। ब्रीथ इन स्लोली स्लोली, ब्रीथ आउट, एकदम रिलैक्स होके बैठे। आप आंखें भी बंद कर सकते हैं, खोल कर भी रख सकते हैं। मैं आपको कमेंट्री दूंगी, आपको उसको बहुत सुंदर सा विजन बनाना है। ओम शांति। चारों तरफ से अपने मन बुद्धि को समेट लें। कोई और संकल्प क्रिएट ना करें, एकदम रिलैक्स होके बैठे। अपने आप को बड़े से मिरर के पास ले जाए, एक बड़ा सा शीशा। अपने दोनों पैरों को देखें, अपने हाथों को देखें, अपने सुंदर से चेहरे को देखें।

0: ओम शांति। शायद नेटवर्क इशू हो गया है दीदी का। तो हम लोग अभी उस तरह से मेडिटेशन वाला सेशन चल रहा था, इसी साइलेंस में रहेंगे और जुड़ जाएं तो फिर पूरा ही हो जाएगा। अच्छा,
1: अनुभव करें कि आपके मस्तिष्क के बीच में

ओम शांति। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा सा जो है आपने प्रकट किया। अब जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप एक छोटे से गीत के साथ हम लोग पूरा करेंगे। संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमाचल से, तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा पीस, एक मुकड़ा, एक अंतरा सुना दीजिए, कोई भी, हम पूरा करेंगे 1 मिनट का। जी

0: ومش عارف ايه ومش
1: ما
0: عارف
1: شاء
0: ايه.
1: الله. थैंक यू, बहुत बहुत गीता का
0: थैंक
1: सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, जहाँ पर आपने बीके तपोशी दीदी को सुना जो बनारस से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और बड़ा अच्छा जो है खुशी को बरकरार करने का अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, और लास्ट में थोड़ा सा मेडिटेशन के टाइम पे चीजें जो है नेटवर्क इशू हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छे संकल्प विचार हमारे साथ साझा किया. और मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पे काम कीजिए आप, अगर खुशी को बरकरार रखना है तो जैसे ही स्वीकार भाव आप अपने अंदर लाते हो तो निश्चित तौर पे आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं. आप जो इरिटेशन था वो खत्म हो जाता है. आप एक बार करके देखिए, सिर्फ उन्हें स्वीकार कर लीजिए जिनसे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी. तो एक बहुत बड़ा टूल है, इसका यूज करके आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं. तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप खुश रहें सदा, इसी शुभ

0: आशा के साथ फिर मिलते हैं। संतोष जी एंड आशीष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़कर
1: थैंक
0: बहुत ही
1: यू।
0: प्यारा सा सुनाने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुनाए हैं रीडमल 90.4 FM। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।
1: ओम।

मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढई गाँव की रहने वाली हूँ और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।

0: नमस्ते दोस्तों, मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? क्या कहा? मैं तो हमेशा समय पे ही आता हूँ। मैं तो हर काम समय पे ही करता हूँ। समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे नहाना, समय पे खाना और समय पे आपसे मिलने आना। भाई हर काम समय पे करना अच्छी बात जो है। अब अपनी मिली को ही देखो, वो भी समय पे ही स्कूल पहुँचना चाहती है।
1: माँ, माँ।
2: हाँ मिली, मैं यहाँ हूँ रसोई में।
1: माँ मैं स्कूल जा रही हूँ।
2: दूध पी लिया?
1: पी लिया माँ।
3: मिली की माँ, मैं भी जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा।
2: ठीक है जी।
4: चलो मिली, दोनों साथ में चलते हैं। मैं तुम्हें स्कूल भी छोड़ दूंगा और।
1: लेकिन बाबा अपना खेत तो दूसरी तरफ है।
4: आज मुझे खेत नहीं, कहीं और जाना है।
1: कहीं और जाना है? कहाँ जाना है बाबा?
4: राज की बात है, शाम को ही बताऊंगा।
1: बताइए ना बाबा।
4: अच्छा अच्छा, पहले चलो तो सही।
1: बाबा अब तो मेरा स्कूल भी आ गया, अब तो बता दीजिए क्या है वो राज की बात, कहाँ जा रहे हैं आप?
4: मिली मैं शहर जा रहा हूँ अपना नया ट्रैक्टर लाने।
1: हाँ, सच बाबा?
4: हाँ बेटी,
1: हमारा नया ट्रैक्टर आएगा।
4: हाँ मिली, नया ट्रैक्टर।
1: अब तो बहुत मजे आएंगे, दीपक भैया और मैं आपके साथ ट्रैक्टर पे बैठकर खूब घूमेंगे। बाबा मैं मीना को भी अपने ट्रैक्टर पर घुमाऊंगी।
4: हाँ हाँ, सबको घुमाना। चलो अब भागो, स्कूल शुरू होने वाला है।
1: मीना,
5: क्या बात है मिली, बहुत खुश लग रही हो।
1: मीना पता है मेरे पापा शहर गए हैं नया ट्रैक्टर लाने।
5: नया ट्रैक्टर? अरे वाह
1: मीना, अब तुम मैं और दीपक भैया पापा के साथ अपने नए ट्रैक्टर पे घूमेंगे। मैंने पापा को भी बोल दिया।
5: फिर तो बहुत मजे आएंगे।
6: मजे आएंगे? चाचा जी ट्रैक्टर चलाएंगे।
0: और स्कूल खत्म होने के बाद जब मिली अपने घर पहुंची।
7: अरे मिली आज जल्दी आ गई स्कूल से?
1: माँ भाग भाग के जो आ रही हूँ।
8: अच्छा, भूख लग रही होगी इसीलिए भाग के।
1: भूख नहीं दादी, आप सबको एक बहुत खुशी की बात बतानी है इसलिए। दीपक भैया कहाँ है?
7: वो तो खेत पे गया है। लेकिन क्या है वो खुशी की बात?
1: सिर्फ खुशी की बात नहीं माँ, बहुत खुशी की बात।
8: अरे तो जल्दी बता बेटी।
1: माँ दादी पता है बाबा आज क्या लाने वाले हैं?
7: नहीं
1: दादी आपको?
8: अब तू बताएगी तभी तो पता चलेगा ना।
1: तो फिर सुनो, मेरे बाबा आज शहर से नया ट्रैक्टर लेके आएंगे।
7: सच? तुझसे किसने कहा?
1: खुद बाबा ने।
8: अच्छा, तभी मुझे सुबह कह रहा था कि माँ शाम को तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। खूब तरक्की करे मेरा बेटा, खूब सुख मिले तुझे।
0: और शाम को दीपक, मिली, मिली की माँ और दादी मिली के बाबा के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
1: लगता है बाबा आ गए। बाबा ट्रैक्टर ले आए? बाबा ट्रैक्टर कहाँ है?
7: क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना?
9: बोलिए ना बाबा।
8: कुछ तो बोल बेटा।
4: माँ अब हमारा ट्रैक्टर नहीं आएगा।
7: अब ऐसा क्यों कह रहे हो जी?
4: मिली की माँ, ट्रैक्टर का दाम बढ़ गया है। अपने जोड़े हुए पैसे और बैंक से कर्जा लेने के बाद भी 2,000 रुपए कम पड़ रहे हैं।
8: तो उदास क्यों होता है बेटा, लाला से जाके।
4: नहीं माँ, लाला से कर्जा नहीं लेना मुझे, मूल से ज्यादा तो सूद ले लेता है वो। आप पता नहीं अपना ट्रैक्टर आएगा भी या नहीं।
7: आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं चाय लेके आती हूँ।
0: और अगली सुबह जब मिली के बाबा सो के उठे तो उनके तकिए के पास एक लिफाफा पड़ा था। उन्होंने लिफाफा खोल के देखा तो उसमें थे पूरे 2,000 रुपए।
3: मिली की माँ, मिली की माँ।
1: बाबा माँ तो घर के पिछवाड़े में कपड़े सुखा रही है।
4: ये रुपए यहाँ किसने रखे?
1: मुझे तो पता नहीं। हाँ माँ सुबह मीना के यहाँ गई थी, हो सकता है वहाँ से।
3: मिली की माँ
2: आई जी।
7: आपने बुलाया?
4: तुम मीना के घर गई थी?
7: हाँ।
4: क्यों?
7: मीना की माँ से ये पैसे लाने।
4: तुम्हें मीना की माँ से ये पैसे उधार नहीं लेने चाहिए थे।
7: उधार नहीं लिए जी, ये हमारे अपने पैसे हैं।
4: हमारे पैसे?
7: जी हमारे खुद के पैसे।
4: लेकिन तुम्हारे पास इतने रुपए आए कहाँ से?
7: बचत करके।
4: बचत करके?
7: जी घर के खर्चे करने के बाद जो पैसे बचते थे मैं उन्हें जोड़ लिया करती थी। दो दो रुपए बचाते बचाते आज पूरे 2000 जमा हो गए हैं।
9: अरे वाह मिली की माँ, तुम तो बहुत समझदार हो।
7: ये समझदारी तो मीना और मिली की है। इन बच्चों ने ही अपने स्कूल में सीख के मुझे बताया कि बचत करने में ही समझदारी है, क्योंकि खर्चा तो किसी भी समय आ सकता है, ऐसे में बचत ही काम आती है।
4: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुमने ये पैसे मीना के घर में क्यों रखे?
7: आप तो बैंक में जाके अपने पैसे जमा कराते हैं, लेकिन मैं क्या करती? मुझे भी तो ये पैसे किसी सुरक्षित जगह पे रखने थे ना, इसीलिए मैंने ये पैसे मीना के घर में रखे। उसके घर में ताले वाला संदूक जो है।
4: माँ माँ सुना तुमने?
8: हाँ बेटा सब सुन लिया। जीती रहे बहू, आज तेरी समझदारी की वजह से ही हमारा नया ट्रैक्टर आएगा।
1: हाँ दादी, और आज से मैं भी माँ और बाबा की तरह थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़ूंगी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो पैसे काम आ सके।
0: और उसी दिन मिली के बाबा शहर जाके अपना नया ट्रैक्टर ले आए। देखा दोस्तों, तभी तो कहते हैं बूंद बूंद से सागर बने। अब बोलो है ना बचत करने में फायदा। अब वक्त हो चला है एक

0: बढ़िया सी कविता सुनने का, तो चलो सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता।
1: याद रखो है बचत जरूरी, बचत जरा तुम कर लो,
2: जोड़ के थोड़ी थोड़ी पैसे पूरी गुल्लक भर लो।
0: भाई वाह, क्या कविता लिखते हैं अपने मीना और मिट्ठू, सुनने में मजा भी आता है और एक काम की बात भी पता चल जाती है ना। और अब वक्त है सही पहचाना, अब वक्त है एक गाने का।

0: गाना तो सचमुच बहुत मजेदार था। अब एक काम करते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं। क्या कहा? कहा? अरे भाई मीना की क्लास में, और कहा? चलो जल्दी चलो, कहीं खेल शुरू ना हो जाए।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे दिमाग लगाओ शब्द बनाओ। मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है, और हर नए शब्द से जुड़ा क्या बताना है?
2: मुहावरा।
1: हाँ, तो आज का शब्द है बर्तन। चलो अब बर्तन के हर अक्षर से नया शब्द बनाओ।
3: बहन जी पहला शब्द मैं बनाऊं?
1: हाँ हाँ दीपू।
3: बहन जी बर्तन का पहला अक्षर है ब, और ब से होते हैं बाल।
1: शाबाश दीपू, और बाल से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
4: बाल की खाल निकालना।
1: हाँ मिली, और इस मुहावरे का मतलब?
5: बहन जी इस मुहावरे का मतलब होता है बहुत से सवाल पूछ के किसी बात की गहराई तक पहुँचना।
1: बिल्कुल ठीक मिली। चलो अब अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
6: ब के बाद बर्तन में आता है र, और र से होती है रात।
1: सही जवाब गोलू, और मुहावरा?
6: दिन रात एक कर देना, मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करना।
1: शाबाश, अब अगला शब्द कौन बताएगा?
7: मैं बहन जी।
1: हाँ हाँ सोमा बोलो।
7: बहन जी ब और र के बाद बर्तन में आता है त, और त से होते हैं तारे, और तारों से जुड़ा मुहावरा है दिन में तारे नजर आना, मतलब सर चकरा जाना।
1: बिल्कुल ठीक।
8: बहन जी अगला शब्द मैं बताऊं?
1: हाँ मीना बताओ।
8: ब र और त के बाद बर्तन में आता है न, और न से होता है नेवला।
1: शाबाश मीना, और नेवले से जुड़ा मुहावरा?
8: सांप नेवले का बैर होना, मतलब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होना।
1: बिल्कुल सही जवाब, शाबाश मीना। तो मजा आया बच्चों?
2: बहुत मजा आया बहन जी।
0: भाई मजा तो हमें भी खूब आया, इतनी बढ़िया कहानी सुनी, कविता सुनी, गाने का मजा लिया, और खेल भी खेला, मजा तो आना ही था है ना? ठीक है दोस्तों, अब मुझे इजाजत दीजिए, जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो, या आपके अनुभव।
9: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: EIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 11वां पाठ सुनीता अंतरिक्ष में पृष्ठ 99। सुनीता अंतरिक्ष में। दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ, अपने साथियों के बनाए चित्र को भी देखो। कैसी है हमारी पृथ्वी? उजैरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं, तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। उजैरा बोली, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही। शाहमीर ने कहा, ये रहा अमेरिका, ये है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? उजैरा बोली, अरे भाई ये सारा आसमान है, ये तारे चांद सूरज ये सब अंतरिक्ष में हैं। शाहमीर, हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी, टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। उजैरा बोली, हाँ वहां से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखाई देती है। शाहमीर बोला, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो उसमें हम कहाँ हैं? उजैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। उजैरा बोली, यहाँ ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। शाहमीर बोला, फिर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे, जरूर हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। पृष्ठ 100। उजैरा बोली, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है और तारे सूरज और चांद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे, सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। शाहमीर बोला, तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उजैरा बोली, हाँ अजीब सा लगता है, और यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? तुम्हें क्या लगता है हम धरती पर कैसे टिके हैं? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? सुनीता से बातचीत। जब सुनीता विलियम्स भारत आईं तो उजैरा और शाहमीर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थीं। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आईं। पृष्ठ 101। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें। हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की

जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो, कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी। यहाँ सुनीता विलियम्स के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र एक, यह भरी उड़ान, 9 दिसंबर 2006। अरे पांव टिकते ही नहीं, 11 दिसंबर 2006। यह खाना कहाँ उड़ा जा रहा है, 11 दिसंबर 2006। यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में, 16 दिसंबर 2006। फोटो देखो और लिखो। अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे, बाल नीचे क्यों नहीं बैठते थे? सुनीता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ कि उनमें कब क्या क्या होता दिख रहा है। क्लास बनी अंतरिक्षयान यानी स्पेसशिप। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्षयान बन गई है। तुम शून्य से 10 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच गए हो। तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब बताओ, क्या एक जगह बैठ भी पा रहे हो? बालों का क्या हाल है? अरे भाई, बस्ता और किताबें कहाँ घूम रही हैं? और टीचर जी क्या कर रही हैं? उनकी चौक का क्या हुआ? आधी छुट्टी में खाना कैसे खा पाए? पानी कैसे पिया? बॉल उछाली तो क्या हुआ? चित्र बनाकर या एक्टिंग करके ये सब दिखाओ। कुछ तो है कमाल। पृथ्वी पर कुछ भी उछालें तो वह वापस नीचे आता है। बॉल उछालकर वापस पकड़ पाते हो ना? पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते। पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है, बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सोचो, 360 किलोमीटर दूर कितना होता है? तुम जहां रहते हो वहां से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है? सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। क्या अब बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे? सोचो, किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है? पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं बढ़ता? पृष्ठ 104। जादू एक, नन्ना सा कागज, चला सिक्के की चाल। एक 5 रुपए का सिक्का लो और कड़े कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जो सिक्के के चौथाई भर हो। एक हाथ में सिक्का और दूसरे हाथ में नन्ना कागज पकड़कर दोनों एक साथ गिराओ। क्या हुआ? अब नन्हे कागज को सिक्के के ऊपर रखो और फिर दोनों को एक साथ गिराओ। इस बार क्या हुआ? चौंक गए क्या? जादू दो, चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। इस खेल के लिए एक छोटा पत्थर मेर के बराबर साइज का, एक बड़ा पत्थर नींबू के बराबर और एक कागज का रोल लो। कागज की कई तहों से एक रोल बना सकते हो। लगभग 2 फुट लंबी डोरी लो। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो। कागज पर चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाओ या बांधो। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो। कागज पर चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाओ या बांधो। अब डोरी के दूसरे सिरे को कागज के एक रोल में डालो। इस सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो।
और कागज़ पर बनाया हाथी उस पर चिपकाओ। कागज़ के रोल को गोल गोल घुमाओ ताकि छोटा पत्थर घूमने लगे। खींच रहा है ना चूहा हाथी को? खेल में चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया होगा? लकीरें आखिर हैं कहाँ? स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है, पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। पृष्ठ 105। तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का एक फोटो जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। आज तो हम ये फोटो देख पा रहे हैं, पर हजारों सालों से लोग कल्पना ही करते रहे कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कैसे घूम रही है। फोटो को देखो और बताओ, क्या भारत को पहचान पा रहे हो? क्या कोई और जगह पहचान पा रहे हो? देखो समुद्र कहाँ कहाँ है। ग्लोब और इस फोटो में क्या कुछ मिलता जुलता है? क्या कोई फर्क भी दिखता है? क्या सुनीता अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग अलग बता सकती थी? अपने स्कूल में ग्लोब को देखो और बताओ, क्या भारत को ढूंढ पाए? इसमें समुद्र कहाँ कहाँ दिख रहा है? इसमें कौन कौन से देश तुम देख पाए? भारत जिन देशों के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, क्या उनमें से कुछ को देख पाए, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका? और क्या क्या देखा? उजैरा और शामिर ग्लोब पर अलग अलग देशों को देख रहे हैं। उजैरा बोली, ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती हैं, क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खिंची होती हैं? शाहमीर बोला, लकीरें तो होती हैं, हमारी किताब में इंडिया के नक्शे में भी हैं, देखो राज्यों के बीच में लाइनें साफ दिख रही हैं। उजैरा बोली, अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में जमीन पर ऐसी लाइनें दिखेंगी? पृष्ठ 106। अपने देश के नक्शे को देखो और बताओ, क्या तुम अपने राज्य को पहचान पाए? नक्शे पर उसका नाम लिखो। तुम्हारे राज्य से लगे हुए कौन से राज्य हैं? क्या तुम कभी किसी और राज्य में गए हो? शामिर यह सोचता है कि राज्यों के बीच में जमीन पर लाइन बनी होती है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी और उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती हैं, इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते। जमीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है। ये लाइनें तो कागज पर ही होती हैं। मैं चाहूंगी तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर हैं कहाँ। चलो आसमान को देखें। शाहमीर एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए बोलता है, मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ। उजैरा बोली, वाह, इतने बड़े चांद को इतने छोटे से सिक्के ने छुपा दिया। तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश करो। सिक्के को आंखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चांद को छुपा पाए? सोचो, क्या चांद सिक्के की तरह चपटा होगा या बॉल की तरह गोल? क्या तुमने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? अंधेरी रात में चमकते तारों को देखने का मजा ही कुछ निराला है। कभी तो चांद चांदनी बिखराता है तो कभी घुप अंधेरी रात में ढूंढते नहीं मिलता। पृष्ठ 107। आज चांद को देखो और उसका चित्र बनाओ। एक हफ्ते बाद
कैसा दिखता है और 15 दिन बाद कैसा दिखता है उसका भी चित्र बनाओ। आज की तारीख, 1 हफ्ते बाद की तारीख और 15 दिन बाद की तारीख। पता करो अगली पूर्णमासी कब है, उस दिन चांद किस समय निकलेगा, कैसा दिखेगा, चांद से जुड़े कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। आसमान को ध्यान से 5 मिनट तक देखो, क्या क्या देख पाए, क्या कोई चीज चलती हुई सी भी दिखी, यह क्या हो सकता है, क्या वह तारा होगा या टूटता तारा या कोई उपग्रह जिसका इस्तेमाल टीवी के लिए, टेलीफोन या मौसम की जानकारी के लिए करते हैं। पता करो। अभ्यास, दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद के निकलने और डूबने का समय तालिका में दिया गया है। तालिका, तारीख 28 अक्टूबर 2007, चांद निकलने का समय 19:16 और चांद डूबने का समय 8:50। तारीख 29 अक्टूबर 2007, चांद निकलने का समय 20:17, चांद डूबने का समय 10:03। तारीख 30 अक्टूबर 2007, चांद निकलने का समय 21:22, चांद डूबने का समय 11:08। तारीख 31 अक्टूबर 2007, चांद निकलने का समय 22:29, चांद डूबने का समय 12:03। पृष्ठ 108, तालिका के अनुसार बताओ 28 अक्टूबर को चांद शाम के रिक्त स्थान मिनट पर निकला, 29 अक्टूबर को चांद शाम के रिक्त स्थान मिनट पर निकला, 29 अक्टूबर को चांद निकलने में रिक्त स्थान घंटे और रिक्त स्थान मिनट का फर्क आया। अगर तुमने आज शाम को 7 बजे चांद निकलते देखा तो क्या कल भी ठीक 7 बजे चांद देख पाओगे। 31 अक्टूबर को चांद डूबने का समय 12:03 दिया है, क्या तुमने कभी दिन के 12 बजे चांद देखा है? दिन में हमें चांद तारे आसानी से क्यों नहीं दिखते? कवि भी इस कविता में कुछ इसी तरह के सवाल उठा रहा है। आसमान में कितने तारे क्या तुमको दिखते हैं सारे, किस किस का तुम नाम जानते, कौन है कितने पास तुम्हारे, आसमान में कितने तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे, क्यों होता है गोरख धंधा, जगमग क्यों करते हैं तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी, क्या देखा क्या जाना तुमने, बोलो इनकी राम कहानी, हर तारे की बात पुरानी। ये कविता अनवारे इस्लाम ने लिखी है। पृथ्वी का एक मजेदार फोटो, चांद पर एक स्पेसशिप गया था, उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फोटो खींची थी। देखो पृथ्वी कैसी दिख रही है, चांद की सतह कहाँ दिख रही है। चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या कुछ सवाल आए, सवाल लिखो और क्लास में चर्चा करो। पृष्ठ 109, हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी, उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी, पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट।
एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे की पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डट कर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। सुनीता कहती हैं कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाएं कि विज्ञान और गणित कैसे जिंदगी से जुड़े हैं। हम क्या समझे, बच्चे फिसल पट्टी यानी स्लाइड पर नीचे की ओर ही क्यों फिसलते हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं? अगर यह फिसलन सुनीता के अंतरिक्ष यान में पहुंच जाए तब क्या ऐसे फिसल सकेंगे? क्यों? तारे ज्यादातर रात में ही क्यों दिखते हैं? सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहां से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज पर ही होती हैं। इससे तुम क्या समझे? सुनीता अंतरिक्ष में। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का ये 11वां पाठ।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ गार्डन, जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू, करेक्ट। अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नजदीक आइए। प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकाल कर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फौना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का दो अर्थ होता है, एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मीन्स नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट देयर नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी, लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल, रियली ग्रेट।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और हम आ गए हैं एक नई दुनिया में। नई दुनिया इसलिए क्योंकि ये दुनिया ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं देती। ये दुनिया होती है बच्चों के मन की दुनिया, और इसीलिए हम इस प्रोग्राम को कहते हैं बच्चों की दुनिया। तो अगर बड़े भी हो गए हैं हम, तो हमारे अंदर ये दुनिया कहीं रहती जरूर है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और कौन कौन है, एक बार आपका नाम और क्लास तो बता दीजिए।
3: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में हूँ।
4: मेरा नाम सक्षम है, मैं 6th क्लास में हूँ।
5: मेरा नाम आराध्या, मैं 2nd क्लास में हूँ।
6: मेरा नाम शिवन्या, मैं 2nd क्लास में हूँ।
7: मेरा नाम शिक्षा है, मैं 10th क्लास में हूँ।
8: मेरा नाम हर्षिता है, मैं 5th क्लास में हूँ।
2: ओके, और आज एक बहुत अच्छे से टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, पहले घूमना किस किस को पसंद है?
9: दीदी मुझे।
2: आप लोगों को पसंद है? बोलो।
10: हाँ मुझे पसंद है।
11: मुझे भी पसंद है।
2: अच्छा, किसको बहुत ज्यादा पसंद है?
12: मुझे। दीदी मुझे बहुत पसंद है।
2: बहुत ज्यादा पसंद है,
13: एक्साइटेड हो जाती हूँ।
2: हाँ ओके, ठीक है। तो क्या क्या पसंद है घूमने के बारे में? सबसे फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ घूम के आए थे आप लोगों को बहुत मजा आया?
14: वैष्णो देवी।
2: वैष्णो देवी, ओके। और बाकी लोग?
15: मैं ना जब 2nd में थी तब मैंने ना इधर एक राजस्थान ट्रिप की थी मेरे फैमिली के साथ।
2: ओके, और आपको क्या पसंद है, कहाँ घूमना सबसे ज्यादा मजा आया था? हाँ आराध्या, याद है? भूल गए तो भी कोई बात नहीं, बाद में बता देना, ठीक है। आपको कहाँ अच्छा लगा था?
16: मुझे माउंट आबू अच्छा लगा।
2: माउंट आबू ना, फर्स्ट टाइम आया आप माउंट आबू? राघव, घूमने कहाँ गए थे वो बताओ, आप यहाँ तो रहते हो।
17: नहीं, मैं पहले नहीं रहता था, जब पहली बार आया था तो मैं इधर ही घूमा था पहली बार।
2: और इसके अलावा कुछ अच्छा लगा था, या माउंट आबू सबसे अच्छा लगता है?
17: नहीं, बहुत जगह अच्छी लगती है,
2: जैसे
17: वैष्णो देवी। और कटरा
2: अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छी जगह है वो भी। और आपको?
18: दीदी मुझे भी माउंट आबू अच्छा लगता है, और भी जगह अच्छी लगती हैं, जैसे कि महाकाल मंदिर, उज्जैन। हाँ, या इस जगह पे मेरे को ज्यादा पसंद है माउंट आबू में। और पांडव भवन ऊपर जाओ, वहाँ पे तो और ही अच्छा लगता है।
2: राइट
17: दीदी, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो बीच में जो भी मंदिर आते हैं ना, हम उन सबके दर्शन करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ मंदिर है और हम ऐसे सीधे जा रहे हैं, हम किसी को भी छोड़ते नहीं है, हम सबके दर्शन करके आते हैं। फिर
2: कितना अच्छा लगता है ना।
17: दीदी उधर जब सबसे टॉप पे पहुंच जाते हैं तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है, और बादल इधर ही होते हैं ऊपर।
19: मैंने देखा, लेकिन मैं वहाँ बैठे भी नहीं, चलती गई अपने पावर से।
2: और क्या, घोड़ा भी तो देखा था आपने, है ना? और क्या देखा था? फिर चलते चलते थक नहीं गए थे आप? इतना ऊंची ऊंची खुद चल लिया आप?
19: आधे लोग प्लेन में भी बैठा।
2: प्लेन में कैसा लगा? अच्छा लगा? डर नहीं लगा? इतने ऊपर से डर नहीं लगता? अरे वाह, मजा आया ना देखने में। आद्या को कुछ आपको याद आ रहा है? कुछ बताओ क्या?
5: माउंट आबू।
2: माउंट आबू में क्या अच्छा लगा आपको? सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? क्या मजा आया देखने में? पहाड़ दिखे?
5: यस।
2: पहाड़ अच्छे लगते हैं आपको? या पानी अच्छा लगता है? झील में भी तो, झील भी तो है माउंट आबू में, है ना? अच्छा, किसके साथ गए थे आप घूमने, ये तो बताओ।
5: मेरे मम्मा साथ, मेरे भाई साथ। जब मैं मम्मी के पेट में थी तब पापा माउंट आबू आते थे, अब नहीं आते पापा माउंट आबू।
2: कोई बात नहीं, आप तो आ गए ना मम्मी के साथ, ठीक है, वेरी गुड।
18: जब मैं राजस्थान आई थी तब सेकंड में, उधर रेगिस्तान में ना, उधर एक सूरज का एक सीन आया था, उधर हमने बहुत अच्छे अच्छे फोटोज लिए थे, जैसे कि सूरज हमारे हाथ में आया है वैसे।
2: फोटोज भी लेते हैं। अच्छा, किस किस को यहाँ फोटो खींचना आता है, बोलो बोलो।
4: मुझे
18: मुझे
5: मुझे
18: मुझे
2: सबको आता है। अच्छा, और कितने टाइम से आता है आप लोगों को फोटो खींचना, मतलब अभी अभी सीखा है नया नया या पहले से आता है?
18: पहले से।
2: आप दोनों को
4: पहले से आता है?
5: पहले से,
2: पहले से। अच्छा अच्छा, ज्यादा अच्छी फोटो कौन खींचता है? सच सच बताना, सच्ची सच्ची बताना।
4: मैं खींचती हूँ सबसे अच्छी फोटो।
2: अच्छा
4: हाँ दीदी, मैं भी खींचती हूँ।
18: मैं भी खींचती हूँ,
2: वीडियो भी बना लेते हो? बाप रे। और आध्या?
5: मैं फोन से वीडियो बना लेती हूँ।
2: फोन से वीडियो बना लेते हो आप? अरे वाह, वेरी गुड। किस चीज की फोटो खींची आप लोगों ने जब घूमने गए थे तब?
4: दीदी मेरे पास एक कैमरा भी है।
2: अच्छा, तो उससे किस चीज की फोटो खींची आप लोगों ने?
4: मैं जब पहली बार माउंट आबू गया था तो मैंने उधर यूज किया था, अलग अलग जगह घूमने गए थे उधर अलग अलग जगह की फोटो खींची थी। मतलब वो पॉकेट कैमरा होता है ना वो वाला,
2: तो नेचर की फोटो खींची थी। ओके, और आप लोगों ने किस चीज की फोटो खींची?
4: जब मैं अग्रोवा गया था तब मेरी बहन और मैंने सेल्फी ली थी एक साथ
2: सेल्फी ली थी। हाँ, सेल्फी लेने भी सब लोग अपने, जिनको आप प्यार करते हो, जिनके आप फैमिली के साथ जाते हो, उनके साथ फोटो खींचते हैं ना। तो आप लोग और नेचर की फोटो कौन कौन खींचता है यहाँ पे? सब लोग खींचते हो?
18: दीदी मुझे नेचर की फोटो खींचना बहुत पसंद है।
4: दीदी नेचर है ना, मतलब ऐसे बहुत कलरफुल होता है, मतलब जब सूरज सनसेट हो रहा होता है तो भी बहुत अच्छा लगता है, सन उग रहा होता है तो भी अच्छा लगता है, जब मतलब नाइट हो रही होती है तो भी अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब फोटो खींचता हूँ।
2: ओके, और आप लोग नेचर की फोटो खींचते हो कोई? आप खींचते हो? किस चीज की खींचते हो?
4: जैसे एक बार रेनबो आया था तो खींच ली थी, और कभी कभी जैसे सनसेट होता है तब खींच ली ऐसे।
2: अरे वाह, वेरी गुड। और रेनबो देखा आपने तो कैसा लगा?
5: जैसे मटकी लेके खींचते वो वाला,
2: मटकी लेके फोटो खींची। अच्छा, तो उन्होंने ड्रेस दी होगी जो फोटो खींचते हैं ना, आपको भी दी थी, आपकी तो छोटी सी ड्रेस होगी, है ना? ओके, रेनबो कैसा लगा?
4: बहुत अच्छा लगा,
2: है ना? रेनबो के बारे में तो पढ़ते हैं ना स्कूल में, रियल में रेनबो किस किसने देखा है?
4: मैंने
2: सबने देखा है रेनबो।
18: दीदी
2: कैसा लगता है रेनबो?
18: रेनबो एकदम कलरफुल होता है, नीचे के कलर्स जो होते हैं ना एकदम लाइट लाइट होते थोड़े बहुत।
4: दीदी मैंने सबसे रेयरेस्ट रेनबो देखा है, मैंने बुक में पढ़ा था जब एक रेनबो के ऊपर एक और रेनबो आता है तो वो बहुत रेयरेस्ट दिखता है, वो मैंने देखा था दो रेनबो एक साथ।
2: कहाँ पे?
4: मैं खेल रहा था बैट, मैंने तब देखा था।
2: यहीं पे माउंट आबू में?
4: नहीं, उधर हरियाणा में।
2: हरियाणा में देखा था आपने, वाओ। शिक्षा ने देखा है रेनबो?
18: दीदी देखा है रेनबो, बहुत सुंदर लगता है। हमारे एक बार बारिश हुई थी ना, हम छत पे गए थे, बारिश में तो जाना अच्छा लगता है छत पे, तो हम लोग है ना बारिश हो रही थी, मम्मी ने बोला छत पे नहीं जाओ भींग जाओगे बीमार हो जाओगे, फिर भी हम लोग छत पे गए, बारिश हो रही थी और रेनबो भी निकला था बारिश होते ही में।
2: कितना सुंदर लगता है ना?
18: बहुत सुंदर लग रहा था, ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंदे आ रही थी और बादलों से थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही थी,
2: तब तो और अच्छा लगता है,
18: बहुत सुंदर लग रहा था।
2: आपने कहाँ देखा?
5: मैं घर पे छत पे गई तो जब मैं नहा रही थी तो मैंने रियल में रेनबो देखा,
2: छत पे देखा, बारिश में देखा, मजा आया होगा ना देख के।
4: मैं जब बाहर बैडमिंटन खेल रहा था मेरे दोस्तों के साथ तब मैंने देखा था, बहुत अच्छा लगा था।
2: बहुत अच्छा लगता है ना, सारे कलर्स दिखाई देते हैं, है ना? आपने आधे देखा है रेनबो? देखा है कहाँ? देखा
5: गली में,
2: गली में खेलते खेलते आपने भी? अरे वाह, वेरी नाइस।
18: दीदी मैं जब पांडवन गई थी ना उधर इतने सारे वो माउंटेन्स थे और इतना मस्त उधर जो नेचर था ना उसकी बहुत अच्छी फोटोज निकली और उधर का एटमॉस्फेयर भी एकदम ठंडा था,
9: से ज्यादा।
2: अच्छा, ठंडी में घूमना अच्छा लगता है कि गर्मी में घूमना अच्छा लगता है?
18: दीदी ठंडी में।
9: दीदी ठंडी में।
5: दीदी ठंडी में। दीदी ठंडी में।
10: गर्मी में।
2: गर्मी में अच्छा लगता है आपको?
4: दीदी स्प्रिंग्स में घूमना अच्छा लगता है क्योंकि जब ठंड होती है तो हम सोचते हैं काश धूप होती, और जब समर होता है सोचते हैं काश ठंड होती, तो इसीलिए स्प्रिंग।
2: ओके, आपको गर्मी में क्यों अच्छा लगता है? सबने तो ठंडी बोला, क्या अच्छा लगता है गर्मियों में? क्यों अच्छा लगता है आपको
10: गर्मियों में? ठंडी ठंडी एसी की हवा आती है और आराम से घर पे बैठते हैं सारे साथ में खेलते हैं घर पे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
2: सब साथ में खेलते हैं वो भी अच्छा लगता है ना? हाँ, घूमने में तो साथ में खेलना भी तो होता है, इस बारे में तो किसने बात ही नहीं करी। एकदम करेक्ट बोला आपने। जब घूमने जाते हो तो क्या खेलते हो ये बताओ?
9: मैंने ना जब मैं ट्रेन में बैठी थी तब हमने टाइम पास के लिए कार्ड्स खेले थे। दीदी हम जैसे कि कभी बस या ट्रेन में कहीं जा रहे होते हैं, बोर हो रहे होते हैं, अगर फैमिली साथ में होती है तो उनको जैसे तैसे मना के बोलते थे प्लीज अंताक्षरी खेलो या है ना, हम ऐसे खेलते हैं तो गाने की खेलते हैं, तो पता है सब लोग इतने खुश होते हैं, पहले नहीं मैं नहीं गाऊंगी आप गाओ ऐसे करते हैं, बाद में हमें तो चांस ही नहीं मिलता वो खुद ही अपने वो शुरू हो जाते, फिर आराम से चलते रहते, पता ही नहीं चलता कि कब पहुंच गए हम।
2: हाँ, फिर सब गाने लगते हैं ना?
9: सब गाते हुए जाते हैं,
2: पहले शुरू नहीं कर रहा होता है कोई?
9: कोई नहीं करता शुरू, शुरू हमें करना पड़ता है। हाँ, एंड तो पता ही नहीं चलता,
2: पता ही नहीं चलता। और आप लोग क्या खेलते हो जब घूमने जाते हो? तो
5: ट्रेन में बैठे होते हैं और मैं टॉय ले लेती हूँ खेलने के लिए, जैसे कि माउंट आबू आई हूँ तो वहाँ पे टॉय ले लेती हूँ ट्रेन में निकाल के खेल लेती हूँ।
2: कौन से टॉयज हैं आपके पास?
5: डॉल
2: है। डॉल के साथ खेलते हो गाड़ी में? अरे वाह,
5: यहाँ भी डॉल,
2: यहाँ भी लेके आए अपनी डॉल को? अरे वाह, उसका कुछ नाम भी है? क्या नाम है? साइनी। अरे वाह, आपने रखा? अरे वाह, नाम तो बड़ा यूनिक है।
11: और आध्या क्या खेलती है?
5: टॉयज में।
2: हाँ, मतलब रास्ते में जैसे आप घूमने जा रहे होते हो तो कुछ गेम्स खेलते हो आप, या टॉयज के साथ लेके आते हो अपने साथ? टॉयज लेके चलते हो, लाते हो कि घर पे छोड़ के आते हो टॉयज, आप बता दो।
10: जब हम ट्रेन से माउंट आबू आ रहे थे तो हम थोड़ी देर कार्ड्स भी खेल रहे थे, थोड़ी देर फोन, ऐसे हमने कई देर टाइम पास किया।
2: अच्छा, कार्ड्स में क्या खेलते हो?
10: कार्ड्स में ऊनो।
2: ऊनो खेलते हो ना? हाँ, ऊनो तो पता है कितना पुराना गेम है, हम लोग भी खेलते थे बहुत पहले, जब कजिन सब लोग मिलते थे ना तब खेलते थे।
4: दीदी मैं ऊनो खेलता हूँ, और जैसे ऊनो के लिए कोई खेल नहीं रहा होता तो जो हमारे पास में जो बच्चे बैठे होते हैं तो हम उनसे पूछते हैं खेलोगे क्या, तो हम फिर हम सबकी दोस्ती हो जाती है, फिर हम खेलते रहते हैं ऐसे।
2: अच्छा, जो नए बच्चे मिलते हैं मतलब ट्रेन में जिनको नहीं जानते। ओके
9: दीदी, उनो ये इतना इंटरेस्टिंग है ना, जब हमने उनो फर्स्ट टाइम मेरे और मेरे भाई ने स्टार्ट किया था खेलने के लिए, तब उसमें इतना मजा आ रहा था कि हम रोज ही उनो खेल रहे थे।
2: ओके, तो ट्रैवल के टाइम मतलब खेलते भी हो। अच्छा, कोई ऐसी चीज है जो आपको घूमने के बारे में अच्छी नहीं लगती या मजा नहीं आता करने में, ऐसा कुछ?
5: रोड पे।
2: रोड पे मजा नहीं आता? क्यों?
5: क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता।
2: अच्छा नहीं लगता, क्या बुरा लगता है उसमें से? स्पीड में जा रहा होता है इसलिए, या फिर बोर हो जाते हो? बोर हो जाते हो अंदर अंदर बैठे बैठे? ओके।
9: दीदी मुझे बस में अच्छा नहीं लगता क्योंकि बस में ना मुझे चक्कर आके उल्टी होने जैसे होता है।
5: मेरे को कार में।
2: कार में होता है, तबियत ठीक नहीं लगती है?
9: और कार में मुझे भी होता है।
2: तो अगर तबियत ठीक नहीं लगती है तब तो बहने ही अच्छा लगता है।
5: मैं पापा से बोलती हूँ पापा सोने वाली बस में चलो,
2: जिसमें लेट जाते हैं ना,
5: बेड वाली
2: उसमें फिर ठीक लगता है ना? ये तो अच्छा आइडिया है।
4: दीदी मतलब हमको इधर से हरियाणा जाना होता है या फिर हरियाणा से इधर आना होता है ना, तो हम पूरा दिन गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। मतलब हम सुबह 2 या 4, 6 ऐसे बजे निकलते हैं और रात को जाके हम 12, 1, 2 इतने बजे पहुँचते हैं।
2: तो बहुत लंबा हो जाता है।
4: 2 या 1 दिन निकल जाते हैं,
2: है ना, बहुत लंबा हो जाता है ना। फिर क्या करते हो इतने देर?
4: दीदी हम तो दीदी सब सो जाते हैं, मैं ऐसे उठ के सबको देख रहा होता हूँ, मेरे को नींद ही नहीं आती है।
2: रात को भी नींद नहीं आती?
4: रात को आती है।
2: रात को आती, दिन भर नहीं आती ना, बोर हो जाता है थोड़ा सा। आपको क्या लगता है?
10: दीदी मुझे ट्रेन में जो बड़ा सफर होता है ना कई देर का, वो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें मैं बोर हो जाता हूँ और मेरे को रात को नींद भी नहीं आती उसमें।
2: रात को भी नींद नहीं आती, हिलती रहती है ट्रेन।
5: बैठने वाली ट्रेन में,
2: बैठने वाली
5: ट्रेन, दूर का रास्ता।
2: दूर का रास्ता नहीं अच्छा लगता? अच्छा लगता है? नहीं लगता, पास वाला अच्छा लगता है ना, जल्दी जल्दी पहुंच जाए। पर यहाँ से हिसार से तो यहाँ आने में टाइम लगता है ना, फिर क्या करते हो, गेम्स खेलते हो?
4: दीदी कई बार है ना ट्रेन में नींद भी नहीं आती, जैसे अपा कई दिनों से अपने घर वाले बेड पे सो रहे होते हैं तो उसके बाद अपा उधर सोएंगे तो अपा को नींद नहीं आती क्योंकि वो अलग होता है इसीलिए।
2: बिल्कुल, अपने बेड पे नींद आती है कई बार ना।
9: दीदी आप कहाँ घूमने गए हो जरा बताओ?
2: मैं आपको लास्ट में बताऊंगी एपिसोड के, ठीक है?
9: पक्का?
2: पक्का, प्रॉमिस।
9: ठीक है
2: ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, आप लोग जब घूमने गए थे तो बेस्ट चीज कौन सी देखी जो आपने पहले कभी नहीं देखी थी?
19: भूलभुलैया।
2: भूलभुलैया कहाँ पे है? लखनऊ में है वो तो। कैसा लगा वहाँ पे, घूम गए थे क्या वहाँ पे? है ना बहुत सारे दरवाजे है ना
19: के वो मामी मा।
2: वहाँ तो कितने सारे दरवाजे है ना जो एक जैसे लगते हैं एकदम, है ना? आप लोगों ने भूलभुलैया के बारे में सुना है बाकी लोगों ने? अगर देखा नहीं है तो सुना तो होगा।
4: दीदी पहले आनंद सरोवर में था तो मैं उधर एक बार खो गया था।
2: हाँ, और जो लखनऊ में भूलभुलैया है ना बहुत पुरानी है, उसमें ना इतने सारे दरवाजे हैं, इतने सारे रूट्स हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से निकल रहे हो और कहाँ जाना है तो पूरा कंफ्यूजन हो जाता है, इतने सारे सेम सेम रास्ते हैं वहाँ पे।
4: तो निकलते कैसे हैं
2: वहाँ पे? आपके साथ अब गाइड रहते हैं जो आपको बताते हैं, थोड़ी देर छोड़ देते हैं कि आप ढूंढो, पर मोस्टली ढूंढना मुश्किल होता है, दरवाजा नहीं मिलता, अंदर खो जाते हैं।
9: दीदी मुझे ना इधर एक हंटर हाउस में गए थे हम, उधर बहुत मजा आया और एक ट्रेन भी थी उस साइड पे, मतलब जो बच्चों वाली ट्रेन होती है उससे थोड़ी अलग थी और वो रियल टाइम इसलिए स्लो चलने लगी और बाद में गुफा के अंदर भी गई।
2: कहाँ पे थी ये ट्रेन?
9: वो ट्रेन इधर ही कहीं तो थी राजस्थान में, जब हम एक मतलब पार्क घूमने गए थे उधर।
2: ओके।
9: और जो हंटर हाउस था ना उधर उसमें बहुत डर लग रहा था, मतलब आगे भी नहीं चल रही थी।
2: हाँ,
9: और एक की पोल भी खुल गई
2: कि वो कौन है पता चल गया ना। और शिक्षा को क्या अच्छा लगा था सबसे ज्यादा? आपने तो उज्जैन का बताया था।
9: दीदी मुझे तो ज्यादा नदियाँ वगैरह ये चीजें अच्छी लगती हैं, कहीं भी जाते हैं ना तो बस मेरे को तो बैठे रहो उसी में,
2: बस वहीं बैठे रहो।
9: हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब कुछ है ना खाने के लिए लेके जाओ तो मछलियों को खिलाओ तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो आ जाते हैं साथ में, बस उनको पकड़ तो नहीं सकते।
2: पकड़ तो नहीं सकते। हाँ। ना? नहीं तो उनको भी तो हर्ट होता है फिर। पर देखने में मजा आता है ना।
9: हाँ बाकी वो बहुत सुंदर लगते हैं,
2: बहुत सुंदर लगते हैं। आपको क्या अच्छा लगा था सबसे ज्यादा?
10: जब हम ट्रेन में आ रहे थे तो हमने कई सारे एनिमल्स देखे थे।
2: अच्छा,
10: जैसे कैमल्स, पीकॉक और भी कई तरह के एनिमल्स।
2: तो वो सबसे अच्छा लगा था आपको? फेवरेट एनिमल कौन सा है आपका?
10: मेरा फेवरेट एनिमल लायन।
2: ओह लायन, तुम
19: पीकॉक मेरा क्या है?
2: ओके, पर लायन तो थोड़ा मुश्किल है ना देखना, बहुत सारी जंगल सफारीज होती है।
10: और लेपर्ड।
2: लेपर्ड हाँ वो भी थोड़ा रेयर है देखना।
4: दीदी लेपर्ड, लायन और टाइगर।
2: हाँ बहुत सारी चीज है। आपको सबसे अच्छा क्या लगा था घूमने गए थे तो, बेस्ट चीज जो आपने देखी थी? आराध्या को याद है कि उसने क्या देखा था जो सबसे अच्छा लगा? कोई चीज जो देखने में आपने देखा पहली बार देखा ये तो मैंने ऐसा लगाओ। कोई बात नहीं, बाद में बता देना ठीक है।
9: दीदी मैं ना अभी एक ट्रिप को गई थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, मतलब स्कूल लेके जा रही थी, वो सांगली में थी और उधर एक विस्परिंग टीकर का नाम था और जब से हम अंदर गए ऐसे फॉरेस्ट जैसी लग रहा था पूरा। और उधर जैसे भी उन्होंने नाम लिखा था वो भी पेड़ के एक इस पे लिखा था, मतलब उधर जो लकड़ियां थी उस पे नाम लिखा था उन्होंने। और अंदर बोटिंग की, फिर वो ऊपर से ऐसे लकड़ियां लगाया हुआ थोड़ा होता है, फिर उसमें चलना बहुत डर लगता है ना, उधर चले। फिर रेन डांस किया, स्विमिंग पूल में गए और मतलब जैसे फाउंटेन होता है ना वैसे उन्होंने क्रिएट किया था, बहुत मजा आया उधर।
2: तो सबको अलग अलग चीजें देखने में मजा आता है ना, किसी को एनिमल्स अच्छे लगते हैं, किसी को रेनबो अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है, नेचर अच्छा लगता है, किसी को ट्रेन्स अच्छी लगती है, और बहुत सारी चीजें है ना जो हमें अच्छी लगती है घूमने जाने पे, और कुछ सीखने को भी मिलता है ना। हमारे इंडिया में इतना रिच हिस्ट्री है मालूम, कितना कुछ है, जो जैसे आप महल देखते हो बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े, तो वहाँ पे हमें जो राजा हुए थे पहले उनके बारे में जानने को मिलता है।
19: दीदी आपने वहाँ पे आपने उस दिन मूवी देखी थी बाबा की?
2: हाँ वो तो मैंने पहले देखी थी, बहुत पहले, लेकिन
4: दीदी पहले इंडिया में ना इतना सोना होता था कि ना अंग्रेज ने पूरे घर भर लिए थे तो भी ना इंडिया का सोना खत्म नहीं हुआ था।
2: बिल्कुल, इंडिया बहुत रिच कंट्री थी हमेशा से, अभी भी कल्चरली बहुत रिच है और जीडीपी भी इंडिया का अभी बहुत आगे जा रहा है,
4: अभी
2: ग्रोथ बहुत अच्छी है।
4: सेवंथ कंट्री है,
2: अभी तो फोर्थ हो रही है।
4: हाँ, फोर्थ कंट्री है। और जब पहले तो कितना सारा पैसा होगा, अगर अभी इतना सारा पैसा है तो।
2: और पता है कितनी यूनिक यूनिक चीजें, जैसे आपने भूल भुलैया के बारे में बताया ना, तो वो जो बिल्डिंग्स बनी है आपको पता है वो कई तरह की दाल और उन चीजों से लेके बनी है, ईंटों से नहीं बनी है वो। तो सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग है, इतने सालों से बनी है लेकिन दालों से बनी है। तो हिस्ट्री इंडिया की बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार।
4: दीदी कोहिनूर ना पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही था, वो भी इंडिया के पास था, पर लंदन ने चुरा लिया था उसको।
2: हाँ, ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया में तो बहुत सारी चीजें इंडिया की बाहर चली गई। तो आप लोग जब घूमने जाते हो नेचर भी देखो, हिस्ट्री भी देखो और नई नई चीजें लर्न भी करो।
19: आपने देखा था शरीर छोड़ दिया था गांधी जी ने?
2: हाँ, उसके बारे में भी आप देखो म्यूजियम्स वगैरह में जाते हो ना, तो कैसे क्या हुआ था वो भी बताया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं हिस्ट्री में जो हुई। बोलिए
9: दीदी, वो अपने पांडवन में हिस्ट्री हॉल देखा है?
2: हाँ बिल्कुल,
9: इतना अच्छा है ना, उधर सब बताया गया पहले क्या हुआ था कैसे हुआ था।
2: बिल्कुल, तो
19: आप यहाँ पे ओम घूमने गए थे? ओम,
2: हाँ जी, मैं यहाँ पे कभी कभी बीच बीच में घूमने जाती हूँ। और आप लोगों ने पूछा था ना मैं कहाँ मुझे अच्छा लगता था घूमना।
9: यस yes.
2: तो क्योंकि हम एपिसोड को अभी बाय बाय करने का टाइम आ गया है तो मैं बता देती हूँ, मेरी फेवरेट प्लेस वैसे तो बहुत सारी है लेकिन हम गए थे एक बार, आपको पता है इंडिया में आइलैंड्स भी हैं, है ना?
9: यस yes.
2: तो हम वहाँ पे गए थे लक्षद्वीप आइलैंड्स, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो वहाँ पे बहुत सुंदर इंडियन ओशन है ना बड़ा, तो वहाँ पे जो पानी पानी इतना सुंदर दिखता है और वो जो लैंड है वो भी बड़ा यूनिक है, बहुत छोटा सा है मगर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं और बोट हैं पुरानी पुरानी और बीचेस है जो बहुत सुंदर लगते हैं।
4: दीदी आप आइलैंड के बीच में बोट से गए थे?
2: से भी गए थे और किनारे बैठ के देखा भी। और राजस्थान भी अगर घूमा ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, उदयपुर के महल, जयपुर के महल।
19: दीदी आपने जब छपरा गए थे तो आपने वो देखा था बहुत बड़ा, मेरे घर बहन के घर के पास है वो बहुत बड़ा सा वो गंगा।
2: हाँ वो तो नहीं देखा मैंने, अब जाना पड़ेगा मुझे देखने के लिए।
19: वहाँ पे बोट घूमने के लिए नहीं देते, दूसरे गाँव ले जाते हैं।
2: कोई बात नहीं, हम दूर से देख लेंगे, है ना, लेकिन बहुत कुछ सीखने को जानने को तो राजस्थान में भी मिलता है, पूरे इंडिया में मिलता है। फिलहाल वक्त हो गया है बाय बाय करने का, हम लोग एक ही रूम में बैठे बैठे बहुत सारी जगह घूम आए हैं, तो अभी हम अपने दोस्तों को करते हैं गुड बाय और उनको करते हैं विश कि वो भी अलग अलग जगह घूमें देखें और सीखें। तब तक के लिए बाय बाय।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वो बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वो सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वो भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। एक और नया शानदार दिन खेलने के लिए।
7: छोटी बड़ी बातें, इनमें छुपी है बच्चों के दिल की बात। छोटी

0: बच्चों के साथ खेलने के लिए हमें बाजार के खिलौने नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी कल्पना और अपने आसपास की चीजें। जैसे कल जब मैं घर से निकल रहा था, मैंने देखा मेरी बेटी बाहर बैठ के दो लकड़ियों के साथ खेल रही थी। मैंने पूछा कि वो क्या खेल रही हैं, तो उसने बोला, पापा ये मेरे दोस्त हैं और हम उछलने वाला खेल खेल रहे हैं। किसकी जंप सबसे ऊंची है? ये सुनकर मैंने पास पड़ी एक और लकड़ी उठाई और बोला, एक और दोस्त भी खेलना चाहता है तुम सबके साथ। बस फिर क्या, कूदना और छलांग लगाना शुरू। तो थोड़ी सी कल्पना, लकड़ी के दोस्त और बाप बेटी का बन गया एक मजेदार खेल। सिर्फ घर में और घर के बाहर आम पाई जाने वाली चीजें बिना बाजार के खिलौने के। मेरी बेटी और मुझे खूब मजा आया। चलो सुनते हैं आज एल्मो और उसके पापा क्या खेल खेल रहे हैं।
1: एल्मो, चलो मिलके एक कहानी बनाएं। अच्छा तो चलो फिर हम पहेलियां बूझें।
2: नहीं पापा, एल्मो को कुछ अलग खेलने का मन है।
1: क्यों ना हम दोनों मिलके एक सुंदर सा महल बनाएं?
2: ओ महल। सुंदर सा और बड़ा सा महल।
1: बिल्कुल, सुंदर सा और बड़ा सा महल।
2: हाँ, पर एल्मो और पापा महल कैसे बनाएंगे?
1: हम महल बनाएंगे घर में रखी चीजों से। चलो एल्मो, साथ मिलके महल बनाने की चीजें खोजते हैं।
2: ये, एल्मो तैयार है पापा।
1: महल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा?
2: पापा, एल्मो को बताएं। कुर्सियाँ? हाँ पापा, कुर्सियाँ बनेंगी महल की दीवारें।
1: बहुत बढ़िया, अब महल में क्या लगाना चाहिए एल्मो?
2: अब एल्मो और पापा बनाएंगे महल की छत।
1: अरे हाँ, छत तो बहुत जरूरी है, मगर छत कैसे बनेगी?
2: एल्मो अभी आया। पापा पापा, एल्मो को मम्मी का ये दुपट्टा मिला, हम इससे छत बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये दुपट्टा बांधा दोनों कुर्सियों पे और ये बन गई
2: छत। महल में और क्या होता है एल्मो को बताओ ना।
1: एक बड़ी सी मीनार एल्मो बनाएगा और एक बड़ी सी मीनार मैं भी बनाऊंगा। चलो घर में सामान देखते हैं और मीनार बनाते हैं।
2: हाँ।

0: खाली गत्ते के डब्बों से।
1: वाह पापा, चलो मिलके दीवार बनाएं।
0: बस इनको एक साथ चारों ओर
1: लगा दिया। एल्मो को बहुत मजा आ रहा है। पापा, एल्मो को एक और चीज पता है।
0: क्या?
1: महल में सिपाही भी होते हैं जो महल की सुरक्षा करते हैं। एल्मो को पता है कि वो कैसे बनाने हैं। हाँ।
0: कैसे?
1: एल्मो अभी आया। एक, दो, तीन, चार, इतने काफी हैं। तरा, ये देखो पापा, लकड़ी की डंडियां है सिपाही।
0: अरे वाह, इतने सारे सिपाही, वाह। एल्मो, मेरे पास एक और आइडिया है। महल का तालाब बना सकते हैं, सोचो कैसे। मम्मी के नीले दुपट्टे से।
2: लुई एल्मो के साथ मिलकर इतना शानदार, सुंदर और बड़ा महल बना के कैसा लग रहा है, और वो भी बिना किसी बाजार के खिलौने के।
0: महल बनाने में एल्मो और मुझे, हम दोनों को बहुत मजा आया। घर में रखी चीजें, थोड़ी सी कल्पना और एक दूसरे की मदद से हम दोनों ने महल तैयार कर दिया। मार्केट से खरीदे हुए खिलौनों की जरूरत ही नहीं पड़ी।
2: बिल्कुल, हमारे आसपास का सामान खिलौना बन सकता है, जैसे कुर्सियों और दुपट्टे से बना महल।
0: हाँ बिल्कुल, चादर का तंबू बन सकता है, खाली डब्बों से ट्रेन और पेपर की गेंद बना के उंगली फुटबॉल खेल सकते हैं।
2: सही कहा, फूल, पत्ते, डंडियां हों या डब्बे, चम्मच, अखबार या दुपट्टा, बस बच्चों को देना है थोड़ा प्रोत्साहन और कल्पना का जादू, फिर खेल कहीं भी, कभी भी और किसी भी चीज से हो सकता है। बाजार के खिलौने की जरूरत ही नहीं, बस घर में और घर के बाहर आम पाई जाने वाली चीजें और खेल शुरू। तो चलो खेलें सब संग।
3: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, UBS ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

0: उठो जागो अपना भाग्य संवारो। ये समय है जागने का, जागृति लाने का। ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का। ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है।
1: किस्मत

सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू। पहला पाठ, ईंटों से बनी इमारत। पृष्ठ 1, बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी, तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना थी। जमाल, कालू और पीआर नाम के राजमिस्त्रियों को ये काम पूरा करना था। वो स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुर्शीद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए। चित्र देखें, यहां पर मुर्शीद कुली खान के पुराने मकबरे का चित्र बना है। इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना बड़ा सा फर्श है। इन्हें लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था। ध्यान से देखो कि दिए गए 5 फर्श पैटर्नों में ईंटें किस तरह सजाई गई हैं। यहां पर मकबरे के एक हिस्से का चित्र है और दाहिनी तरफ है पैटर्न 1 और पैटर्न 2। पृष्ठ 2, पैटर्न 3, पैटर्न 4 और पैटर्न 5। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर 3 पैटर्न दिखाए गए हैं। तुम्हें कौन सा फर्श पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है? रिक्त स्थान, क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? रिक्त स्थान। सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आए। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हमने तो इन्हें भुला ही दिया था। चलो हम भी इस स्कूल के फर्श पर कुछ नए नए पैटर्न बनाएं। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता था। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते और गाते हैं और नए नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं। इसी पृष्ठ पर निचले हिस्से में एक तरफ बच्चों का चित्र है और सबसे नीचे फर्श के अलग अलग पैटर्नों का चित्र बना है। पृष्ठ 3, इस पृष्ठ पर कुल 11 पैटर्नों के चित्र बने हैं, जो इस प्रकार हैं: पैटर्न क, पैटर्न ख, पैटर्न ग, पैटर्न घ, पैटर्न ण, पैटर्न च, पैटर्न छ, पैटर्न ज, पैटर्न झ, पैटर्न य और पैटर्न ट। अब तुम इन पैटर्न को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार में है? तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हो? अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ। पृष्ठ 4, ईंट का चित्र कैसे बनाएं? यहां एक ही ईंट के दो चित्र दिए गए। ईंट की एक ही सतह देख सकते हैं, दूसरे चित्र में 3 सतहें नजर आ रही हैं। उस चित्र पर गोला लगाओ जिसमें 3 सतहें नजर आ रही हैं। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर की तरफ दाहिनी ओर 2 ईंटों के चित्र बने हैं। एक ईंट में कितनी सतहें होती हैं? रिक्त स्थान, क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है? रिक्त स्थान। ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाओ। नीचे बनाई गई आकृतियों में से कौन कौन सी ईंट की सतह दर्शाती हैं? सही का निशान लगाओ। यहां पर त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज और अंडाकार कुछ आकृतियां दी गई हैं। इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है? सही का निशान लगाओ। यहां पर कुछ त्रिभुज चित्र बनाओ जिसमें उसकी 3 सतह नजर आएं। क्या तुम इस बॉक्स का ऐसा चित्र बना सकते हो जिसमें कि उसकी 4 सतह नजर आएं? इसी पृष्ठ पर सबसे नीचे की तरफ दाहिनी ओर एक ज्योमेट्री बॉक्स का चित्र बना है। पृष्ठ 5, ये दीवार गिर नहीं सकती। एक दिन मुनिया और जैनब ईंटों के साथ दोनों ने अलग अलग तरह की दीवारें बनाई। इसी पृष्ठ पर दाहिनी तरफ मुनिया की दीवार और बाईं तरफ जैनब की दीवार है। यहां पर जैनब और मुनिया द्वारा बनाई गई दीवारें दर्शाई गई हैं। जैनब ने कहा कि उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। मिस्त्री भी ईंटें एक के ऊपर एक नहीं रख सकते हैं,
जैसा कि मुनिया ने किया है। तुम्हें क्या लगता है, कौन सी दीवार ज्यादा मजबूत होगी, क्यों? ऐसी दीवारें ढूंढो जहां ईंटों के पैटर्न अलग अलग ढंग के हों, दीवार के अलग अलग पैटर्न। यहां ईंटों के तीन अलग अलग पैटर्नों के चित्र दिए गए हैं। क्या तुम ईंटों को रखने के तरीके में अंतर देख पा रहे हो? यहां पर ईंटों के तीन पैटर्न का चित्र है। अब हर दीवार की फोटो का मिलान यहां दिए गए सही चित्र से करो। इस पृष्ठ के सबसे नीचे दीवारों के तीन पैटर्न का चित्र है। पृष्ठ 6, झरोखे से झांको। जिन मिस्त्रियों ने जागृति स्कूल बनाया था, उन्होंने अलग अलग तरह के जाली के पैटर्न भी दीवारों पर बनाए। यहां पर जाली के विभिन्न पैटर्नों का चित्र बना है। यहां पर दिए गए दो चित्रों में तुम्हें जाली के कितने पैटर्न नजर आ रहे हैं? पृष्ठ 7, ये एक और सुंदर जाली का चित्र है। यहां पर एक जाली का चित्र बना है। यहां दी गई दीवार के कुछ ईंटों में लाल रंग भरो और अपना जाली पैटर्न बनाओ। क्या स्कूल के इस चित्र में झरोखा देख सकते हो? यहां पर स्कूल के एक झरोखे का चित्र बना है। यहां दी गई दीवार पर काले रंग से कुछ झरोखे बनाओ। इस पृष्ठ पर सबसे अंतिम भाग में एक दीवार का चित्र बना है। पृष्ठ 8, ये जाली केरल के एक पुस्तकालय की इमारत पर बनी है। यहां पर पुस्तकालय की एक जाली का चित्र है। ध्यान से देखो कि ईंटों के कोनों से किस प्रकार दीवार में त्रिभुज बनाया गया है। यहां पर ईंटों के कोनों से बना त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्या तुमने कभी ईंटों से बनी त्रिभुज की आकृति को देखा है? इस चित्र में पेड़ के आसपास लगी ईंटों को देखो। यहां पर वृक्ष के आसपास ईंटों से बनी क्यारी का चित्र है। ईंटें त्रिभुज के आकार में दिखाई पड़ रही हैं। क्या इस चित्र में तुम्हें मेहराब नजर आ रही है? ये चित्र फैजाबाद के एक स्कूल का है। पता करो, अपने आसपास और मेहराब ढूंढो और उनके चित्र बनाओ। इस पृष्ठ के अंतिम भाग में बाईं ओर एक मेहराब का चित्र बना है। पृष्ठ 9, क्या तुमने किसी पुल में मेहराब की आकृति देखी है? तुमने और एक पुल के ऊपर बने मेहराब का चित्र है, एक विशेष मेहराब। ये चित्र ओरछा से लिया गया है। देखो इसमें मेहराब की बनावट कैसी है। इसका नाम भी बहुत अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब। यहां पर एक और मेहराब का चित्र है। इस खिड़की की जाली सुंदर है ना, ये पतली ईंटों से बनाई गई है। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी हैं? आसपास देखो। पृष्ठ 10, जागृति स्कूल के मिस्त्रियों जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादाजी कई अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कुछ को चित्र में दिखाया गया है। यहां पर ईंटों का एक चित्र बना है। इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं? सबसे बड़ी ईंट की कितनी सतह नजर आ रही हैं? क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से अधिक सतह हैं? पता करो ईंट का आकार। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी हैं? एक ईंट को लेकर उसे मापो। क, उसकी लंबाई कितनी है, रिक्त स्थान। ख, उसकी चौड़ाई कितनी है, रिक्त स्थान। और ग, उसकी ऊंचाई कितनी है, रिक्त स्थान। मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है, उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी, रिक्त स्थान। ईंटें ही ईंटें भट्टी से निकली। गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्टी के पास रहते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये चिमनी कितनी ऊंची होगी? क, लगभग 5 मीटर। ख, लगभग 15 मीटर। और ग, लगभग 50 मीटर। यहां पर एक चिमनी का चित्र दिया गया है।
जिसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पृष्ठ 11। गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार को देखना अच्छा लगता है। वो ईंटों को बनते हुए भी देखते हैं। यहां पर धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार का चित्र है। नीचे ईंटों की भट्टी के चार चित्र दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से देखो। सही क्रम यहां लिखो। रिक्त स्थान। चित्र क, यहां पर बनी हुई ईंटों का चित्र बना है। चित्र ख, यहां पर ईंटें बनाई जा रही हैं। चित्र ग, यहां पर मिट्टी को ईंट बनाने वाले सांचे में डाला जा रहा है। जमीन से खोदकर निकाली गई मिट्टी से ईंटें कैसे बनाई जाती हैं? चित्र देखो और समूह में चर्चा करो। पृष्ठ 12। क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्टी देखी है? क्या तुमने कभी ये अंदाजा लगाया है कि वहां कितनी ईंटें हो सकती हैं? भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी हैं, हजारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज्यादा। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी है? इस संख्या को 100,000,000 कहते हैं। क्या तुम इसे लिख सकते हो? अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने 100,000 की संख्या कहां सुनी है। पता करो, इस चित्र को देखो और अंदाजा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं। किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। यहां पर ट्रकों के दो चित्र दिए गए हैं जिसमें ईंटें लदी हुई दिखाई दे रही हैं। मन ही मन गणित। भजन ने ईंटें खरीदी। भजन ईंटें खरीदने गया। उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1,000 ईंटों के हिसाब से होती है। अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। पुरानी ईंटें

0: 1800 रुपए प्रति हजार ईंटें। ईटापुर की नई ईंटें 1800 रुपए प्रति हजार ईंटें। ब्रिकाबाद की नई ईंटें 2000 रुपए प्रति हजार ईंटें। भजन ने ब्रिकाबाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। उसने 3000 ईंटें खरीदी। उसने कितने पैसे दिए? रिक्त स्थान। अगर वो 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? चींटा बोला,
1: इसे बिना लिखे करो।
0: इसी के साथ पहला पाठ ईंटों से बनी इमारत यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलैंड लिंगदोह, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आशा करूंगा आज 25 सितंबर की बातें आपसे शेयर करूंगा और आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। वामन जयंती, पद्मा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए बात करते हैं, आज 25 सितंबर है और दीनदयाल उपाध्याय, चौधरी देवलाल, सतीश धवन, फिरोज खान, जगमोहन मल्होत्रा, अजय कुमार मिश्रा, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही कन्हैयालाल नंदन, सुदर्शन सिंह चक्र, रुक्माबाई प्रफुल्ल चंद्र सेन, जन कृष्णमूर्ति, एसपी बालसुब्रमण्यम, सभी का पुण्य दिवस है। आइए आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक सुंदर विचार के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप भी, अगर कोई प्रेरणादायी विचार आपके मानस पटल पर आता है तो ज़रूर हमें सुनाइएगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और कहते हैं कि ज़िंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। हमेशा धूप छाँव को झेलते हुए आगे बढ़े तो मजबूती आएगी, सिर्फ छाँव ही छाँव में जाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ सफ़र। तो लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत में आप सबके लिए हमारे सभी लिसनर्स जो हैं, कुपाराम जी, सुरेश जी एंड कंपनी, सभी सुरेश और लक्ष्मणराम जी और सुरेश जी और हमारे विशेष मित्र जो हैं सुभाष जी जलगांव से, भूपत सिंह जी सिद्धपुर से, फिरोज जी और जागीरदार जी और सभी को याद करते हैं, मदन मोहन, मदन भाई जी को और हमारे दूसरे मंडाली से कंचन भाई और सभी को याद करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। विभा जी, हर्षिता जी, सुगना बहन और हमारे जनाब जी और खुशी जी भी याद करते हैं, कभी कभी अंजिता जी भी याद करते हैं, बहुत कम इनके फ़ोन आते हैं। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि आप सभी मैसेज करके ज़रूर याद कीजिए और ढेर सारी खुशियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत में आप सबके लिए ये गीत अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सफर इस कार्यक्रम में हम लोग आज विशेष बातें करेंगे कुछ खास लोगों का जिनके बारे में मैंने बातें की आपको। दीनदयाल उपाध्याय, चौधरी देवीलाल, सतीश धवन, फिरोज खान, जगमोहन मल्होत्रा, अजय कुमार मिश्रा। तो आइए इनमें से दीनदयाल जी की बातें आपसे शेयर करूंगा। दीनदयाल जी को आज भी याद किया जाता है उनके सामाजिक सेवा के लिए। और पंडित दीनदयाल भारतीय जनसंघ के नेता थे, एक प्रखर विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन पर्यंत अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी व सत्यनिष्ठा को सामने रखा और भारतीय के लिए वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के सूत्र भी रहे। दीनदयाल उपाध्याय मजहब और संप्रदाय के आधार पर भारतीय संस्कृति का विभाजन करने वालों को देश के विभाजन का जिम्मेदार मानते थे। वे हिंदू राष्ट्रवादी तो थे ही, इसके साथ ही वो भारतीय राजनीति के पुरोधा भी थे। दीनदयाल की मान्यता थी कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक एकात्म मानववाद इंटीग्रल ह्यूमेनिज्म्स है, जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की समलोचना ही की गई है। और एकात्म मानववाद में मानव जाति की मूलभूत आवश्यकता और सृजन कानूनों के अनुरूप राजनीतिक कार्रवाई हेतु एक वैकल्पिक संदर्भ दिया गया है। तो आइए दीनदयाल उपाध्याय का 25 सितंबर 1916 को यानी आज के दिन ब्रज में पवित्र क्षेत्र मथुरा जिले में छोटे से गाँव नगला चंद्रभान में हुआ था। दीनदयाल के पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय और इनकी माता जी का नाम राम प्यारी था, जो भारतीय धार्मिक और प्रवृत्ति की थी। और रेल की नौकरी होने के कारण उनके पिता का अधिक समय बाहर बीतना हो जान बाहर ही रहना होता था और पिता कभी कभी छुट्टी पर मिलते थे और घर आते थे। थोड़े समय बाद ही दीनदयाल के भाई ने जन्म लिया, जिसका नाम शिवदयाल रखा गया। और पिता भगवती प्रसाद ने अपनी पत्नी व बच्चों के मायके भेज दिया। उस समय दीनदयाल ने नाना चुन्नीलाल शुक्ला दनखिया में स्टेशन मास्टर थे और मामा का परिवार बहुत बड़ा था। दीनदयाल अपने ममेरे भाई के साथ खाते पीते खेलते बड़े हुए। वे दोनों ही राम प्यारी और दोनों बच्चों का खास ध्यान रखा करते थे। और 3 वर्ष की उम्र में ही दीनदयाल पिता के प्यार से वंचित हो गए। और पिता की मृत्यु में राम प्यारी को अपना जीवन अंधकार में लगने लगा। वे अत्यंत बीमार रहने लगे, उन्हें बीमारी हो गई, उन्हें टीवी हो गई। 8 अगस्त 1924 को राम प्यारी बच्चों का खेल छोड़कर ईश्वर की प्यारी हो गए। और 7

की कोमल अवस्था में आप समझ सकते हैं दीनदयाल माता पिता से वंचित हो गए और 1934 में बीमारी के कारण दीनदयाल के भाई का भी देहांत हो गया। इस तरह ये अकेले हो गए और गंगापुर में दीनदयाल ने मामा राधा रमन जहाँ रहते थे उनके साथ रहकर उनके परिवार के साथ ही गांव में पढ़ाई का प्रबंध इतना अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने किया और फिर शिबू को पढ़ाई के लिए मामा ने गंगापुर भेज दिया। गंगापुर में दीन की प्राथमिक शिक्षा का शुभारंभ हुआ और फिर रामधारण की भी आय कम और खर्च अधिक था। अपने बच्चों का खर्च और साथ में दीना और शिबू का रहन सहन और पढ़ाई के खर्च का भी उन्हें देखना पड़ता था। तो इस तरह से बड़ी मुश्किल से चुन्नीलाल ने दीनदयाल की शिक्षा दीक्षा कराई, लेकिन वो भी ज़्यादा समय तक नहीं रहे और उनका भी देवासन हो गया। दीन के मन पर गहरी चोट लगी, इस दुख से उभर भी नहीं पाए थे कि माया राधा रमन बीमार पड़ गए और वेद ने बताया कि उन्हें टीबी की बीमारी हो गई है और उनका बचना मुश्किल है। वेदों की औषधि से उनको औषधि देना मना कर दिया, ऐसे स्थिति में क्या किया जाए यह समझ सकती है। और लखनऊ में उनके संबंधी रहते थे, उनके लखनऊ में इलाज की अच्छी व्यवस्था थी, किंतु उन्हें वहाँ कौन ले जाए यही समस्या थी। और कहीं ये छूत की बीमारी किसी और को न लग जाए, इससे भी लोग जो है पास आने से डरते थे। दीना बराबर मामा की सेवा में लगे रहा और मामा के मना करने पर भी वह नहीं मानता था। और मामा का लड़का मनवारी लाल भी दीना के साथ पढ़ता था, किंतु वह पिता के पास जाने से वक्त भी छूत की बीमारी से डरता था, इसलिए वो नहीं आता था। और दीन की आयु जब 11-12 वर्ष की हो गई तो वह भी अपने मामा की लखनऊ में जाने के लिए तैयार हो गया और मामा ने बहुत मना किया, दीन नहीं माना और अंत में मामा को दीन को लेके ही जाना पड़ा। लखनऊ में मामा का उपचार चलता रहा और दीन ने डॉक्टर मामा की सेवा की, परीक्षा भी पास हो गई और पास आ रहे थे, किंतु उसे मामा की सेवा के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। बीरवन के होत चिकने पात वाली कहावत को उसने चरितार्थ किया। दीन ने परीक्षा में सर्वोत्तम अंक पाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया और ये सभी के लिए आश्चर्य और प्रसन्नता की बात थी। तो आइए इस तरह से पढ़ाई और बीमारी की सेवा इस तरह से करते करते बड़ी बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए उन्होंने पढ़ाई की। आइए आगे बढ़ते हुए उनकी जीवन कहानी की कुछ और बातें आपसे शेयर करूंगा। अभी आप सुना है रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बात कर रहे थे हम लोग विशेष दीनदयाल जी के बारे में, और दीनदयाल जी की पढ़ाई दीक्षा वगैरह जैसे तैसे जो है संघर्ष के साथ, लेकिन पढ़ने में इतने होशियार थे कि एक बार पढ़ते ही उन्हें याद हो जाती थी, जिस वजह से वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहते थे और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलने लगा। 1937 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और इस परीक्षा में दीनदयाल जी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर एक कीर्तिमान स्थापित किया था, और बिड़ला कॉलेज में इससे पूर्व किसी भी छात्र ने इतना अंक नहीं पाए थे। जब इस बात की सूचना धनश्याम दास बिड़ला को तक पहुंची, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दीनदयाल जी को एक गोल्ड मेडल प्रदान किया। उन्होंने दीनदयाल जी को अपनी संस्था में एक नौकरी देने की बात कही और दीनदयाल जी ने विनम्रता के साथ धन्यवाद देते हुए आगे पढ़ाई की इच्छा व्यक्त की। बिड़ला जी इस उत्तर से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आगे पढ़ना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए एक नौकरी हमेशा खाली रहेगी, जब चाहो आ सकते हो। धन्यवाद देकर दीनदयाल जी चले गए। बिड़ला जी ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की। तो इस तरह से उनकी पढ़ाई हो गई और राष्ट्र धर्म का प्रकाशन उन्होंने पढ़ाई के बाद शुरू किया। लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन नामक एक संस्थान की स्थापना की और अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म शुरू किया। बाद में उन्होंने साप्ताहिक और स्वदेश दैनिक भी शुरू किया, और इस तरह से अलग अलग पत्र पत्रिकाओं से जुड़कर 1950 में केंद्र में पूर्व मंत्री डॉक्टर श्यामलाल प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू लियाकत समझौते का विरोध किया और मंत्रिमंडल में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। अब लोकतांत्रिक ताकतों का एक साझा मंच बनाने के लिए विरोधी पक्ष में शामिल हो गए और डॉक्टर मुखर्जी ने राजनीतिक स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निष्ठावान युवाओं को संगठित करने में श्री गुरुजी से मदद मांगी। फिर इस तरह से इनका राजनीति में पार्टी के अंदर एंट्री हो गई और डॉक्टर मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को आयोजित पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की और पंडित दीनदयाल जी की संगठनात्मक कुशलता बेजोड़ थी, और इस तरह से वो लोगों को संगठित करने में और राजनीति में वो हमेशा आगे रहे और सर्वोच्च अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें याद किया जाता है। आखिर में जनसंघ के इतिहास में विचारणीय दिन आ गया, और जब पार्टी के इस अत्यधिक सरल तथा विनीत नेता को 1968 में पार्टी के सर्वोच्च अध्यक्ष पद पर

और भारतीय राजनीतिक स्थिति के इस प्रकाशमान सूर्य ने भारतवर्ष में सभ्यता मूलक राजनीतिक विचारधारा का प्रचार और प्रोत्साहन करते हुए अपने प्राण राष्ट्र की समर्पित कर दिया था। तो ये थी कुछ खास बातें दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दीनदयाल जी की कहानी सुनकर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आंतकरी में उनका जो है हत्या हुआ, ये बात सुनकर कहीं ना कहीं मन कचोटता रह गया। चलिए कोई बात नहीं, जीवन के संघर्ष में अच्छे लोगों के दुश्मन भी बहुत होते हैं ना। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हाँ, ये बात करते हैं अब एक एक्टर के बारे में जिन्हें आप सभी जानते हैं। उनकी बायोग्राफी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। फिरोज खान जी के बारे में बातें करते हैं। ये कैसे एक्टर रहे हैं, कॉमेडी के साथ साथ काफ़ी चीज़ें जो है ये करते रहे, और एक्टिंग भी धमाकेदार उनकी रहती थी और फिल्में भी खुद बनाते थे। तो आइए फिरोज खान की बातें अगर कहें तो हिंदी फिल्मों के बहुत ही पॉपुलर अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक थे। फिरोज खान अपनी खासी शैली के लिए, अलग अंदाज और किरदार के लिए हमेशा जाने जाते रहे। फिल्म में कहीं वो एक सुंदर हीरो को भूमिका में हो तो कहीं खूंखार विलेन के रोल में भी, दोनों ही चरित्रों में फिरोज खान जान डाल देते थे। तो आइए अब फिरोज खान को अन्य नाम से लेडी किलर के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जन्म आज ही के दिन 1939 में बेंगलुरु में हुआ। अफगानी पिता और ईरानी माँ के बेटे फिरोज बेंगलुरु से हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई पहुँचे, और इनके तीन भाई संजय खान अभिनेता निर्माता अकबर खान और समीर खान हैं। उनकी एक बहन है जिनका नाम दिलशाद बेबी है। फिरोज की भतीजी और संजय खान की बेटी सुजैन खान की शादी ऋतिक रोशन से हुई, जो फिल्मकार राकेश रोशन के पुत्र हैं। फिरोज खान ने सुंदरी के साथ जिंदगी का सफर 1965 में शुरू किया। दोनों 20 साल तक साथ रहे और 1985 में उनके बीच तलाक हो गया। फिरोज खान के पुत्र फरदीन खान भी अभिनेता है। तो आइए इनके बारे में अधिक जानकारी आपको देने वाले हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम पर फिरोज खान की डायलॉग म्यूजिक डांस और कहानी अभी आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: ये कैसे डायरेक्टर रहे जिन्होंने हॉलीवुड फिल्म्स और हिंदुस्तानी फिल्म्स के बीच एक संतुलन बनाए रखा, जहां एक तरफ हॉलीवुड का स्टाइल था तो दूसरी तरफ भारतीय सिनेमा के जज्बा। इन्होंने हिंदी फिल्मों की हीरोइन का रंग रूप बदल के रख दिया और हीरो को भी इतना स्टाइलिश बनाया कि सबके होश उड़ गए। बात कर रहे हैं हम महान फिल्म मेकर एक्टर फिरोज खान की।

0: फिरोज खान साहब का जन्म 25 सितंबर सन 1939 में हुआ। इनके पिता सादिक अली खान तनोली अफगानिस्तान के पठान थे और माँ ईरान से थीं। फिरोज खान साहब की पढ़ाई लिखाई हुई बैंगलोर के बिशप कॉटन्स बॉयज स्कूल में और सेंट जर्मेन हाई स्कूल बैंगलोर में। इनके भाइयों के नाम हैं संजय खान, शाहरुख शाह अली खान, समीर खान और अकबर खान। इनकी बहनों का नाम है खुर्शीद शानावर और दिलशाद बेगम शेख। इनके दो भाई भी फिल्मों से ताल्लुक रखते हैं, एक हैं संजय खान और दूसरे हैं अकबर खान। अक्सर इनके स्टाइल बाजी की वजह से इन्हें स्कूल से बाहर कर दिया जाता था और ये सभी समझ गए थे कि बचपन से ही इस लड़के में जो स्टाइल है वो सिल्वर स्क्रीन पर कमाल कर देगा। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद ये मुंबई आ गए। इन्हें एक छोटा सा रोल मिला फिल्म दीदी में, बरस था 1960, पर तब कोई ये नहीं जानता था कि 60, 70 और 80 के दशक में ये सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बने भी नजर आएंगे। हालांकि शुरुआती फिल्में जरा कम बजट की रही थी, इसलिए इनके किरदार भी जरा थोड़े छोटे रहे।
1: अपनी बीमार माँ को मिलने जा रहा था, रास्ते में अचानक गाड़ी का दरवाजा खुल गया और मैं एकदम से गिर पड़ा।
0: उन्होंने हर तरह की फिल्मों का सहारा लिया, चाहे वो फैमिली फिल्म्स थी या फिर सिमी ग्रेवाल के साथ टार्जन गोज टू इंडिया। 1965 में वो फिल्म सामने आई जिसने कमाल कर दिया। ये फिल्म फणी मजुमदार ने बनाई थी। फिल्म का नाम ऊंचे लोग, जहां पे इनके सामने दो दिग्गज कलाकार थे, राजकुमार और दादा मुनि, बोले तो अशोक कुमार। इस फिल्म में इन दोनों कलाकारों के साथ फिरोज खान की एक्टिंग को भी बहुत सराहा गया। इसके बाद भी ये कुछ कम बजट की फिल्मों में काम जरूर करते रहे, जैसे कि सैमसन, एक सपेरा एक लुटेरा, चार दरवेश वगैरह वगैरह।
1: क्या बताऊं हुस्न की शहजादी, जब से मैंने आपका जलवा देखा है मेरी तो नींद हराम हो गई है।
2: नींद हराम हो गई?
1: हाँ शहजादी, बाग में करार पाने गया तो हर फूल हर पत्ते और हर डाली में तुम ही तुम नजर आए, और यहाँ आया तो दिल और भी धड़कने लगा। जरा हाथ रख कर देखिए तो।
0: इन्हें अक्सर सेकंड लीड्स दिए जा रहे थे, जैसे कि फिल्म आरजू में ये कैसे प्रेमी बनकर आए जो अपने प्यार को त्याग देता है। पर इस फिल्म की कामयाबी ने इन्हें अभिनेताओं की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया। आदमी और इंसान के लिए बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल से इन्हें नवाजा गया था। उसके बाद आई फिल्म खोटे सिक्के, गीता मेरा नाम, प्यासी शाम, शंकर शंभू और सफर। ये अपने सगे भाई संजय खान के साथ भी कुछ फिल्मों में नजर आए, जैसे कि उपासना, मेला और नागिन।
3: इसीलिए कहता हूँ लाची के कर्तव्य सीख ले, पता नहीं दुश्मन किस पैंतरे से वार कर दे।
4: कल से जरूर आ जाऊंगा भैया।
3: अबे जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, समझा? ले शुरू हो जा, चल।
4: लेकिन भैया वहां साहूकार अपने कर्तव्य दिखा रहा है।
3: वो फिर आ गया?
4: हाँ भैया, उसने अपने आदमियों से कहनवा भेजा है कि पंडाल तब लगेगा जब पिछले जन्माष्टमी का किराया मिलेगा।
3: उसकी ऐसी की तैसी, धर्म के मामले में धंधा। चलो मेरे साथ।
0: 1971 में इन्होंने सबसे बड़ा निर्णय लिया, ये बन गए फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। इन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की अपराध, जिसमें इनकी हीरोइन थी मुमताज। फिल्म का संगीत भी हिट हुआ और मुमताज और फिरोज खान की सिज़लिंग केमिस्ट्री भी लोगों को भा गई। 1975 में फिल्म बनाई इन्होंने धर्मात्मा, जो की पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में इनके साथ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी नजर आई थी। ये फिल्म हॉलीवुड की पिक्चर द गॉडफादर से इंस्पायर्ड थी।
3: थैंक यू।
0: 70 और 80 के दशक में ये इसी तरह की बड़ी अनोखी फिल्में बनाते रहे। इनकी फिल्मों में बड़ी स्टाइलिश गाड़ियां नजर आती थीं और हीरोइंस भी बड़े खुले ख्याल के साथ काम करती, जिन्हें तमान का स्विम सूट कौन भूल सकता है। और डिंपल कपाड़िया और अनिल कपूर का सूखी हुई घास में इंटीमेट सीन आज भी लोगों के जहन में ताजा है। जहाँ एक तरफ जांबाज फिल्म में डिंपल कपाड़िया और अनिल कपूर की केमिस्ट्री नजर आई, तो दूसरी तरफ फिरोज खान, श्रीदेवी और अमरीश पुरी का जबरदस्त अभिनय। मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के साथ भी इनकी खूब बनी, चाहे वो फिल्म जांबाज रही, कुर्बानी या फिर धर्मात्मा। फिल्म कुर्बानी में इनके साथ नजर आए थे इनके सबसे गहरे दोस्त विनोद खन्ना। विनोद खन्ना के साथ ही इन्होंने एक और बड़ी अनोखी फिल्म बनाई थी, जो कि दक्षिण भारतीय फिल्म पे आधारित थी। फिल्म का नाम रहा दयावान।
3: इस भेष को मत बदल पीता, बहुत अच्छी लगती है तू।
5: तुम यहाँ क्यों आए?
3: ये भी कोई पूछने की बात है, राधा के दर्शन करने।
5: कोई देख लेगा तो?
3: मेरे सिवा यहाँ कौन देखेगा?
5: मेरी बात तो बाप रे, तुम जाओ यहाँ से।
3: अच्छा जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, कल आओगी ना?
6: हाँ बाबा मैं आती हूँ।
3: वादा?
6: हाँ।
3: पक्का?
6: पक्का आती हूँ, तुम जाओ यहाँ से।
0: 1992 में इन्होंने फिल्म बनाई यलगार और उसके बाद कुछ बरसों की ब्रेक ले ली। फिर अपने बेटे फरदीन खान को इन्होंने लॉन्च किया सन 1998 में। फिल्म का नाम था प्रेमगन। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल ना कर पाई, लेकिन इन्होंने फरदीन खान के लिए एक और फिल्म बनाई जिसका नाम रखा जानशीन। 90 के दशक में फिरोज खान ने एक्टिंग से एक लंबा ब्रेक ले लिया और उसके बाद ये नजर आए फिल्म वेलकम में। फिरोज खान साहब के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनकी शादी हुई सुंदरी खान से। साल था 1965। 20 साल तक ये शादी चली और इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, बेटी लैला खान और बेटा फरदीन खान। फरदीन खान की शादी हुई फिरोज साहब की हीरोइन मुमताज की बेटी से, लेकिन फिरोज खान और सुंदरी खान की शादी 20 साल के बाद ना चल सकी। 1985 में इन्होंने तलाक ले लिया।
3: गीता, प्रीता ने मुझे पापों के गढ़े में ढकेल दिया था, लेकिन तुमने मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता।
0: फिरोज खान ने यकीनन हिंदुस्तानी फिल्मों का अंदाज बदल दिया, हीरोइन के कपड़े बदल दिए, हीरो को स्टाइलिश बना दिया और कुछ बहुत ही अनोखी यादगार फिल्में इन्होंने बनाई। 27 अप्रैल 2009 69 साल की उम्र में ये इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन्हें लंग कैंसर की बीमारी थी और पीछे छोड़ गए सिर्फ यादें।
3: हम ये चाहते हैं कि जिस लड़की ने आज अपनी कला का प्रदर्शन किया है उसे मौका दिया जाए कि वो अपनी कला को ज्यादा से ज्यादा निखार सके, और इसकी जिम्मेदारी हम खुद लेना चाहते हैं।
0: भारतीय सिनेमा के इतिहास में यकीनन फिरोज खान साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं गीता चिकारा करनाल से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ओम शांति।
1: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। फिरोज खान की कुछ बातें आपने सुनी और मुझे लगता है कि उनकी कहानी सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। आइए इसके साथ ही मैं आप सभी को ले चलता हूं, सतीश धवन के बारे में बात करते हैं अभी। जी हाँ, सतीश धवन जो है भारत के बहुत ही पॉपुलर रॉकेट वैज्ञानिक थे। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ प्रोफेसर सतीश धवन एक बेहतरीन इंसान और कुशल शिक्षक भी थे। भारतीय प्रतिभाओं पर बहुत भरोसा था उन्हें। सतीश धवन को विक्रम साराभाई के बाद देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। वे इसरो के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए और प्रोफेसर धवन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कई सकारात्मक बदलाव किए। उन्होंने संस्थान में अपने देश के अलावा विदेशों में भी युवा प्रतिभाओं को शामिल किया, कई नए विभाग भी शुरू किया और छात्रों को विविध क्षेत्रों में शोध के लिए प्रेरित किया। सतीश धवन के प्रयासों से ही संसार उपग्रह इनसाइट, दूर संवेदी उपग्रह IRS और ध्रुवित उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV का सपना साकार हो पाया। तो वहीं इनके बारे में जाने तो प्रोफेसर सतीश धवन का जन्म श्रीनगर में हुआ। आज ही के दिन उनकी शिक्षा का जो है इस तरह से पंजाब विश्वविद्यालय, मिनोसेट विश्वविद्यालय और वैमानिक इंजीनियरिंग में MS 1947 में, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने काफ़ी डिग्रियां हासिल की। और इस तरह से जिस समय सतीश धवन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के अध्यक्ष बने उस समय भी उन्होंने परिसीमा परंतु अनुसंधान के लिए पर्याप्त प्रयास समर्पित किया। उनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान हरमन सिलिचिंग की मौलिक पुस्तक ब्राउंड्री लेटर में प्रस्तुत है। बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के लोकप्रिय प्रोफेसर थे और वे भारत के सर्वप्रथम सुपरसोनिक विंड टनल स्थापित करने का श्रेय इन्हें जाता है। और व्यक्त परिसीमा स्थर प्रवाह, तीन आयामी परिसीमित परत और ट्राइसोनिक प्रवाहों की पुनः परत बंदी पर अनुसंधान का भी इन्होंने बीड़ा उठाया था। और सतीश जी इस तरह से शिक्षा दीक्षा के साथ साथ सुदूर संवेदना और उपकरणों पर काफ़ी काम किया और काफ़ी किताबें भी उन्होंने इस पर लिखा। और 2002 में सतीश धवन की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत के चेन्नई में उत्तरी दिशा में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में पुनर्निर्माण किया गया। विशेष इन्हें पद्म भूषण यांत्रिक का अंतरिक्ष इंजीनियर के रूप में इन्हें याद किया जाता है। तो ये थी कुछ खास बातें सतीश धवन प्रोफेसर के बारे में आपके लिए। और 3 जनवरी 2002 को इनका मृत्यु हुआ और 25 सितंबर 1920 को श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ सफर कार्यक्रम में कुछ खास गेस्ट आए हुए हैं हैदराबाद से, उनसे बात कराते हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार,
2: कैसे हैं आप?
3: ठीक है सर, अच्छा है।
2: जी जी जी, आपका शुभ नाम?
3: डॉक्टर नागराजा रावूरी।
2: डॉक्टर नागराजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, और मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपके प्रोफेशन के बारे में, जहाँ

0: किया। एक वो इसरो में एक सेंटर है, बट बहुत सेंटर्स पूरा एंटायर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया। हमारे सेंटर में सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद वो डेटा रिसीव करके, वो प्रोसेस करके, वो डेटा कैसा यूज कर सकते फॉर डेवलपमेंटल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। हमारा सैटेलाइट डेटा पूरा दुनिया के लिए बहुत अच्छा सर्विस कर रहे हैं, वो तेसरा है।
1: बिल्कुल।
0: हम ये ब्रह्म कुमारी में एक मान्य से हम अटेंड कर रहे हैं। हम बहुत अच्छा वेरी वेरी वी आर गेटिंग वेरी गुड डिसेंट लाइफ काइंड ऑफ थिंग्स। मेडिटेशन में बहुत अच्छा फील कर रहा है। बहुत शुक्रिया।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। आप इसरो में एज ए साइंटिस्ट काम करते रहे और ब्रह्म कुमारी से जुड़ने के बाद आपको जो है बहुत अच्छा लग रहा है, एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं आप। और लाइफ में जो बहुत ज़्यादा जो हम लोग मैस करके रखते हैं, उसको धीरे धीरे हम लोग जो है ज्ञान के माध्यम से उसको सेटल करते हैं और फिर अपने आंतरिक जो आनंद है आत्मा का उसको फील करते
0: हैं।
1: तो आइए आगे बढ़ते हैं, उनके साथ उनके धर्म पत्नी भी हैं। नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी,
1: कैसे
2: वी आर गुड।
1: क्या नाम है आपका?
2: डॉक्टर अनसुईया।
1: डॉक्टर
2: अनसुईया,
1: स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच।
1: जी जी, मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें।
2: सेम डिपार्टमेंट।
1: अच्छा,
2: वी बोथ वर्कड इन सेम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। सो इट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। So I also served for 34 years. Achha. retired. So recently we have joined with Brahma Kumari's beginners program, and we enjoyed a lot. Really, Atma, Paramatma, all these things are new to our field actually. So earlier we were in different field. Now we are trying to learn more and more about Brahma Kumari's, and we are really enjoying. And
0: what is life, how to lead a good life? we are learning now.
1: बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि अभी जो यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, उन सभी के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे डॉक्टर नागराज जी?
0: या जरूर, पीपल इज लिविंग देयर बिजी लाइफ, but in busy life me thoda spiritual me you should spend some time for spirituality. So then you can have a good peaceful life. Otherwise when you are going a very busy life, you are leading to a lot of issues, problems in your life. So but spending some time on spirituality kind of things will be very good for the life. And I recommend for all youngsters to get into the spirituality and learn something on spiritual life kind of. Thank you.
1: Yes, Anusuya ji.
2: Really it is a good field. Everyone supposed to go for meditation. It is required to have a healthy mind and healthy body. So everyone, we will propose or we will advise to join this Brahma Kumaris, and really life will be very enjoyable and successful.
1: चलिए अनसुया जी एंड डॉक्टर नागराजा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। एंड बहुत ही प्यारा सा आपने संदेश दिया कि कैसे हम यूथ भी अगर इस फील्ड में जुड़ जाते हैं, थोड़ा सा अपना जो रूटीन है, जो स्टडी है, जो खेल है, या जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं वो करें, उसको मनाही नहीं है, लेकिन उसके साथ में अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा मेडिटेशन सीख लेते हैं तो वो आपके लाइफ को बेटर बनाएगा और आपको अपने करियर में भी एनहांस करने के लिए, क्योंकि करियर में आपको जो है आपके डिग्री के साथ साथ आपके कैरेक्टर को भी देखा जाता है। तो कैरेक्टर बनेगा मेडिटेशन से, पीस से, शांति से। तो वो थोड़ा सा टाइम अगर आप आधा पौना घंटा यहाँ पर भी देते हैं तो ये आपके सिलेबस और करिकुलम को भी अच्छा समझने में हेल्प करेगा और अपने करियर को भी अच्छा बनाएगा। बहुत ही अच्छा जो है कन्वर्सेशन रहा हमारे दोनों मेहमानों के साथ। उन दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपके लिए, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं ढूंढई गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने दीनदयाल जी के बारे में बातें की और सतीश धवन, फिरोज खान, इन सभी के बारे में आपसे रूबरू होने का मौका मिला और साथ ही साथ उनकी जीवन कहानी से प्रेरणा आपको मिल गया होगा। और जाते जाते आपके लिए हमारे मित्र डॉक्टर नागराज और डॉक्टर अनसुईया जी ने आपसे रूबरू होने का जो है मौका दिया हम सभी को, और उनसे बातें करके आप नासा के बारे में, हैदराबाद में जो नासा रिसर्च सेंटर है वहाँ पर उन्होंने काम किया 35 ईयर्स, 34-35 साल, और इसके बाद ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर विशेष प्रोग्राम में आए हुए हैं। तो अच्छा लगा उनसे बातें करके, तो मुझे लगता है कि आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और फिर जाते जाते आपके लिए एक सुंदर विचार के साथ, कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालतों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। आप सुन रहे हैं रिमोट वन पर जिया सफर इस कार्यक्रम को। चलिए मित्रों, इसी तरह आप सभी मस्त रहे, खुश रहे, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच। दोस्तों, एक महान व्यक्तित्व ने कहा था कि वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर फॉर यूथ बट वी कैन बिल्ड आवर यूथ फॉर द फ्यूचर। यानी कि हम युवाओं के लिए भविष्य नहीं बना सकते, लेकिन युवा ऐसे बना सकते हैं जो भविष्य का निर्माण करें। और ऐसा भविष्य अगर हम चाहते हैं जिसमें समानता हो, जिसमें सहजता हो, जिसमें अपॉर्चुनिटीज हो, जिसमें उन्नति हो, तो यूथ की बात सुनना, उनके मन में क्या है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत एक युवा देश है और आज इस युवा मंच पे हमारे साथ मौजूद है युवा साथी जिनका नाम है राजेश। अब उनसे बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, लेकिन परिचित होंगे वो लोग जो लगातार रेडियो से जुड़े रहते हैं। राजेश, आपका स्वागत है।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते राजेश। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी एक बार आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ। मेरा एजुकेशन बैचलर इन रूरल स्टडीज फ्रॉम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ है। बैचलर इन रूरल स्टडीज अर्थात ग्रामीण अध्ययन, गाँव के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, कैसे हम गांव को एक गांव बना सकते हैं जो वास्तविक अर्थों में एक गांव होता है। और मेरा मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से चल रहा है। और इसी के साथ साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पब्लिक लीडरशिप किया ऋषिहूड यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा से। साथ ही साथ मैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और मैं सेवा से जुड़ा हूँ, जैसे एनवायरमेंट के लिए प्लांट लगाना और वाटर कंजर्वेशन हुआ, प्लास्टिक मुक्त भारत जैसे कई छोटे छोटे काम मैं अपने स्तर पे और कई मेरे दोस्तों के साथ मिलकर मैं ये काम करता हूँ। धन्यवाद
0: राजेश। सबसे पहले तो हमने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन हम जब युवाओं की बात करते हैं तो एक पिक्चर लोगों के मन में आती है कि वो गांव से दूर जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हम जो बच्चे हैं या आने वाली जनरेशन है, ये गांव में रहेंगे नहीं रहेंगे, या अपॉर्चुनिटीज के लिए भी उनके पास रीजन भी है
1: जी।
0: लेकिन आपने जो पढ़ाई चुनी वो आप गाँव की बातें कर रहे हो और डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। आपने एक स्टेटमेंट कहा कि गाँव को गाँव बनाना
1: जी।
0: तो मैं जानना चाहूंगी कि ये टॉपिक, मतलब या ये विषय पढ़ाई के लिए आपने क्यों चूज किया?
1: एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिफरेंट था, नया सब्जेक्ट था। यूजीसी ने इसने 2016 में यूजीसी इस प्रोग्राम को लेके आई और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, इकोनॉमिक्स, वही अकाउंट्स, वही बिजनेस स्टडी पढ़ना, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था वो सब चीजें पढ़ने में। मतलब था एक इंटरेस्ट कुछ चीजें पढ़ने में जानने के लिए, बट वो इंटरेस्ट सोच रहा था कुछ नया किया जाए। तो एज ए मैं यूनिवर्सिटी विजिट किया वहाँ का, पहले तो उस यूनिवर्सिटी में इतना एक चुंबकत्व था तो मुझे खींच लिया, तो वहाँ से मैंने उसे मुझे यूनिवर्सिटी अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए, मुझे पोटेंशियल लगा वहाँ पे। तो एक नया प्रोग्राम आया, किसी ने मेरे को सजेस्ट किया, चार्टेड अकाउंटेंट थे तो बोले कि नया प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है। मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं इसमें, उसका एक पैम्पलेट देखा, उसमें देखा एग्रीकल्चर ऊपर में था और इकोनॉमिक्स था, मेरे दोनों ही सब्जेक्ट इंटरेस्टेड थे। हाँ, जबकि एग्रीकल्चर मेरा बैकग्राउंड नहीं था बट इंटरेस्टेड था मैं उसके बारे में जानना के लिए और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो जबकि वो दो सब्जेक्ट ही देखे थे, बाकी तो गांव के बारे में तो बहुत सारी चीजें थी उसमें, जैसे
0: अच्छा।
1: हाँ, हॉर्टिकल्चर्स के बारे में था उसके बारे में, और प्लांट्स, हर्बल मेडिसिन प्लांट्स के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, एग्रीकल्चर में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, क्रॉप मैनेजमेंट हो गया, तो एक गांव से जुड़ी हुई सारी स्टडी, होल स्टडी होती है उस प्रोग्राम में जुड़ी हुई थी। तो मैंने तो एक साल ये चीजों को समझने में ही मतलब यूज किया कि कैसे हम चीजों को समझे पढ़ाई के लिए। जब एक साल के बाद तो ऐसा हुआ कि इतना अटैचमेंट हो गया प्रोग्राम से, इतना इंटरेस्ट आ गया, तो शायद मुझे लगता कि और प्रोग्राम करके मुझे नहीं आता तो इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट सोचा और डिफरेंट जुड़ा, तो मेरी कनेक्टिविटी बहुत हो गई। आज तक मतलब मुझे सबसे 3 सालों प्रीसियस लगते अपनी लाइफ के, क्योंकि लगता है कि जीवन में उस टाइम में मैंने प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली बहुत कुछ सीखा और इतना मजा आया इंटरेस्टेडली, और उसको मैं इतना कनेक्टेड और टच फील करता हूँ।
0: ओके राजेश, ये 3 साल का कोर्स है
1: जी,
0: ना ग्रेजुएशन है
1: जी,
0: तो क्या है कुछ सब्जेक्ट्स उसमें, क्या पढ़ाई होती है, थोड़ा सा आप और बताएंगे
1: जी। ये नया प्रोग्राम है बट इसमें अभी हमारे 6ठा बैच या 7th बैच चल रहा होगा, तो कुल मिला के इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं और 4 सब्जेक्ट एवरी सेमेस्टर होते हैं, और उसके साथ में जी जेनिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है जो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट जाके सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आई एम स्टूडेंट ऑफ द रूरल स्टडीज, ग्रामीण अध्ययन का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट जाके हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ एक सब्जेक्ट 4 सेमेस्टर तक। तो ऐसे ही मैंने जैसे 2 सेमेस्टर मैंने योग पढ़ा, 1 साल मैंने टूरिज्म के बारे में जाना, इंडिया का टूरिज्म कैसा, उसका बेसिक थिंग्स, तो ये तो जेनिक इलेक्टिव। इसके साथ हम स्किल एनहेंसमेंट कोर्स पढ़ते जाते हैं। आप अपनी स्किल कैसे बढ़ा सकते हो, जैसे स्किल एनहांसमेंट मैंने एक थेरेपी सीखी, एक्यूप्रेशर, यज्ञ थेरेपी। हम कैसे एक्यूप्रेशर दे सकते हैं लोगों को, अपना कैसे एक्यूप्रेशर से ठीक सकते हो, बेसिक हम चीजें सीख सकते हो जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वहाँ पे स्किल एनहांसमेंट में दूसरे भी कोर्स है, जैसे हैंडमेड पेपर बनाना और स्क्रीन प्रिंटिंग हुआ, फ्रूट प्रोसेसिंग हुआ, काउ बेस्ड प्रोडक्ट्स हुआ, और जो सेमेस्टर होते हैं जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो रिलेटेड टू रूरल स्टडीज, जिसमें मेनली एग्रीकल्चर होता है, मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जिसमें आ जाता है मैनेजमेंट के पार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आप पढ़ते हो, एनजीओ मैनेजमेंट आता है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानते हो, कम्युनिटी के बारे में आप स्टडी करते हो, डेवलपमेंट क्या से जो सारी चीजें जुड़ी है उसके बारे में पढ़ते हो टोटली।
0: बहुत इंटरेस्टिंग है।
1: हाँ, जितना थ्योरेटिकली पढ़ते हो उतना प्रैक्टिकली आप करते हो।
0: प्रैक्टिकली कैसे?
1: जैसे सपोज कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो पूरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकली लगता है। प्रैक्टिकली ऐसा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन विजिट करवाया जाता है।
0: ओके,
1: ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के विजिट के साथ साथ आप ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से मिलते हो, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को, स्ट्रक्चर पार्ट को समझते हो, वहाँ के जो काम कर रहा है उसके बारे में सारी चीजें जान लेते हो, क्योंकि एचआर का जो काम होता है उसको सारे चीजों को आप होल लेवल अपना समझ। दूसरा एक और सबसे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जो हर जहाँ चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें है कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम चीजें पढ़ते हैं, तो उसमें हमें एक स्किल सीखनी पड़ती है। जैसे मैंने वर्मी कंपोस्टिंग सीखा पूरी तरीके से, कैसे उसको बनाते हैं छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। जैसे ये कि मैंने वर्मी कंपोस्टिंग में करता तो नहीं हूँ, ठीक है, जितना मेरा ये है कि कोई मुझे हेल्प लेता है तो मैं उसके यहाँ जाता हूँ, विजिट करता हूँ, उसको हेल्प देता हूँ, कि मैं ये कहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा और करिए, कैसे मार्केटिंग कर सकते इसकी, कैसे आप इसको बना सकते अच्छे से या सही नहीं बन रहा है, तो मुझे कोई चीज की भी लगता है कि मुझे नहीं जानकारी है तो मैं वापस अपने एक्सपर्ट टीम या फिर मेरे टीचर लोगों से पूछता हूँ। तो ऐसे करके सारी चीजें मैं जानकारी लेता हूँ और ऐड करता जाता हूँ एज ए स्टूडेंट। मुझे आज ही लगता है मैं हमेशा स्टूडेंट हूँ उस सब्जेक्ट का, तो लर्निंग मेरी ग्रोथ होती रहती है हमेशा, और उसको प्रैक्टिकली बांटता रहता हूँ खुद के थ्रू।
0: अच्छा राजेश, जैसा आपने बताया कोर्स में बहुत कुछ है जो आपने सीखा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहते हैं
1: जी,
0: तो आप थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में या प्रोसीजर क्या होता है, कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ, कुछ उसके बारे में बताएंगे? यूनिवर्सिटी के नाम के बारे में भी एक बार फिर से बता दीजिए, कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं?
1: जी, मेरे यूनिवर्सिटी का नाम देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, जो शांति कुंज हरिद्वार में है, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है, और सब्जेक्ट का नाम है बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज, और डिपार्टमेंट का नाम है स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो स्कूल के अंदर वो प्रोग्राम आता है बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज, और ये 3 साल का प्रोग्राम है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू 4 साल का प्रोग्राम हो गया है, जिसमें आपका मास्टर भी इंक्लूडेड रहता है, तो इसमें और पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है रिसर्च के लिए भी, मास्टर्स के लिए भी, तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई डेफिनेटली। मोस्टली फोकस ये किया जाता है कि हम जॉब प्रोवाइडर बने, कि एक गांव में जाके हम एंटरप्रेन्योरशिप करें और ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करें जॉब गेनिंग की वजह, तो यही उद्देश्य रहता है इस प्रोग्राम का मेनली। फिर भी कोई भी आप अपना जॉब भी लेना चाहते हैं एनजीओ में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आपको पूरा फुली सपोर्ट किया जाता है।
0: ओके
1: जी।
0: अच्छा, एडमिशन कैसे होता है?
1: हाँ, जी, मैं वो भूल गया था, मैं बताना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ। एडमिशन के लिए ये है कि ऑनलाइन फॉर्म निकाला जाता है, जिसमें आपको पहले सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, ऑफलाइन भी भर सकते हैं वहाँ जाके, आप एक बार विजिट करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे। तो फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपका 50 मार्क्स का नॉर्मल जीके होता है और उसके पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, और 20 मार्क्स का आपका होता है रीजनिंग और मैथ्स, और 20 मार्क्स का यूनिवर्सिटी के बारे में होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो इसलिए होता है कि क्योंकि आप मेन तो है ना यूनिवर्सिटी आपको बना रही है, तो उसकी कुछ कोर वैल्यूज होती है, तो आप कोर वैल्यूज से एडजस्टमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप कितना समझते हो, तो जितना ज्यादा समझता है वो आके और भी एडजस्ट कर सकता है, तो एक संभावना रखी जाती है मोटा मोटी।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए वो 20 मार्क्स का एड किया जाता है कि बच्चा उससे पहले कितना परिचित है, और इतना भी वो नॉर्मल होता है, इतना कोई वो होता नहीं, आप जाके एक बार विजिट कर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी 20 मार्क्स का, तो क्योंकि वो एक पूरा अलग सिनेरियो यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि वो अपने आप में एक, मैं यूनिवर्सिटी बाद में कहता हूँ, पहले तो आई एम टेलिंग द मदर, मैं उसको हमेशा माँ कहता हूँ पहले।
0: अच्छा।
1: क्योंकि शायद मदर एक फील करती है ना, शायद वो मैं ऐसा फील करता हूँ कि मुझे बार बार जाने का मन करता है, और एक माँ से जो सीखने को मिलता है वो वहीं सीखने को मिलता है, तो ये उसका आपका फिर एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपका एग्जाम यदि आप क्लियर कर लेते हैं, सीटें बहुत कम होती है, 10 से 15, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। फिर आपको इंटरव्यू में ही ये जाना जाता है कि आप इसके लिए कितना इच्छुक है पढ़ने के लिए, और आपकी बेसिक देखा जाता है, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ, कितने आप कैपेबल हो, वो सारी चीजें। और मेन बात है आप इंटरेस्टेड कितना हो, तो सारे इंटरव्यू में सारी बातें, एक इंटरव्यू जो फॉर्मली रूप से होता है उसमें व्यक्तिगत रूप से सब समझने की कोशिश की जाती है।
0: आपको याद है आपसे क्या सवाल पूछे गए थे?
1: हाँ, मेरे को तो एक तो मेरा जो बेसिक मैं जहाँ से पढ़ा था उसके बारे में पूछा, कि उससे बारे में इसलिए पूछा कि चीज़ है, तो हमें इंटरव्यू दे रहा था, एग्ज़ाम मार्च में थे, तो इंटरव्यू में कम से कम दे रहा था 3.5 महीने बाद, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ सारी भूल गया हूँ। फिर भी मैंने बताई, याद था मेरा, मेरे परसेंटेज अच्छे थे, तो रिफ्लेक्ट करता है डेफिनेटली। और साथ ही साथ ये पूछा गया था कि आप इस कोर्स के लिए कितने क्यों इंटरेस्टेड है, बस मैंने एक ये प्रश्न ये होता है आप ये करना क्यों चाहते हैं।
0: आपने क्या बोला था?
1: मैंने कहा बस मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं नया सीखना चाहता हूँ और मैं इस बैकग्राउंड से जुड़ा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ना, हर यूथ से बात करता हूँ कि गाँव के बारे में, तो बोलते हैं कि रियलिटी इज द गाँव, गाँव ही असली जिंदगी है, वो बोलते हैं हमेशा, बट वो गाँव में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। कि ऐसी है कि सपोज मैं आज गांव में रहना चाहता हूँ, तो मेरा थोड़ा लाइफ स्टाइल अलग हो गया, जैसे कि मुझे 24 hours लाइट चाहिए, ठीक है, दिन में तो आप बिना लाइट के भी काम चला सकते हो, रोशनी उसमें पढ़ सकते हो, रात्रि में भी आप कुछ देर के लिए तो आपको रोशनी चाहिए 9-10 बजे तक, तो गांव में कभी कभी उसका भी प्रॉब्लम्स रहता है, आज के भारत में भी अभी भी मतलब चीजें सुधर रही है तो बेटर हो रहा है, और बेसिक जो थिंग्स है वो गांव में थोड़ा और अच्छे इम्प्रूवमेंट हो सके तो फिर बेटर हो सकता है। जैसे गांव हमारे इतने अच्छे थे, कभी कोई बीमार पड़ता ही नहीं था, तो हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी, और हमारे गांव में गुरुकुल सिस्टम था पहले से, तो बेसिक चीजें बच्चा वहीं सीख लेता, वहीं पढ़ लेता था, वहीं अध्ययन कर लेता। आज उसकी मतलब एक कहते हैं ना कि भाई टीचर है उसके लिए, स्कूल्स बना है, लाइब्रेरी बनी है, बट वो कितनी ओपन होती, कितना खुलता है, टीचर्स कितना आता है। अब कितने भी हम अकाउंटेबिलिटी रख ले ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम में भी, टीचर कितना आता है, फिर भी हमारे लिए एक नया ही है कि वो टीचर आके भी बैठ जाता है, वो कितना सिखाने की कोशिश करा, फिर भी गांव में कुछ बच्चे इतने कनेक्टेड इसलिए भी रहते हैं कि कुछ टीचर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, वो आते डेफिनेटली सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे टीचर आते और बहुत अच्छा पढ़ाते और इसलिए वो बहुत अच्छा भी करते हैं। तो गांव मतलब रियलिटी है कि आपको ओरिजिनलिटी मिलती खाने पीने से संबंधित भी, हवा एकदम ऑक्सीजन लेवल डिफरेंट। आप यदि गांव शहर में 8 बजे उठते हो, गांव में आप 6 बजे उठ जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि वहां का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, आपका नींद अच्छी हो जाएगी आपकी, तो कह सकते हैं ओरिजिनलिटी इज द विलेज, तो स्वर्ग तो है ही वही।
0: ओके, तो आपको जब आपने पढ़ा, जब आपने 3 साल ये कोर्स किया, क्या आपके मन में कोई ऐसी पिक्चर थी या कोई ऐसी बात थी जो चेंज हुई, या आपको लगा कि एक नया परसेप्शन मिला, आपको नई सोच आपके अंदर जगी?
1: मतलब एक लाइफ में होता है ना, एक यूथ के अंदर कुछ करना है।
0: हाँ।
1: मतलब कुछ तो करना है भाई, ऐसे ही खा पी के मर जाएंगे तो कुछ हम क्या करके गए।
0: हाँ।
1: ठीक है, तो लगता है कि यार क्या किया जाए, व्यक्ति हुई सो एक्सप्लोर करता है, तो फिर एक पिक्चर ये डेवलप हुई कि भाई मुझे चाहता तो गांव है और सब कितने विकसित है, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम मैं कभी नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, गांव के लोग जब तक नहीं चाहते, तो हम वो सिनेरियो कैसे बदलें, उनसे कैसे बात करें, उनको कैसे समझें। ठीक है, फिर एक संकल्प ये लिया, हम संकल्प ले सकते हैं, उसके ऊपर भरपूर प्रयास कर सकते हैं, तो एक संकल्प मैंने ये लिया कि मैं जीवन में कुछ भी करूं, मैं चाहे सिविल सर्विसेज भी जॉब लूं या फिर मैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप करूं या बिजनेस करूं, मैं लाइफ में कहीं पे भी हूं, बट मेरा एक लक्ष्य बन गया है कि मैं जे अपने जीवन के अंतिम तक एक गांव विकसित करना है। ठीक है, और वो गांव मिलके ही हो सकता है, तो उसके लिए मैं जितने प्रयास कर सकूं वो करना, एक मेरी ये चीज चेंज हुई। पहले आज भी मतलब मैं थोड़ा सा फिर भी वो रहता हूँ कि कैसे होगा, मैंने कई लोगों से बात भी की, कई लोगों ने मुझे हेल्प भी प्रोवाइड की, क्योंकि अच्छे काम के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए अच्छे लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आपको पूरी फुल्ली सपोर्ट करते हैं आपके डिजाइन लेवल पे, आपको समझने के लेवल पे हम कैसे स्टार्टिंग पॉइंट से कर सकते हैं। तो एक तो ये मतलब छोटा संकल्प मैं समझता हूँ, बट वो सब कहते हैं कि छोटा नहीं बहुत बड़ा संकल्प है तुम्हारा। मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे एक गांव अच्छा विकसित करना। फिर मैंने ये बात किसी के सामने रखी तो उन्होंने बोला कि एक गांव ही क्यों करना, सब क्यों नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो सार्थकता नहीं है, फिर भी मैं एक पॉजिटिवनेस रखता हूँ अपने साथ में, हाँ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा गांव डेवलप करें उस जो रेप्लिकेटेड मॉडल हो। तो ये मुझे नई चीज सीखने में मिली, मैंने जिससे भी बात की तो मैंने कहा हाँ ऐसा भी प्रयास किया जा सकता है और ऐसा ही करना चाहिए। तो अभी तो मन में यही है कि प्लान
0: मॉडल विलेज बना सकते हैं,
1: एक मॉडल विलेज बनाना है और जितने भी मॉडल विलेज है उनको समझना, इससे जुड़े हुए लोग जितने भी है उनसे बात करने में मुझे बहुत मजा आता है, जो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है और जो फील्ड से जुड़ा हुआ है, जो गाँव से जुड़ा हुआ है, उनसे मुझे बात करके उनसे कॉन्टेक्ट बना के और उनसे जब चीजें नई नई सीख के मुझे बहुत मजा आता है। कुल मिला के मेरे को एक जो सिनेरियो चेंज हुआ ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो लर्निंग का बहुत हुआ। इससे पहले हम एक ना होती है ना, जैसे मुझे कुछ सीए बनना है तो मैं सीए के लिए ही पढ़ाई करूंगा, ठीक है, वो कितना इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो ऐसा ही है कि शायद मैं इस काम कर रहा हूँ ना, मुझे इंटरेस्ट बहुत आता, मजा बहुत आता है, तो मेरे लिए डेफिनेटली काम बहुत अच्छा हो जाता है।
0: ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो पढ़ाई की, जो आप करना चाहते हो उसमें आपको मजा आता है,
1: जी
0: बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा राजेश, जैसे आपने कोर्स के बारे में बताया, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, एडमिशन के प्रोसीजर की बात की, ये सब क्या मतलब कब निकलते हैं फॉर्म्स और ऑनलाइन भर सकते हैं क्या या जाना पड़ता है वहाँ पे?
1: जो ऑनलाइन आप आराम से भर सकते हैं और यूजीसी का मोस्टली यूजीसी से यूनिवर्सिटी कनेक्टेड है, इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, और आपका बहुत कम फीस, एज द कहते हैं मेंटेनेंस फीस। और ये है कि शायद मुझे उन्होंने टच इसीलिए दिया कि वो बहुत ही मेंटेनेंस में आपको बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये यानी कि आज मैं यूनिवर्सिटी के लिए हमेशा के लिए तैयार रहता हूँ कुछ भी करने के लिए। यूनिवर्सिटी जैसे लोगों को अच्छे कनेक्टिविट करना, यूनिवर्सिटी करना, डिपार्टमेंट के लिए करना, गांव के लिए करना, तो शायद वो आपके पास यदि आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हो, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वहाँ से करोड़ों रुपए फीस है, तो आप वहाँ टच नहीं लेके जाते हो। तो यहाँ आप कम फीस में आप बहुत अच्छा सीख के जाते हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग।
0: तो वहाँ हॉस्टल भी है?
1: जी, रेजिडेंशियल ही कैंपस है, आपको अनिवार्य रूप से हॉस्टल में ही रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ का लाइफ जीना होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है, आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, आप कल्चरली बहुत वहाँ रिच हो सकते हो, आप अपने नॉलेज के स्तर पे भी, पढ़ाई के स्तर भी, बहुत अच्छा लाइब्रेरीज भी है वहाँ पे। तो मतलब बेसिक एक यूनिवर्सिटी में होता है इंटरनेशनल लेवल को सहारा है।
0: क्या बात है।
1: मतलब रिसर्च के लिए भी बहुत संभावना है, जब आप कितने डेडिकेटली और इंटरेस्टेड हैं
0: आपके ऊपर डिपेंड करता है,
1: वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना लेना चाहते हो, वहाँ देने वाले बहुत है।
0: बहुत है, क्या बात है। तो मतलब बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी लग रही है।
1: आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, और जुलाई में एक बार एडमिशंस ओपन हो जाते हैं, जुलाई के आसपास, मतलब इस बार तो जुलाई में इंटरव्यू भी हो गए थे, शायद एक बार आप देख सकते हो, अपडेट रहना पड़ता
0: है वेबसाइट पे।
1: 1 मई के आसपास शायद बच्चों के रिजल्ट आ जाते हैं और उस समय एडमिशंस स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपका एग्जाम डेट भी तय हो जाता है। और आपके भारत में करीबन 5-6 सेंटर्स भी हैं, जैसे लखनऊ हो गया, हरिद्वार खुद हो गया मेन, और महाराष्ट्र में भी शायद कहीं पे है, शेर दुर्ग वगैरह है, छत्तीसगढ़ में, तो भोपाल है एमपी में, तो ऐसे ही मतलब उनके सेंटर्स बने हुए हैं, तो आप उस सेंटर्स पे जाके एग्जाम दे सकते हो। और फिर इंटरव्यू के लिए आपको यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ता है।
0: अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो हाँ, इंटरव्यू आपका वहीं होता है।
1: वहीं होता है, फिर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका एडमिशन ले सकते हो आप।
0: ओके। तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज होंगे और भी यहाँ पे।
1: जी,
0: तो अच्छी बात है दोस्तों, जैसा कि आपने सुना अभी राजेश को, अभी वेबसाइट विजिट करें, मैं तो कहूंगी देव संस्कृति की बात कर रहे हैं हम यहाँ, साथ साथ और भी यूनिवर्सिटीज जो है उनकी वेबसाइट समय पर विजिट करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है राजेश कि जो बच्चे हैं वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन समय निकल जाता है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर का एक समय है, निश्चित समय है।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर आप 12वीं में हैं तो आप उसी साल पहले से देख लें कि अगले साल एडमिशन कब होगा।
1: जी।
0: आप लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करें, नहीं तो कई बार आप जो करना चाहते हैं, हो सकता है वो कोर्स निकल जाए या डेट निकल जाए या आपको अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में पता ही ना लग पाए।
1: बिल्कुल।
0: और क्योंकि हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो यूजीसी का नाम लिया, आप वहाँ पे यूजीसी की वेबसाइट पे अगर जाएंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, आप वहाँ पे भी देखेंगे तो

0: का तो फिर मैंने लगा को विश्वास पात्र साइबर कैफे उससे जाके भरना पड़ा मुझे।
1: अच्छा ओके।
0: और एग्जाम देने के लिए भी उस समय राजस्थान में जोधपुर सेंटर हुआ करता था तो वहीं हो गया था। और मतलब एग्जाम के बाद थोड़ा सा मन में था कि यूनिवर्सिटी मुझे बुला रही है जबकि हाँ तो ऐसा लग रहा था। तो फिर जरूरी वो इंटरव्यू का कॉल भी आया और इंटरव्यू भी दिया। ऐसा लगा सब कुछ अचानक सा हो रहा है,
1: होता जा रहा है,
0: कोई कोई करवा रहा है, ऐसा फील होता है।
1: क्या बात।
0: आप यदि इंटरेस्टेड हो
1: मदद मिलती है आपको।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: फील भी होता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा राजेश, आपने जैसे बात की कि आपने ग्रेजुएशन किया, एक थोड़ा एनवायरमेंट के बारे में वहाँ के कैसा है कुछ बताएं यूनिवर्सिटी का।
0: सबसे बड़ी और अच्छी चीज तो डीएसयू का एनवायरमेंट है। जब मैंने आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय से मैं जब मिला तो उनका कहना था कि उपराष्ट्रपति जी एक दिन के लिए आते हैं, वो दो दिन रुक के जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी आते हैं, वो भी दो दिन, एक दिन के लिए प्लान करके आते हैं, दो दिन रुक के जाते हैं। द वाइब्रेशन इज द वेरी वंडरफुल ऑफ द यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छा। मतलब मैं उसको फील ही करता हूँ, बता कभी सकता ही नहीं हूँ। आप जाके हो फील करते। जैसे रिसेंटली मेरा भाई है ना, मैंने उनको बोला हरिद्वार जाने को, मैंने कहा ऋषिकेश तो तुम जाना जाना, यूनिवर्सिटी जरूर जाना। वो गया, एंटर किया, वीडियो कॉल किया मुझे, थोड़ा और 10 कदम चला, बोले कि भाई तेरी यूनिवर्सिटी क्या है, गजब है। तो बस वो मैंने कहा, हमने कहा तुम जाके फील ही कर सकते हो, बहुत अच्छा वातावरण वहाँ पे। आप कितना अच्छा वातावरण और बना सकते हो, ये और भी महत्वपूर्ण है। और बच्चे बनाते भी हैं यूनिवर्सिटी, जैसे मार्केट का किंग कौन होता है, कस्टमर होते हैं, तो इसी प्रकार यूनिवर्सिटी का किंग तो बच्चे लोग ही होते हैं। बच्चे यूनिवर्सिटी के वही होते हैं। जब मैं भी इंजीनियरिंग के छात्रों से मिलता हूँ, मैं कहा आपका यूनिवर्सिटी मतलब ऐसा है वैसा है, बट बनाने वाले भी तो आप ही लोग हो। आप प्रयास करो, डेफिनेटली अच्छा बनेगा। आप एक पौधा तो लगाओ, 10 लोग और मोटिवेटेड होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, बट आप प्रयास तो करो। तो ऐसा एक बच्चे बहुत भरपूर प्रयास करते, फैकल्टी बहुत हेल्प करती है वहाँ पे, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा वातावरण है। जैसे एक्यूप्रेशर पार्क, आपको नेचुरल जूस मिलता है वहाँ पीने के लिए, बहुत ही सस्ते में, मतलब कह सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे, बहुत अच्छा कैंटीन है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, एकदम प्योरिटी वाला खाना। तो आज भी डीएसयू का मुझे बहुत याद आता पर्सनली, क्योंकि आप कई हॉस्टल्स में रहते हो ना, तो फिर आपको समझ आता है कि डीएसयू का कैसा खाना, हॉस्टल का कैसा खाना। तो मुझे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, एकदम सिंपल खाना और बेहतरीन। जब कभी आप, मैं 5 साल में, 3 साल तो वहाँ रहा, कभी बीमार नहीं पड़ा, उससे भी 2 साल पहले भी कभी बीमार नहीं पड़ा, तो 5 साल में कभी बीमार पड़ा ही नहीं वहाँ पे।
1: क्या बात है,
0: कभी मेरे को बुखार तक नहीं आया वहाँ पे। थोड़ा ठंड ज्यादा पड़ता है तो जरूर आपको जुकाम हो सकता है, फिर भी ये है। जैसे आप ये ना कि जैसे मैं हूँ स्टूडेंट रूरल स्टडीज का, साथ में पढ़ रहा हूँ जन कलेक्टिव जी, योगा भी सीख रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ में आप जल नीति भी सीख रहे हो, षटकर्म सीख रहे हो, सूत्र नीति सीख रहे हो, ये साथ में जो चीजें सीखते हो ना, आप खुद को पता नहीं चलता कि हमारी स्किल में और क्या गेन हो रहा है।
1: बाद में रियलाइज होता है कि हमने जो सीख लिया इस वक्त, बहुत लोग हैं पता है जो सीखना चाहते हैं
0: जी,
1: जिनको लगता है, क्योंकि हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और स्वस्थ रहने के लिए जैसा आपने कहा, बहुत सारी विधाएं हैं, योगा है खास तौर से, और अगर आपके स्टूडेंट लाइफ में वो शामिल हो जाए तो शायद आप जीवन भर नहीं भूलेंगे।
0: जी जी बिल्कुल। मैंने रियलाइज किया कुछ दिन पहले कि एक मतलब सफल व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है ना, तो उसका लाइफ स्टाइल होता है। बहुत लाइफ स्टाइल होता है, कैसे कितने बजे सोता है, कैसे सोता है, कैसे वो रहता है, तो शायद मुझे लगता है बहुत ही रिफ्लेक्ट करता है। मैं ये चीज फील किया और कई चीजें हम फील करके ही सीख पाते हैं। फिर मुझे लगता है कि यदि हम 5 बजे उठते हैं तो हमारा बॉडी हेल्दी रहती है, सुबह एनवायरमेंट बिल्कुल अलग रहता है, एनर्जी और रहती है। कोई लोग 2 बार दिन में नहाते हैं तो उसे और एनर्जाइज होते हैं। तो ये हमारी छोटी छोटी आदतें और लाइफ स्टाइल का जो हिस्सा होती है, हमको बहुत ही आगे तक ले जाती है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने राजेश, जो ये आपने बात कही है। कई लोग ऐसे हैं, जब हम बात करते हैं जो सक्सेसफुल, जिन्हें हम सक्सेसफुल मानते हैं, जिनके बिजनेस हैं बड़े बड़े, या जो कोई कार्य है, एनजीओस भले चला रहे हैं लेकिन एक अच्छे स्तर पर चला रहे हैं, या जो शुरुआत भी कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि उनका लाइफस्टाइल अगर उनसे पूछा जाए तो एक जो सामान्य लाइफस्टाइल है जिसमें ये सब चीजें शामिल नहीं, उनसे भेद तो पाएंगे, अंतर तो पाएंगे।
0: जी।
1: अच्छा राजेश, और कोई ऐसी बात है जो आपने ऑब्जर्व की और आपको लगता है कि युवाओं के अंदर

0: युवाओं को मालूम होनी चाहिए, जो आपके साथी हैं आपको लगता है उनको मदद मिलेगी ये बात?
1: अच्छा, ऑब्जर्वेशन तो
0: कोई भी ऐसी लाइफ के प्रति आपकी बात,
1: ऑब्जर्वेशन तो मेरी बहुत है। मैन ये है कि युवा हमेशा अपने आंख कान और ये सब जो इंद्रियाएं होती है खुली रखे।
0: ओके। हाँ।
1: दूसरा है कि वो सेल्फ अपने बारे में अवेयर हो, चाहे वो स्पिरिचुअली लेवल पे, आत्मा के लेवल पे भी और फिजिकली बॉडी के लेवल भी वो अवेयर हो। तो अवेयर होना जरूरी है, और अवेयर यूथ है ना, तो हमारे अंदर पावर होनी चाहिए जिज्ञासा की। हम जिज्ञासा की बात है, हमारी जानने की जो इच्छा शक्ति है हमेशा हमें अवेयर होना चाहिए। जैसे ये कि मैंने प्रश्न किया कि राखी के ऊपर बहने ही क्यों राखी बांधती है, भाई क्यों नहीं बांध सकता? ठीक है, ये मैंने प्रश्न किया। तो हमारे अंदर जो क्वेश्चंस करने का भाव है ना, वो आना चाहिए यूथ के अंदर में, वो सबसे ज्यादा डेवलप होना चाहिए। यदि हम आपने ये करना प्रारंभ कर लिया तो आपका नॉलेज भी गेन हो जाएगा, आप अवेयर और ज्यादा हो सकते हैं। ये यूथ में थोड़ा सा कई यूथ करते भी हैं और वही युवा कहलाते हैं। और हम एज ए उम्र की बात करें तो उम्र में एक मैं कुछ दिन पहले ही मैं अपना एक स्टोरी छोटा सा सुनाना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 11-12 में जिस हॉस्टल में रहता था उन वार्डन सर से मिलने गया। मैं सर रूम तो है नहीं आपके पास खाली, मैं आना चाहता था। तो बोले, फिर भी मैंने उनसे मिलने गया। मुझे वो मतलब हमेशा ये कहते हैं फोन नहीं करते बच्चे लोग, तो मैं ठीक है सर मैं मिल के ही आता हूँ। मिलने गया तो मैंने कहा, सर आप 25 साल बच्चों के साथ रहे, आपका एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव क्या है? तो बोलेंगे, बेटा मैं फैमिली को समय तो कम दे पाता हूँ, अपने बच्चों को समय कम दे पाता हूँ, बट एक चीज अनुभव ये करता हूँ कि बच्चों के साथ रह के बूढ़ा महसूस नहीं करता हूँ। हमेशा वो बूढ़ापन आता ही नहीं इस जीवन में भी, पता नहीं वही एनर्जाइज फील करता हूँ बच्चों के साथ, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। तो मुझे लगा बहुत अच्छी बात है ये। तो मैंने कहा, सर जो भी अब कुछ नया होगा आपको समय निकाल के आना है, हम बुलाएंगे वहां पे भी। तो बोले ठीक है बच्चा। तो मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके। तो एक युवा के मन में ना हमेशा जो मैंने कहा प्रश्न पूछने का भाव होना चाहिए, साथ ही साथ जानने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा, लिखने की इच्छा, सीखने की इच्छा और आनंद जिसको हम कहते हैं उसको एक लॉन्ग टाइम लॉन्ग टर्म आनंद लेने के लिए कला के माध्यम से जुड़ना चाहिए उसको हमेशा। तो यूथ को मैं यही समझता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने को बेहतर बनाए और दुनिया को कैसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं वो करे।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी राजेश की, जो हमारी प्रश्न पूछने की जो क्यूरियोसिटी है। हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं
1: जी,
0: और लेकिन उतना ही वो सीखते हैं, डेवलप होते हैं
1: जी।
0: जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, कई बार हमें एक दो बार अगर बोल दिया जाता है कि अरे कितना बोलते हो, या चलो चुप हो जाओ, अरे कोई इसका जवाब नहीं है, कभी ऐसा भी होता है। और कभी ऐसा होता है कि धीरे धीरे हमें लगता है अब हम बड़े हो गए तो हमें सब पता होना चाहिए
1: जी,
0: लेकिन इतना कुछ है लाइफ में सीखने के लिए कि हमें सब पता नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए पूछते रहे, पूछने में शर्म नहीं करें।
1: बिल्कुल, और ये है कि जो जितना बच्चा पूछ रहा है उसकी जिज्ञासा को भी हम कैसे शांत करने के लिए हम रास्ते खोजते रहते हैं, बट ये उसका मन तो देखो कितना वो प्रश्न पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, कितना जिज्ञासा। जैसे मैं छोटा होता था ना तो मैं पूछता था, कोई आता था घर पे, कोई रिलेटेड मतलब कोई ऐसे आता, गांव में होता था कोई नया अनजान व्यक्ति भी आ जाता था कभी गांव में पानी पीने के लिए, और कोई शहर का अंधा है तो छाछ वाछ के लिए भी आ जाते। तो मैं पूछता आप क्या करते हैं, तो ये फिर पूछता था आपकी सैलरी कितनी।
0: अच्छा।
1: एक प्रश्न पूछने का तरीका।
0: हाँ।
1: तो बोले मम्मी को कि बच्चा बड़ा वो है कि बड़ा क्यूरियोसिटी वाला, और सैलरी का आज तक हम कोई नहीं पूछता था ऐसे प्रश्न, मतलब मुझे बोला कि सैलरी नहीं पूछना चाहिए किसी से। मैं कि ठीक है, बट एक प्रश्न पूछने का वो जिज्ञासा होनी चाहिए हमको, क्योंकि हम दुनिया और ज्यादा से अच्छे समझते। दूसरा मेरा ये रहा कि मैं पढ़ना है ना, जब 3rd क्लास में था जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था, वो इस ऐसी स्टोरी है कि न्यूज़पेपर लाना ट्रेन में आता था गांव में शहर से, और शहर से मतलब न्यूज़पेपर ले आता था घर पे, पहले तो पढ़ना नहीं आता था, वो पिक्चर से देख लेते खुश हो जाते थे हम उससे समझते, फिर ये कि पढ़ना जब आया तब तक तो झर में है ना, पहले वो पूरा अखबार ना पढ़ ले समझ ले तब तक किसी दूसरे के पास जाएगा।
0: अच्छा।
1: हाँ। और ऐसा होता था।
0: तो कितने बड़े थे आप जब पूरा पढ़ते थे आप बैठ के?
1: मतलब मैं पूरा अखबार अच्छे से खंगालता था, मतलब उससे बहुत सारी चीजें मुझे याद भी रहती थी, दुनिया में क्या क्या हो रहा है।
0: स्कूल में ही थे आप तब?
1: हाँ जब स्कूल में पढ़ता था पूरा अखबार, सेवन्थ क्लास में पूरा अखबार, सिक्स सेवन्थ क्लास में।
0: अच्छा।
1: सुबह सुबह जल्दी स्कूल अखबार आ जाता था, मैं सुबह जल्दी उठ जाता स्कूल के लिए, तो मेरे पास आधा घंटा रहता था, तो जरूर मैं 20 मिनट स्कूल यहीं पढ़ लेता था। कभी कभी स्कूल में जाकर अखबार मिल जाता था, 10 मिनट जल्दी चला जाता था वहाँ पढ़ लेता था, फिर वापस आके खाना खाने के बाद फिर अखबार, और पकड़ो और पढ़ो अखबार।
0: आपको अच्छा लगता था मतलब?
1: हाँ, हिंदी अखबार मैंने मतलब हमेशा वही पढ़ा, तो मुझे हिंदी आज भी अच्छा लगता है। आज तो मैं मतलब और भी हिंदी न्यूज़पेपर,
0: जानकारी मिलती है,
1: हिंदी मैगजीन्स, चाहे वो क्या बोलते हैं बच्चों की जो चंपक भी होती है इंग्लिश हिंदी में, तो वो भी पढ़ता हूँ कि इसमें नया क्या है, कि हम कैसे लिख सकते हैं चंपक, क्या हम लिख सकते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: इस मतलब इस भाव से आप पढ़ते थे?
1: इस भाव से अब पढ़ना प्रारंभ किया है मैंने, और मतलब वो मतलब चंपक लिख रहा है तो किस के लिए लिख रहा है, वो क्यों लिख रहा है, तो ये सब प्रश्न करके हम उस चीजों को समझे, मजा आता है बहुत। जैसे मैं चंपक रेलवे स्टेशन खरीद के पढ़ रहा था, पास में कुछ बैठे थे लोग, तो बोले मैंने 2 मैगजीन खरीदा, उन्होंने भी मुझसे मांग लिया, मैं पढ़िए, तो मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी और मजा आता है, क्योंकि एक मैं चाहता हूँ ना भारत को और अच्छा भारत कैसे बना सकते, तो एक हमको कल्चर डेवलप करना पड़ेगा पढ़ने का लिखने का। जैसे मुझे मेरा एक दोस्त है उसका भी टारगेट है, मेरा भी टारगेट है कि हम कम से कम भारत में हर 10 किलोमीटर तो नहीं, एक गांव में अच्छा लाइब्रेरी डेवलप करे, जो कम्युनिटी लाइब्रेरी हो, गांव के लोग ही उसको रख रखाव करे और गांव के लोग ही उसमें अच्छी अच्छी बुक्स ला के रखें, ठीक है, और उसमें पढ़ने का एक कल्चर डेवलप करे, क्योंकि गांव में ना लोगों का समय भी होता है, वो समय किसी और चीजों में बैठते, जैसे एक अंकल थे वो मैं एक बार पढ़ के फिर वो पढ़ते थे, वो बोलते मैं नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ, ठीक है, पढ़े लिखे थे, और तो फिर ऐसा है कि गांव में कई कम्युनिटी हॉल भी बने होते हैं सरकार की तरफ से, हम वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं इजीली बुक्स और एक कल्चर डेवलप कर सकते हैं। आजकल तो राजस्थान में हर जहाँ देखे थे लाइब्रेरी का अलग ही नया ही स्वरूप दिख रहा है, बच्चे वहाँ जाके फीस दे के पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कम्युनिटी पे जो होल बने हुए वहाँ पे हम गांव के मिल के लोग वहाँ पे लाइब्रेरी डेवलप कर सकते हैं,
0: गांव के युवा भी मिलकर ये काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और पढ़ाई से ज्यादा शिक्षा से ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ से होगा, मतलब हमें नई नई चीजें पता चलेंगी और आइडियाज भी आएंगे उससे, और जो बच्चे कई बार है कि अक्षर ज्ञान है ज्यादा पढ़ते नहीं, तो अगर स्कूल में नहीं भी जा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो एज ज्यादा हो गई है, तो किताबों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, फायदे तो बहुत सारे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली राजेश, एक छोटी सी लाइब्रेरी गांव के लोग मिलकर भी इसको कर सकते हैं।
1: जैसे ये है ना कि प्लास्टिक को खत्म करना है, तो मैं जब सोचता था कि मोहल्ले में किया जाए, मगर इतना आसान भी नहीं है, लोगों को बात बताना समझाना मतलब इतना इजी है नहीं ये जो अपन सोच रहे हैं, और जब वो पढ़ते हैं ना तो खुद से करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि इसको मैं खुद करूं, जैसे मेरा प्लास्टिक का कचरा मैं कहीं भी जाता हूँ अपने बैग वाले जो साइड में होता है ना पानी की बॉटल लगते हैं वहाँ डाल देता हूँ, या फिर कुछ भी छोटा जगह होता है उसमें पॉलीथीन अलग कर देता हूँ, और घर में आके उसको सेग्रीगेशन कर लेता हूँ, पॉलीथीन अलग, कागज अलग, ठीक है, कांच और लोहा समथिंग अलग अलग। हम मैंने घर पे लेवल पे भी है ना अपना पूरा कचरा है ना व्यवस्थित कर सकते, ऑर्गेनिक मैटर्स को एक अलग बाल्टी में डाल दिया, पौधों के लिए वो ऑर्गेनिक मैटर तैयार कर लिया, घर में प्लांट लगा दिए तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें यूज कर लिया, बाकी सारी चीजें सारी मार्केट में सेल हो जाती है, पॉलीथीन सेल हो जाता है आपका, मतलब ये कि आप समझ रहे हो कोई भी चीज पैकेजिंग में ले आ रहे हो तो आपका पैसा मार्केट उस आपसे ही ले रहा है, तो आप उसको फेंक रहे हो तो मतलब अपना लॉस कर रहे हो सीधा सीधा। कागज है कि वो बिक सकता है छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट में इकट्ठा करके, अब नहीं भी बेचना चाहते हो तो आप जो जहाँ पे सेल कर सकते हो उसको ऐसे ही देख के आओ, क्यों वो बेच सकते हैं, कम से कम रिसाइकल में आएगा, तो ऐसे ही सबसे अच्छी सेवा कि अपने स्तर पे हम एनवायरमेंट को बेटर बना सकते हैं। एक बात मेरे सर ने कहा था कि हम अपने कर्म भूमि को ही कर्म क्षेत्र बना सकते हैं, तो यही है हमारी कर्म भूमि, हम जहाँ जी रहे उसको ही अच्छा बनाओ, बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है,
0: क्या
1: बाकी ये आपसे देख के हम और लोग भी करेंगे, आप उनको बताइए कि ऐसा ऐसा हम करते हैं, आपको डस्टबिन नहीं है तो हम डस्टबिन ला के दे देते हैं, बट आप अलग तो करिए, ठीक है, आप नहीं फेंक सकते हो कचरा, नहीं गाड़ी में डाल सकते, हमको ही दे दीजिए, अरे हम ही कर देंगे, आप हमारे पड़ोसी तो कम से कम कचरा हमारे सामने तो नहीं फेंकेगा, तो ये छोटे छोटे भाव हमको पैदा करना पड़ेंगे और हमको खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे कि पहले फर्स्ट तो मेरे लिए मोहल्ले को तो क्या मेरे परिवार वालों को समझाना मेरे लिए क्रिटिकल हो गया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि आदत पड़ी हुई उनकी,
0: बिल्कुल, इतना बहुत समय से ऐसे कर रहे हैं।
1: इतना आसान नहीं है. जैसे मैं बस में गया तो उसको बोला कि मैंने पॉलीथिन बाहर मत फेंकी, मुझे ही दे दीजिए, मैं ही रख देता हूँ. तो वो शायद मुझे हमसे लर्निंग ले जा सकता है, जो हम देख के जो सीखता है ना वो. तो अब ये कि कम से कम मैं घर वालों को तो समझा चुका हूँ. अब ये है कि सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जब भी समय मिले मेरी टीम के मेंबर से, और वो कार्यक्रम भी करते रहते पॉलीथिन से. हम बच्चों में जैसे पिछली बार हमने ब्राह्मण गणेश महोत्सव मनाया था, मिट्टी का गणेश जी, और एक ही थीम था कि पॉलीथिन को हमें कोई भी चीज पॉलीथिन लाए नहीं थे. बाजार से प्रसाद भी लाते थे पॉलीथिन में नहीं, फूल भी लाते थे पॉलीथिन में नहीं. हम कुछ भी चीज ला रहे थे हम वहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग. ठीक है, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पे. कभी कभी हमको नहीं मिलता कुछ के लिए, तो उसके लिए हम प्लास्टिक लाते हैं अपने घर पे ही रख देते हैं, उसको रीयूज करते हैं बार बार. जैसे मम्मी कम से कम सब्जी आती है तो हम करीबन, और दूसरे सामान आते हैं मार्केट से, प्लास्टिक हो जाती है हमारी एक खट्टी करीबन 1 kg, तो वापस उन्हीं को दे देती है प्लास्टिक सब्जी वाले भैया को. सब्जी वाले वापस उसी में सब्जी देखते हैं सबको. तो दूसरा है कि हम प्लास्टिक फाड़ने का तरीका भी हमारा. तो ऐसे छोटी छोटी चीजें है ना, तो शायद हमको सोचना चाहिए. वो सोच हमारी पढ़ाई से ही विकसित हो सकती है, हमारे देख के हमारे बिहेवियर में हम एम्पैथाइज करते तभी उस चीज से सीख सकते हैं.
0: बिल्कुल राजेश, बहुत जो बातें आपने कही वो मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल है. और अच्छी बात यह है कि आप इस उम्र में ही बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं
1: जी.
0: और शिक्षा का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है
1: जी. एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ. क्यों इसलिए ऐड करना चाहता हूँ कि वो चीज मैंने रेडियो से सीखी. जैसे हमारे रोहित भाई जी है, तो रोहित भाई जी क्या कर रहे थे, एक दिन कहीं बैठे थे हम सब लोग और मीटिंग चल रहा था. तो मीटिंग इनफॉर्मल मीटिंग में हम सब बातें कर रहे थे, तो क्या करे इतने सारे पेज लेके आए, जहाँ पे पेज पे नहीं लिखा था उसको पेज को कटिंग कर रहे थे और अपने वो जहाँ पे नोट करने की कुछ चीजें थे उसमें ऐड कर रहे थे. आज क्या था, हम 50 रुपए का स्टिकी नोट्स मार्केट से खरीद के ले आते हैं, तो शायद वो हम अपने घर में बोर्ड लगा दिया उस पे ही, और वो नोट्स पेज छोटे छोटे हमारे पेज इकट्ठा. थोड़ा टाइम लगता है, हमारे पास समय कभी फ्री रहता तो हम उसको अलग कर सकते हैं. मेरा दोस्त कहता था गांधी जी है ना छोटे छोटे पेज का उपयोग करते थे. मैंने कहा हमने तो गांधी जी को देखा नहीं है छोटे छोटे पेज उपयोग, बट तुमने बोला है तो सही बात है और करना भी चाहिए मुझे. तो वो छोटी छोटी आज मैंने कोई भी है ना, जैसे बिल देता है ना उसका पर्ची फर्श में रख दो ठीक है, या फिर कहीं फेंको मत, तो मैं अपना नोट्स बना सकता हूँ उस पे, वर्ड्स मीनिंग्स लिख सकता है इंग्लिश का. तो आप यूज कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों.
0: बिल्कुल, और बिल्कुल आपने ये बात इतनी सही बोली राजेश कि आपके पास जो भी चीजें आती है कई बार ना हम पुराना तो डस्टबिन में फेंक देते हैं और फिर नया हमारे पास है नहीं सोचने के लिए मार्केट में जाते हैं
1: जी.
0: तो अगर एक पेज पे लिखा हुआ है कुछ तो उसके पीछे का इस्तेमाल हो सकता है. कई बार हमने एक ही समय का उस फेंक दिया
1: जी.
0: और क्लिप आते हैं आप, छोटे छोटे क्लिप होते हैं या कई बार वो क्लिप होते हैं जैसे कपड़े सुखाए जाते हैं उसको, बहुत सी ऐसी चीजें हैं तो उसमें पेपर को फंसा के एक जगह रखा जा सकता
1: जी.
0: है ना, तो उसमें बहुत काम आ जाते हैं. आप पर्यावरण की बात की और शिक्षा की बात की, और जो आप वो बात कर रहे थे प्लास्टिक वाली कि कैसे काटते हैं वो भी एक बार आप थोड़ा सा बता दो क्लियर करके
1: जी. मम ऐसे एक बार भूख लगा था तो चिप्स खा रहे थे. मेरी हर चीज स्टोरी से जुड़ी हुई है तो मैं वहीं से सीखता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ.
0: हाँ, बिल्कुल
1: सर, बेहतर कनेक्ट कर पाए हूँ
0: जी.
1: तो चिप्स खा रहे थे तो किसी ने चिप्स का पैकेट फाड़ा, तो चिप्स का पैकेट 2 टुकड़ों में बट गया. एक छोटा सा टुकड़ा किया हमने फेंक दिया और दूसरा रखा, चाहे हम नहीं भी फेंका हो, सपोज कहीं भी छोटा टुकड़ा फेंक के कहीं उड़ जाता है, तो ऐसे उन्होंने बोला कि ऐसे लाखों टन्स में वो छोटे छोटे टुकड़े होते ना बढ़ जाते हैं. तो आप एक बड़ा जो पॉलीथिन को ऐसे फाड़े कि वो सेपरेट ना हो, वो एक में ही पॉलीथिन रहे ठीक है. तो मतलब जैसे कुछ फाड़ने का तरीका होता है, आप उसको बीच में से ऐसे फाड़ो कि वो हम अच्छे से खा भी सकते हैं उसको और पॉलीथिन रह सकता है ठीक है. मोस्टली ऐसी चीजें तो लोग अवॉइड करते हैं जितना ज्यादा एनवायरमेंट के प्रति सजग होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना 1-2 रुपए का चिप्स हम 10 रुपए हम खरीद के खा रहे हैं तो गरीबी तो ले ही रहे हैं ठीक है. हमको जरूरत है तो हम खा भी रहे, तो फिर उसको हम बचाएं कैसे पॉलीथिन को. तो उसको फाड़ने का एक तरीका होता है, आप कहीं पे भी यूट्यूब पे भी अच्छा वीडियो मिल जाएगा पॉलीथिन को कैसे फाड़ा जाए
0: ताकि वो टुकड़ा अलग ना हो
1: और उकड़ा ना, तो लाखों टन्स में टुकड़ा हो जाते हैं. तो मैंने बोला ये क्या कहाँ से बात कर रहे हो तुम, क्योंकि हम युवा है तो पूछते ना प्रश्न क्या बात कर रहा है लाखों टन्स. तो बोले कि हाँ ये बात हमने हमारी एनवायरमेंट वाली मैम से सुना. तो फिर मुझे लगा कि हाँ भाई बात तो सही है, चाहे ना भी हो लाखों टन में भी करना तो नहीं चाहिए ना. तो फिर मुझे वहाँ लगा, वहीं से सीखा मैंने. तो फिर और इससे पहले भी सीखा कि हम पॉलीथिन को ऐसे फाड़े कि यूज आ सके. जैसे हार्ड पॉलीथीन होती है, जैसे चॉकलेट का उसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट आती है, तो उसको ऐसे फाड़े कि उसको हम कहीं यूज कर सके। जैसे कि
0: रीयूज वाला कॉन्सेप्ट है,
1: दूध का थैली होता है ना, पहले ले लेते थे वापस, एक किलो थैली इकट्ठा हो जाती थी, पता नहीं आजकल वो लेते नहीं है, पता नहीं मुझे उसका आइडिया नहीं है। बट ये कि मैंने कहीं देखा तो मार्केट में हम पौधा प्लांट लगाते हैं ना, उसके लिए हम पॉलीथीन खरीद के लाते हैं, उसके लिए अलग से पॉलीथीन आता है, उसमें मिट्टी डाला, सैंपलिंग लगाई, तो अब क्या करते, दूध की थैली को ही फाड़ दिया ऊपर से, उन्होंने सैंपलिंग उसी में लगा दी। तो ये जैसे कि मैंने एक घर में ही मतलब एकदम युद्ध कर लिया, हाँ वार हो गया मेरा, कि घर में एक फंक्शन था, 350 लोगों का खाना था, तो मैंने कहा कुछ भी हो, गिलास कहीं से भी लाओ, टेंट वालों से लाओ, चाहे घर में 3 घरों से मांग के लाओ, बट प्लास्टिक कहीं दिख गया ना तो तुम देख लेना। हाँ तुम्हारा कार्यक्रम मैं ही स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आप प्यार से ना कितन काम करते हो इजीली नहीं समझ पाते, और मुझे था कि मुझे करना है डेडिकेशन से, और मैं नहीं करने दूंगा, प्लास्टिक यूज नहीं कर दूंगा, तो सारा मैनेजमेंट मेरे पास था, तो मैंने सारी प्लास्टिक जितनी भी यूज करने वाली आई हुई थी उसको मैंने पहले निकाल के ऐसी जगह रख दिया जो कहीं से ला नहीं सके, बस उसको तो कहीं उसको जरूरत पड़ी वो नहीं ला सकता, उस वक्त ऐसी जगह मैंने उसको अरेंजमेंट किया। पहले मैंने अरेंजमेंट पहले से कर रखी थी ग्लासेस स्टील की, क्योंकि हम 100 ग्लासेस 150 ग्लासेस स्टील की होती है हमारे पास, प्लास्टिक ग्लास तो कितने भी कर सकते ना उस वक्त। तो फिर मैंने कहा क्या किया जाए कि 300 लोगों का खाना है, बर्तन धोने वाला था, मैं सारी उसको ऐसे मतलब एक साथ तो 150 लोग नहीं आएंगे ना, साफ करके अच्छे से साफ करके उनको पहुंचाता गया, तो कहीं भी सप्लाई में कमी नहीं आई, और मेरा संकल्प पूरा हुआ कि मैंने प्लास्टिक यूज नहीं होने दी। ठीक है वो बहुत सालों तक नहीं सड़ता है, जैसे एक ब्रश है तो 500 साल तक नहीं सड़ता है, तो अब मैं ब्रश भी करता हूँ, ब्रश जब हम करते हैं तो साफ होता है हमारा, मतलब ब्रश में जो फंसा हुआ है ब्रश से ही साफ हो सकता है। तो ये कि आप एक दिन ब्रश करो, एक दिन मैं फिंगर से अपना एक दंत मंजन वो करता हूँ, तो मतलब ये कि उसका साइकिल बढ़ गया ब्रश का।
0: हाँ, और बैम्बू वाले भी आते हैं।
1: हाँ बैम्बू है, नीम है, तो लोग मतलब जो हमारा पुराना लाइफ स्टाइल था ना, बड़ा सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल था, तो हम तो ऐसे हम लाइफ को बना सकते हैं हमारे जीवन में कि छोटे छोटे यूज करके, और प्लास्टिक जितना हो सके उतना हम कम यूज करें।
0: बिल्कुल,
1: और हो सके तो हम ज्यादा से ज्यादा यदि यूज में आ भी रहा है तो रीयूज करें उसको, और कोशिश कर रिसाइकल। तो ये है कि जैसे आजकल ब्रिक्स बन रही है, प्लास्टिक ब्रिक्स आपने सुना होगा, बॉटल में सारी बहुत सारी पॉलिसिंग डाल के वो कई लोग उस ब्रिक से वॉल भी बना रहे, जैसे प्लांटेशन का वॉल बनाना, एक प्लांट्स का नीम का ट्री उसके ऊपर बना लिया तो उस पर बैठ सकते हैं,
0: भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते।
1: हाँ क्रिएटिव हो सकता है, तो ऐसा है कि वो कहीं शायद हमारे एनवायरमेंट को खा रहा है तो नहीं खा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक को बनने के लिए आप कभी प्लास्टिक फैक्ट्री में जाइए ना तो आपको समझ आता है कि वो प्लास्टिक के दाने में कितना फ्यूल लगता है, मतलब कैसे वो बनता है, बहुत सारे रिसाइकल होता है। ऐसे जैसे कि पहले पत्तों में चीजें पैक होती थी, वो सस्टेनेबल है, उसको एनर्जी मतलब यदि हम फिजिक्स के लेवल पे जाएं तो उसका एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होती है और जनरेट नहीं होती है, तो पत्ते अपने आप प्रकृति अपने आप सही कर देती है सब कुछ।
0: प्रकृति की अपनी साइकिल है ऑलरेडी।
1: हाँ वो प्रकृति सबसे बड़ी माँ है और वो अपने आप को कैसे जान बचाना चाहती है सब कुछ वो अच्छे से जानती है करना, फिर भी हमारा एक जीवन है, हम उस जीवन में रहते हैं, हमको बेहतर बनाना है तो ये संकल्प हमको लेना पड़ेगा। और मैंने प्लास्टिक की जो बात की इसके बाद मैंने जो करके दिखा है तो घर वालों का हो सकता है, अगली बार हमने जो हमारे तांबे का लोटा प्रचलन में था और तांबे के लोटे में आज भी पानी पिया जाता है, तो उसका आप साफ सुथरा रखिए, 50-100 लोटे अरेंज कर लीजिए आप, तो उसमें आप पानी पिला सकते हैं बेहतर।
0: क्या बात है।
1: ठीक है हाइजीन थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप उसको साफ करके भी कर सकते हैं, कई लोगों को ये मानना कि हाइजीन होता है, बट तांबे में आप यूज कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, मतलब
1: जैसे ये कि ना साफ भी कर रहे हैं तो उसके अंदर जो मैंने सुना है कि उसके जो केमिकल्स के पार्टिकल्स होते हैं ना सर्फ वगैरह के, तो वो आपके अंदर जाते बॉडी के अंदर। ठीक है जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह जा रहे हो उसको ज्यादा पानी पी रहे हो तो खत्म हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, मीन्स कि मैं कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बोलते हैं चेक्ट, जैसे डायरिया जैसे होता है, डायरिया का जो चीज होता है, तो आप ज्यादा पानी पियो खत्म हो जाएगा। ठीक है और जबकि वो पार्टिकल्स गए उसको उसको कैसे खत्म करोगे जो केमिकल पार्टिकल्स के जो वॉशिंग केमिकल पार्टिकल्स है, नहीं हो सकता है,
0: नुकसान बहुत करते हैं।
1: ठीक है तो फिर यही है कि पहले हम साफ भी मिट्टी से करते थे, आज हमारे बॉडी भी बोलते हैं पंच तत्वों से मिला है, तो ये सब चीजें कनेक्टेड है. हमको इस चीजों में भी मैं और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एग्जैक्ट कैसे साइंटिफिकली प्रूव करके लोगों को समझाया जा सके.
0: जी राजेश, आपने जो बातें कही डेफिनेटली पर्यावरण वाली, वो ऐसी नहीं है जो हम केवल देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा होना चाहिए जीवन शैली ऐसे तो करें. हम में से हर कोई कर सकता है.
1: बिल्कुल,
0: छोटी छोटी बातें जीवन में शामिल की जा सकती है. और आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये सब बातें कहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत मजा आया और बातों ही बातों में हमने शिक्षा के बारे में बात की तो पर्यावरण के बारे में भी, लेकिन युवाओं के जीवन में जो भी वो ठान ले वो कर सकते हैं ये तो डेफिनेटली प्रूफ होता है. और आपको भी आपके भविष्य के लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं.
1: बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन का. और जब भी मैं आता हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं

0: बहुत कुछ सीखता हूँ, और दूसरी बात यह है कि बहुत सालों बाद आया हूँ तो ऐसा लग रहा है बहुत कुछ रह गया है, तो शायद आज वो छोटे प्रारंभ के माध्यम से पूरा हो पा रहा है। और रेडियो ने हमेशा मुझे कनेक्टिविटी दी है, प्यार दिया है। और दूसरी बात, आप सभी श्रोताओं को जो मेरी कहानियाँ सुनेंगे, मेरी बातें सुनेंगे, तो मेरी बातें नहीं, आप हम सबकी बातें हैं, तो मैं गलत कह रहा हूँ कुछ भी, तो मुझे अच्छा लगेगा। बट मैंने जो भी बातें की वो मेरी लर्निंग्स है, तो हम इस लर्निंग के माध्यम से हम कैसे बेहतर बन सकते हो कर सकते हैं। धन्यवाद,
1: थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका भी और राजेश का भी। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कार्यक्रम युवा मंच में। तब तक रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए,
0: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओए रुक रुक, ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही न टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: जी हाँ, इन सब का होना जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण, प्रकृति, परमात्मा और हम सभी आत्माएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन पर आप जुड़े हैं उड़ान कार्यक्रम के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। तो चलिए दोस्तों, कुछ बेहतरीन कार्यक्रम के अंश आप तक पहुंचाने वाली हूँ, जिसमें कहानी, कविता और होगी अमेजिंग जानकारी। तो हमारे साथ जुड़कर इन सभी का लुत्फ उठाइएगा और रेडियो मधुबन पर ये कार्यक्रम सुनते रहिएगा। मुस्कुराते रहिए 107.8 FM।
1: ये तंबाकू क्या होता है?
2: अरे तिकु नहीं पता क्या? इसमें पता है, लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
3: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
1: अच्छा, तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
2: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
4: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। इनमें से आज का सवाल दोस्तों आपके लिए, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है? वेल, हमारी रूहानी स्कूल में तो जरूर जाती है, लेकिन इनमें से वो कौन सी चीज है जो स्कूल यूनिफॉर्म में ऐड नहीं है? ए मोजे, बी रिबन, सी नेल पॉलिश। फिर से एक बार दोहरा दीजिए।
1: इनमें से क्या आमतौर पर स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होता है? ऑप्शन है ए मोजे, ऑप्शन बी है रिबन, ऑप्शन सी है नेल पॉलिश।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब दीजिए आप
1: 9414151415 पर।
0: मन को एकाग्र करना जरूरी है। छोटी सी कहानी आपके लिए उड़ान में।
2: पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल याद आता है, काम करने बैठते हैं तो पुराने विचार परेशान करने लगते हैं, और ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो मन न जाने कितनी दिशाओं में भटकने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मन को शांत और एकाग्र कैसे किया जाए? आज की ये छोटी सी कहानी हमें मन की इसी चंचलता का एक बहुत सुंदर रहस्य बताएगी। तो आइए चलते हैं एक शांत आचरण की ओर, जहां एक गुरु अपने शिष्य को एक ऐसा सबक सिखाने वाले हैं जिसे वो जीवन भर नहीं भूल पाएगा। एक समय की बात है, एक युवा शिष्य अपने गुरुजी के आश्रम में रहता था। वो मेहनती था, सीखना चाहता था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। उसका मन बहुत चंचल था। जब वो पढ़ाई करने बैठता तो उसका ध्यान इधर उधर भटकने लगता। ध्यान लगाने बैठता तो तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगते, और जब कोई काम करता तब भी उसका मन उस काम में पूरी तरह नहीं लग पाता। धीरे धीरे वो इस समस्या से परेशान और निराश रहने लगा। एक दिन थक हार कर वो अपने गुरुजी के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, शिष्य, गुरुदेव,

पानी में गिरते ही पानी की सतह पर हलचल हुई। छोटी छोटी लहरें चारों ओर फैल गईं। गुरुजी ने शिष्य की ओर देखकर पूछा, बताओ बेटा, पत्थर पानी में फेंकने पर क्या हुआ? शिष्य, गुरुदेव, पानी की सतह पर हलचल हुई और लहरें बन गईं। गुरुजी ने सिर हिलाया। फिर वे शिष्य को नदी के किनारे ही एक छोटे से गड्ढे के पास ले गए। उस गड्ढे में पानी जमा था। पानी बिल्कुल शांत था। गुरुजी ने उसमें भी एक छोटा सा पत्थर फेंका। इस बार भी पानी में कुछ लहरें बनी, लेकिन कुछ ही पलों में वे लहरें शांत हो गईं। पानी फिर से साफ और पारदर्शी दिखाई देने लगा। गुरुजी ने शिष्य से कहा, अब ध्यान से समझो बेटा, ये बहती हुई नदी तुम्हारे भटकते हुए मन के समान है। जिस तरह नदी में पानी लगातार बहता रहता है, उसी तरह तुम्हारे मन में भी विचार लगातार आते जाते रहते हैं। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा विचार शुरू हो जाता है, फिर तीसरा, चौथा और न जाने कितने विचार। गुरुजी कुछ क्षण रुके और बोले, जब तक तुम बाहरी भाग दौड़ और अनगिनत विचारों में उलझे रहोगे, तुम्हारा मन शांत नहीं हो पाएगा। शिष्य गुरुजी की बात ध्यान से सुन रहा था। उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, तो फिर मैं अपने मन को इस शांत पानी की तरह कैसे बना सकता हूं? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में तीन सरल नियम अपनाने होंगे। गुरुजी, पहला नियम है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत भटक रहा है, कुछ क्षण रुक जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो, धीरे धीरे सांस लो और आराम से छोड़ो। जब तुम्हारा ध्यान सांसों पर टिकने लगेगा, तो मन की भागदौड़ भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। गुरुजी, दूसरा नियम है एक समय में केवल एक काम करो। पढ़ाई कर रहे हो तो केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, काम कर रहे हो तो केवल उसी काम में अपना ध्यान लगाओ। हर समय कई चीजों के बारे में एक साथ सोचने की आदत छोड़ दो। जब तुम अपना पूरा ध्यान वर्तमान काम में लगाओगे, तो तुम्हारी एकाग्रता धीरे धीरे मजबूत होने लगेगी। गुरुजी, और तीसरा नियम है अपने मन में जाने वाले अनावश्यक विचारों को कम करो। हर बात सुनना जरूरी नहीं है, हर चीज देखना जरूरी नहीं है, और हर व्यक्ति से अपनी तुलना करना भी जरूरी नहीं है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम अनावश्यक चीजों से बचते हैं, उसी तरह मन को शांत रखने के लिए मानसिक कचरे को भी कम करना पड़ता है। जितना कम अनावश्यक विचार तुम्हारे भीतर जाएंगे, उतना ही तुम्हारा मन शांत और एकाग्र रहेगा। शिष्य कुछ देर तक चुप रहा। अब उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। वो समझ गया था कि समस्या उसके मन में नहीं, बल्कि उसकी आदतों में थी। वो हर समय एक साथ बहुत सारी चीजों के बारे में सोचता था, अनावश्यक बातें सुनता था, दूसरों से अपनी तुलना करता था और किसी एक काम पर पूरा ध्यान नहीं देता था। उस दिन से शिष्य ने गुरुजी की बातों का अभ्यास शुरू कर दिया। जब भी उसका मन भटकता, वो अपनी सांसों पर ध्यान देता। जब कोई काम करता, तो केवल उसी काम पर ध्यान लगाता और अपने मन में आने वाले अनावश्यक विचारों को कम करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी और सबसे बड़ी बात, उसे अपने वर्तमान पल में जीना आने लगा। याद रखिए, मन को एकाग्र करना किसी जादुई छड़ी से संभव नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास और धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। जब मन भटके तो उसे डांटिए मत, बस धीरे से अपना ध्यान वापस वर्तमान पल में ले आइए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, एक समय में एक ही काम कीजिए और अपने मन में जाने वाले अनावश्यक विचारों को कम कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को वर्तमान पल में रोकना सीख लिया, उसी दिन से आपकी एकाग्रता की असली शुरुआत हो जाएगी। मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हर दिन किया गया छोटा सा अभ्यास एक दिन मन को आपका सबसे अच्छा साथी बना सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।

0: मन की एकाग्रता, इधर उधर जब मन भटके इसको तुम समझा लेना, बिखरे हुए सब विचारों को एक जगह लेकर जरूर आना।
1: चंचल मन एक बाण है जैसे, लक्ष्य पे इसको साधना, सफलता की यह कुंजी है, कभी न इसको भुलाना।
0: शोर शोर बहुत हो दुनिया में, पर भीतर दीप जलाना तुम, धैर्य और विश्वास के बल पर हर मुश्किल को हराना तुम।
1: मन जो बस में हो गया जिसके, उसने जग को जीत लिया, बुद्धि के इस निर्मल दर्पण को ज्ञान से सींच लिया।
0: बिल्कुल, बुद्धि के इस दर्पण को ज्ञान से सींच लिया। चलिए दोस्तों, वक्त इशारा कर रहा है कहानी लेकर आने का, लेकिन उससे पहले पुनः सवाल। भाई आप आज यदि स्कूल नहीं जाते हो, लेकिन पहले तो जाते थे, और आज हमारी रूहानी तो रोज स्कूल जाती है, लेकिन रूहानी इनमें से आम तौर पर स्कूल यूनिफॉर्म में कौन सी चीज नहीं इस्तेमाल कर सकती है? ए मोजे, या फिर बी हेयर रिबन, या फिर सी
1: नेल पॉलिश।
0: अरे झटपट बता दो, कॉल कर 9414151415 पर,
1: 9414151415 पर
0: सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM। चालाक है बुढ़िया, सुन लो कहानी।
2: नाम का आदमी रहता था, उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें फसल उगाकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। देखो तो हमारी धान की फसल कितनी अच्छी हुई है।
3: हाँ जी, इस बार हमें पिछली बार से ज्यादा पैसे मिलेंगे अपनी फसल के।
2: पिताजी तब तो हम लोग अपना सारा कर्जा चुका देंगे जमींदार को। हाँ इस बार तो लगता है सारा कर्जा चुकाकर हम अपने बाकी के खेत जमींदार से वापस ले लेंगे और फिर से कई फसलें उगाएंगे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया, अब फसल काटने का समय आ गया। लेकिन ये क्या, अचानक बहुत बारिश होने लगी। 4 दिनों तक लगातार बारिश हुई। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया, हमारी पूरी फसल बारिश में बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे?
3: अब फिर से अगली फसल का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगली फसल के बीज के लिए हमारे पास पैसे भी तो नहीं है।
2: हाँ, हमने तो सारी उम्मीद इसी फसल से लगा कर रखी थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। अब क्या करूं मैं?
3: सुनिए जी, ये मंगलसूत्र गिरवी रख के पैसे ले आइए।
2: नहीं, मैं कहीं और से पैसे का इंतजाम करता हूँ। श्याम कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, तुम्हें याद है कुछ साल पहले मैंने अपने दोस्त किसान को कुछ रुपए दिए थे, क्यों ना उसी से मांग कर देखूं?
3: हाँ याद है कि आपने अपने दोस्त को रुपए दिए थे। जब आपके दोस्त को जरूरत थी तब आपने उनकी मदद की, अब हमें उनकी मदद की जरूरत है।
2: ठीक है, मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊंगा ताकि रात होने से पहले वहां पहुंच जाऊं। सुबह होती है और श्याम शहर के लिए निकल जाता है जहां उसका दोस्त किसान रहता है। चलते चलते रात हो चुकी थी, लेकिन शहर अभी दूर था, वो अभी किसी दूसरे गांव तक ही पहुंचा था। शहर तो अभी दूर है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्यों ना यहीं कुछ खा लूं। पास ही एक छोटे से घर से रोशनी आ रही थी, उसने सोचा कि शायद यहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए, इसलिए श्याम उस घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे से उसने आवाज लगाई, अंदर कोई है? घर के अंदर से किसी बुजुर्ग औरत की आवाज आई,
4: कौन हो, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो?
2: माँ जी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा?
4: अरे इस वक्त मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
2: माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जो कुछ भी बचा हुआ आपके पास मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ।
4: ठीक है, मेरे पास 2 अंडे हैं, खाओगे तुम?
2: हाँ माँ जी, मुझे खिला दो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो बूढ़ी औरत अंदर गई और 2 अंडे पका कर ले आई। श्याम अंडे खाकर बहुत खुश हुआ। माँ जी
5: आपने मुझे खाना दिया है, मैं इसके बदले आपको क्या दूं?
4: दो अंडे के तुम मुझे 5 रुपए दे दो बस।
5: माँ जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, कल वापस लौटते समय आपके पैसे दे दूंगा, आप मुझ पर भरोसा रखना।
4: कोई बात नहीं, तुम वापस आकर पैसे दे देना।
5: ठीक है, बोलकर श्याम वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वो शहर में अपने दोस्त के पास पहुँचा।
2: आओ श्याम, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई तुमसे, सब ठीक तो है ना?
5: हाँ सब ठीक है।
2: क्या बात है श्याम, मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, तुम मुझसे खुलकर बात करो, आखिर हम बचपन के दोस्त हैं।
5: किशन, इस बार बारिश ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी, बहुत नुकसान हुआ है, अब अगली फसल के बीज के लिए मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं है, मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो?
2: उधार? क्या बात कर रहे हो श्याम, तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझे रुपए दिए थे जब मुझे बहुत जरूरत थी, और वो रुपए मैंने आज तक तुम्हें वापस नहीं किए।
5: नहीं नहीं, मैं वो रुपए वापस लेने नहीं आया हूँ।
2: मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी श्याम, आज मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारी वजह से ही है, तुम्हारे दिए हुए रुपए से मैंने इस शहर में अपना काम शुरू किया, और देखो आज उसी से सब कुछ है मेरे पास।
5: किशन श्याम को पैसे देता है, रात शहर में बिताकर दूसरे दिन श्याम पैसे लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे याद आता है कि उसे बूढ़ी अम्मा के पैसे देने हैं। ये सोचकर वो बूढ़ी औरत के घर आया और बोला,
2: माँ जी कल जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपने मुझे खाना खिलाया था, लेकिन मेरे पास उस खाने के पैसे नहीं थे, आज मैं पैसे देने आया हूँ।
4: अरे एक ही दिन में तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए?
2: मैं शहर गया था अपने एक दोस्त से रुपए लेने।
5: ये बोलकर उसने बूढ़ी औरत को सारी बात बताई। ये सुनकर उस बुढ़ी को पता चल गया कि इसके पास काफी पैसा है। उस औरत के मन में लालच आ गया और उसने कहा,
4: बेटा तुम बहुत कम पैसे दे रहे हो मुझे, जब मैंने तुमसे कहा था तब इसकी कीमत 5 रुपए थी, लेकिन अब इसकी कीमत 500 रुपए है।
5: माँ जी 500 रुपए कैसे हो गए?
4: बेटा जो तुमने अंडे खाए वो साधारण अंडे नहीं थे, सोने के अंडे थे। हाँ अगर मैं उनको ना पकाती तो आज इन अंडों से मुर्गियाँ निकलती और कल फिर सोने के अंडे, जिन्हें बेचकर मुझे 1000 रुपए मिलते।
5: माँ जी ये क्या कह रही हैं आप, आपको देने के लिए उतने पैसे नहीं है मेरे पास, मैंने अपनी फसल के बीज के लिए अपने दोस्त से पैसे उधार लिए हैं। बूढ़ी औरत शाम की एक बात नहीं सुनती और गांव के सरपंच के पास उसको लेकर जाती है और सारी बात बताती है।
6: इसका हिसाब किताब कल करेंगे, आज इसको गांव में इस पेड़ से बांध देते हैं, कल इसका फैसला होगा।
5: शाम को चौपाल के एक पेड़ से बांध दिया जाता है। अगले दिन पूरा गांव चौपाल के पास इकट्ठा होता है, शाम को भी वहां लाया जाता है।
6: मुझे पूरी बात बताओ कि क्या हुआ।
5: शाम की बात सुनने के बाद सरपंच कहता है,
6: मुझे कुछ दिन का समय और चाहिए फैसला करने के लिए।
4: कितना समय चाहिए सरपंच जी?
6: बस 1-2 दिन, क्योंकि कल मैंने मूंगफली बोई है, कल वो फसल तैयार हो जाएगी तो कटाई करने का काम है, फिर परसों बाजार में बेचना पड़ेगा।
7: सरपंच जी ये कैसे हो सकता है कि 2 दिन में मूंगफली की फसल तैयार हो जाए?
6: जब 1 दिन में अंडे से मुर्गी और फिर मुर्गी से अंडा हो सकता है तो मूंगफली क्यों नहीं?
5: ये बात सुनकर पूरे गांव वालों को समझ में आ गया कि इस बूढ़ी औरत ने श्याम को ठगने के लिए ऐसा किया। बूढ़ी औरत को अपनी गलती का एहसास होता है और वो श्याम से माफी मांगती है।
4: बेटा मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी।
5: कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको 5 के बदले 10 रुपए दे देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे तब खाना खिलाया था जब मुझे जरूरत थी। इसके बाद श्याम अपने गांव आता है और अपनी पत्नी और बेटे को सारी बात बताता है।
3: कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, आखिर सरपंच जी ने न्याय कर ही दिया।
5: हाँ चलो अब हम अपनी दूसरी फसल बोने की तैयारी करेंगे। दूसरे दिन श्याम बाजार से नए बीज लाने जाता है। फिर कुछ दिनों में दोनों पति पत्नी मिलकर बीज बोने का काम करते हैं और कुछ महीनों में उनके सामने लहलहाती फसल खड़ी होती है। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल। श्याम और सुनीता दोनों मिलकर फसल की कटाई करते हैं और बाजार जाकर बेचते हैं। इस बार बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं फसल के। देखो कितने ज्यादा रुपए मिले हैं, इससे तो हम अपने पूरे खेत छुड़ा लेंगे।
3: हाँ, हमारे दुख के दिन खत्म हो गए समझिए।
5: चलो अब मैं जमींदार को पैसे देकर अपने बाकी खेत छुड़ा लेता हूँ।
3: हाँ हाँ जाइए।
5: श्याम जमींदार के पास जाता है।
6: क्या रे श्याम, सुना है इस बार तेरी फसल बहुत अच्छी हुई थी।
5: हाँ सरकार।
6: तब तो इस बार तू सारा कर्जा चुका ही देगा, क्यों, सही बोल रहा हूँ ना?
5: हाँ सरकार, मैं रुपए साथ लाया हूँ, कहकर रुपए देता है।
6: चलो आज तूने ये बड़ा काम कर ही दिया।
5: सरकार मेरी जमीन के कागज?
6: हाँ हाँ वो भी देता हूँ, ये लो अपनी जमीन के कागज।
5: धन्यवाद सरकार। श्याम जमीन के कागजात लेकर घर आता है। सुनीता, राजू आओ आओ, देखो हमारे जमीन के कागज मिल गए।
3: मतलब अब सारे खेत आ गए हमारे पास?
5: हाँ हाँ, अब से हम फिर से कई खेतों के मालिक हैं। तब तो पिताजी अब आप ट्रैक्टर खरीदोगे ना?
6: हाँ बेटा, ट्रैक्टर भी ले लेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार से मिठाई लेकर आता हूँ। आज बहुत सालों के बाद यहाँ खुशी आई है हमारे घर में।
5: पिताजी मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगा। ठीक है चलो।
2: श्याम और राजू बाजार जाते हैं और मिठाई खरीदकर घर वापस आते हैं।
5: देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ,
2: ये कहकर थैले से एक साड़ी निकालता है।
3: नई साड़ी? लेकिन आज तो कोई त्योहार नहीं है।
5: हमारे लिए तो आज ही त्योहार है।
2: और अपने हाथ से मिठाई निकालकर सुनीता और राजू को खिलाता है।
5: पिताजी अब हम अपने खेतों में कब से काम शुरू करेंगे?
6: बस एक दो दिनों में, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, खेतों का काम मैं और तुम्हारी माँ देख लेंगे।
5: ठीक है पिताजी, लेकिन कभी कभी मैं भी आप दोनों के साथ खेत में जाऊंगा, ताकि पढ़ाई के साथ साथ मुझे फसलों की भी जानकारी रहे।
6: क्या बात है, हमारा बेटा कितना समझदार है।
2: फिर तीनों हंसते हुए मिठाई खाते हैं। कुछ दिनों बाद श्याम और सुनीता अपने खेतों में नए बीज बोते हैं। देखते ही देखते एक नई फसल तैयार हो जाती है। अब श्याम ने ट्रैक्टर भी खरीद लिया है और पूरे गांव में सबसे अच्छी फसलें श्याम की ही होती हैं।
8: Hello, I'm Alexander, diplomat from Russia, and you are listening FM Radio Madubar. Keep listening and keep smiling. You can also tune radiomaduban.in on internet, even Russia, even everywhere.
9: रुक, ओए रुक, ओए रुक। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
10: सर वो सर सर।
9: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए? ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ। ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। ओए इतनी धूप है धूल है, वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो। ओए ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
10: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
9: आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो, हैं? पर मुझसे कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट, फिर गाड़ी।
11: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित।
0: हेलमेट आपकी सुरक्षा करने में मदद करता है, इसीलिए बाइक या फिर स्कूटर से यहाँ वहाँ कभी भी जाते हैं तो हेलमेट सिर्फ आगे वाले नहीं पीछे वाले भी जरूर डालें। आह कॉफी, वाह कॉफी।
1: कॉफी वास्तव में बीज है। कॉफी के पौधे पर लगने वाले फल को कॉफी चेरी कहते हैं। इसी के अंदर मौजूद बीजों को भूनकर कॉफी बनाई जाती है।
0: कॉफी बीन्स दाने जो मुख्य रूप से दो किस्म के होते हैं, एक है अरेबिका और दूसरा है रोबूस्टा।
1: कॉफी के फलों का रंग पकने पर लाल या पीला हो जाता है। इन्हीं फलों से कॉफी के बीज निकाले जाते हैं।
0: कॉफी के पौधे पर फूल आते हैं जिनकी खुशबू हद तक चमेली अर्थात जैस्मिन के फूलों की तरह होती है।
1: कॉफी का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी शुरुआती इतिहास का संबंध अफ्रीका के इथियोपिया से जोड़ा जाता है।
0: कहते हैं कॉफी में कैफीन पाया जाता है और कैफीन मस्तिष्क में थकान का संकेत देने वाला एडेनोसिन के प्रभाव को कम करता है। इससे थकान महसूस ही नहीं होती। तो चलिए कॉफी के बारे में जानकारी हो गई और अब सवाल पुनः एक बार और दोहरा देते हैं।
1: इनमें से आम तौर पर क्या स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होता है?
0: आपके सामने ऑप्शन है ए मोजे, बी रिबन, सी नेल पॉलिश। झटपट जवाब दे दो 9414151415 पर दे दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हरीश मोयल जी की आवाज मीठी आपके लिए।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?

जैसा सोचोगे वैसा फल पाओगे। इनमें से कौन सी चीज आमतौर पर स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होता? वो है ए मोजे, बी रिबन, सी नेल पॉलिश। झटपट जवाब दीजिएगा 9414151415 पर दीजिएगा। ये गीत है आपके लिए अब उड़ान में।

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ निहां।
1: हाजरीन महफिल, मेरा साथ दीजिए। अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: ठहरिए देव साहब, पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक जाम हो जाए।
3: हो जाए, हो जाए।
1: दुख होगा इसे है?

आ जाओ। करीब तो बिल्कुल स्कूल है और रूहानी भी हमारे दिल के बहुत करीब है। और तभी तो रूहानी मोजे जरूर पहनती है, रिबन भी जरूर लगाती है, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नेल पॉलिश बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए रूहानी नेल पॉलिश का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकती है। यदि आप भी स्कूल में जाते हो और इस प्रकार की चीजों मैंने मना करते हैं तो बिल्कुल आप कर नहीं सकते हो। नेल्स बढ़ा नहीं सकते हो, बाल खुले नहीं रख सकते हो, कान के बड़े बड़े झुमके नहीं पहन सकते हो। ये सभी स्कूल यूनिफॉर्म से बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है और जिसको फॉलो करना जरूरी भी होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को मिलने का वादा करती हूँ और ठीक शाम को 7 बजे यानी 6 बजे आप दोस्तों के बीच जरूर रहती हूँ। तो चलिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: तारो भरी ना मिने तो दीप
1: दीप। अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस 1 मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी हारो गांव हारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं सभी वर्गों से मिलते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे महिलाएं का समाज हो, चाहे नाड़ी हो, चाहे नरेगा हो, चाहे प्रशासन गांव के संघ, सभी वर्ग से मिलते हैं। तो आज हमें खुशी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों का मिलित सहयोग से बच्चों का टैलेंट, बच्चों का हुनर खोज में आज हम पहुंचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांदवाड़ा आर में। और इस कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए हमारा साथ भंवरलाल जी हमारा उपस्थित है। तो प्रिंसिपल उनको चयन किए बोला हमारा भंवरलाल सर पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम में और बच्चों का साथ घुल मिल कर करते। तो साथ को स्वागत करते रेडियो मधुबन परिवार की ओर से, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए, फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। सरकार का जो मंच है, आसपास गांव के जो हुनर है, जो टैलेंट को जन जन तक खोजने के लिए आज रेडियो मधुबन पहुंचा। सर आपको वेलकम करते हैं। राज के विद्यालय जो सांदवाड़ा आर में आप वरिष्ठ शिक्षक है, तो आप अपना परिचय देंगे।
1: सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे विद्यालय में समय निकाल के आए और हमारे बच्चों का टैलेंट जानने के लिए आप उपस्थित हुए हो। मैं भंवरलाल गांची, व्याख्याता हिंदी विषय से, सनवाड़ा आर में पोस्टेड हूँ। 2017 से मेरी पोस्टिंग यहाँ पे है और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी विश्व प्रसिद्ध संस्था के द्वारा आप यहाँ पधारे हो और हमारे बच्चों का टैलेंट लेके जाओगे। और मतलब सोशल मीडिया से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ये पूरे विश्व में हमारे बच्चे इस तरह से फेमस होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आप धन्यवाद के पात्र है।
0: सर आज जो इस कार्यक्रम को लेकर हमें बहुत खुशी है, क्योंकि एक इशारा से, एक इंगित से आपने हमें चांस दिए और बच्चे चांसलर बन जाएंगे, क्योंकि चांस देना आपका काम है और चांसलर बनना बच्चों का काम है। तो आज इस मंच को लोग ढूंढते हैं, जे आज सहूलियत से मिल गया आपको मंच और आपका बच्चे भी इस मंच का माध्यम से अपना हुनर को, अपना प्रतिभा को सुनाएंगे। और हमारा श्रोता जो लिसनर सुन रहे इंटरनेट का माध्यम से, एफएम का माध्यम से, चाहे लिंक का माध्यम से, चाहे एप्लीकेशन का माध्यम से सुन रहे, और हमारा श्रोता सुन रहे, सभी का आवाज जब सुनते हैं एक गुलदस्ता बन जाता है। चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे नाड़ी हो, चाहे ग्राम पंचायत, सभी वर्ग से, में चाहे किसान हो, सभी से मिलते हैं। तो आज बच्चों का आवाज न हो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सांदवाड़ा जो आर का बच्चे आज बारी बारी सुनाएंगे। तो हमारा श्रोता मित्र कहीं नहीं जाइए, अपना वॉल्यूम को ट्यून कर रखिए, आप सुन रहे हैं इस समय खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांदवाड़ा आर। तो सर आपको कैसे लगा, आपने पहले बता दिए बच्चों का जो भागीदारी मैंने देखा, आप सबको पूरा ग्रुप वाइज कर दिए, तो जो चार ग्रुप बने हैं, तो पहला ग्रुप जो हमारा दो बच्ची आए हैं तो उनका नाम थोड़ा जिक्र करेंगे।
1: जी हाँ, हमारे ये नन्ही मुन्नी बच्चिया, एक का नाम है दीपिका और एक का नाम है मानसी, हमारे पहला ग्रुप है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये बच्चिया देगी जो हमें बहुत खुशी होगी।
0: सर आप तो एक आरजे जैसे लग रहे हैं, एंकरिंग में आपका नंबर वन है, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभारी है। और उसके साथ कौन सा विषय आप पढ़ाते सर
1: बच्चों? जी मैं हिंदी पढ़ाता हूँ सर,
0: इसलिए आपका जो बोलने का तरीका हो और बच्चों को एकत्रित करके आप संबंध बनाते, बहुत खुशी लगा। सर को धन्यवाद देते ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय आज दोनों का सहयोग से बच्चों का टैलेंट को, छोटे बच्चे हैं लेकिन छोटे भी कम नहीं है, ऐसे बच्चों को जब मंच मिलता है, जो मौका मिलता है, तो चौका छक्का लगाएंगे आज और स्कूल का नाम रोशन करेंगे और नामांकन में भी वृद्धि होगा स्कूल का, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इस तरह आकाशवाणी में आ रहे हैं ये कम बात नहीं है। जोरदार ताली हो जाए सार के लिए, क्या बात, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति और तालियों का साथ हम खुशी करा दिए, क्योंकि ताली बजाने में कोई पैसा कोई टैक्स नहीं लगता है, एक्सरसाइज हो जाता है। और जो सोए हुए नींद, बच्चे तो सोते नहीं है लेकिन कहाँ भी सोए होंगे अगल बगल में, वो भी जाग जाएंगे, क्योंकि हमारा रेडियो में जब इस तरह आवाज सुनेंगे, जो रेडियो को छोड़कर जाते हैं सो जाते हैं कोई, तो उनको भी जगा देंगे, ये हमारा मंशा रहेगा। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा प्रस्तुतियां शुरू हो जाएगी। बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे परियां हैं और मीठे बच्चे हैं, चलिए सुनते हैं उनका मीठी आवाज से लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: चले नमस्ते कार्यक्रम के आगे बढ़ा, तो एक देर नहीं करते हुए हमारा जो कार्यक्रम आज तो ऐसे बंद पड़ेगा क्योंकि सर का जो उमंग उत्साह वार्म अप कर दिए और सर का भावना देखो और बच्चे भी भाव और भावना से एक प्रस्तुति सुनाएंगी। तो हम पहला प्रस्तुति की ओर चल रहे, सभी खुशी है ना, सभी बच्चे खुशी है, खुशी होना चाहिए और इस कार्यक्रम को हम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाएंगे और बच्चे भी इस साथ दे रहे और सब स्टाफ खासकर हमारा प्रिंसिपल साहब भी इस कार्यक्रम में अति सहयोग दिए। तो हमारा साथ दो छात्रा है, हेलो नाम बताइए।
1: मानसी।
0: आज मन का बात को मानसी अपना क्लियर करेगा क्योंकि मन बुद्धि और संस्कार हर बच्चों का अंदर में रहता है, मन बुद्धि और संस्कार। जिसका मन बुद्धि संस्कार तेज है त्रिमूर्ति, वो मन को जो कंट्रोल करेगा, बुद्धि को जो कंट्रोल करेगा, वो संस्कार तो बन जाएगा, दैवी संस्कार आ जाएंगे और बोले ये तो हमारा स्कूल के बच्चों का संस्कार है, सुसंस्कारित, हमको सुसंस्कारित बच्चे चाहिए भविष्य के लिए, अच्छा संस्कारित दैवी संस्कार। तो हमारा मानसी आज मन से गीत गाएगी और उसको साथ देने के लिए हमारा साथ और एक गुड़िया है, हेलो क्या नाम है?
1: दीपिका।
0: हाँ दीपिका, मन से आज दीप जलाएंगे दीपिका, नाम जैसे काम उस तरह करेंगे, दीप जलाओ भाई, बुद्धि का दीप मन का दीप जब जलेगा तो हमारा संस्कार बन जाएगा। दीपिका और मानसी को स्वागत करते हैं।

0: खाकर पढ़ने जाते।
1: वाह, ताली बजाना।
2: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद तालियों का साथ। मैंने सोचा था बच्चे सुबह उठते हैं और शाम तक क्या क्या करते, दिनचर्या बता दिए। सुबह उठते उठते क्या करना चाहिए? ब्रश। लेकिन इसका पहले मैं आवरे के जोड़ दूंगा, जब नींद खोलेगी तब पहले एक मिनट, जब नींद खोलेगी एक मिनट गुड मॉर्निंग टू गॉड, भगवान को शुक्रिया करना है, सुप्रभात। पहले नींद खोलते खोलते किसको धन्यवाद देंगे? भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, अपना कुलदेवी को क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। किसको बोलेंगे? भगवान को गुड मॉर्निंग करना है, ठीक है। इसका बाद जैसे मंजन करना, मुंह धोना, सब चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहला गुड मॉर्निंग किसको? भगवान को। इसका बाद माता पिता को, ठीक है, मन में बोलना है गुड मॉर्निंग, माता पिता आप हमें बहुत कुछ दिए, हम आपका रिटर्न करेंगे बड़े होकर, ऐसे मन में बोलना उठते उठते, ठीक है। इसका बाद शिक्षकगण, वो भी गुरु है तो उनको भी धन्यवाद देना मन में। इसका बाद अपना कार्य शुरू कर, उठते उठते बैठ जाने का बेड पे जहां पर सोते, तो फिर तीनों को गुड मॉर्निंग करना मन से, मन से, ठीक है, मन से गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग भगवान, है ना? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और मानसी तुम बड़े होकर क्या बनेगी लक्ष्य रखा है? जैसे सर मैम वगैरह होते हैं, कार्यकर्ता, पुलिस, राष्ट्रपति, है ना, तुम क्या बनेगी रे?
0: टीचर।
2: हाँ, टीचर मैम बनेंगे। अरे वाह, कोई सिखाया नहीं फिर भी बोले मैं मैडम बनेगी। हाँ, इसलिए पढ़ाई करना। और विद्यार्थी जीवन में बच्चे ध्यान से सुने, विद्यार्थी जीवन में बड़ों का बात मानना चाहिए। बड़े में कौन कौन आते हैं हमें बताएगी दीपिका? बड़े में कौन कौन आते हैं?
0: माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, टीचर।
2: हाँ,
0: बड़े भैया,
2: बड़े भैया बहन सभी बड़े आते, तो बड़े का बात मानेंगे तो जरूर जरूर कामयाबी होंगे। बड़े जो बोलते हैं आपका भलाई के लिए बोलते हैं, बोला बड़े आपका भलाई के लिए करते, लेकिन बड़े का बात तो सुनेंगे तो बड़े होकर हमारा टीचर जैसे सुनाएंगे सभी को। आपको सुनाते ना? क्योंकि वो पहले सुने थे माँ बाप का, इसलिए आज बच्चों को सुना रहे सभी चीज, और बच्चे सुनते ध्यान से, इसलिए बड़े होकर भविष्य में सबको सुनाने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, मैनेजर, PhD करने के लिए बड़ों का बात मानना चाहिए। दीपिका तुम बड़े कर क्या बनेगी?
0: टीचर।
2: तुम भी टीचर? अच्छा, तुम्हारा स्कूल के अच्छा टीचर का नाम बताओ। तुम्हारा स्कूल में कितना सारा टीचर है? कौन सा टीचर आपको अच्छा लगते हैं?
0: राजेंद्र जी सर।
2: अरे बात, सभी सर होना चाहिए, राजेंद्र सर को बोलते हमारा भवन लाल सर आपको मार काट देंगे रे, ऐसे नहीं करना, इसलिए छोटे बच्चों का ही है सर, इसलिए राजेंद्र सर बड़े तो हमारा लेक्चर है। सभी बच्चे सच्चे होते हैं और वो दिल से बात करते हैं, कोई कपड़ नहीं, कोई छल नहीं, और महात्मा होते हैं बच्चे, सच बोलते हैं, कोई इशारा नहीं, भाई सर हो चाहे कोई, इसका पूरा दिल का बात रखते हैं। सर का, सर कौन सा विषय आपको पढ़ाते जो सर आपका नाम लिए, कौन सा विषय पढ़ाते हैं?
0: गणित।
2: हाँ, गणित में मैथ टीचर बनेगी, ये भी हमारा दीपिका, बहुत अच्छा लगा। ऐसे बच्चों को मौका मिलना चाहिए, जो मंच आवश्यकता था आज बच्चों को मिल रहा है, और बच्चे खुशी से उनका चेहरा से पता चलता है जो हमें आज तो आकाशवाणी में हमारा आवाज जाएगा, मीडिया में जाएंगे तो हम तो मीडिया में छा जाएंगे, तो ऐसे होना चाहिए। और श्रोता भी यही बच्चों को प्रोत्साहन दीजिएगा, और कभी जरूरत पड़ेगा तो जरूर सनवाड़ा आर में आप आइए, बच्चों को मिलिए, और जो भी आपको देना चाहिए भामाशाह रूप में, चाहे उनका पानी हो, कुछ आरो, कुछ आवश्यक पड़ता है बच्चों को दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो खुला मंच है, रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारा गुड डे लोग भी है, बड़े बड़े भाई लोग, तो वो भी सुनाएंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, यह था ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन।

0: रुक। वो सुनाई नहीं देती। वो ये पुकार है आपकी गड्डी की, जो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारी के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमें तो जाने को इच्छा नहीं कर रहा, बच्चों का इतना स्नेह प्यार मिल रहा है, सब मीठे हैं और हमें भी मीठा बना दिए। और हमारा सर का तो इशारा से सब बच्चे खुश, बार बार आने के लिए इच्छा होगा, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को आप सुन पा रहे। चलिए हमारे साथ एक छात्र है, तो उनको परिचय लेते हैं। आप अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम योगेश कुमार है, मेरे 7 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा हार।
2: तो आज क्या प्रस्तुत करेगा, क्योंकि बच्चे सच्चे होते, सच मन से आप एक गीत प्रस्तुत करेंगे।
3: जी। जग सारो घूम्यो मैं, तारो जी सो ना कोई पायो, जग सारो

0: कितना सुंदर रूप में गीत गाए और बड़ा होकर क्या बनना चाहेंगे?
1: जी मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ।
0: शिक्षक, आज तो सब शिक्षक कहीं बनेंगे। और मैंने क्या बोल रहा है, आप का अच्छा खेल खेल खेलते हैं?
1: हाँ जी।
0: कौन सा खेल आप?
1: क्रिकेट।
0: क्रिकेट, क्रिकेट में कितना आदमी होते हैं?
1: 11।
0: 11 ऑपोजिट में 11 और आपका तरफ से 11, 22 लोग हैं। बहुत अच्छा। आपका सांगवाड़ा आर में आसपास कौन सा गांव है?
1: हमारे आसपास में रोईड़ा है, सरूपगंज है, पूला है, मांडवाड़ा है, वासा है, वाटेरा है, भारजा है।
0: अरे वाह, पूरा पिंडरा ब्लॉक में 43 ग्राम पंचायत है जिसमें ये बहुत सारा गांव, आसपास का गांव का नाम बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े होकर जैसे अपने टीचर बनेंगे, आपका टीचर को जो देखते हैं उनका विशेषता गुण कौन सा, शिक्षक से आप ग्रहण करते ज्यादा, उनका पढ़ाने का तरीका?
1: सभी से करते, एक से क्यों से,
0: सभी से कर, सभी से गुण लेना है। जब गुण लेंगे तो गुणग्राही होंगे। और सबसे विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा गुण है, सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है विद्यार्थी जीवन में, सबसे सबसे बड़ा गुण क्या है, कौन बताएंगे? विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के समय में सबसे बड़ा गुण, सर्वश्रेष्ठ गुण कौन बताएगा?
2: शिक्षा।
0: शिक्षा ग्रहण करना सबसे बड़ा गुण है विद्यार्थी जीवन में। लेकिन विद्या ग्रहण कैसे होगा विद्यार्थी जीवन में? विद्या ग्रहण करना, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा और थोड़ा सा सोचो। विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण तो पढ़ाई तो है, लेकिन उसके साथ साथ और कौन सा गुण है, कौन बताएगा? जिस गुण में दिव्यता ता रहेगा, ता मधुरता लास्ट में ता रहेगा। मैं क्लू दे दिया, विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए विद्यार्थी में
1: शिक्षकता।
0: शिक्षा, शिक्षकता, अच्छा शिक्षकता। और एक बोला पढ़ाई, एक तो शिक्षा, और बताएगा कौन सा गुण होना चाहिए पढ़ाई?
3: सहनशीलता, सहिष्णुता,
0: बहुत सारे गुण है, सबसे गुण है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ गुण, सबसे बड़ी गुण है
3: बुद्धिमत्ता,
0: नियमितता। नियमित जब आएंगे बच्चे, बच्चे तो आते हैं नियमित, सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमित स्कूल को आना है, इसके बाद आपका सर्व गुण आ जाएगा। सब गुण ठीक है जैसे सर ने बताया, सहनशीलता, लेकिन सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमितता, रेगुलर। एब्सेंट रहेंगे तो पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अगला ग्रुप हमारा रेडी है तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

तारो भरी ना मैंने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है,

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साइलेंस में, साइलेंस जो बल है ना, शांति से काम होना चाहिए। आज ओम शांति से आए हैं और ओम शांति से ही आज बच्चे शांति से गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। एक का बाद वंस मोर, और बालिकाएं एक ग्रुप आए हैं तो उनका नाम पहले सुन लेते हैं।
1: सोनू, कक्षा 7, राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा।
2: मेरा नाम दीक्षा है और मैं 6 क्लास में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम आस्था माली है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम प्रियंका कुबर है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ।
0: कितना सुंदर सुंदर तुलय और ताल का साथ अपना गीत प्रस्तुत कर रहे हैं आज, छोटे छोटे तोतले आवाज में और मिठास इसमें है। चलिए हमारा कार्यक्रम को हेल्दी बनाने के लिए चारों को स्वागत करते हैं, एक गीत प्रस्तुत हो जाएगी।

0: बहुत धन्यवाद। कहाँ से सीखते हैं सब? स्कूल में?
1: स्कूल से।
0: इसलिए स्कूल आना जरूरी है, स्कूल नहीं आएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। जैसे आज आकाशवाणी में बच्चे अपना आवाज को सुंदर रूप में प्रस्तुत किए, अभिमन्यु है ना? अभिमन्यु का पिताजी का नाम कौन बताएगा, मालूम है? अभिमन्यु
1: अर्जुन।
0: हाँ, वेरी पूरा इंटेलिजेंट। वहाँ पर जाएंगे ना बड़े होकर पूरी याद रहेगा। भाई भाई में जब इंटरव्यू होगा तो बच्चे तो याद करेंगे, रेडियो मधुबन में हमको पूछा था अभिमन्यु का पिताजी का नाम। उस समय भी कोई भी पूछेगा ना, अभी से रेडी रखना और जरूर आप कामयाब होंगे। बड़े होकर क्या बनेगी?
1: हम पुलिस।
0: हाँ, पूरा हाइट तो लग रहे, पुलिस के लिए रेडी है, फिट है पूरा, है ना? टीचर नहीं कोई, इसका पहले बहुत सारे टीचर मिले थे लेकिन अभी पुलिस मिलेगा। पुलिस का कर्तव्य, पुलिस का कर्तव्य मैंने ड्यूटी, उनका काम क्या होता है?
1: चोर को पकड़ती है और उन लोग को सबक सिखाते हैं।
0: सबक से जो खराब लोग को सबक सिखाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, है ना? और पुलिस चोर जो दुर्नीति करेगा उसको पूरा सजा देने के लिए रेडी रहेगा। तुम बड़े होकर क्या बनेगी?
1: मैं शिक्षक।
0: शिक्षिका, शिक्षक, मैडम बनेगी। तुमको पूछेंगे नहीं, तुम बताओ देखिए।
1: पुलिस।
0: पुलिस। हाँ, पुलिस बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और जिसको पुलिस चाहिए याद रखना, पूरा सांगवाड़ा आर को याद करेंगे बड़े होकर। ये लोग पुलिस, दो पुलिस तो मिल चुके, कोई आसपास गांव में कुछ भी हो तो तुरंत को कराएंगे, ठीक है? फोन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अगला प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति हम लेकर आ रहे हैं, और खासकर बच्चों का आवाज में जो दम है, बड़े बड़े भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए कितना भी धन्यवाद दे, हमारा सर कोऑपरेशन कर रहे हैं भंवरलाल जी। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सानवाड़ा आर सुनते हैं प्रस्तुति।
1: ओसीना केडबरमा प्रकार ए राम राम ए राम राम टिम्पा वाली जे आयुने आया है वीरो जोई पसिया बुने आया टिम्पा वाली जे आयुने आया है वीरो जोई पसिया बुने आया जावा दे जावा दे जावा दे।

0: lauta.
1: Alino
0: pemero lauta, pemero lauta, pemero bogule lauta. Javade, javade, javade. Evo pona leto paso a venea ya. Eviro paso a via venea ya.
2: चलो सर इस गीत में इसका भावार्थ क्या है हमारा सर जी बताएंगे क्योंकि हमारा श्रोता मित्र जो आदिवासी गीत नहीं जानते होंगे अथवा मारवाड़ी गीत नहीं जानते होंगे तो हमारा जैसे लोग जो आते हैं तो वो भी क्योंकि रेडियो मधुबन
3: तो नहीं आता इसका पूरा भावार्थ तो मुझे नहीं आता क्योंकि बहुत ही आदिवासी ठेठ अंचल से ये गीत है और इसका मुख्य भाव ये है कि कभी भी शादी वगैरह में आजकल जो डीजे का प्रचलन है तो जो एक गाड़ी डीजे वाली आती है उसके ऊपर ये गाना पूरा बना हुआ है कि टेम्पा वारू डीजे आयु रे मतलब एक गाड़ी आई है जिसके साथ डीजे लगा हुआ है
2: तो होने वाला है इसका आवाज से
4: सोनी, सोनी।
2: हाँ तो बहुत कुछ सीखा मिलते है तो हमारा जो भाकर क्षेत्र है भाकर क्षेत्र में जिस आदिवासी लोग रहते तो उनको मजा आता होगा डीजे का तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कार्यक्रम को संदर्भ में सजाया और अंतिम प्रस्तुति बच्चों का आवाज को सुन के हमारा शिक्षक भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे वो अपना अब राजेंद्र सर अपना इस कार्यक्रम को देख रहे हैं साक्षी दृष्टा रूप में और भीष्म पितामह जैसे सभी में सभी शिक्षक को हम धन्यवाद देते हैं कोऑपरेशन एक परिवार जैसे चलिए हमारा सर जी को राजेंद्र सर को स्वागत करते हैं सर आज रेडियो मधुबन में आपको स्वागत करते हैं बच्चों का साथ आप भी बच्चे बन गए अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे तो आपको तालियों का साथ
3: बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और रेडियो मधुबन को कि आज आप एक ठेठ आदिवासी अंचल के गांव सनवाड़ा आर में आकर के आप बच्चों को इनकी प्रस्तुति देने के लिए एक मंच प्रदान कर रहे हैं वास्तव में आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और इतनी खुशी आज मुझे हो रही है और वास्तव में ये प्रयास आखिर में रंग लाएंगे इन बच्चों की आवाज जब दुनिया वाले सुनेंगे तो वास्तव में मालूम पड़ेगा इनको लोगों को कि इन बच्चों में भी प्रतिभाएं हैं ये भी कुछ कर सकते हैं और ये भी कुछ कर दिखाने में सक्षम है तो अंत में जैसा कि सर ने मुझे आह्वान किया है मैं राजेंद्र टेलर चूंकि इन छोटे छोटे बच्चों का कक्षा अध्यापक

कर रहा हूँ, बहुत सारे गीत मैंने इनको सिखाए भी है, तो बच्चे भी डिमांड करें कि सर आप भी एक गीत तो सुनाई दो। तो हमारी देश की संस्कृति जैसी है और जैसा मैं इन बच्चों को मानता हूं, उसी अनुरूप उसी भाव को लिए हुए मैं ये गीत की कुछ पंक्तियां पेश कर रहा हूं, आशा है आपको अच्छी लगेंगी।

बच्चा बच्चा राम है। वास्तव में मेरे लिए इस विद्यालय के मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, हर बाला हर बालिका एक देवी के रूप में है, वो पूजनीय है, और हर बच्चे में मुझे राम दिखाई देता है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मान

0: हैं। थैंक यू वेरी मच रेडियो मधुबन और यहाँ से आए हुए सभी साथी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे विद्यालय परिवार हमारे सनवाड़ा आर की तरफ से, थैंक यू वेरी मच।
1: उसका राज अभी पता चला, राजेंद्र सर का जो मेहनत बच्चों के प्रति, तो बच्चे भी आज सर का नाम रोशन किए और बच्चों का साथ आज तो पूरा मनोरंजन हुआ। इसका श्रेय तो पूरा संस्था को जाता है, स्कूल के विद्यालय के परिवार को और बच्चों को भी जाता है। तो माँ बाप भी जब सुनेंगे, अरे हमारा बच्चों का ये आवाज, सही में इनको एक मंच जरूर था, आज वो मंच मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर और हमारा भंवर सर, अपना सभी स्टाफ को भी, प्रिंसिपल साहब को भी धन्यवाद देते हैं। आज का कार्यक्रम को यहीं पर रखते हैं, आप सबसे हम इजाजत लेते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा आर का आवाज जो आपका पास हमें रखे हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक गतिविधि जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच प्रदान करता है। तो आज उसका आप सब साक्षी रूप में सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, सभी को नाम का साथ धन्यवाद, आभार।

0: भाई रुको, भाई रुको, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, ओए एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ओए बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, ओए तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको, ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टैंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: एल्बम।
1: हम पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
2: लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है। और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस। इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढई गाँव रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनता रहा और मुस्कुराता रहा।
1: मैं तेनू समझावा की

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं।
1: मैया मोरी मैं नहीं मांगने खायू,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी के नए रंग लेकर आते हैं हम आपके पास। वैसे तो हर कोई चाहता है कि मैं जिंदगी में ये करूं, मैं जिंदगी में वो करूं, लेकिन लौट कर अपने घर की ओर आते हैं, अपने पन की ओर आते हैं, उनके पास आते हैं जिनसे हम बेहद प्यार करते हैं। लेकिन अगर वहाँ रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी भी मुश्किल आ जाती है तो ऐसा लगता है वो सफलता भी कुछ फीकी सी है। तो चलिए उन इमोशंस को संवारते हैं, आपकी जिंदगी को संवारते हैं, सफलता को खुशियों से और भर देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं भावनाओं के बारे में, सेंसिटिविटी वर्सेस सेंसिबिलिटी में आप कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी एक्सपर्ट ग्लोबल अस्पताल से कल्पना जी, जो कि हमारे गाइड हैं और साथ साथ हमारे दोस्त भी हैं। वो एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। एक लंबे काल का अनुभव है उन्हें, बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं। कल्पना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी, ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे रेडियो के माध्यम से श्रोताओं से मुखातिब होने का चांस मिलता है। और जब हम श्रोताओं से ऐसे बातचीत करते हैं तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो अनसुलझी पहेलियां होती है अपने जीवन की, वो धीरे धीरे सुलझते हुए महसूस होती है। सो मुझे अक्सर श्रोताओं से बात करना बहुत पसंद है, तो इस चांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और मुझे एक बात, जब हम टॉपिक पे आए उससे पहले, क्योंकि कई बार हमें काउंसलर के पास जब जाने की बात आती है तो डर लगता है या फिर घबराहट लगती है कि मुझे कुछ हुआ थोड़ी है जो मुझे जरूरत पड़े जाने की। लेकिन जिसने भी काउंसलिंग की है वो आई थिंक एक्सपीरियंस करके बता सकते हैं कि बहुत ही फ्रेंडली अप्रोच होती है, एक्सेप्टिंग होते हैं और जैसा आपने कहा सुलझाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप काउंसलिंग के बारे में भी अगर आज हमारे श्रोताओं को बताए तो हमें अच्छा लगेगा।
1: वंडरफुल, मुझे ये प्रश्न सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैं थोड़ा सा पास्ट में चली गई, रिफ्लेक्ट करने लगी कि जब मेरे पास पेशेंट आता है तो वो बहुत चिढ़ा हुआ और गुस्से में होता है कि डॉक्टर ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, मैं कोई पागल हूँ या मुझे कोई काउंसलिंग की जरूरत है। सो सचमुच आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि काउंसलिंग में जाना मतलब आपके मेंटल फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है, आप मेंटली शायद ठीक नहीं हो इसलिए आपको काउंसलिंग के पास जाना पड़ता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास आने वाला कोई भी व्यक्ति केवल 10 मिनट के लिए ही उलझा हुआ रहता है, 10 मिनट के बाद वो महसूस करने लगता है कि अरे मैं तो सही जगह पर आया, क्योंकि हमारा जो अप्रोच होता है हमारे आने वाले हर व्यक्ति की तरफ, जिसको हम काउंसिली कहते हैं या क्लाइंट कहते हैं, उनके प्रति हमारा जो अप्रोच होता है वो किसी भी प्रकार के जजमेंटल नहीं होता है, रिलैक्सिंग होता है। हम अपने आसपास का एटमॉस्फेयर भी ऐसा बना के रखते हैं फिजिकल, जिससे कि आने वाले को ऐसे लगता है कि अरे कितनी अच्छी जगह है ये, कितनी शांति है यहाँ, कितना सुकून है। और फिर जो हमारा इसको कहते हैं ना एप्रिसिएटिव इंक्वायरी,
0: जी
1: एप्रिसिएटिव इंक्वायरी या कंपैशनेट इंक्वायरी का तरीका हम अपनाते हैं, तब उन्हें महसूस होता है कि अरे मेरी बात छोटी भी है या बड़ी भी है तो भी मुझे डिस्कस करनी चाहिए, इतना प्यार से मुझे रिस्पेक्ट देते हुए पूछा जा रहा है। सो 10 मिनट्स लगते हैं लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि कई माउंट आबू के यूथ है, बच्चे हैं, जो सालों से खुद फोन करके कहते हैं दीदी मैम मुझे आपके पास आना है, क्या मैं आऊं, थोड़ा मुझे जरूरत है आपके साथ बातचीत करने की। सो दिस इज आवर क्रेडिट कि जब लोग खुद फोन करके कहते हैं कि आज मुझे आपसे मिलने आना है, कई लोग ऐसे हैं माउंट आबू के, आबू रोड के या सिरोही जिले के, जो कहते हैं कि हम खास आपके पास इसलिए आए हैं कि आपके डिपार्टमेंट में आसपास इतनी जो शांति है उस शांति का अनुभव करने के लिए आए हैं। फिर जो आपके पास स्पेशल मेडिटेशन रूम है वहां पर बैठने के बाद हमें अपने कई सारे सवालों का जवाब ऐसे ही मिल जाता है, तो हम वहाँ केवल बैठने आए हैं।
0: मतलब आप जब बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कितना प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, और वो डर तो सिर्फ मन में ही है, एक्चुअल रियलिटी तो है ही नहीं। तो अगर आप किसी को नहीं सुना सकते हैं तो आप काउंसलर के पास जाइए, आपको वो एक्सपीरियंस होगा जो आपने सोचा भी नहीं है। तो डेफिनेटली परसेप्शन बहुत अलग है और रियलिटी बहुत अलग है, हम सोचते अलग है होता अलग है।
1: राइट,
0: वक्त आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम रेडियो के माध्यम से भी पहुंच रहे हैं बहुत घरों तक, और ये भी एक तरह की काउंसलिंग है जो शायद हम सबको चाहिए, क्योंकि हम अपनी भावनाओं में खुद ही बहुत फंसे हुए हैं आज कल्पना जी। तो आज जब हमने कुछ एपिसोड्स में बात की थी कि हम सेंसिटिव हो गए हैं बहुत ज्यादा इमोशंस को लेके भी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी सेंसिबिलिटी क्या होते हैं। सेंसिबिलिटी मतलब ऐसा लगता है कि वो दिमाग का काम है बहुत, तो इमोशनल सेंसिबिलिटी।
1: देखो, सिंपल से सेंसिटिव होना, ये जनरल कॉमनली शब्द हम यूज करते हैं कि क्या अरुषि जी आज बहुत आप सेंसिटिव हो गए थी। सो आपको याद है कब आप सेंसिटिव हुए थे? तो आज ही मेरे पास एक सिस्टर आए थे जो कैंसर पेशेंट के लिए प्रमोशन का काम कर रहे थे, जो हमारा अबू रोड में कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर बना है, जो कि फ्री कैंसर स्क्रीनिंग करवाता है हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए और आसपास की बहनों के लिए भी ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। तो वो प्रमोशनल काम कर रही थी और देख रही थी कि इतना प्रमोशन करने के बाद भी लेडीज स्क्रीनिंग के लिए आने में दिक्कत होती है उनको या नहीं पहुंच पाती है। तो बड़ी उदास हो रही थी, निराश हो रही थी और सेंसिटिव इसलिए हो रही थी, उसके आंखों में आंसू आ गए। इतनी बहनें तकलीफ में हैं, कईयों को पता ही नहीं है। कैंसर जैसी बीमारी ऐसे है जो माताओं बहनों में ज्यादा होती है, एक पेल्विक कैंसर होता है, एक ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो वो बीमारी माताओं बहनों में, क्योंकि उनको ब्रेस्ट है, तो वो कैंसर ऐसी चीज है ना, वो पेनलेस गांठे होती है या पेनलेस होता है, वो उसका हमें जल्दी पता नहीं चलता है। तो वो रोने लग गई कि देखो ना, इतनी बहनें तकलीफ में हैं, कई बहनों का स्क्रीनिंग के बाद, डिटेक्ट होने के बाद भी वो मेडिसिन नहीं ले रही है, ट्रीटमेंट नहीं ले रही है, मुझे नहीं समझ में आता है क्या मजबूरी है उनकी। तो वो रोने लगी, तो हम थोड़ा सा चुप हुए। आसपास हम जो दो काउंसलर्स बैठे थे, हमने कहा जो आपको रोना आ रहा है ना, इसे सेंसिटिविटी कहते हैं, जो आपका काम है, जो आपका प्रोफेशन है। अगर आप हर बार ऐसे रोते रहेंगी, मेरे पास पेशेंट आते हैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं, तो अगर हम उनकी कहानी में रोने लगे या सेंसिटिव हो जाए तो हम उनको मदद कैसे करेंगे, है ना। तो सेंसिटिव होना मतलब जल्दी से इमोशंस के प्रभाव में आकर उस इमोशंस के साथ रिएक्ट करना, चाहे वो गुस्सा हो, रोना हो, उदास होना हो, निराश होना हो, या डर लगना हो, चिंता होनी हो, या लज्जा आनी हो, शेम फील करना हो, या गिल्ट फील करना हो। ये जो फीलिंग हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। ये बहुत सेंसिटिव है, तुरंत रोने लगती है, ऐसे बोला जाता है,
0: ऐसे बोला जाता
1: है। एंड हमें अब सेंसिटिविटी से सेंसिबिलिटी की तरफ बढ़ना है। सेंसिबिलिटी का मतलब है समझदारी, संवेदनशीलता।
0: ओके,
1: संवेदनशील, उसमें शील शब्द आता है, शील मना वो ऊंचा चरित्र है।
0: okay.
1: है ना। सो संवेदना क्या है कि भाई हम दूसरों की बात को समझते हैं, उनके साथ हम खड़े हैं, परंतु जब वो इमोशनल है तब हम स्टेबल रहते हैं, शांत रहते हैं, स्ट्रोंग रहते हैं, और उनके अपने साथ होने का, मैं उनके साथ हूँ ऐसा हम उनको एहसास कराते हैं। इसलिए रोना जरूरी नहीं है, रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, चेहरे के हाव भाव बदलना जरूरी नहीं है, बस किसी के साथ होना, उसको कहते संवेदनाशीलता या समझदार इमोशंस के एक्सप्रेशन। समझो, फॉर एग्जांपल, अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है
0: जी,
1: है ना, तो हम उनके पास सांत्वना देने के लिए जाते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लग जाते हैं
0: जी,
1: है ना, तो माहौल गमगीन हो जाता है। बट ऐसे समय पर ऐसे समझदार लोगों की आवश्यकता है जो बिना रोए उनको साथ का अनुभव कराए। और कई लोग क्या करते हैं कि रोते हुए को बोलते, अरे क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रोने से क्या होगा, रोने से क्या फायदा, ऐसे रिएक्ट करते हैं। ये भी समझदारी नहीं। अगर कोई रो रहा है तो उसे रोने का पूरा मौका देके, जरा सा हल्का करके, फिर उसके बाद हम उनको प्यार से अगर कहें कि कोई बात नहीं, अब जो हुआ है सो हुआ है, हम आपके साथ हैं, बहुत जल्द आप शांत और रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा, है ना। वास्तविकता को सामना करना, किसी की मृत्यु हो या कई बार किसी को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तब भी उनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई व्यक्ति मर गया हो, सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया। उड़ीसा में बाढ़ आई, कई जगह बाढ़ आती है, सब कुछ खत्म हो रहा, कल था आज कुछ भी नहीं है। तो ऐसे समय पर रोना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, तो किसी को रोने से रोकने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो रोने का उबाल जब शांत हो जाए तब तक इंतजार करके उस व्यक्ति को सही सपोर्ट करना। इंग्लिश में दो शब्द है, सिंपथी और एम्पथी, है ना, इनको समझना बहुत जरूरी है। सिंपथी वो है कि हम सहानुभूति दिखाते हैं लोगों को और रहम करते हैं उनके ऊपर, उनकी स्थिति पर हमें दया आती है। लेकिन एम्पथी, एम्पथी का मतलब है आप उनके साथ उनकी भावनाओं का अनुभव करते हुए, कदर करते हुए उनके साथ खड़े हैं, है ना, बिना रिएक्टिव हुए, स्टेबिलिटी के साथ।
0: ये एक लाइन है कि हम वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं भावनाओं के साथ, और यहाँ पे भावनाएं हैं, ऐसा नहीं है भावनाएं चली गई हैं, लेकिन हैंडल कर पा रहे हैं सिचुएशन को बेटर, दूसरे को भी मदद कर पा रहे हैं।
1: जी,
0: बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना, मुझे लगता है हम सबको काम आने वाली चीज है। खासतौर से हम आज बच्चों की बात करें अगर, या यंगस्टर्स की बात करें, कई बार हमें बहुत बुरा लगता है, जैसे हम मान लीजिए

0: एक छोटी सी ही बात है, किसी को कुछ चाहिए और लेकिन वो नहीं मिलता है, तो हमें कभी कभी ये लगता है कि बहुत अनफेयर हो रहा है हमारे साथ, कि हमारे माता पिता दे तो सकते हैं हमें, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं दे सकते हैं, बट वो नहीं दे रहे हैं, उनको लग रहा है हम बिगड़ जाएंगे, हम वो कर जाएंगे, तो फिर वो फील होता है कि उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या, और ये तो हमारे लिए जरूरी है, ये तो नॉर्मल है, सबके पास है, चाहे वीडियो गेम हो या फोन हो, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं लगती है जितना बड़ा रिएक्शन होता है पेरेंट्स का कि नहीं मिलेगा, तो फिर उससे इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और लगता है कि वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे, वो इनसेंसिटिव है हमारी भावनाओं को लेकर, तो ऐसे में फिर क्या करें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल की जो पीढ़ी आगे आ रही है उनमें बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, सेंसिबिलिटी की कमी महसूस होती है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि उनको हर वो चीज जो चाहते हैं वो तुरंत मिलनी चाहिए, अगर ना मिले।
0: इनसेंसिटिव लगते हैं, ऐसा लगता है वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे, वो इनसेंसिटिव है, हमें तो जरूरत है, बट हाउ कैन दे बी सो इनसेंसिटिव।
1: बिल्कुल ये उनकी जो समझ है वो सही नहीं है। मैं एक घटना के साथ आपको उस बात को समझाना चाहूंगी।
0: जी।
1: हमें साइकिल चाहिए या हमें स्कूटर चाहिए या हमें मोबाइल चाहिए। अच्छा, मोबाइल की आवश्यकता जब है तब वो आवश्यकता कितनी है, मतलब बेसिक चीजें उसमें से हमें यूज करनी है, जैसे फोन पर बात करनी है या मैसेजिंग के लिए यूज करना है, इमरजेंसी के लिए यूज करना है, पढ़ाई के लिए यूज करना है, बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो पढ़ाई में काम आते हैं। बट फोन एक लग्जरी हो जाए, रिक्वायरमेंट की जगह वो एक लग्जरी का साधन बन जाए, शो करने के लिए अपने दोस्तों के सामने कि मेरे पास इतना महंगा मोबाइल है। तो जब माता पिता वो पूरी नहीं करते इच्छा, तो बच्चे रिएक्ट हो जाते हैं, इनसेंसिटिव समझते कि इनके पास तो इतना धन दौलत है, फिर ये हमें क्यों नहीं देते हैं,
0: हमारी खुशी के लिए इतना तो कर सकते हैं,
1: कर सकते हैं ना। बट बच्चे तो नादान है, उनको नहीं पता, पेरेंट्स को पता है कि ये चीज के साथ नहीं, भावनाओं की बात है, चीज की बात नहीं है, भावनाओं की बात है। अब इसमें कौन सी भावनाएं जुड़ी है, देखो हर एक इंसान को समझना चाहिए कि मेरी आवश्यकता क्या है और लग्जरी क्या है। मतलब बिना आवश्यकता के मैं दूसरों को दिखाने के लिए वो चीज कितनी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर शो के लिए मुझे वो चीज लेनी है, तो ये सेंसिबिलिटी है भावनाओं की कि वो चीज आपके काम नहीं आएंगी या काम की चीज आप उससे यूज नहीं कर पाएंगे, बिना काम के चीजों में आपका उसमें टाइम चला जाएगा, जैसे गेमिंग है। या फिर मेरे पास कई ऐसे यूथ के माता पिता आए हैं, यूथ्स के, कि हमारा बेटा मोबाइल पर पता नहीं क्या कुछ गेम के माध्यम से पैसे कमाने का कोई पता, मुझे भी नहीं पता है ये, कि वो कुछ करते हैं। तो पेरेंट्स आते हैं कि ये इसको अभी लत लग गई है, ये गेम्स के माध्यम से पैसा कमाने के लिए घंटों फोन से चिपका रहता है। सो ये नहीं हो, इसलिए पेरेंट्स लग्जरियस चीजें बच्चों को प्रोवाइड करने में थोड़ा सा समय लेते हैं। तो अब मतलब मेरी भलाई तो मुझे ही सोचनी है ना, पेरेंट्स सोचते हैं तो हमें उनको लगता है कि वो सेंसिटिव नहीं है,
0: इस जनरेशन को नहीं समझ रहे, वो हमें वैसे बड़ा करना चाहते हैं जैसे वो बड़े हुए।
1: हाँ जी,
0: हाँ टाइम चेंज हो गया, उनके पास फोन उस समय नहीं था, अब है, तो फिर वाई नॉट।
1: हाँ, तो सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी अगर हम हर चीज में इस बात को अप्लाई करते हैं तो बहुत मजा आएगा। सेंसिबल बनकर कोई काम करना या सेंसिटिव होकर कोई काम करना, इसमें हमें फायदा है अगर हम सेंसिबल बनके, मतलब समझदार बनके अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए, अगर पेरेंट आपको कुछ चीज देने में देरी करते हैं तो मुझे बताइए कि आप में कौन सी एक वैल्यू है जो डेवलप होगी अगर आप इंतजार करेंगे।
0: ओके, आई थिंक पेशेंस।
1: यस, पेशेंस डेवलप होगा, है ना। और पेशेंस कितना जरूरी है, कोई भी चीज पाने के लिए अगर हमें इंतजार करना पड़ता है तो वो चीज मिलने के बाद उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है, और हम में वो वैल्यू आ गई पेशेंस की। तो हर चीज हमें सिखाने वाली है, क्यों ना हम सेंसिबल बनकर ये सोचे कि चलो अगर देर हो रही है या पेरेंट्स मेरी बात नहीं समझ रहे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम एक किस्सा लेते हैं कि समझो एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स से कुछ डिमांड कर रहा है और पेरेंट्स उसको नहीं दे रहे हैं, तो वो समझता है कि मेरे पेरेंट्स के पास तो है, कैपेबिलिटी है, फिर भी नहीं दे रहे हैं। और बच्चे की मांग, तो अब बच्चा अगर ये करे जिद करने की जगह, गुस्सा करने की जगह, टेंट्रम दिखाने की जगह वो पेरेंट्स को बोले कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ।
0: ओके,
1: मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो दोनों पेरेंट्स बैठ जाओ एंड मैं भी बैठता हूँ। क्या बात करनी है बेटा? तो वो बेटा बोलेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने इतने कामों के लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे ये चीज आप अगर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पेरेंट्स क्या कहेंगे? हाँ बेटा, हम जानते हैं आपको इस चीज की बहुत आवश्यकता है, परंतु हम जो घर का खर्चा चला रहे हैं, EMIs भर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने EMIs जो जा रहे हैं, इसके कारण थोड़ा मैनेज करने में हमें अभी दिक्कत आ रही है, तो क्या हम आपको थोड़े दिन के बाद पैसे को मैनेज करके आपको दे तो आपको चलेगा?
0: मतलब बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि शायद पेरेंट्स बताते नहीं है कई बार।
1: हाँ,
0: बच्चे या कुछ
1: वो सोचते हैं क्यों हम अपनी परेशानी बच्चों को बताएं। हाँ, तो वो सोचते हैं कि ठीक है थोड़े दिन बाद मैनेज करके दे देंगे उनको। तो बच्चों को जब समझ में आता है कि अरे जैसे मेरी 4-5 प्रायोरिटीज है, रिक्वायरमेंट्स है, वैसे 4-5 चीजों जगह पर उनको मनी मैनेज करना है, तो मैं थोड़ा सा रुक सकता हूँ। और वो देखता है कि कितना सिंसियर इफर्ट कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स मुझे वो चीज दिलवाने के लिए, तो उसको कदर होती है उस चीज की, उसे एहसास होता है कि इस वजह से देरी हो रही है।
0: ओके,
1: है ना? तो उसमें पेरेंट्स के बीच में बहुत ये जो फैमिली का बॉन्डिंग है ना, पेरेंट्स के बीच में एक पीसफुल कम्युनिकेशन होता है, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक बहुत सुंदर ब्रिज बन जाता है। मैं देखती हूँ आजकल रिलेशनशिप में वॉल्स बनती जा रही है, दीवारें खड़ी हो रही है आपस में, शेयर नहीं करते, तो ब्रिज बन जाएगा।
0: That's wonderful, क्योंकि sensibility की बात है, भावनात्मक, मुझे लगता है बच्चे शायद इतना नहीं समझेंगे, पर बच्चों को बताएंगे तो समझेंगे और वो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। ये हमने आज जाना आज के एपिसोड में। आई थिंक बहुत बहुत ही अच्छा आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन था, बहुत इंटरेस्टिंग था कॉन्वर्सेशन। जाते जाते कल्पना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई भी ऐसे 2 मिनट का आप हमें एक्सपीरियंस करा सके या कोई भी ऐसे शब्द बता सके जो हम शायद रिकॉल करें, तो हम ये बातें याद रखें, अपने साथ लेकर जाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आज हमने सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी दो शब्दों को अच्छे से समझा और उन्हें महसूस किया, तो उसी तरह से अगर हम सेंसिटिविटी को सेंसिबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हमें कुछ अभ्यास मेंटल और फिजिकल करने की आवश्यकता है। जो एक छोटा सा अभ्यास हमें बहुत सारी चीजों को अचीव करने में मदद करेगा, इंटरनली, इमोशनली और फिजिकली भी। तो एक बहुत सुंदर अभ्यास है जिसको अगर हमारे यूथ 1 मिनट के लिए भी बैठकर करें। अरुषि जी, आप ये बताएंगे कि 1 मिनट में हम कितनी सांसें लेते हैं?
0: गिननी पड़ेगी।
1: चलो, तो हमारे श्रोताओं को ये अभ्यास है कि वो गिने 1 मिनट में कितनी सांसें।
0: मैं भी करूंगी अभ्यास, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है।
1: और गिनते समय थोड़ा हर सांस को लंबा और गहरा लेने की कोशिश करें। इसे सांस हम नाक से लेते हैं तो हमारे छाती से होकर पेट तक पहुंचती है सांस। तो एक बहुत सुंदर अभ्यास है कि बस शांति से बैठ जाए, अपनी सांसों को देखे और लंबी और गहरी सांसें ले, और उसके साथ अपने मन में 2 या 3 विचारों को दोहराए जो भी आपको अच्छे लगते हैं, है ना? सो आज के टॉपिक के अनुसार हम क्या ले सकते हैं कि आई एम अ सेंसिबल पर्सन। गहरी और लंबी सांस लेकर अपने सांसों को देखने का अभ्यास करें, हर सांस के साथ अपने मन और शरीर को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स फील करें। अपने मन में इन विचारों को दोहराए, मैं संवेदनाशील, सेंसिबल हूं। संवेदनाशीलता, सेंसिबिलिटी मेरी शक्ति है। गहरी और लंबी सांस लें, इस सवाल को, इस प्रश्न को या इस वाक्य को दोबारा

0: सांस ले और रिलैक्सेशन के साथ तीसरा अफर्मेशन या तीसरा वाक्य अपने मन में दोहराए। मैं आहत होने पर भी सम्मान पूर्वक संवाद करना चुनती हूं या चुनता हूं। मैं आहत होने पर भी सम्मान पूर्वक संवेदनाशील होकर संवाद करना चुनती हूं या चुनता हूं। गहरी लंबी सांस लें और इसी के साथ हम यहीं पर इस चीज को समाप्त करते हैं।
1: थैंक यू सो मच कल्पना जी। मुझे लगता है हमने आज डिफरेंस भी जाना, सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी की वो लाइन को भी समझा और किस तरह से रिएक्ट करते हैं इमोशंस को लेके, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है वो भी जाना और कैसे हमारा उससे बॉन्ड भी हमारे हर रिलेशनशिप से बेटर हो रहा है ये भी जाना। वो तो हम सब चाहते हैं कि हो, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमें इस कार्यक्रम में समय देने के लिए।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सबसे पहले हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच दोस्तों, और चलिए फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का। लव यू जिंदगी के साथ लव यू जिंदगी कार्यक्रम में अगली कड़ी में मुलाकात होगी। तब तक जिंदगी को खुल कर कहिए कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वंदे मातरम गीत भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक था। इसमें स्वशासन की सामूहिक इच्छा और लोगों का अपनी मातृभूमि के प्रति भावनात्मक जुड़ाव झलकता था। शुरुआत में स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलनों के दौरान लोकप्रिय हुआ ये गीत जल्द ही क्षेत्रीय सीमाओं के ऊपर उठकर राष्ट्रीय जागृति का गीत बन गया। बंगाल की सड़कों से लेकर बॉम्बे के मुख्य इलाकों और पंजाब के मैदानों तक वंदे मातरम का स्वर ब्रिटिश शासन के विरोध के प्रतीक के रूप में गूंज उठा। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश के अनेक वीर क्रांतिकारियों का प्रेरणा मंत्र भी था। फिर वो अमेरिका में गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारी रहे करतार सिंह सराबा ही क्यों ना हो। वंदे मातरम का नारा उन्हें वतन पर मर मिटने का हौसला देता था। आज के एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में हम सुनेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी करतार सिंह की कहानी, जो मात्र 19 साल की आयु में फांसी पर चढ़ा दिए गए।
1: दीदी, सच में वंदे मातरम गीत में बड़ी शक्ति है। आज भी सुनती हूँ तो अंदर एक जोश भर जाता है।
2: हाँ बन्नू, सोचो आज जब ये गीत हमारे दिलों को इतना झंझोर देता है, वैसे में स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसका कितना प्रभाव रहा होगा कि इसने देश के अनेक युवाओं में क्रांति की लौ जगाने का कार्य किया। वंदे मातरम गीत न सिर्फ क्रांतिकारियों में नया जोश, शक्ति और उम्मीद भरता था, बल्कि वो उनका बीज मंत्र बन गया था। गदर आंदोलन के दौरान भी इस गीत ने क्रांतिकारियों के हृदय में जल रही ज्वाला को बुझने नहीं दिया।
0: आप श्रोताओं को याद होगा कि कैसे 15 जुलाई 1913 को कैलिफोर्निया के पंजाबी भारतीयों ने एकत्रित होकर गदर पार्टी का गठन किया था। उसका उद्देश्य था सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना। वीर क्रांतिकारी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना पार्टी के संस्थापकों में से थे। उन्होंने गदर नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला था, जो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और पश्तो भाषाओं में प्रकाशित होता था। देखते ही देखते वो अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन गया था। वो उसमें प्रकाशित होने वाले लेखों से भयभीत रहने लगे थे। लेखकों में एक नाम था करतार सिंह, जो अखबार के लिए देशभक्ति की कविताएं और लेख लिखा करते थे। साथ ही साथ अखबार की गुरमुखी संस्करण की छपाई का जिम्मा भी संभालते थे। बहुत कम समय में गदर पार्टी गदर आंदोलन के माध्यम से प्रसिद्ध हो गई और इसने समाज के हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया।
1: गदर पार्टी के ये करतार सिंह आखिर कौन थे दीदी, जिनके लेख अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं सुहाते थे?
2: अरे बन्नू, उनके बारे में बताऊंगी तो दांतों तले उंगली दबा लोगी तुम।
1: अच्छा, ऐसा क्या था उनमें?
2: बेजोड़ साहस, बेखौफ युवा जिसे किसी का डर नहीं था।
0: सोहन सिंह भाकना करतार सिंह को बाबा जनरल कहा करते थे। देश की स्वाधीनता की लड़ाई में मर मिटने को तैयार करतार ने अमेरिकियों से बंदूक चलाना और विस्फोटक उपकरण बनाना सीखा था। साथ ही हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण भी लिया था। यह साल 1914 की घटना होगी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटिश हुकूमत अपने मित्र देशों के साथ युद्ध में तल्लीन हो गया था। तब गदर पार्टी के नेताओं ने इस अवसर को भुनाने का फैसला किया।
3: क्यों ना गदर पत्रिका के जरिए कुछ बड़ा किया जाए?
4: कोई सुझाव हो तो बताओ।
3: एक दमदार आलेख प्रकाशित करते हैं।
0: इस तरह 5 अगस्त 1914 के अंक में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का निर्णय शीर्षक से एक लेखक प्रकाशित हुआ। पत्रिका की हजारों प्रतियां सैन्य छावनियों, गांवों और शहरों में वितरित की गई। इसके साथ ही पार्टी के नेताओं ने कलकत्ता जाने का निर्णय लिया ताकि आगे की कार्रवाई को संपन्न करा सकें।
4: हम कलकत्ता कैसे जाएंगे?
3: आप लोग ऐसे सलामिन जहाज से कोलंबो और वहाँ से कलकत्ता पहुँचेंगे।
4: मेरे साथ और कौन कौन जा रहे हैं?
3: आपके साथ सत्यन सेन, विष्णु सेन, विष्णु गणेशन पिंगले और गदर के स्वतंत्रता सेनानी भी होंगे।
4: ठीक है, फिर हम जाने की तैयारी करते हैं।
3: जुगंतर नेता जतिन मुखर्जी के परिचय पत्र के साथ कलकत्ता पहुंचकर आप और पिंगले बनारस जाएंगे और वहां राज बिहारी बोस से मुलाकात करेंगे। उन्हें सूचित करेंगे कि 20,000 और गदर सदस्य जल्द ही आने वाले हैं।
0: हालांकि इस बीच ब्रिटिश अधिकारियों को इस योजना की भनक लग गई और बड़ी संख्या में गदर पार्टी के नेताओं को बंदरगाहों पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
1: फिर क्या हुआ दीदी?
2: होना क्या था, गदर के क्रांतिकारी कहां से पीछे हटने वाले थे। गिरफ्तारियों के बावजूद पार्टी के सदस्यों ने लुधियाना के पास लादोवाल में एक बैठक की। बैठक में सशस्त्र कार्रवाई के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अमीरों के घरों में डकैती करने का निर्णय लिया गया।
0: तय योजना के तहत सब ठीक ही चल रहा था, तभी एक छापे के दौरान हुए बम विस्फोट में दो गदरी वार्याम सिंह और भाई राम रखा मारे गए। उधर 25 जनवरी 1915 को राज बिहारी बोस अमृतसर पहुंचे और 12 फरवरी को साथियों के साथ एक बैठक की।
5: साथियों, हाल ही की घटनाओं से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। हमें बहुत सोच समझकर और संभलकर विद्रोह का निर्णय लेना है।
6: आपने क्या सोचा है?
5: अगर आप सभी की सहमति हो तो 21 फरवरी को विद्रोह शुरू किया जाएगा। पहले हम मियां मीर और फिर फिरोजपुर की छावनियों पर कब्जा करेंगे। उसके बाद अंबाला और दिल्ली के पास विद्रोह को अंजाम दिया जाएगा।
6: ठीक है, हम सब आपके साथ हैं।
0: पार्टी के सदस्य योजना अनुसार तैयारी में जुटे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके बीच कोई पुलिस मुखबिर है जो सभी योजना पर पानी फेर सकता है।
7: जनाब, गदर पार्टी वाले बड़ी योजना बना रहे हैं।
8: What is their plan? Tell me.
7: साहब जी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए वरना वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप गारंटी दें तो मैं बताऊं।
8: Don't test my patience. Just tell their plan.
7: वे सभी 21 फरवरी को बड़ा धमाका करेंगे। छावनियों पर कब्जे की बात कर रहे थे। दिल्ली अंबाला किसी को नहीं छोड़ेंगे।
8: Oh, how dare are they?
0: किरपाल सिंह की मुखबिरी के कारण 19 फरवरी को ही बड़ी संख्या में पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने देशी सैनिकों को निहत्था कर दिया। इससे विद्रोह विफल हो गया। क्रांति की विफलता के बाद जो सदस्य गिरफ्तारी से बच गए थे उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया।
9: मुझे कहाँ जाना है सोहन सिंह जी?
3: आप हरनाम सिंह तुंदिलाल, जगत सिंह और कुछ अन्य साथी अफगानिस्तान जाएंगे। ईश्वर सिंह चीन जाएंगे।
0: सोहन सिंह ने तो फैसला सुना दिया था, लेकिन करतार सिंह के मन में कुछ और ही चल रहा था। 2 मार्च 1915 को वो दो दोस्तों के साथ वापस आए और सरगोधा के चक नंबर 5 में चले गए, जहां एक सैन्य अड्डा था। वहां उन्होंने सेना के जवानों के बीच विद्रोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी भनक रिसालदार गंडा सिंह को मिल गई और उन्होंने करतार, हरनाम सिंह तुंदिलात और जगत सिंह को लायलपुर जिले के चक नंबर 5 से गिरफ्तार करवा दिया। गदर पार्टी में खलबली मच गई।
1: आगे क्या हुआ दीदी? गिरफ्तारी के बाद करतार सिंह और उनके साथियों के साथ क्या हुआ?
2: बन्नो, तुम क्यों घबरा रही हो? क्रांतिकारी सदा अपनी जान हथेली पर लेकर चला करते हैं। उन सभी पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का गंभीर आरोप लगा था, लिहाजा सजा भी बड़ी होनी थी।
1: क्या सजा मिली दीदी?
2: फांसी।
1: ओह, ये तो बहुत दुखद हुआ।
2: हाँ, लेकिन सच यही है।
1: किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की?
0: ब्रिटिश पुलिस ने करतार सिंह और उनके साथियों पर जो षड्यंत्र के आरोप लगाए थे उसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि ये सिर्फ विदेशी हुक्मरानों को एक खुली चुनौती थी जिसे राजद्रोह का नाम दिया जा रहा था।
9: सारे आरोप गलत हैं। मुझे अपने किए पर किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है। ये तो सत्ता हथियाने वालों की महज एक चुनौती थी जिस पर मुझे गर्व है। प्रत्येक दास को विद्रोह करने का अधिकार है। अपने देशवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना कभी अपराध नहीं हो सकता।
0: करतार सिंह की अपनी दलील थी लेकिन ब्रिटिश सरकार उसे कहां मानने वाली थी। उन्होंने राजद्रोह का मुकदमा चलाया। करतार सिंह भी पीछे हटने वाले नहीं थे।
9: आप अपनी करो, मैं अपनी। सारा दोष मेरा है।
10: I'm really surprised to see this man. He is so fearless.
0: न्यायाधीश इतने कम उम्र के लड़के को इस तरह बेपरवाह व्यवहार करते देखकर चकित थे। करतार की उम्र को देखते हुए उन्होंने उनसे अपना बयान बदलने की सलाह दी। उनसे अपील करने को कहा गया। तब करतार ने पलटवार किया।
9: मैं ऐसा क्यों करूं? अगर मेरे पास एक से अधिक जीवन होते ना, तो अपने देश के लिए उनमें से प्रत्येक का बलिदान करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होता।
0: करतार को वापस जेल भेज दिया गया। उन्हें एहसास था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाने लगे।
9: सुनो, अगर हमें कुछ औजार मिल जाए ना तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं।
11: कौन करेगा हमारी मदद?
9: कोई ना कोई देशभक्त तो मिल ही जाएगा, उसे ढूंढो।
11: ठीक है, देखता हूँ।
0: और एक दिन करतार के साथियों को एक मददगार मिल गया जिसने उन्हें सलाखों को काटने वाला एक औजार उपलब्ध करा दिया। सभी बड़े सावधानी से अपनी योजना को अंजाम देने में लग गए लेकिन किस्मत ने फिर से धोखा दिया। किसी गद्दार ने जेल अधिकारियों को इसकी खबर दे दी।
12: साहब, करतार और उसके साथी जेल से भागने की योजना बना रहे हैं।
13: तुम पागल हो, इस जेल से कोई भी भाग नहीं सकता।
12: जनाब जनाब, आप उसके सेल में छापा तो डालिए। मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे दो कोड़े लगा देना।
13: Oh, you foolish! चलो देखता हूँ।
0: जेलर अचानक से करतार सिंह के सेल के पास पहुंचता है और ताला खोलने को कहता है।
13: तुम साहब एक साइड खड़े हो जाओ। सिपाही, तलाशी लो पूरे सेल की।
14: जी जनाब।
12: लगता है किसी ने गद्दारी कर दी है।
14: सर जी, ये देखिए इस मिट्टी के गड्ढे के नीचे क्या मिला।
13: औजार? चप कर लो सबको और अलग अलग सेल में डाल दो।
0: जेलर करतार को घूरते हुए बाहर निकल जाता है। फिर सुनवाई की तारीख आती है। एक बार फिर से सभी जज के सामने थे।
15: करतार, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है?
12: नहीं जी, जो कहना था मैं कह चुका हूं।
10: Then I must announce the judgment.
15: करतार और उसके साथ षड्यंत्र में शामिल सभी लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है।
0: इस तरह जज ने सजा सुना दी और फिर वो मनहूस तारीख आई, 17 नवंबर 1915, जब करतार सिंह और उनके साथियों को लाहौर के केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के समय करतार की उम्र मुश्किल से 19 वर्ष थी। लेकिन उसका साहस ऐसा था कि कैद के दौरान उसका वजन 14 पाउंड बढ़ गया था।
1: इतनी छोटी उम्र में इतना साहस, वो तो सच में बड़े निडर थे।
2: हाँ बन्नो, करतार सिंह की रगों में देशभक्ति इतनी कूट कूट कर भरी थी कि वो कैसे भी उस पर अपनी जान न्योछावर करने को तैयार रहते थे। जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती उसे सहर्ष स्वीकार करते थे।
1: देश को तो उन पर नाज है, उनके परिवार वालों को भी बेटे पर फक्र होगा।
2: तुम जानना चाहोगी कि करतार सिंह ने भावी क्रांतिकारियों के सामने कितनी बड़ी मिसाल पेश की? यहां तक कि शहीद भगत सिंह भी उनसे प्रेरित थे। भगत सिंह की गिरफ्तारी पर उनके पास से करतार सिंह सरबा की तस्वीर बरामद हुई थी। वे हमेशा इस तस्वीर को अपनी जेब में रखते थे।
0: ये थी एक महान युवा क्रांतिकारी के शहादत की कहानी। वो क्रांतिकारी जिसका जन्म पंजाब के लुधियाना के समीप सरभा गांव में मंगल सिंह ग्रेवाल और साहिब कौर के घर हुआ था। वो एक जट सिख परिवार से थे। बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। दादा ने उनका पालन पोषण किया। गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद करतार सिंह का लुधियाना के मालवा खालसा हाई स्कूल में दाखिला कराया गया। वहां 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद जुलाई 1912 में उन्हें बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए सैन फ्रांसिस्को भेज दिया गया। हालांकि उनके वहां अध्ययन के भिन्न भिन्न प्रमाण हैं। बाबा ज्वाला सिंह के एक ऐतिहासिक नोट में उल्लेख है कि जब वो दिसंबर 1912 में एस्टोरिया ओरेगन गए तो उन्होंने करतार सिंह को एक मिल कारखाने में काम करते हुए पाया। विश्वविद्यालय के पास करतार सिंह के दाखिले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बर्कले में भारतीय छात्रों के नालंदा क्लब के साथ उनके जुड़ाव ने उनकी देशभक्ति की भावनाओं को जगाया। जो भी हो, वंदे मातरम के मूल मंत्र को अपने दिल में बसाए इस वीर क्रांतिकारी ने देश को आजाद कराने का न सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में सुनेंगे एक और वीर क्रांतिकारी के शहादत की कहानी।

अनंत चौदस का ये पर्व लाए खुशियों की सौगात। अनंत चतुर्दशी का ये पर्व लाए खुशियों की सौगात। जीवन में बनी रहे सुख शांति की बरसात। मन से मिटे सारे दुख हर चिंता हो दूर। अनंत प्रभु की कृपा से जीवन हो भरपूर। अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। घर परिवार में रहते दे के लगाव से मुक्त रहना यही है सच्चा सन्यास। कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, खाते खाते और बोलते बोलते अगर नाक में पानी आ जाए, गला भर जाए, सर्दी जुकाम जैसा लगे, तो बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय आप सभी को देने वाली हूँ। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो आज का व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आप सभी को सिखाने वाली हूँ। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, घर परिवार में रहते देह के लगाव से मुक्त रहना यही है सच्चा संन्यास। घर परिवार में रहते देह के लगाव से मुक्त रहना यही है सच्चा संन्यास। कैसे जरा विचार करेंगे तो आज का विचार का विस्तार, चलिए विचार करना बंद कर दीजिए और अब आप मनन करिए। आज का एक्सप्लेनेशन सुनिएगा कि कैसे घर परिवार में रहते हुए देह के लगाव से मुक्त रह सकते हैं। तो देखिए, शुकदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र थे। कहा जाता है कि वे जन्म से ही विरक्त और आत्मज्ञानी थे। संसार में उनका मन नहीं लगता था, देह अभिमान बिल्कुल नहीं था, वे निरंतर ब्रह्म भाव में स्थित रहते थे। किंतु एक सूक्ष्म संशय उनके भीतर रह गया था, यदि ब्रह्म ही सत्य है तो फिर संसार में रहकर कोई कैसे मुक्त रह सकता है। उन्हें लगता था कि गृहस्थ जीवन और आत्म ज्ञान साथ साथ नहीं चल सकते। तब उनके पिता वेद व्यास जी ने कहा, इस संशय का समाधान राजा जनक करेंगे। शुकदेव जी को आश्चर्य हुआ, उन्होंने सोचा मैं वनवासी विरक्त और सन्यासी और जनक एक राजा गृहस्थ राजमहलों में रहने वाले वे मेरे गुरु भला कैसे हो सकते हैं। किंतु वे पिता की आज्ञा से मिथिला पहुंचे। जब शुकदेव जी राजमहल पहुंचे तब राजा जनक ने उन्हें कई दिनों तक प्रतीक्षा में रखा। पहले द्वार पर रुकवाया, फिर अतिथि कक्ष में, फिर विलास और वैभव के मध्य रखा। उद्देश्य था देखना कि उनके मन में कहीं आकर्षण, क्रोध, अपमान या अधैर्य तो नहीं उठता। किंतु शुकदेव जी पूर्णतः संभाव में रहे। फिर जनक जी ने एक प्रसिद्ध परीक्षा ली। उन्होंने शुकदेव जी के हाथ में तेल से भरा पात्र दिया और कहा, इस पात्र को लेकर पूरे नगर का भ्रमण करो, यदि एक बूंद भी गिरी तो सैनिक दंड देंगे। साथ ही नृत्य, संगीत, उत्सव, बाजार, शोर, सुंदर दृश्य सबकी व्यवस्था की गई। शुकदेव जी लौट आए, तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी। राजा जनक ने पूछा, नगर में क्या देखा? शुकदेव जी बोले, मेरा ध्यान केवल तेल पर था। तब जनक मुस्कुराए और बोले, यही स्थिति ज्ञानी की होती है, वह संसार में रहता अवश्य है पर उसका चित्त ईश्वर में स्थित रहता है, लीन रहता है। राजा जनक को विदेह कहा गया है, अर्थ मतलब जो देह में रहते हुए भी देह भान से मुक्त हो। वे राजमहल में थे किंतु भीतर से इन सभी वैभव से मुक्त, यही भगवत गीता का कर्म योग है। योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात कर्म करो पर आसक्ति से मुक्त रहकर। तब शुकदेव जी समझ गए कि मुक्ति केवल वन में नहीं, केवल बाह्य संन्यास में नहीं, बल्कि चित्त की आसक्ति रहित अवस्था में है। यदि मन मुक्त है तो राजमहल भी आश्रम है, यदि मन बंधा है तो वन भी संसार है। इस कथा का उद्देश्य गृहस्थ और संन्यास की तुलना करना नहीं है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। मुख्य संदेह यह है, बाहरी परिस्थिति बंधन नहीं बनाती, मन की आसक्ति ही बंधन बनाती है। इसलिए सनातन परंपरा में राजा जनक को राज ऋषि कहा गया और शुकदेव जी को जैसे महान आत्मज्ञानी भी उनके पास समाधान हेतु जाए। इसीलिए कहा गया है, घर परिवार में रहते देह के लगाव से मुक्त रहना यही है सच्चा संन्यास। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और सुनेंगे फिर से एक बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर, सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ आज दर पे चल के आया है मौका।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब आपको देंगे बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। जी हाँ, बोलते बोलते या खाना खाते समय अचानक नाक से पानी आना और सर्दी जैसा एहसास होना, कई बार क्या होता है, मैं मतलब इसका उपाय बता रही हूँ कि ऐसा हो जाता है, किसी का फोन आया था कि अचानक ऐसा हो जाता है, तो बिल्कुल बोलते बोलते खाना खाते समय पानी आ जाता है और एक बार उठना ही पड़ता है नाक साफ करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आइए बहुत ही सुंदर उपाय बता रही हूँ। आप गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा करके पीजिएगा, दिन में एक दो बार आप भाप लीजिएगा। क्या करेंगे, गुनगुना पानी पीना है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, घूट घूट, ठीक है। दिन में एक या दो बार भाप लीजिए और बहुत ज़्यादा गर्म भाप नहीं लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म भाप, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम तो है नहीं, सहते सहते भाप लीजिएगा। फिर देखिए, बहुत ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी और अचानक ठंडी हवा से कुछ समय तक बचिएगा। क्या है, बहुत गर्मी लगती है तो कूलर, पंखा और एसी चालू कर देते हैं, एसी की सुविधा होती है तो एसी चालू कर देते हैं। फिर हम बाहर निकलते हैं तो बाहर की हवा गर्म लगती है, अंदर की ठंडी, तो ऐसी स्थिति में भी ये समस्या हो सकती है। तो ठंडी चीज़ों से बचना है, गर्मी लगती है, चलो बाहर मार्केट जा कर के आए और फ्रिज का पानी निकाल के पी लिया तो भी ये शिकायत हो सकती है। तो ठंडी चीज़ों से बचना है, ठंडा पानी से बचना है, ठंडी हवा से भी बचना है, ठीक है। यदि खाने के समय ही ज़्यादा होता हो तो बहुत मसालेदार या बहुत गर्म भोजन नहीं करना है, सहता सहता करिए, और बहुत मसालेदार आपको नहीं खाना है भोजन, और पर्याप्त आराम और पानी पीते रहिए। तो इस समस्या का समाधान यही है। फिर भी अगर यह समस्या बार बार होती है, कई हफ्तों से बनी हुई है, सांस लेने में परेशानी है, सीटी आती हो, तेज बुखार, चेहरे में दर्द या नाक से खून आए, तो फिर आप डॉक्टर से राय जरूर लीजिएगा। घरेलू उपाय क्या है, सपोर्ट के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सुंदर सा उपाय, और आइए अब आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। गणपति के गुण गाए गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे गुणों का गान, गण गाए गणपति का गुण गान, गाते गाते गूंजे गणों का ज्ञान। तो ये आज का टंग ट्विस्टर है, जिसको कम से कम दो बार बोल के सुनाना है, ज्यादा से ज्यादा तीन बार बोल के सुनाना है। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यही पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: गणपति बाप्पा का नाम हो तो हर काम आसान हो जाए। गणपति बाप्पा का नाम हो तो हर काम आसान हो जाए। बप्पा की कृपा से हर मुश्किल का समाधान हो जाए। जिस घर में गुंजे गणपति का जयकारा, उस घर में खुशियों का बसेरा हो जाए। तो आप सभी को अनंत चौदस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई आज भी गणपति जी का दिन ही है, आज लास्ट दिन है, आज विसर्जन का दिन है। और

0: बाकी तो बहुत सारे भक्तों ने 5 दिन में बीच में कर लिया है विसर्जन, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो आज करेंगे। और जो पंडाल में जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बिठाते हैं ना, उनका विसर्जन आज होगा। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। और विषय आज का यही है कि हमें आज के दिन को कैसे हम खास बनाएंगे, किस तरह की सावधानी रखेंगे। और आज का टंग ट्विस्टर भी फिर से बोल के सुना रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर है। गणपति के गुण गाए गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गुंजे गुणों का गान, गण गाए गणपति का गुणगान गाते गाते गुंजे गणों का ज्ञान। ये आज का टंग ट्विस्टर है, इसको आप 2 से कम बार नहीं बोल सकते और 3 से अधिक बार बोल के नहीं सुनाना है, ठीक है। तो आप चाहे तो उस मैसेज के द्वारा भी जवाब दे सकते हैं, और अगर आप जुड़ करके बोलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई।
1: हाँ दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप?
1: बस अच्छे दीदी, बिल्कुल बैठे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, अच्छी बातें हो रही है। आज तो गणपति जी का लास्ट दिन है
0: जी,
1: तो
0: कैसा माहौल है आपके यहाँ पर?
1: हमारे तो दीदी यहाँ 5 दिन के बाद विसर्जन कर दिया था, 5 दिन रखा था।
0: अच्छा,
1: हाँ, लेकिन कई जगह पे आज लास्ट दिन है, तो कई जगह पे जैसे आज 10वें दिन भी करते हैं, लेकिन हमारे जो गांव में तो 3 दिन रखते हैं, 5 दिन रखते हैं, 7 दिन रखते हैं, ऐसे रखते उसका विसर्जन कर देते हैं
0: जी।
1: तो चलो अब मैं पहले तो आपको टंग ट्विस्टर सुना देते थे, एक बार आप बोल दीजिए क्योंकि मेरे कोई गलती हो तो माँ फुल हो जाए, सुधार दूंगा मैं।
0: अच्छा चलिए ठीक है। गणपति के गुण गाए गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे गुणों का गान, गण गाए गणपति का गुण गान गाते गाते गूंजे गणों का ज्ञान।
1: अच्छा ठीक है,
0: हाँ जी
1: चलो मैं सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ
0: जी।
1: गणपति के गुण गाए गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे गुणों का गान, गण गाए गणपति का गुण गान गाते गाते गूंजे गुणों का ज्ञान। गणपति के गुण गाए गाए गणपति के गुण गाए गणपति के गुण गान, गुणगान के गुण गाते गाते गूंजे गुणों का ज्ञान, गण गाए गणपति का गुणगान गाते गाते गूंजो गूंजे गुणों का ज्ञान। गणपति के गुण गाए गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे गुणों का ज्ञान, गण गाए गणपति का गुणगान।
0: क्या बात है, हाँ जी हाँ जी, फिर भी चलिए अच्छी कोशिश की है आपने,
1: क्योंकि कभी कभी शब्दों में बोलने में थोड़ी सी गलती हो ही जाती है,
0: टंग ट्विस्टर है चीज ऐसी है।
1: इतनी कोशिश करते फिर भी क्या पत्थर का तो प्रॉब्लम हो ही जाता है, फिर भी चलो मैंने तो कोशिश तो मैं करता ही रहता, चाहे मुझे थोड़ी मिस्टेक आए फिर भी
0: जी जी जी जी।
1: तो और जो आपने बताया दीदी कि आज के दिन का तो ध्यान रखना है दीदी, देखो कई दीदी ऐसे हादसे होते हैं जब गणपति को विसर्जन करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं दो चार लोगों का दीदी पानी में डूबने की हम हर बार सुनते हैं
0: जी जी,
1: कि भाई ये पानी में डूब गया, विसर्जन करने के गए थे डूब गया, तो आप कितनी सावधानी रखे दीदी, लेकिन फिर भी ऐसा हादसा हो ही जाता है। इसका कारण दीदी यही है कि हम 10 दिन हम उसका गुणगान करते हैं, कितने रुपए का खर्च करते हैं, कितना भगवान का पाठ पूजा आराधना, रात को बड़ी देर से तक जागते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, लेकिन फिर भी दीदी जब हम गणपति का जब विसर्जन करने जाते हैं
0: जी,
1: तो हमने कई ऐसे मोबाइल में देखा दीदी, लोग ऊपर से फेंकते हैं, जो फूल होते हैं वहाँ फेंक देते हैं, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने पूजा की है, 10 दिन ऐसे फेंक देंगे, भगवान को ऐसे फेंकते नहीं है दीदी। तो कई लोगों को हमने ऐसे देखा कि बस जैसे जरूरत ही नहीं है ऐसे फेंक देते हैं भगवान को
0: जी,
1: तो ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको जाके अच्छी तरह से पानी में उसका विसर्जन कीजिए, और जो कोई हम मंत्रों के साथ कीजिए, ऐसे तो नहीं है हम बस घर पे निकल गए फेंक दिया, ऐसे नहीं करना है। भगवान को जब हम विसर्जन करते हैं तो उसको इसका मंत्रों का उच्चारण किया, आपको जो आए मंत्रों का उच्चारण करके ही इसका विसर्जन करिए, वरना तो हम देखते हैं जब दशा माता व्रत होता है दीदी, आज भी बता मैं दीदी कि कई जगह पे ऐसी मूर्ति गंदगी में पड़ी है।
0: जी जी जी।
1: तो ये भगवान या माता जी कैसे खुश हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे हादसे हो ही जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी।
1: लेकिन मैं तो यही कहूँगा आप इतने दिन तक आप पूजा करो तो इसके ऐसे तो सर विसर्जन करो कि भगवान भी खुश हो जाए, माता जी भी खुश हो जाए कि भाई बराबर है। तो बस मेरा तो एक ही मानना है कि आप भगवान की पूजा करो, तो इसका विसर्जन ऐसा करो कि भगवान दोबारा आपके घर अच्छी तरह से रह सके।
0: जी।
1: वरना तो हम हमारे घर पे कोई भाई आता है तो हम ऐसे लाठी लेके मारेंगे तो क्या होगा, नहीं करना है ऐसा।
0: जी।
1: तो भगवान है, भगवान की तो अच्छी बात मिल जाती है तो उससे अच्छा विसर्जन कर लिए।
0: जी
1: नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, बहुत अच्छी कोशिश की आपने टंग ट्विस्टर सुनाने की और बहुत ही अच्छी बात कही है कि देखिए गणपति जी का ऐसे, भले गणपति जी हो चाहे और भी प्रतिमाएं हो, गंदगी में पड़ी रहती है, कितने मतलब क्या कहेंगे, 10 दिन जिनको हम बड़े श्रद्धा भाव से पूजते, उनके पीछे इतना खर्च करते, इतने भावनाओं में बहते हैं, रात दिन भजन कीर्तन तपस्या करना और फिर बाद में यह हश्र करना, क्या ईश्वर इस तरह खुश होंगे? अरे ईश्वर को खुश रखना हो तो भाव को अच्छा रखिए, और कम से कम आप विसर्जन कर रहे हैं तो ऐसी गंदगी में तो मत करिए कि पानी नहीं लगा तो गंदगी में फेंक दी, और विसर्जन जरूरी है क्या? देखिए मुझे एक बात याद आ रही, मैं आपको कहना चाहूंगी, एक बार व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, गणपति जी को बोला कि मैं जैसे बोलता हूँ वैसे आप लिखते जाइए, अगर आपने लिखना बंद कर दिया तो मेरा बोलना बंद हो जाएगा। गणपति जी ने कहा कि ठीक है, आप जैसे बोलते जाएंगे वैसे मैं लिखता जाऊंगा। तो इस तरह व्यास जी ने शुरू किया बोलना और जैसे जैसे वो बोलते गए गणपति जी लिखते गए, 10 दिन तक ये सिलसिला चला। 10वें दिन गणपति जी की मिट्टी गर्म होने लगी, गर्म होकर के पिघलने लगी, तो फिर व्यास जी ने अपनी वाणी को विराम दिया और बोला कि आपको बहुत मतलब गर्म हो रहे हैं, आपको ठंडा करना जरूरी है। तो उन्होंने फिर गणपति जी को नदी के स्नान में, नदी के पानी से स्नान कराया, तो विसर्जन का तो यहाँ पर बात ही नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप विसर्जन करो, हर साल इतना खर्चा करो फिर आप जा करके विसर्जन करने जाओ, पानी में पॉल्यूशन फैलाओ, क्योंकि मिट्टी के प्रतिमाएं होती है तो अच्छी बात है कि वो चलो मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन सेरेमिक की बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाते हैं, फिर देखिए ऊपर कैसे कैसे कलर लगाते हैं, पक्के कलर, तरह तरह के कलर, वो कलर भी तो पानी में ही जाता है ना, चाहे आपने भले मिट्टी की प्रतिमा बनाई, कलर से लेप किया, वो कलर भी पानी में जा रहा है, तो कितना नुकसान है। एक तो वैसे ही पानी की कमी होती जा रही, दूसरा शुद्ध पानी बहुत कम रहा, उसमें भी अगर हम पानी में गंदगी फैलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? इंसान तो नहीं पी पाएगा लेकिन जानवर भी इस पानी को नहीं पी पाएंगे, पी लेते हैं तो उनका क्या हश्र होगा वो आप सभी जानते हैं। और फिर अगर विसर्जन नहीं हुआ, प्रतिमा पानी में नहीं गई, तो धक्के देना, पैरों से धक्के देना, और फिर भी नहीं तो इधर उधर फेंक देते हैं गंदगी में, फिर वो गंदगी होती रहती है। तो ये कोई त्योहार का अर्थ नहीं होता है, सच्चे दिल से करिएगा। आप जो कहते हैं ना कि सच्चे दिल से ही भावना ईश्वर तक पहुंच पाती है, बाकी हम कितना ही खर्चा कर ले, दिल में भाव नहीं है, देखा देखी है, भाई फलाने ने किया हमें भी करना है, वो उसे कैसे हम भगवान को खुश रख पाएंगे? हम तो देखा देखी कर रहे हैं ना। हाँ, अंदर का भाव उपजा है, अंदर से भावनाएं बही है कि हम ये करें, तो आप दिल से करिए, और जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बिठाए, छोटी सी प्रतिमा को नहीं पूज सकते, छोटी सी मूर्त ला करके भी तो आप पूजा कर सकते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े शहरों में आजकल बड़ी प्रतिमाएं तो खैर बड़े बड़े चौगानों में तो लाते ही होंगे, आज भी लाते हैं, बाकी सोसाइटी वाले और अपार्टमेंट वाले तो छोटे छोटे गणपति बिठाते हैं और फिर टब भर देते हैं पानी का और पानी में ही विसर्जन कर देते हैं, टब में गणपति जी को बिठा देते हैं, फिर ऊपर से और पानी डाल देते हैं और फिर देते हैं, क्योंकि टब इतना गहरा तो होता नहीं है, लेकिन रात के बीच, क्योंकि वो मिट्टी गलते गलते गलते गलते पूरी गल जाएगी, रात के बीच वो पूरे गल गए, और फिर उस मिट्टी को गमले में डाल दिया जाता है, फिर उस गमले में कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, तो बड़ी प्रतिमाओं का भी तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, बड़े टब भी आते हैं, ड्रम आते हैं, ड्रम के अंदर उतार दीजिए मूर्तियों को, और फिर वो गलते गलते वैसे ही भर जाएगा। तो देखिए ये मिट्टी भी काम आ जाएगी, गमलों में, खेतों में, नर्सरी में, बाग बगीचे में, सब में। और हमने 10 दिन जो इतने पॉजिटिव रूप से पूजा की और इतने गुणगान किए, आरती की, अर्चन किया, सब कुछ किया, तो वो सारी मिट्टी में क्या जाता है, हमारे सकारात्मक ऊर्जा चली गई। तो उल्टे जो आप जो भी लगाएंगे, फल, फूल, सब्जी, जो भी आप लगाएंगे, वो भी आपकी अच्छी होगी, एनर्जेटिक होगी, क्योंकि आपके सकारात्मक, आपकी भक्ति की ऊर्जा उसमें गई हुई है। तो फल सब्जी जो भी लगा रहे हैं वो भी अच्छे लगेंगे और जल्दी से ग्रोथ करेंगे, तो कितना सारा फायदा हो जाएगा, एनवायरमेंट भी हमारा शुद्ध बना रहेगा, कम से कम पौधा लगाने में हमारा सहयोग भी हो जाएगा, और हमने आराम से 10 दिन सेवा अर्चना भी की और वो मिट्टी भी काम आ गई, वेस्ट नहीं गई, कितनी अच्छी बात है। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्या बात है, मेरे को लगता है हमारे श्रोता बंधु विसर्जन में व्यस्त हो गए हैं, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अभी हाँ, सुबह से शुरू हो जाते हैं शोभा यात्रा, और शोभा यात्रा शुरू होती है, धीरे धीरे बैंड बाजे डीजे बजते जाते हैं, भक्त जन नाचते गाते जाते हैं, और सुबह के समय विसर्जन करते हैं, तो वैसे ही 2-2.5 घंटा रास्ते में लग जाते हैं। तो आज हमारे श्रोता बंधु शोभा यात्रा में होंगे, चलिए कोई बात नहीं, एंजॉय करिए इस त्यौहार का, और यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: विघ्नों को हरने वाले मंगल के दाता है, गणपति बापा हर भक्त के भाग्य विधाता है। दिल से जो पुकारे बप्पा उसके साथ खड़े, उनकी कृपा से जीवन के रास्ते फूलों से भरे। तो पुनः आप सभी को अनंत चौदस के ढेर सारी शुभकामनाएं। कंचन भाई मंडाली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्ते कंचन भाई।
1: नमस्कार बहन जी, सुप्रभात।
0: हाँ जी सुप्रभात, कैसे हैं आप?
1: बस बहन जी, आज तो गणपति दादा का विसर्जन का दिन है, चौदस है
0: जी।
1: जी चौदस, तो हमारे यहाँ तो रविवार को कोई 10 दिन रखते हैं, कोई 14 दिन रखते हैं, रखते हैं बहन जी, लेकिन हमारे सब युवाओं को ये करते हैं, हमारे दुकान के सामने तो रविवार को हमारे तो विसर्जन कर दिया था बहन जी। यहाँ नदी साबरमती पड़ती है ना, एक ही मूर्ति हमारे पूरे गांव में, एक सोनी महाजन थे इस साल तो गाता, तो पूरी मिट्टी की मूर्ति लाए थे छोटी सी
0: जी,
1: और सभी ने सुबह शाम आरती की, गरबा 10 बजे तक रखा था और धामधूम से ये गणपति जी का उत्सव मनाया था।
0: अच्छा, आपके यहाँ नदी है, विसर्जन कहाँ करते हैं?
1: उसी दिन शोभा यात्रा निकालते हैं, सभी डीजे लाते हैं, पूरे गांव में गणपति जी को फिराते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, और युवा लोग फिर यहाँ चौक में प्रसाद का आयोजन रखते हैं, तो प्रसाद सभी को बांटते हैं, ठीक है
0: जी।
1: बूंदी वगैरह को कोई ये लाते हैं, और फिर साबरमती हमारे नजदीक पड़ती है, साबरमती नदी।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पानी इस साल तो था, यहाँ हमारी अपने गांव की नदी में तो इस साल नहीं था पानी बहन जी, तो जब गए थे हम भी साथ में ट्रैक्टर में गए थे, क्योंकि कोई हादसा न हो जाए, मूर्ति को पूरी तरह गहरे पानी में ले जाए और इसका फिर से विसर्जन करे, इधर उधर नहीं रख दे, ऐसा हम बड़े बुजुर्ग है ना, वो पूरा ध्यान रखते हैं
0: जी जी जी।
1: ये इधर उधर रखते हैं, इसका क्या कारण है मैं बताऊं कि घर घर में गणपति ला देते हैं।
0: अच्छा,
1: घर घर लाके क्या करते हैं कि इसको पूरा विसर्जन विधि सब करते नहीं, और इधर उधर नदी के डरते है और पानी से और इधर उधर रख के आ जाते थे, तो ऐसा ये नहीं करना चाहिए। सरकार ने भी कुंड बनाए हैं सिटी में, तो इसका विसर्जन करने के लिए ऐसे कुंड बनाए पानी के, लेकिन ये भी नहीं करते लोग।
0: तो अच्छी बात है ना, इतनी अच्छी व्यवस्था की है कुंड बनाने की, तो कुंड में ही करना चाहिए।
1: नहीं करते ना, हमने अभी मेरे सामने टीवी चालू ही है, तो ये जब आगे विसर्जन किया था तो काफी मूर्तियां कुंड के आसपास और जो रास्ता था इसमें रख दी थी।
0: अच्छा,
1: तो नहीं करना, हम लाते हैं तो कितना भाव ये उत्साह रहता है, और जब विसर्जन करते हैं तो देखो ना, कई तो क्रेन में, सिटी में क्रेन में पुल पे थे, इसको धक्का दे के गणपति जी को नीचे गिराते थे। ये कोई विसर्जन है? आप अभी बता रहे थे कि भाई असली क्या था, गणपति जी को नहलाए ये किया, ऐसा था, लेकिन लोगों ने साप गए,
0: अर्थ का अनर्थ कर दिया, अर्थ का अनर्थ।
1: मैं तो बोल रहा हूँ, हमने तो बोला है बहन जी, जो दशा माँ का जो व्रत किया था मेरे घर से मेरी बहू ने
0: जी,
1: सुबोध की
0: जी,
1: तो मैंने बोला था कि भाई जो मूर्ति है ना, विसर्जन कर सको तो लाओ मिट्टी की, ठीक है, 4 बजे 5 बजे सुबह में पानी में नदी में जाना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: ये पूरे रात उपवास का ये करना पड़ता है, जागरण, और 4 बजे 5 बजे नदी पे जाके विसर्जन करना पड़ता है सुबह में, तो ये सब करो तो लाओ, वरना एक फोटो।
0: अरे नदी में कोई जरूरी नहीं, घर पे भी आप टब में पानी भर के कर सकते हैं।
1: हाँ ये करो, तो अथवा तो एक प्रतिमा लाओ, फोटो लाओ माता जी का, जो दशा माँ का
0: जी,
1: ये रखो सामने, इसकी पूजा करो, ये करो, और फिर इसके घर में ही कोई निश्चित जगह पे रख दो, तो इसकी पूजा नित्य अगरबत्ती वगैरह हो न होंगी
0: जी।
1: ये विसर्जन करना ही है, ऐसा कोई नहीं है। हमारे तो क्या है कि भाई हमारे सुबोध के घर से है नहीं, खुद इनका दादा मिट्टी का काम करते हैं
0: जी,
1: जो बर्तनों का, तो उन्होंने बोला था पहले से ही कि मैं से एक छोटी मूर्ति दशा माँ की बनाऊंगा, पूरी मिट्टी की
0: जी,
1: कच्ची मिट्टी की, इसे ये करके भी नहीं दूंगा
0: जी,
1: तो उन्होंने खुद भेजी थी।
0: अच्छा,
1: तो ये मेरे बेटे, 2-3 बेटे थे, 2 बहुएं थी, तो लेके 4 बजे विसर्जन किया। मैंने पूरा ध्यान रखा था, मैं देखूंगा, मैं जाऊंगा, कई जगह पे आप गए थे, वीडियो मुझे बनाना लेके आना
0: जी।
1: ऐसा बुजुर्गों को करना है बहन जी, देखो वो तो एक अलग है, ठीक है,
0: बिल्कुल,
1: इसको पता
0: बिल्कुल
1: नहीं चलेगा कि कहाँ रखना है क्या करना है
0: जी।
1: बड़े बुजुर्गों को खूब ध्यान से ये उत्सव मनाना है, तो पूरी ध्यान से रखना है
0: जी,
1: और ये विसर्जन तक ही ये करना है इसको, और साथ में ही जाना है, तो दिन को होता है गणपति जी का विसर्जन, तो साथ में जाना है, चलो मैं भी आना, और कोई गलत जगह पे रख दे तो उसको तुरंत बोलना है, ये समझ कर
0: जी।
1: ये मैं तो थोड़ा गणपति उत्सव ये जो
0: गाइड करने वाले भी तो चाहिए ना,
1: टाइम निकालना पड़ेगा बुजुर्गों को, टाइम निकालना है, ऐसे तो कहीं भी पूरे दिन बैठे रहते हैं ना
0: जी,
1: चौक में चले कोई
0: चौक में बैठ करके बातें तो करनी होती है, तो इससे अच्छा किसी का भला हो जाए और अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए लोगों को।
1: साथ में जाने का क्या वो कष्ट होता है
0: जी।
1: ये मैं तो थोड़ी बात करना चाहता था रेडियो के माध्यम से, ठीक है
0: जी।
1: और प्रश्न तो आज का मैंने सुना था,
0: आज का टंग ट्विस्टर।
1: मैं पढ़ूंगा और जवाब देने की कोशिश करूंगा।
0: अच्छा ठीक है,
1: सभी दोस्तों को आपको आज गणपति उत्सव की ढेर शुभकामनाएं
0: जी। बहुत बहुत आभार कंचन भाई। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने विषय को अच्छा स्पष्ट किया है। अब कपासन से दीपा सोमानी सुनाना चाहती है टंग ट्विस्टर, उनके माध्यम से सुन लेते हैं।
2: ओम शांति, जय श्री कृष्णा। गणपति के गुण गाए, गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गुंजे गुणों का ज्ञान, गान गाए गणपति का गुण गान, गाते गाते गुंजे गुणों का ज्ञान। गणपति के गुण गाए, गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गुंजे गुणों का गान, गान गाए गणपति का गुण गान, गाते गाते गुंजे गणों का ज्ञान। ओम शांति, जय श्री कृष्ण।
0: बहुत सुंदर दीपा जी ने बोल के सुनाया है, कहीं पर भी अटके नहीं है, ढेर सारी तालियां। तो आज इस त्योहार को हम धूमधाम से मना रहे हैं, अच्छी बात है, मनाइएगा। सारी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कंचन भाई ने भी कहा कि देखिए कैसे कुंड बनाए हुए हैं, फिर भी पास में छोड़ के चले जाते हैं लोग। अरे कुंड में उतार दो ना, क्या टाइम लगता है कुंड में रखने का, बनाए किस लिए है। अरे 10 दिन आपने अपना कीमती समय निकाला और इस तरह आपने तपस्या की, पूजा अर्चना की, गणपति के रात दिन सुमिरन किया और फिर उनको ऐसे छोड़ के जा रहे, बस 10 दिन की आस्था थी आपकी। अब कहाँ गई आस्था भाई, जब व्यवस्था करवाई गई है गांव वालों ने, गवर्नमेंट ने, जिन्होंने भी की हो, तो भी व्यवस्था अच्छी है ना, उसका फायदा लीजिए ना, ताकि न तो हमारे इष्ट देव का अपमान होगा और ना ही इस तरह मूर्तियां बीच में रहेगी और ना ही हम पाप के भागीदार बनेंगे। तो हर चीज को आप सिस्टमेटिक करिए, हर चीज को भले, और मैं तो कहूँ इससे अच्छा आप करिए ही मत, इस तरह इधर उधर छोड़ना है, लात मारनी है, धक्का देना है, करिए ही मत। कोई कसम थोड़े ना किसी ने दी है, लेकिन जब श्रद्धा भाव से किया है तो पूरी श्रद्धा भाव बनाए रखिए। ऐसे नहीं कि बस 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए बहुत हो गया बस, ये थोड़े ना होता है। घर में हम बच्चों को बड़ा करते हैं, पालते हैं, तो ऐसे थोड़े 1 महीना 2 महीना करके छोड़ देते हैं। लाइफ टाइम उनके पीछे कितना समय देते हैं, कितने रात दिन उनके पीछे लग जाते हैं, और ये कि 10 दिन में ही थक गए। इसलिए जो भी करिए आप तरीके से करिएगा, और जो भी विसर्जन के लिए जा रहे हैं, जैसे सुरेश भाई ने बताया है कि बहुत हादसे हो रहे हैं, तो सावधानी भी रखिएगा। कभी कभी क्या है कि भक्त लोग भावनाओं में इतने बह जाते हैं, इधर से डीजे बज रहा, उधर से बैंड बाजे, गीतों के मस्त उसमें बह जाते हैं लाइव में, तो अपनी सुध-बुध भूल जाते हैं, फिर वो कितने गहराई में जा रहे हैं पानी की पता ही नहीं चलता है, और गहराई में जा करके बैलेंस बिगड़ जाता है, हादसे हो जाते हैं। इसलिए संभल करके, सतर्क रह करके। हेलो,
3: जय माता
0: दी, जय श्री हरि। नमस्कार,
3: रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार
0: जी।
3: राइट हो?
0: हाँ जी।
3: अच्छा, तो बस क्या चल रहा है
0: आज? आप बोलिएगा, आज गणपति विसर्जन है, कैसे सावधानी रखनी है, कैसे विसर्जन करना है?
3: विसर्जन का तो देखिए, हम काफी समय से बोलते आ रहे हैं, तो ध्यान रखने की जरूरत ही है, क्योंकि एक तो खुद का भी ध्यान रखना है, औरों का भी ध्यान रखना है अपन को, अपनी वजह से किसी को नुकसान ना हो। लोग क्या नाचते हैं उस समय भी ध्यान नहीं देते, वो जब गरगोलिया निकलता है
0: जी,
3: तो उस समय भी अपन को ध्यान रखना है कि आपने आजू बाजू कौन है। दूसरी बात यह है कि विसर्जन करने जाए तो पानी का विशेष ध्यान रखें, और जो जल मतलब जीव है, क्योंकि आजकल जगह जगह मगरमच्छ वगैरह भी जोड़े हुए हैं
0: जी,
3: तो ये भी सावधानी रखनी जरूरी है। मतलब वो कहते हैं ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी,
0: सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी बनाए रखना है।
3: हाँ बिल्कुल, और देखिए हमने पहले भी कहा था कि केमिकल वाले वो मूर्ति, अभी पानी भी नहीं है, तो प्योर मिट्टी की मूर्ति लाई होती तो आज काम में आती
0: जी,
3: केमिकल वाले वो गलेगी भी नहीं। और कुछ मैंने जगह ये भी देखा है दीदी, वैसे आपने बोला भी था कल
0: जी
3: कि गणपति को मतलब अपन ने 10-12 दिन पूजा है, और जब मूर्ति विसर्जन की बात आती है तब वो क्या नहीं रुकती तो पैर से धक्का मार देते हैं
0: जी,
3: तो ये नहीं करना है उनको, पप्पा को प्यार से लाए थे तो प्यार से विसर्जन करना है, तो बस यही छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप खुद और दूसरों का ख्याल रख सकते हैं, बस यही मैं तो कहना चाहता हूँ
0: जी। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। हाँ जी,
3: और हो सके तो वो गाना सुना देना, गणपति अपने गाँव चले।
0: अच्छा ठीक है,
3: आज जा रहे हैं ना गणपति बप्पा?
0: जी जी जी जी,
3: तो
0: कोशिश करेंगे,
3: चला देना कि गणपति अपने गाँव चले।
0: जी जी जी
3: ठीक है
0: कोशिश करेंगे। आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और बस सभी का यही कहना है, और स्वयं ही तो कोई क्या कहेगा, खुद ही सोचिएगा कि क्या हम इस तरह 10 दिन पूजा अर्चना के बाद अपमान करते हैं, क्या अच्छी बात है? खुद ही थोड़ा सोचिए, उसके बाद आप करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, बाकी इस त्यौहार की पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विषय को यही समाप्त करते हैं और आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर है, गणपति के गुण गाए गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गुंजे गणों का गान। गण गाए गणपति का गुण गान, गाते गाते गुंजे गणों का गान। तो यह आज का टंग ट्विस्टर है। सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415, और यही पर अब एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड. और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का. तो हम जरूर आपको नए नए व्यंजन तो जरूर सिखाएंगे, परंतु आइए आज का टंग ट्विस्टर दोहरा देते हैं. आज का टंग ट्विस्टर है गणपति के गुण गाए, गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे घणों का गान. गण गाए गणपति का गुण गान, गाते गाते गूंजे घणों का गान. यह आपको 3 बार बोलना है अधिक से अधिक, और कम से कम 2 बार तो बोल के सुनाना ही है. ठीक है, तो देखते हैं कौन सुनाते हैं. नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15. और अब आइए आशियाना के किचन में पधारिए. आज आपको सिखा देते हैं बिना चाशनी के मक्खन बड़े, जिसको राजस्थानी भाषा में खजूरिया कहते हैं. ये भी गणपति जी के भोग में लगाया जाता है. तो जैसे 5 दिन हम घर में बिठाते हैं, अलग अलग नैवेद्य तैयार करते हैं, उसमें ये नैवेद्य भी बनता है. तो बिना चाशनी के मक्खन बड़े, जिसको खजूरिया कहते हैं, कैसे बनाएंगे जानेंगे. आप ले लीजिए मैदा. 1 किलो मैदा ले रहे हैं तो आप लीजिएगा 250 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम ही घी. ठीक है, तो 1 किलो मैदा ले रहे हैं तो आप लीजिएगा 250 ग्राम शक्कर और 250 ग्राम ही घी. अब आपको बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखा रही हूँ. आप क्या करेंगे, मैदे को छान लीजिए. छान करके जो 250 ग्राम घी लिया है उसका मौन डाल दीजिए मैदे में, और शक्कर, भले तो आप चीनी पाउडर लीजिएगा, भले आप थोड़े से पानी में शक्कर को अच्छी तरह घोल दीजिएगा. फिर इस पानी से आप इस मैदे को गूंद लीजिए. घी का मौन अच्छी तरह मिक्स करके फिर इस शक्कर वाले पानी से सारे मैदे को गूंद लेना है. थोड़ा सा टाइट गूंदना है, पूरी का बनाते ऐसा. ठीक है, और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, छोटे छोटे लुए, थोड़े थोड़े, जैसे हम पूरी बनाते ना छोटी पूरी, तो लुए कैसे लेते हैं, ऐसे लुए लीजिएगा. और ऐसे लुए लेकर के गोल गोल आप बना करके हल्का सा दबा दीजिए. इस तरह सारे ही मक्खन बड़ों का शेप दे करके आप रख दीजिए. और अब आप रखिए घी, फिर से कढ़ाई में गरम रखिएगा. जब ये घी गरम हो जाए तो धीमी आंच और मध्यम आंच में इन बड़ों को आप तल दीजिए. और तल तल के जब ऊपर से बादामी कलर के हो जाए फिर आप निकाल दीजिए. तो ये बन गए मक्खन बड़े बिना चाशनी के. ये अंदर इसकी मिठास रहती है. ठीक है, तो बनाने का तरीका फिर से सिखा रही हूँ. मैदे को आप छान लीजिए. छान कर इसमें जो हमने 250 ग्राम घी लिया है उसका मौन डाल दीजिए इसमें. अगर पिघला हुआ नहीं है तो थोड़ा सा पिघाल करके डालिएगा. और मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए. और शक्कर में, भले तो आप पानी, थोड़े से पानी में शक्कर गर्म, मतलब डाल करके अच्छी तरह मिक्स करिए कि पूरा ही पानी शक्कर वाला हो जाए, शक्कर घुल जाए. या फिर चीनी पाउडर लीजिए, जिसको आप डायरेक्ट मैदे में डाल करके फिर पानी डाल करके गूंद लीजिए. अब वो आप पर छोड़ा कि आप क्या लेते हैं. ठीक है, पानी इतना ही लेना है जो मैदे में समा जाए. अगर ज़रूरत पड़ गई है तो ऊपर से दूसरा पानी डालोगे तो चलेगा, लेकिन बहुत सारा भर बतर के ले लिया पानी, फिर उसमें शक्कर डाल दी, फिर उस शक्कर वाले पानी से आपने मैदा गूंदा, तो फिर वो तो फीका पड़ जाएगा ना, क्योंकि पानी तो आपका बच गया, अब पूरी मात्रा तो अंदर गई नहीं. फिर अगर फीका लगे तो आप कहेंगे उषा दीदी ने कैसी रेसिपी सिखाई, ये तो कोई मीठी नहीं लग रही है. इसलिए ध्यान देना है, पानी में घुले उतनी ही शक्कर लेनी है. ठीक है, और इस पानी से फिर इसको गूंद देना है. और गूंदने के बाद 20 मिनट तक आप गीले कपड़े में ढक के रख दीजिएगा. और उसके बाद आप गोल गोल लुए की तरह तैयार कर लीजिए. छोटे छोटे लुए तोड़ करके पूरी बनाते ऐसे ही इसके लुए तोड़ना है. गोल गोल बना करके हल्का सा दबा के रख दीजिए. और फिर आप घी गरम करिए, कढ़ाई में डालिए, घी गरम करिए. घी गरम हो जाए तो धीमी आंच और मध्यम आंच पर आप इन बड़ों को तल दीजिए. तल के निकाल दीजिए। बहुत स्वादिष्ट रेसिपी तैयार हो चुकी है, बहुत ही ये स्वादिष्ट लगेंगे। ठीक है, तो ये आप गणपति जी को भोग में लगा सकते हैं, भोग लगा करके ही खाइएगा। ठीक है, तो ये बन गया बिना चाशनी के मक्खन बड़े, जिसको राजस्थानी में खजुरिया कहते हैं। और आइए फिर से आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर है गणपति के गुण गाए गणपति के गुणगान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे गणों का गान। गणपति का गुण गान गाते गाते गूंजे गणों का गान। ठीक है, तो ये आज का टंग ट्विस्टर है। सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज का टंग ट्विस्टर सुना सकते हैं। अब यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।

0: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। गणपति विसर्जन करिएगा लेकिन सावधानी पूर्वक, ठीक है। और रेसिपी में जो आपको बिना चाशनी के आपको ना ये बनाना सिखाया, मक्खन बड़ा जिसको राजस्थानी में खजुरिया कहते हैं, ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर था जिसको मैं दोहरा रही हूँ। गणपति के गुण गाए, गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे गुणों का गान। गण गाए गणपति का गुण गान, गाते गाते गूंजे गणों का ज्ञान। गणपति के गुण गाए, गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे गुणों का गान। गण गाए गणपति का गुण गान, गाते गाते गूंजे गणों का ज्ञान। गणपति के गुण गाए, गणपति के गुण गान, गणपति के गुण गाते गाते गूंजे गुणों का ज्ञान। गण गाए गणपति का गुणगान, गाते गाते गूंजे गणों का ज्ञान। तो मैं स्वयं के लिए भी तालियां बजा देती हूँ, क्योंकि भाई कभी कभी खुद के। और बाकी सुनाया है सुरेश भाई जोटाना से और दीपा सोमानी कपासन से। आप दोनों ने ही सुनाया है तो आप दोनों के लिए ढेर सारे टंग ट्विस्टर के लिए। और विषय में जुड़े हैं सुरेश भाई जोटाना से, कंचन भाई मंडाली से और सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, तो पुनः ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती इस प्रकार है, जब हमारे विचार में थोड़ी सी भी अशुद्धि नहीं होगी तभी हम सच्चे मानव कहलाएंगे, यही हमारा परम धर्म है। अब आपको गणपति जी पर प्यारा सा भजन सुनाएंगे सुरेश भाई जोटाना से, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे अंताक्षरी कार्यक्रम में, कल की थीम रहेगी पुराने पिक्चर के गीत, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करिएगा और अंताक्षरी में भाग लेने की कोशिश करिएगा। और आज के लिए इतना ही। सुरेश भाई स्वागत आपका फिर से रेडियो मधुबन में।
1: जी, नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते। तो आप गीत सुनाएंगे और मैं यहाँ से विदाई ले लेती हूँ, ठीक है। तो जी। आप सभी को राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुना दीजिए सुरेश भाई।

देवता, बेटी बीबी ना आगे वान मारा देवता, मेरे करो ने महाराज रे, माता रे कहिए पार्वती ने स्वामी तम ने उड़ाड़ा, पिता से शंकर देव देवता, पिता से शंकर देव देवता, मेरे करो ने महाराज रे, दूध सिंदूर नी सेवा चढ़े थे स्वामी तम ने ढाड़ा, गड़म फूलड़ा नो हार देवता, गड़म फूलड़ा नो हार देवता, मेरे करो ने महाराज रे,

कथन पहला समरिये रे स्वामी तमने सुधारा विदिश दिना तार देवता विदिश दिना दार देवता मेरे करो ने महाराज रे।

जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी हारो गांव हारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं सभी वर्गों से मिलते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे महिलाएं का समाज हो, चाहे नाड़ी हो, चाहे नरेगा हो, चाहे प्रशासन गांव के संघ, सभी वर्गों से मिलते हैं। तो आज हमें खुशी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों का मिलित सहयोग से बच्चों का टैलेंट, बच्चों का हुनर खोज में आज हम पहुंचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सानवाड़ा आर में। और इस कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए हमारा साथ भंवरलाल जी हमारा उपस्थित है। तो प्रिंसिपल उनको चयन किए, बोला हमारा भंवरलाल सर पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम में और बच्चों का साथ घुल मिलकर करते, तो सर को स्वागत करते रेडियो मधुबन परिवार की ओर से, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है सामुदायिक द्वारा और सामुदाय के लिए, फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। सरकार का जो मंच है, आसपास गांव के जो हुनर है, जो टैलेंट को जन जन तक खोजने के लिए आज रेडियो मधुबन पहुंचा, सर आपको वेलकम करते। राज्य के विद्यालय जो सानवाड़ा आर में आप वरिष्ठ शिक्षक है, तो आप अपना परिचय देंगे।
1: सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे विद्यालय में समय निकाल के आए और हमारे बच्चों का टैलेंट जानने के लिए आप उपस्थित हुए हो। मैं भंवरलाल गांची, व्याख्याता हिंदी विषय से, सनवाड़ा आर में पोस्टेड हूँ। 2017 से मेरी पोस्टिंग यहाँ पे है और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी विश्व प्रसिद्ध संस्था के द्वारा आप यहाँ पधारे हो और हमारे बच्चों का टैलेंट लेके जाओगे। और मतलब सोशल मीडिया से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ये पूरे विश्व में हमारे बच्चे इस तरह से फेमस होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आप धन्यवाद के पात्र है।
0: सर आज जो इस कार्यक्रम को लेकर हमें बहुत खुशी है, क्योंकि एक इशारा से, एक इंगित से आपने हमें चांस दिए और बच्चे चांसलर बन जाएंगे, क्योंकि चांस देना आपका काम है और चांसलर बनना बच्चों का काम है। तो आज इस मंच को लोग ढूंढते हैं, जे आज सहूलियत से मिल गया आपको मंच और आपका बच्चे भी इस मंच का माध्यम से अपना हुनर को, अपना प्रतिभा को सुनाएंगे। और हमारा श्रोता जो लिसनर सुन रहे इंटरनेट का माध्यम से, एफएम का माध्यम से, चाहे लिंक का माध्यम से, चाहे एप्लीकेशन का माध्यम से सुन रहे, और हमारा श्रोता सुन रहे, सभी का आवाज जब सुनते हैं एक गुलदस्ता बन जाता है, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे नाड़ी हो, चाहे ग्राम पंचायत, सभी वर्ग से, मैं चाहे किसान हो, सभी से मिलते। तो आज बच्चों का आवाज न हो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सानवाड़ा जो आर का बच्चे आज बारी बारी सुनाएंगे। तो हमारा श्रोता मित्र कहीं नहीं जाइए, अपना वॉल्यूम को ट्यून कर रखिए, आप सुन रहे हैं इस समय खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सानवाड़ा आर। तो सर आपको कैसे लगा, आपने पहले बता दिए बच्चों का जो भागीदारी मैंने देखा, आप सबको पूरा ग्रुप वाइज कर दिए, तो जो चार ग्रुप बने हैं, तो पहला ग्रुप जो हमारा दो बच्ची आए हैं तो उनका नाम थोड़ा जिक्र करेंगे।
1: जी हाँ, हमारे ये नन्नी मुन्नी बच्चिया, एक का नाम है दीपिका और एक का नाम है मानसी, हमारे पहला ग्रुप है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये बच्चिया देगी जो हमें बहुत खुशी होगी।
0: सर आप तो एक आरजे जैसे लग रहे हैं, एंकरिंग में आपका नंबर वन है, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभारी है। और उसका साथ कौन सा विषय आप पढ़ाते सर?
1: जी मैं हिंदी पढ़ाता हूँ सर,
0: इसलिए आपका जो बोलने का तरीका हो और बच्चों को एकत्रित करके आप संबंध बनाते, बहुत खुशी लगा। सर को धन्यवाद देते ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय आज दोनों का सहयोग से बच्चों का टैलेंट को, छोटे बच्चे हैं लेकिन छोटे भी कम नहीं है, ऐसे बच्चों को जब मंच मिलता है, जो मौका मिलता है, तो चौका छक्का लगाएंगे आज और स्कूल का नाम रोशन करेंगे और नामांकन में भी वृद्धि होगा स्कूल का, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इस तरह आकाशवाणी में आ रहे हैं ये कम बात नहीं है। 2000 ताली हो जाए सार के लिए, क्या बात, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति और तालियों का साथ हम खुशी करा दिए, क्योंकि ताली बजाने में कोई पैसा, कोई टैक्स नहीं लगता है, एक्सरसाइज हो जाता है। और जो सोए हुए नींद, बच्चे तो सोते नहीं है लेकिन कहाँ भी सोए होंगे अगल बगल में, वो भी जाग जाएंगे, क्योंकि हमारा रेडियो में जब इस तरह आवाज सुनेंगे, जो रेडियो को छोड़कर जाते हैं, सो जाते हैं कोई, तो उनको भी जगा देंगे, ये हमारा मंशा रहेगा। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा प्रस्तुतियां शुरू हो जाएगी। बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे, परियां हैं और मीठे बच्चे हैं, चलिए सुनते हैं उनका मीठी आवाज से, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: चले नमस्ते कार्यक्रम का आगे बढ़ा तो देर नहीं करते हुए हमारा जो कार्यक्रम आज तो ऐसे बंद पड़ेगा क्योंकि सर का जो उमंग उत्साह वार्म अप कर दिए और सर का भावना देखो और बच्चे भी भाव और भावना से एक प्रस्तुत सुनाएंगे। तो हम पहला प्रस्तुति की ओर चल रहे, सभी खुशी है ना, सभी बच्चे खुशी है, खुशी होना चाहिए और इस कार्यक्रम को हम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाएंगे और बच्चे भी इस साथ दे रहे और सभी स्टाफ खासकर हमारा प्रिंसिपल साहब भी इस कार्यक्रम में अति सहयोग दिए। तो हमारा साथ दो छात्रा है, हेलो नाम बताइए।
1: मानसी।
0: आज मन का बात को मानसी अपना क्लियर करेगा क्योंकि मन बुद्धि और संस्कार हर बच्चों का अंदर में रहता है, मन बुद्धि और संस्कार। जिसका मन बुद्धि संस्कार तेज है त्रिमूर्ति, वो मन को जो कंट्रोल करेगा, बुद्धि को जो कंट्रोल करेगा, वो संस्कार तो बन जाएगा, दैवी संस्कार आ जाएंगे। और बोले ये तो हमारा स्कूल के बच्चों का संस्कार है, सुसंस्कारित, हमको सुसंस्कारित बच्चे चाहिए भविष्य के लिए, अच्छा संस्कारित दैवी संस्कार। तो हमारा मानसी आज मन से गीत गाएगी और उसको साथ देने के लिए हमारा साथ और एक गुड़िया है, हेलो क्या नाम है?
1: दीपिका।
0: दीपिका, मन से आज दीप जलाएंगे, दीपिका नाम जैसे काम उस तरह करेंगे, दीप जलाओ भाई, बुद्धि का दीप मन का दीप जब जलेगा तो हमारा संस्कार बन जाएगा। दीपिका और मानसी को स्वागत करते हैं।

0: खाकर पढ़ने जाते।
1: वाह, ताली बजाना।
2: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद तालियों का साथ। मैंने सोचा था बच्चे सुबह उठते हैं और शाम तक क्या क्या करते, दिनचर्या बता दिए। सुबह उठते उठते क्या करना चाहिए? ब्रश। लेकिन इसका पहले मैं आवरे के जोड़ दूंगा, जब नींद खोलेगी तब पहले एक मिनट, जब नींद खोलेगी एक मिनट गुड मॉर्निंग टू गॉड, भगवान को शुक्रिया करना है। सुप्रभात। पहले नींद खोलते खोलते किसको धन्यवाद देंगे? भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, अपना कुलदेवी को क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। किसको बोलेंगे? भगवान को गुड मॉर्निंग करना है, ठीक है। इसका बाद जैसे मंजन करना, मुंह धोना, सब चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहला गुड मॉर्निंग किसको? भगवान को। इसका बाद माता पिता को, ठीक है। मन में बोलना है गुड मॉर्निंग माता पिता, आप हमें बहुत कुछ दिए, हम आपका रिटर्न करेंगे बड़े होकर, ऐसे मन में बोलना उठते उठते, ठीक है। इसके बाद शिक्षकगण, वो भी गुरु है तो उनको भी धन्यवाद देना मन में। इसके बाद अपना कार्य शुरू कर, उठते उठते बैठ जाने का बेड पे जहां पर सोते, तो फिर तीनों को गुड मॉर्निंग करना मन से, मन से, ठीक है। मन से गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग भगवान, है ना? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और मानसी तुम बड़े होकर क्या बनेगी लक्ष्य रखा है? जैसे सर मैम वगैरह होते हैं, कार्यकर्ता, पुलिस, राष्ट्रपति, है ना, तुम क्या बनेगी रे?
0: टीचर।
2: हाँ, टीचर मैम बनेंगे। अरे वाह, कोई सिखाया नहीं फिर भी बोले मैं मैडम बनेगी। हाँ, इसलिए पढ़ाई करना। और विद्यार्थी जीवन में बच्चे ध्यान से सुने, विद्यार्थी जीवन में बड़ों का बात मानना चाहिए। बड़े में कौन कौन आते हैं हमें बताएगी दीपिका? बड़े में कौन कौन आते हैं?
0: माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, टीचर।
2: हाँ,
0: बड़े भैया,
2: बड़े भैया बहन सभी बड़े आते। तो बड़े का बात मानेंगे तो जरूर जरूर कामयाबी होंगे। बड़े जो बोलते हैं आपका भलाई के लिए बोलते हैं, बोला बड़े आपका भलाई के लिए करते, लेकिन बड़े का बात तो सुनेंगे तो बड़े होकर हमारा टीचर जैसे सुनाएंगे सभी को। आपको सुनाते ना क्योंकि वो पहले सुने थे माँ बाप का इसलिए आज भी बच्चों को सुना रहे हैं सभी चीज, और बच्चे सुनते ध्यान से, इसलिए बड़े होकर भविष्य में सबको सुनाने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, मैनेजर, PhD करने के लिए बड़ों का बात मानना चाहिए। दीपिका तुम बड़े कर क्या बनेगी?
0: टीचर।
2: तुम भी टीचर? अच्छा, तुम्हारा स्कूल के अच्छा टीचर का नाम बताओ। तुम्हारा स्कूल में कितना सारा टीचर है? कौन सा टीचर आपको अच्छा लगते हैं?
0: राजेंद्र जी सर।
2: अरे वाह, सभी सर होना चाहिए। राजेंद्र सर को बोलते हमारा भवन लाल सर बोल आपको मार काट देंगे रे, ऐसे नहीं करना, इसलिए छोटे बच्चों का ही है सर, इसलिए राजेंद्र सर बड़े तो हमारा लेक्चर है। सभी बच्चे सच्चे होते हैं और वो दिल से बात करते हैं, कोई कपड़ नहीं, कोई छल नहीं, और महात्मा होते हैं बच्चे, सच बोलते हैं, कोई इशारा नहीं। भाई सर हो चाहे कोई, इसका पूरा दिल का बात रखते हैं। सर का, सर कौन सा विषय आपको पढ़ाते जो सर आपका नाम लिए, कौन सा विषय पढ़ाते?
0: गणित।
2: हाँ, गणित में मैथ टीचर बनेगी, ये भी हमारा दीपिका, बहुत अच्छा लगा। ऐसे बच्चों को मौका मिलना चाहिए, जो मंच आवश्यकता था आज बच्चों को मिल रहा है, और बच्चे खुशी से उनका चेहरा से पता चलता है जो हमें आज तो आकाशवाणी में हमारा आवाज जाएगा, मीडिया में जाएंगे तो हम तो मीडिया में छा जाएंगे, तो ऐसे होना चाहिए। और श्रोता भी यही बच्चों को प्रोत्साहन दीजिएगा, और कभी जरूरत पड़ेगा तो जरूर सनवाड़ा आर में आप आइए, बच्चों को मिलिए, और जो भी आपको देना चाहिए भामाशाह रूप में, चाहे उनका पानी हो, कुछ आरो, कुछ आवश्यक पड़ता है बच्चों को दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो खुला मंच है, रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारा गुड डे लोग भी है, बड़े बड़े भाई लोग, तो वो भी सुनाएंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। यह था ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन।

0: धारा जनहित में जारी।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमें तो जाने को इच्छा नहीं कर रहा, बच्चों का इतना स्नेह प्यार मिल रहा है, सो मीठे है और हमें भी मीठा बना दिए और हमारा सार का दो इशारा से सब बच्चे खुश, बार बार आने के लिए इच्छा होगा क्योंकि बच्चे सच्चे होते और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को आप सुन पा रहे। चलिए हमारे साथ एक छात्र है तो उनको परिचय लेते हैं। आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम योगेश कुमार है, मेरे 7 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा आर।
1: तो आज क्या प्रस्तुत करेगा, क्योंकि बच्चे सच्चे होते सच मन से आप एक गीत प्रस्तुत करेंगे।
2: जी। जग सारो घूम्यो मैं तारो जी सोना कोई पायो, जग

0: ਆਯੋ ਡੋਰ ਤਾਰੇ ਮਾਰੇ ਪੀਤ ਕੀ ਅਨੇਕ ਦੇਖ ਲੈ ਰੀਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਅਨੁਕਿਆ ਬਣਾਈ ਰੀਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਅਨੁਕਿਆ ਬਣਾਈ ਮੇਰੋ ਪਹਿਲੋ ਪਹਿਲੋ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਜੀਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਸਨੇ ਸਿਖਾਈ ਮੇਰੋ ਪਹਿਲੋ ਪਹਿਲੋ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਜੀਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਸਨੇ ਸਿਖਾਈ
1: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਸ੍ਤੁਤੀ ਕੇ ਲਿਏ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜੈਸੇ ਬਣਾ ਦਿਏ ਬੱਚਿਓ ਕਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਰ ਕਾ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਆਪਕਾ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਨ ਪੜਾ ਔਰ ਜੋ ਸ੍ਰੋਤਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਗੀਤ ਨਾ ਹੋ ਹਾਂ ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਮੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਔਰ ਬੜਾ ਕਰ ਕਿਆ ਬਨਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ
0: ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਬਨਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ
1: ਸਿੱਖਿਅਕ ਆਜ ਤੋ ਸਭ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕਹੀਂ ਬਨੇਂਗੇ ਔਰ ਮੈਨੇ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ ਆਪ का अच्छा खेल खेल खेलते हैं
0: जी
1: कौन सा खेल आप
0: क्रिकेट
1: क्रिकेट क्रिकेट में कितने आदमी होते हैं
0: 11
1: 11 ऑपोजिट में 11 और आपका तरफ से 11 22 लोग हैं बहुत अच्छा आपका सांगवाड़ा आर में आसपास कौन सा गांव है
0: हमारे आसपास में रोईड़ा है स्वरूपगंज है पूला है मांडवाड़ा है वासा है वाटेरा है भारजा है
1: अरे वाह पूरा पिंडड़ा ब्लॉक में 43 ग्राम पंचायत है जिसमें ये बहुत सारा गांव आसपास का गांव का नाम बताए बहुत बहुत धन्यवाद और बड़े होकर जैसे अपने टीचर बनेंगे आपका टीचर को जो देखते हैं उनका विशेषता गुण कौन सा शिक्षक से आप ग्रहण करते ज्यादा उनका पढ़ाने का तरीका
0: सभी से करते एक से क्यों से
1: सभी से कर सभी से गुण लेना है जब गुण लेंगे तो गुणग्राही होंगे और सबसे विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा गुण है सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है विद्यार्थी जीवन में सबसे सबसे बड़ा गुण क्या है कौन बताएंगे विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के समय में सबसे बड़ा गुण सर्वश्रेष्ठ गुण कौन बताएगा
2: शिक्षा
1: शिक्षा ग्रहण करना सबसे बड़ा गुण है विद्यार्थी जीवन में लेकिन विद्या ग्रहण कैसे होगा विद्यार्थी जीवन में विद्या ग्रहण करना लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा और थोड़ा सा सोचो विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण तो पढ़ाई तो है लेकिन उसके साथ साथ और कौन सा गुण है कौन बताएगा जिस गुण में दिव्यता ता रहेगा ता मधुरता लास्ट में ता रहेगा मैं क्लू दे दिया विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए विद्यार्थी में
0: शिक्षकता
1: शिक्षकता अच्छा शिक्षकता और एक बोला पढ़ाई एक तो शिक्षा और बताएगा कौन सा गुण होना चाहिए पढ़ाई
3: सहनशीलता सहिष्णुता
1: बहुत सारे गुण है सबसे गुण है लेकिन सर्वश्रेष्ठ गुण सबसे बड़ी गुण है
3: बुद्धिमत्ता
1: नियमितता नियमित जब आएंगे बच्चे बच्चे तो आते हैं नियमित सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमित स्कूल को आना है इसका बाद आपका सर्व गुण आ जाएगा सब गुण ठीक है जैसे सर ने बताया सहनशीलता लेकिन सर्वश्रेष्ठ गुण है नियमितता रेगुलर एब्सेंट रहेंगे तो पढ़ाई कर नहीं पाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक अगला ग्रुप हमारा रेडी है तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक

उसको सौगाते उतनी मिलेगी। ला ला ला ला ला ला।

सात तारों भरी ना मैंने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साइलेंस में, साइलेंस जो बल है ना, शांति से काम होना चाहिए। आज ओम शांति से आए हैं और ओम शांति से ही आज बच्चे शांति से गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। एक का बाद वंस मोर, और बालिकाएं एक ग्रुप आए तो उनका नाम पहले सुन लेते हैं।
1: सोनू, कक्षा 7, राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा।
2: मेरा नाम दीक्षा है और मैं 6 क्लास में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम आस्था माली है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम प्रियंका कुंवर है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ।
0: कितना सुंदर सुंदर तुलाय और ताल का साथ अपना गीत प्रस्तुत कर रहे हैं आज, छोटे छोटे तोतले तोतले आवाज में और मिठास इसमें है। चलिए हमारा कार्यक्रम को हेल्दी बनाने के लिए चारों को स्वागत करते हैं, एक गीत प्रस्तुत हो जाएगी।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से सीखते हैं ये सब? स्कूल में?
1: स्कूल से।
0: इसलिए स्कूल आना जरूरी है, स्कूल नहीं आएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। जैसे आज आकाशवाणी में बच्चे अपना आवाज को सुंदर रूप में प्रस्तुत किए, अभिमन्यु है ना। अभिमन्यु का पिताजी का नाम कौन बताएगा मालूम है? अभिमन्यु
1: अर्जुन।
0: वेरी पूरा इंटेलिजेंट। वहां पर जाएंगे ना बड़े होकर पूरी याद रहेगा। भाया भाया में जब इंटरव्यू होगा तो बच्चे तो याद करेंगे, रेडियो मधुबन में हमको पूछा था अभिमन्यु का पिताजी का नाम। उस समय भी कोई भी पूछेगा ना, अभी से रेडी रखना और जरूर आप कामयाबी होंगे। बड़े होकर क्या बनेगी?
1: हम पुलिस।
0: हाँ पूरा हाइट तो लग रहे है, पुलिस के लिए रेडी है, फिट है पूरा है ना। टीचर नहीं कोई, इसका पहले बहुत सारे टीचर मिले थे लेकिन अभी पुलिस मिलेगा। पुलिस का कर्तव्य, पुलिस का कर्तव्य मैंने ड्यूटी, उनका काम क्या होता है?
1: चोर को पकड़ती है और उन लोग को सबक सिखाते हैं।
0: सबक से जो खराब लोग को सबक सिखाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे है ना। और पुलिस चोर जो दुर्नीति करेगा उसको पूरा सजा देने के लिए रेडी रहेगा। तुम बड़े होकर क्या बनेगी?
1: मैं शिक्षक।
0: शिक्षिका, शिक्षक मैडम बनेगी। तुमको पूछेंगे नहीं, तुम बताओ देखी।
1: पुलिस।
0: पुलिस। हाँ पुलिस बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और जिसको पुलिस चाहिए याद रखना, पूरा सांगवाड़ा आर को याद करेंगे बड़े होकर। ये लोग पुलिस, दो पुलिस तो मिल चुके, कोई आसपास गांव में कुछ भी हो तो तुरंत को कराएंगे, ठीक है, फोन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अगला प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति हम लेकर आ रहे हैं, और खासकर बच्चों का आवाज, बच्चों का आवाज में जो दम है, बड़े बड़े भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए कितना भी धन्यवाद है, हमारा सर कोऑपरेशन कर रहे हैं भंवरलाल जी। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सानवाड़ा आर, सुनते हैं प्रस्तुति।
1: ओसीना केडबरमा प्रकार ए राम राम ए राम राम टिम्पा वालू डीजे आयुने आया है वीरो जोई पसी आवुने आया टिम्पा वालू डीजे आयुने आया है वीरो जोई पसी आवुने आया जावा दे जावा दे जावा दे।

0: Javade, evo, evo pona, leto paso a vene aya, evero paso a via vene aya.
1: चलो सर इस गीत में इसका भावार्थ क्या है हमारा सर जी बताएंगे क्योंकि हमारा श्रोता मित्र जो आदिवासी गीत नहीं जानते होंगे अब मारवाड़ी गीत नहीं जानते होंगे तो हमारा जैसे लोग जो आते हैं तो वो भी क्योंकि रेडियो मधुबन
2: तो नहीं आता इसका इसका पूरा भावार्थ तो मुझे नहीं आता क्योंकि बहुत ही आदिवासी ठेठ अंचल से ये गीत है और इसका मुख्य भाव ये है कि कभी भी शादी वगैरह में आजकल जो डीजे का प्रचलन है तो जो एक गाड़ी डीजे वाली आती है उसके ऊपर ये गाना पूरा बना हुआ है कि टेम्पा वारू डीजे आयू रे मतलब एक गाड़ी आई है जिसके साथ डीजे लगा हुआ है
1: तो होने वाला है इस आवाज से हाँ तो बहुत कुछ सीखा मिलते है तो हमारा जो भाकर क्षेत्र है भाकर क्षेत्र में जिस आदिवासी लोग रहते तो उनको मजा आता होगा डीजे का तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कार्यक्रम को संदर्भ में सजाया और अंतिम प्रस्तुति बच्चों का आवाज को सुन के हमारा शिक्षक भी अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे वो अपना अब राजेंद्र सर अपना इस कार्यक्रम को देख रहे हैं साक्षी दृष्टा रूप में और भीष्म पितामह जैसे सभी में सभी शिक्षक को हम धन्यवाद देते हैं कोऑपरेशन एक परिवार जैसे चलिए हमारा सर जी को राजेंद्र सर को स्वागत करते हैं सर आज रेडियो मधुबन में आपको स्वागत करते हैं बच्चों का साथ आप भी बच्चे बन गए अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे तो आपको तालियों का साथ
2: बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और रेडियो मधुबन को कि आज आप एक ठेठ आदिवासी अंचल के गांव सनवाड़ा आर में आकर के आप बच्चों को इनकी प्रस्तुति देने के लिए एक मंच प्रदान कर रहे हैं वास्तव में आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और इतनी खुशी आज मुझे हो रही है और वास्तव में ये प्रयास आखिर में रंग लाएंगे इन बच्चों की आवाज जब दुनिया वाले सुनेंगे तो वास्तव में मालूम पड़ेगा इनको लोगों को कि इन बच्चों में भी प्रतिभाएं हैं ये भी कुछ कर सकते हैं और ये भी कुछ कर दिखाने में सक्षम है तो अंत में जैसा कि सर ने मुझे आह्वान किया है मैं राजेंद्र टेलर चूंकि इन छोटे छोटे बच्चों का कक्षा अध्यापक रहा हूं बहुत सारे गीत मैंने इनको सिखाए भी है तो बच्चे भी डिमांड करें कि सर आप भी एक गीत तो सुनाई दो तो हमारी देश की संस्कृति जैसी है और जैसा मैं इन बच्चों को मानता हूं उसी अनुरूप उसी भाव को लिए हुए मैं ये गीत की कुछ पंक्तियां पेश कर रहा हूं आशा है आपको अच्छी लगेगी

बच्चा बच्चा राम है। वास्तव में मेरे लिए इस विद्यालय के मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, हर बाला हर बालिका एक देवी के रूप में है, वो पूजनीय है, और हर बच्चे में मुझे राम दिखाई देता है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव

0: यहाँ से आए हुए सभी साथी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे विद्यालय परिवार हमारे सनवाड़ा आर की तरफ से, थैंक यू वेरी मच।
1: इसका राज अभी पता चला, राजेंद्र सर का जो मेहनत बच्चों के प्रति, तो बच्चे भी आज सर का नाम रोशन किए और बच्चों का साथ आज तो पूरा मनोरंजन हुआ। इसका श्रेय तो पूरा संस्था को जाता है, स्कूल के विद्यालय के परिवार को और बच्चों को भी जाता है। तो माँ बाप भी जब सुनेंगे अरे हमारा बच्चों का ये आवाज, सही में इनको एक मंच जरूर था, आज वो मंच मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर और हमारा भंवर सर, अपना सभी स्टाफ को भी, प्रिंसिपल साहब को भी धन्यवाद देते हैं। आज का कार्यक्रम को यहीं पर रखते हैं, आप सबसे हम इजाजत लेते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था खासकर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाड़ा आर का आवाज जो आपका पास हमें रखे हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच प्रदान करता है। तो आज उसका आप सब साक्षी रूप में सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, सभी को नाम का साथ धन्यवाद, आभार।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं जीवन रोशनी कार्यक्रम रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। दोस्तों, कई बार नई राहें हमेशा बाहर नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी एक नई राह हमारे अपने अंदर ही जन्म लेती है, लेकिन बात होती है सिर्फ एक बार एकांत में

0: करके उस राह को देखने की, तलाशने की। एक ही परिस्थिति, एक ही साधन, लेकिन सोचने का तरीका नया हो सकता है तो परिणाम भी नया हो सकता है। यही है नवाचार। कुछ नया करने से पहले कुछ नए देखने की क्षमता भी होना बहुत ज़रूरी है। तो उस नए देखने की क्षमता को कैसे विकसित करें, कैसे हम इनोवेट करें, तो आज हम ये मूल्य लेकर के आए हैं। और हम सभी के समक्ष हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो है बीके रुचिका दीदी। और आप पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़ी हैं और 2010 से अब ब्रह्मा कुमारी इसके अंतरालय मुख्यालय में माउंट आबू में हेडक्वार्टर में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपने MBA फाइनेंस की शिक्षा प्राप्त की और इसके साथ साथ इंटरनेशनल बैंक्स में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे समक्ष हैं, रेडियो मधुबन के साथ जुड़ी हुई हैं। वैसे जो भी सेमिनार्स आदि अकाउंट्स के रिलेटेड प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं यहाँ पर, तो आप उनको भी गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, स्पिरिचुअल सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी कराते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज रेडियो मधुबन पर।
1: थैंक यू। ओम शांति।
0: ओम शांति। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप इनोवेशन को कैसे समझाएंगे हमारे श्रोताओं को।
1: इनोवेशन इज समथिंग हम अपने में कुछ बदलाव करें जिससे कुछ बेटर हो। चेंजेस तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन जो बदलाव एक बेटर आउटकम हमें दे वो इनोवेशन है।
0: जी, बेटर आउटकम हमें,
1: बेटर आउटकम हमें दे
0: जी।
1: कुछ सुधार के लिए अगर हम अपने अंदर कुछ चेंज लाते हैं तो दैट इज इनोवेशन।
0: ओके। तो अगर सिर्फ नई चीज बनाने की वजह आप कह रहे हैं कि कोई चीजों को अगर हम हमारे दृष्टिकोण परिवर्तन करके देखते हैं तो उसे भी इनोवेशन कहेंगे?
1: जी, एक्चुअली चीज कब बनती है? हम अभी बाहरी रूप से अगर हम देखते हैं तो हम बाहर की चीजें देखते हैं कि ये नई चीज हमें बनी है, बट अगर उसका बैकग्राउंड देखें तो हमने अपनी सोच बदली, हमने अपने संकल्प बदले, हमने अपना दृष्टिकोण बदला, तो हम वो नई चीज प्रोड्यूस कर पाए।
0: जी।
1: अगर हम अपनी सोच ही ना बदलते तो कभी उस नई चीज का प्रोडक्शन या आउटकम कभी आता ही नहीं। कोई भी अगर बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग का नक्शा पहले हमारे माइंड की में बनता है।
0: जी।
1: उसका पूरा आर्किटेक्चर की कैसा होना चाहिए, बिल्डिंग कैसे दिखनी चाहिए, किसी भी चीज का अगर आविष्कार होता है तो पहले हमारे संकल्पों के द्वारा होता है।
0: जी। ओके। तो पहले अपने सोच में हम उसे देखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, नवीनता लाते हैं,
1: सोच में नवीनता लाए तभी वो बाहरी रूप से हमें दिखाई देगा।
0: जी। ओके। तो कई बार हमें समस्या का समाधान पता नहीं चलता, तो ऐसे स्थिति में तो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया ये वाली बात आती है, तो इस सोच को बदल करके हम कैसे सवाल पूछें अपने आप से?
1: जी, पहले हमने कभी नहीं किया तो वो तो एक रिजिडिटी हो गई कि हम करना नहीं चाहते, या अंदर एक डर है कि हमने पहले कभी नहीं किया और अगर अभी हम करेंगे तो पता नहीं हम सफल हो पाएंगे या नहीं सफल हो पाएंगे या उसका आउटकम क्या होगा।
0: जी।
1: तो सबसे पहले तो हम सोच को बदलें कि मैंने पहले नहीं किया या अगर मैं करूँगा तो मैं फेल ना हो जाऊँ या कुछ गलत ना हो जाए। हर गलती जो है आविष्कार का एक पहला कदम है, नवीनता का एक पहला कदम है। तो सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा।
0: जी।
1: और ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन के अंदर बदलाव जरूरी है। जब तक हमें उसकी जरूरत फील नहीं होती या उस बदलाव से होने वाली प्राप्ति क्या है वो जब तक हमें समझ में नहीं आता तब तक हम कोई भी कदम उठा नहीं पाएंगे। वो अंदर मन में भय डर बना ही रहेगा। तो सबसे पहला जो चाहिए हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए।
0: जी।
1: वो जो अंदर की इच्छा है कि वी शुड चेंज समथिंग, जैसे दुनिया में भी कहावत है ना, मूव यू आर नॉट अ ट्री।
0: राइट।
1: राइट। तो ट्री जो है वो मूव नहीं कर सकता, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव क्रिएटिविटी, वी हैव कैपेबिलिटीज। जब तक हम उस अंदर की अपनी क्रिएटिविटी को परखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बाहर नहीं लाएंगे तब तक हम कुछ नया कर नहीं पाएंगे।
0: जी। जैसे कहते हैं कि अपने अंदर की क्रिएटिविटी को परखने के लिए आप कहीं अकेले में चले जाओ, कहीं बैठो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कैसे हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को पहचानेंगे?
1: जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि अकेले में चले जाइए। कहते हैं साइलेंस इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, साइलेंस इज द मदर ऑफ इनोवेशन।
0: जी।
1: अभी हम देखते हैं कि अगर हम थोड़ा भी हमें टाइम मिलता है तो हम सीधा अपना फोन उठाते हैं। अगर हम मान लो बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं बस का, हम अपने फोन में बिजी हैं। हम भोजन कर रहे हैं अपने फोन में बिजी हैं। जैसे हमारा एक रिंगटोन बजा, छोटा सा मैसेज भी आया, हम तुरंत ईगर होते हैं उसको चेक करने में। कहीं थोड़ा सा भी हमें टाइम मिलता है, नींद नहीं आ रही, फोन उठा लिया, जल्दी आँख खुल गई, हमने फोन उठा लिया। हमने अपने को कहीं ना कहीं हमेशा ऑल टाइम ऑक्यूपाई रखा हुआ है,
0: राइट।
1: तो जब तक हम अपने आप को उन सब चीजों से फ्री नहीं करेंगे, कहते हैं द बेस्ट वे टू क्रिएटिविटी, बेस्ट वे फॉर इनोवेशन इज टू डू नथिंग।
0: ओके,
1: आप कुछ मत कीजिए, आपके मन में नए आइडियाज तभी आएंगे। अगर हमने पहले से ही अपने मन को इधर उधर व्यस्त रखा हुआ है, तो मार्जिन ही हमने नहीं छोड़ी कुछ नया सोचने की।
0: जी।
1: तो हम नया तभी सोच पाएंगे, क्रिएटिव तभी सोच पाएंगे, जब हम अपने आप को मार्जिन देंगे, अपने आप को टाइम देंगे, खुद से बात करेंगे, खुद को समय देंगे, तो हम कुछ नया सोच सकते हैं।
0: जी, तो नथिंग सोचने के लिए ना, जो हम पहले सोचा हुआ होता है या दिन भर में देखा हुआ होता है ना, तो जैसे आपने कहा कि आंख खुलते ही हम मोबाइल देख लेते हैं, तो वो सारी चीजें आती है, फिर कहीं सीरियल्स देखा हो तो ये सारे वेस्ट थॉट्स,
1: कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड ने वो सब चीजें एक्सेप्ट कर ली है और मन अपने आप ही उधर भागता है।
0: जी,
1: और हम इस चीज को नोटिस भी नहीं कर पाते हैं जब तक हम, दूसरा कोई व्यक्ति अगर हमारे नोटिस में नहीं लाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये खास नोटिस में हम ला रहे हैं कि हमारा मन इधर उधर व्यस्त है, हर चीज हमेशा अपने को ऑक्यूपाई करना चाहता है। तो मैं अपने आप से पूछूं, क्या मैं सच में फ्री हूँ? सबके लिए तो टाइम है मेरे पास, क्या मेरे पास अपने लिए टाइम है? जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, जब हम साइलेंस में बैठते हैं, एकाग्रता से बैठते हैं, अपने मन को फ्री करते हैं, हमें तभी कुछ नए आइडियाज टच होते हैं।
0: जी, तो अपने मन को ऐसे कंट्रोल में रखना या फिर नए आइडियाज के लिए शांत करना जरूरी है। तो अगर ये सारे वेस्ट थॉट्स, पास्ट की बातें, इधर उधर की बातें आए, तो क्या करना चाहिए फिर हमको उस वक्त?
1: वही जो मैंने बताया कि रियलाइजेशन, कि हमें अपने में कुछ चेंज लाना है। और सबसे बड़ा इनोवेशन बाहरी दुनिया का इनोवेशन नहीं है, सबसे बड़ा इनोवेशन मैं समझती हूँ कि अपने व्यवहार में इनोवेशन लाना, खुद में चेंज लाना। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका ये मोटो ही है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा बदले, सामने वाला व्यक्ति बदले, वो हमारे कंट्रोल के बाहर है।
0: जी,
1: मैं खुद मेरे कंट्रोल में अगर नहीं हूँ, देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू चेंज?
0: राइट। जी,
1: राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसे आपने बोला वेस्ट थॉट्स, हम अपने को बिजी रखते हैं, तो उससे कैसे बचे? तो उसके लिए अपने ऊपर अटेंशन। और अगर कोई भी व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली वो अपने लिए टाइम निकाल ही लेगा। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ अलग करना है।
0: जी,
1: और अगर ये अंदर से दृढ़ इच्छा है कि हमें करना है, तो ऑटोमेटिकली हम अपने लिए समय निकालेंगे।
0: जी, तो क्या अपने आप से बात करनी है उस समय जब इस प्रकार से ख्याल दूसरे आता हो और हम फोकस नहीं कर पाए, तब अपने मन से बात करनी होती है?
1: जी, पहले तो हम अपनी प्रॉब्लम समझें कि प्रॉब्लम क्या है। अभी क्या है, हमारा माइंड जो है बहुत जगह प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है। अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए उसका सॉल्यूशन निकालना, कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। एंड मेन थिंग इज, सबसे पहले कि अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे करना क्या है, मैं चाहती क्या हूँ करना। अभी हम देखें बहुत सारे लोग जो है विदाउट गोल ओरिएंटेड।
0: जी,
1: कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, कोई बड़ा एम नहीं है। और व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति का जो सबसे अच्छा निवारण है, वो है अपने लक्ष्य को इतना महान बना लो कि आपके लिए व्यर्थ के लिए समय ही नहीं बचे।
0: जी,
1: टाइम ही नहीं बचे। कई हम देखते हैं लोगों को इधर उधर बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं, कभी किससे बातें कर रहे हैं, और बातें भी क्या, परचिंतन, व्यर्थ। वही समय अगर हमारा एक गोल सेट होता कि मुझे जीवन में ये करना है, तो हम बहुत सारे व्यर्थ से, बहुत सारे परचिंतन से ऑटोमेटिकली बच जाते हैं।
0: ओके,
1: और हम जीवन में कुछ नया कर पाते हैं।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, अपने जीवन के लक्ष्य को रिवाइज करिए, और फिर अगर आपने सेट नहीं किया है तो सेट करना बहुत जरूरी है, तभी हम उसे फॉलो करते हुए इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और अपने मन के साथ अपने आप को बात करनी चाहिए शिफ्ट करने के लिए व्यर्थ से समर्थ की ओर।
1: जी
0: जी, हर एक परिस्थिति के बारे में अगर बात करें कि परिस्थिति बार बार सामने तो आ ही रहा है कि जिंदगी है, परिस्थिति आएगी, और पुराने तरीके के अगर हम काम ना करके उसको नए तरीके से इनोवेट करेंगे जैसे आपने कहा, तो कौन सी ऐसी आदत है जो पहले हमें परिवर्तन करना चाहिए, एक फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए?
1: मैं आपको अपने जीवन का अनुभव सुनाती हूँ। कई बार ऐसा होता है हम पास्ट की बातों को बहुत पकड़ के रखते हैं। कुछ भी बात होता है पुराना रेफरेंस, पहले आपने ऐसा कहा था, पहले ऐसा हुआ था, क्योंकि हम अपने बुरे अनुभवों को छोड़ नहीं पाते।
0: जी,
1: अच्छे अनुभवों को इतना पकड़ के नहीं रखते हैं और बुरे अनुभवों को छोड़ नहीं पाते। तो पुरानी बातें बार बार बार बार रिकॉल होती है
0: जी,
1: जिससे हमारा समय भी व्यर्थ जाता है, एनर्जी भी व्यर्थ जाती है। तो अगर हम अपने जीवन की ये धारणा बना लें, एक छोटी सी धारणा
0: जी,
1: कि जो हुआ सो हुआ, उसको हम बदल नहीं सकते, वो तो हो गया, अभी हमारे हाथ में है ही नहीं बदलना। अभी हमारे हाथ में है कि आगे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। पुराने को फुल स्टॉप लगाकर, बीती को बिंदी लगाकर, व्हाट नेक्स्ट, अभी मुझे आगे क्या करना है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड से स्विच करना सॉल्यूशन ओरिएंटेड की तरफ
0: जी,
1: दैट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इनोवेशन। पहले मैं अपने अंदर ही बदलाव लेकर आऊं,
0: राइट, ओके,
1: दिस इज इंपॉर्टेंट।
0: तो बार बार शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड
1: फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव
0: जी। जब जब भी पास्ट की बातें, गिल्ट, जो भी चीजें हैं हमारे जिंदगी में, वो आए, और तभी तभी ही हमें ये वाली टेक्निक
1: सब हमें लेट गो करना है। एक चीज हमेशा माइंड में रखते हुए कि पुराने को मैं बदल नहीं सकता, बट अपना फ्यूचर बनाना वो मेरे हाथ में है, प्रेजेंट मेरे हाथ में है, पास्ट मेरे कंट्रोल से बाहर है
0: जी।
1: तो रादर देन फोकसिंग ऑन पास्ट, अपनी प्रॉब्लम्स, हम अपना एटीट्यूड, अपना फोकस शिफ्ट कर ले अपने फ्यूचर की तरफ,
0: okay.
1: कि अभी आगे मुझे क्या करना है
0: जी। तो घर हो, ऑफिस हो या परिवार हो, छोटी सी ऐसी कौन सी चीज, जैसे आपने कहा कि शिफ्टिंग करना है, लेकिन जिसमें हम आज से ही एक नया तरीका अपना कर बदलाव ला सकते हैं।
1: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, जितना हम हर छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, थैंक्स गिविंग फील करते हैं, उतना हमारे जीवन में अच्छी चीजें ज्यादा होती हैं।
0: ओके,
1: अगर हम एक अपना छोटा सा नेचर चेंज कर ले, नो कंप्लेंट
0: जी,
1: चाहे हम दिन फिक्स कर लें, लाइक टुडे इज संडे, एवरी मंडे आई विल नॉट कंप्लेन फॉर एनीथिंग, ये नवीनता ला करके अगर हम देखें, भोजन चाहे हमें जैसा भी मिल रहा हो, पसंद आए या ना पसंद आए, ये नवीनता ला करके देखें कि मुझे शुक्र करें परमात्मा का कि मुझे भोजन मेरी थाली में है, और हम उसको स्वीकार करें खुशी खुशी
0: जी।
1: रात को सोने से पहले सब परिवार वालों को हम थैंक्स करें, परमात्मा का थैंक्स करें उस दिन के लिए
0: जी,
1: हर छोटी छोटी बातों का थैंक्स करें। एक दिन रखें अपने जीवन में नो कंप्लेन दें, एक दिन अपने जीवन में रखें थैंक्स फॉर एवरी लिटिल थिंग्स, हर चीज के लिए हमें ग्रैटिट्यूड फील हो, अपने को भाग्यवान फील करें, भाग्यशाली फील करें कि आज जो मेरे पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। ये छोटे छोटे से बदलाव हम जब अपने जीवन में लाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन कैसे बाकी लोगों से अलग होता है।
0: ओके, तो ये हम आज से शुरू कर सकते हैं, थैंक्स देना है, धन्यवाद देना है, और कृतज्ञता महसूस करना है अपने लाइफ में, और डे वाइज कर सकते हैं,
1: डे वाइज आप अपने गोल सेट कर सकते हैं। एक बड़ा गोल सेट करने के बजाय आप उसके छोटे छोटे गोल्स सेट कर सकते हैं, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे गोल्स में। जैसे हमें पता है हमारा नेचर कैसा है, सपोज मुझे गुस्सा अगर बहुत आता है तो अपने लिए खुद ही गोल सेट करें, ठीक है हम एक महीने का टारगेट लेकर नहीं चलते, एक हफ्ते का टारगेट लेकर भी नहीं चलते, अगर हम हर दिन का टारगेट लेकर के चले, या अगर मुझे लगता है कि मैं फोन से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हूँ, तो उसमें आप एक दिन का, कुछ घंटे का आप एक टारगेट लेके चलिए, गोल लेके चलिए कि शाम को 4 बजे से 8 बजे तक, या फिर ड्यूरिंग द फैमिली टाइम जब हम परिवार के अंदर हैं
0: जी,
1: तो उस समय हम अपने परिवार वालों को ही समय देंगे, तो उससे हम देखेंगे हमारे घर का वातावरण भी चेंज होगा, और हमें चेंज देख करके, हमारे अंदर वो चेंज देख करके हमारे परिवार वाले भी वो चेंज अपने अंदर लाएंगे
0: जी। बिल्कुल, तो दोस्तों आप आज से क्या करने वाले हो, आप हमें कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हो, 94-14-15-14-15 इस नंबर पर जी। कई बार हमारे पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ भी आते हैं, लेकिन हम उन्हें लागू नहीं कर पाते हैं, उस आइडियाज़ को एक्शन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करें
1: जी। हमारे पास नए आइडियाज़ आ रहे हैं तो पहले तो यही प्रूव करता है कि हम लोगों से अलग सोचने की क्षमता रखते हैं, और हम कुछ नया करना चाहते हैं, हम कुछ नया सोच रहे हैं
0: जी।
1: अगर हम नहीं कारण, किसी भी कारणवश अगर हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में नहीं ला पा रहे, तो सबसे पहले तो उसके कारण हम ढूंढें कि क्या ऐसे कारण हैं। अगर उन कारणों के लिए मैं बदलाव कर सकता हूँ, और कैसे बदलाव कर सकता है, तो हम उसको सोचें
0: जी
1: कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज मेरे अंदर गुस्सा बहुत है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, तो हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तो क्यों ना हम आज से ये चेंज करें, दूसरों पे अपनी गलती या किसी की भी गलती शिफ्ट करने के बजाय अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हमारे हर व्यवहार के लिए, हमारे हर एक्शन के लिए, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही है उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ
0: जी। ये हम भूल जाते हैं,
1: ये हम भूल जाते हैं। और अगर ये हम खुद से प्रॉमिस करें कि मेरा व्यवहार मेरी जिम्मेवारी है, अगर हम इस पे शिफ्ट करते हैं और इस पे बार बार बार बार अटेंशन देते हैं, तो हम जरूर वो कर पाएंगे जो अभी तक हमें लगता था कि हम नहीं कर पा रहे।
0: राइट, तो ये हमें याद रखना है कि जो ब्लेम गेम हम खेल रहे हैं तो उसको हम स्टॉप करके एक नई चीज अपनाएं,
1: अपने ऊपर जिम्मेवारी ले,
0: अपने ऊपर जिम्मेवारी ले। तो बहुत नए नए चीजें हम सीख रहे हैं आपसे रुचिका जी, जैसे इनोवेशन के नए नए तरीके, नए नए दृष्टिकोण। तो क्या इनोवेशन के लिए हमेशा टेक्नोलॉजी या फिर बड़ी सुविधा की जरूरत होती है, या फिर बिना पैसे खर्च किए भी हम जीवन में इनोवेशन का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम भी अपने सकते हैं?
1: इतना जरूरी नहीं है इनोवेशन के लिए, जैसे हमने पहले भी बात किया कि यहाँ सारा संकल्पों का खेल है। कुछ भी इनोवेशन अगर आता है तो पहले माइंड में आता है। टेक्नोलॉजी तो बाद की बात है
0: जी, माइंड में ही ब्लूप्रिंट निकलता है,
1: माइंड में हमारा ब्लूप्रिंट निकल कर आता है। आज अगर मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ तो मैं फोन्स के या यूट्यूब के या इंटरनेट के मोहताज नहीं हूँ। अगर पहले जमाने में भी लोग सब सीखते थे, कुछ नया करते थे, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशन करते थे
0: जी,
1: तब भी उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। तो टेक्नोलॉजी के हम सोचते हैं कि बिना टेक्नोलॉजी के हम कुछ नया कर नहीं सकते, ये सिर्फ एक बहानेबाजी है।
0: राइट जी,
1: अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं, सच में करना चाहते हैं, और हमें गोल बहुत क्लियर है, हमारे स्पष्ट है, निर्धारित है, तो हम जरूर वो कर पाएंगे बिना पैसों के भी
0: जी। जैसे कई गरीब घर के बच्चे होते हैं लेकिन बिना टेक्नोलॉजी बिना उसमें आगे बढ़ जाते हैं,
1: चाहे खेल कूद में। बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे कि बिना हाथ पैर के भी लोग अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन जीत रहे हैं।
0: राइट,
1: तो उनको तो अपने शरीर के ऊपर भी वो डिपेंडेंट नहीं है
0: जी।
1: तो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं है
0: जी। जी बिल्कुल, आप पायल नाग के एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों यूट्यूब पर, कि कैसे उन्होंने तीरंदाजी में गोल्ड लिया है। शीतल देवी भी जिनके हाथ पैर नहीं है लेकिन वो जीत रहे हैं। बिल्कुल, तो परिवार या वर्क प्लेस में जब कोई व्यक्ति नए तरीका या फिर नए आइडियाज देने लगता है तो बाकी लोग उसे थोड़ा पहले रिजेक्ट करते हैं, तो उस रेजिस्टेंस को कैसे हम फेस करें बताइए
1: जी। कोई भी नया चेंज हमारे सामने भी कभी आता है तो हम भी उसे अपनाने में कभी झिझकते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं क्या उसके आउटकम्स होंगे या क्या उसके रिजल्ट्स निकलेंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हमारे मन में कुछ भी आइडिया आता है, ऑफिस में अगर हम अपने बॉस के आगे रखते हैं या परिवार में किसी के भी सामने रखते हैं और वो उसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम उनको 3 डे एज एन एक्सपेरिमेंट के रूप में ले सकते हैं। हम उन्हें ऐसा बोल सकते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं।
0: ओके,
1: अगर सही निकला, अगर उसका आउटकम पॉजिटिव हुआ और सबको पसंद आता है तो सब फॉलो करेंगे, नहीं तो हम कुछ और सोचेंगे
0: जी।
1: उसका अल्टरनेट कुछ सोचेंगे, क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल रिजिड अप्रोच भी फॉलो नहीं करना है कि मेरा ही सुना जाए, मेरा ही माना जाए। वो कई बार क्या होता है, वातावरण को और ज्यादा खराब कर देता है
0: जी।
1: तो रैदर देन रिजिडिटी, मैं ही ठीक हूँ, मेरा ही आइडिया ठीक है, सी इनोवेशन के लिए हमें शेयर करना है
0: जी।
1: शेयर करके आपस में सबके आइडियाज ले रहे हैं, सबकी राय सलाह करके किसी भी एक आइडिया को, चाहे वो मेरा हो या किसी और का आइडिया हो, किसी भी आइडिया को हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे 3 दिन 5 दिन 1 हफ्ता सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर उसमें हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो जो सबका रेजिस्टेंस है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो भी एक दिन सबको एक्सेप्ट करेंगे
0: जी। तो अगर बार बार भी रिजेक्शन मिले तो भी हम इस चीज को अपना सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 3 दिन के लिए आप
1: जी जरूर
0: इस प्रकार से
1: सब एक्सपेरिमेंट करके देखें। बिकॉज कहते हैं ना, जो सामने दिखता है वो बोलता है। हम एक आइडिया दे रहे हैं, वो हमारी एक सोच है, हमारा एक आइडिया, बट जब तक हम उसको प्रैक्टिकल नहीं करते, प्रैक्टिकल ट्राई नहीं करते, तब तक लोगों को एक प्रमाण भी नहीं मिलता है
0: जी। तो ऐसे उदास होके छोड़ नहीं देना है लेकिन ट्राई करते रहना है। कई बार हम फीलिंग्स में आ जाते हैं कि मुझे रिजेक्शन मिला, फिर हम नई तरीके से सोचना छोड़ भी देते हैं कि मेरे आइडियाज तो कभी कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं क्यों सोचूं।
1: एक आइडिया नहीं तो दूसरा आइडिया, इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से, बट हिम्मत नहीं हारनी,
0: हिम्मत नहीं हारनी, अपनी इनोवेशन के जो तरीके हैं, क्रिएटिव सोच है, उसे जारी रखनी है जी। तो पुरानी समस्या और नई सोच, क्या आप कोई सामान्य जीवन की समस्या लेकर के ये हमें एग्जाम्पल दे करके बता सकते हैं कि नई सोच से उसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है, कोई पुरानी समस्या है तो?
1: पुरानी समस्या, अभी तो लोगों की सबकी पुरानी समस्याएं ही चल रही हैं और सभी फोकस करते हैं समस्या पर ही, प्रॉब्लम पर ही फोकस करते हैं। लेकिन अगर हम उसी समस्या को दृष्टिकोण अपना बदल ले देखने का. जैसे वो एग्जांपल बताते हैं ना, दो व्यक्ति साइड बाय साइड खड़े होते हैं, बीच में सिक्स लिखा होता है, एक साइड से सिक्स है बट दूसरी साइड से वो नाइन पढ़ने में आता है.
0: राइट.
1: जबकि सिचुएशन सेम है लेकिन दोनों अलग अलग नजरिए से उसको देखते हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से. तो पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हुए अगर हम वही समस्या को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखते हैं तो मुझे लगता है वो समस्या समस्या रहेगी नहीं.
0: जी.
1: बिकॉज व्हाट इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज हमारा दृष्टिकोण, हमारा एक कमजोर दृष्टिकोण जो हम उसको नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं.
0: जी.
1: तो वो हमें समस्या का रूप दिखती है. बट अगर वही हम उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल दें, पॉजिटिवली लें,
0: जी,
1: तो वो समस्या है ही नहीं. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कई ऐसे कल्चर वाले घर होते हैं जिसमें वो पसंद नहीं करते कि घर की बहू बेटियां बाहर जाएं और कमाएं,
0: जी,
1: जॉब करें, बहुत रिलक्टेंट होते हैं. तो उनकी वही पुरानी सोच है,
0: जी,
1: कि क्यों जाएं. लेकिन अगर हम अपनी सोच बदले जमाने के हिसाब से या आज की डिमांड के हिसाब से या सामने वाले की फीलिंग्स, इमोशंस और उनकी रिक्वायरमेंट्स को ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए,
0: जी,
1: प्रॉब्लम्स को अगर हम समझें तो शायद वो प्रॉब्लम जो आज कई घरों में इसी बात को लेकर के रोज झगड़े होते होंगे,
0: जी,
1: सिर्फ एक दृष्टिकोण बदलने से हमेशा के लिए वो समस्या समाप्त हो सकती है.
0: जी. तो इसीलिए पुराने तौर तरीके नहीं लेकिन नए तरीके से
1: सिचुएशन वही रहेगी, सिर्फ हमने उसको देखने का, हमने उसको सोचने का नजरिया बदल लिया है.
0: जी. जैसे लड़कियों को खेल में आगे नहीं आने दिया जाता था, अब आने दिया गया है. और इसके साथ साथ इंडिया ने ये भी किया कि क्रिकेट में लड़के और लड़कियों की बराबर से सैलरी देने लगे हैं.
1: और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है जहाँ पे बिल्कुल जेंडर इनइक्वालिटी.
0: यस. तो जब मन तनाव में हो या फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो अपने ऊपर, तब क्रिएटिविटी और नवीन सोच कम हो जाती है ना, सोच नहीं पाते हैं. तो फिर ऐसे समय में माइंड को फ्रेश करने के लिए प्रैक्टिकल तरीका आप क्या अपनाते हो?
1: एक्चुअली इस क्वेश्चन में ही आपका जवाब है. आपने बोला तनाव से क्रिएटिविटी कम हो जाती है. इसको अगर आप दूसरे नजरिए से देखें, अपनी सोच बदल दें, तनाव से क्रिएटिविटी कम नहीं होती, क्रिएटिविटी ना होने से तनाव बढ़ जाता है.
0: राइट.
1: कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, लैक ऑफ समथिंग यूनिकनेस है. हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ नवीन नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से हमको स्ट्रेस हो रहा है.
0: जी.
1: वही पुराने पैटर्न्स के बीच में हम बंधे हुए हैं या वही पुराने पैटर्न्स हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हम उस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. स्ट्रेस इज नॉट द कॉज ऑफ लैक ऑफ क्रिएटिविटी.
0: जी.
1: है ना, एब्सेंस ऑफ क्रिएटिविटी इज द रीजन फॉर स्ट्रेस.
0: राइट.
1: तो स्ट्रेस को अगर दूर करना है तो कुछ अलग सोचें, कुछ अलग करें, डेली रूटीन पैटर्न से बाहर निकल के सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, ताकि स्ट्रेस आने की मार्जिन ही नहीं रहे. अपने को इतना नवीन कार्यों में बिजी रख ले कि कुछ तो नया करना है, कुछ तो वो अंदर से एक ईगरनेस होनी चाहिए, एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम कुछ नया करें. चलो आज क्या करें खाली बैठे हैं तो.
0: जी.
1: और ऐसा नहीं है कि सीखने को कुछ है नहीं, बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ नया करने को है.
0: right.
1: बहुत कुछ जानने को है. तो अगर हम अपने को, अपने मन को इन सब में बिजी रखेंगे तो स्ट्रेस का तो सवाल ही नहीं उठता है. स्ट्रेस भी तभी आता है जब हम खाली हैं.
0: खाली हैं. तो इसलिए अपने मन को क्रिएटिविटी में लगाना है.
1: क्रिएटिविटी में लगाना है तो स्ट्रेस का मार्जिन ही नहीं रहेगा, नेगेटिव वेस्ट का मार्जिन ही नहीं रहेगा.
0: जी. जैसे एग्जांपल है कि आजकल रिलेशनशिप इश्यूज बहुत हैं, तो वो चाहकर भी अपने मन को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं कर पा रहे. घरेलू महिलाओं के बारे में बात करें, किसी महिला ने अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए जॉब छोड़ दी है, क्रिएटिविटी छोड़ दी है, लेकिन उन्हीं संबंधों में ही रस नहीं आ रहा है, तो क्या करें?
1: हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरों को सैटिस्फाई करने में लगे हुए हैं. जैसे आपने बोला अपने परिवार वालों की खातिर नौकरी छोड़ दी कि वो संतुष्ट हो जाए.
0: जी.
1: है ना, लेकिन खुद के लिए हमने क्या किया? हम कुछ ऐसा करें और करके दिखाएं. क्या है, जैसे हमने पहले अभी बात किया कि सबको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए.
0: जी.
1: प्रूफ चाहिए, हर चीज का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना चाहते हैं. तो क्यों ना हम खुद को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि दूसरे भी हमसे इंस्पायर हो.
0: जी. ओके.
1: इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करें, बट हम अपने जीवन के अंदर कार्य ऐसे करें, कुछ ऐसा काम करें कि दूसरे हमसे इंस्पायर होकर के वो सीखें.
0: ओके. तो इस तरीके से हम नया सोच के दृष्टिकोण का परिवर्तन करके हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन,
1: हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है.
0: जी. तो इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या कनेक्शन है?
1: मैं समझती हूँ अगर फ्लेक्सिबल व्यक्ति नहीं है तो वो इनोवेशन कर नहीं सकता, वो रिजिडिटी है, वो जिद है. अगर कोई व्यक्ति इनोवेटिव आइडिया लेकर के आता है, सपोज अगर कोई एम्प्लॉय अपने बॉस के पास जाता है कि ये प्रोसेस चेंज करना है,
0: जी,
1: तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर उसे लगता है कि मेरा ही तरीका सही है, और अगर उसका बॉस बोलता है हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे
0: जी,
1: और वो उसको मानने को तैयार नहीं है, फ्लेक्सिबल ही नहीं है, तो वो कभी इनोवेशन ला नहीं सकता
0: जी।
1: तो आपस में दोनों बहुत कनेक्टेड है। जितना हम फ्लेक्सिबल होंगे, जितना अपने को हम मोल्ड कर सकेंगे, उतना हम इनोवेटिव होंगे, उतना हम क्रिएटिव होंगे।
0: ओके, तो मोल्ड करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे जो भी कह रहे हैं उसमें हां जी करना है, लेकिन जहाँ पे ना बोलना है
1: जहाँ पर ना, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हमें ओपन रखने चाहिए
0: जी।
1: ऐसा नहीं कि हम मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन लेकर के आगे बढ़ रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये
0: जी।
1: तो लेट्स बी ओपन टू आइडियाज, ये नहीं कि सिर्फ मेरा ही माना जाए। आई शुड नॉट ओनली बी अ गुड स्पीकर या गुड डिक्टेटर, आई शुड ऑल्सो बी अ गुड लिसनर। मैं दूसरों के आइडियाज भी एक्सेप्ट करूं, उनको भी स्वीकार करूं, उनको भी समझूं, दूसरों को भी मौका दूं। सी, शेयर करना इज समथिंग डिफरेंट, हम शेयर कर रहे हैं अपने आइडियाज, बट सबके आइडियाज को सम्मान देते हुए अगर हम फ्लेक्सिबल रहते हैं आपस में
0: जी,
1: तो वो एक टीम का बहुत एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा बनता है, वर्कप्लेस का एनवायरनमेंट भी अच्छा बनता है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड भी रहता है, प्लस हम दूसरे के आइडियाज जब एक्सेप्ट करते हैं तो हमें भी कुछ सीखने को मिलता है।
0: बिल्कुल, तो इस प्रकार से हमें फ्लेक्सिबल,
1: बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना चाहिए हमें
0: जी। तो फ्लेक्सिबल व्यक्ति के लिए कोई अगर सलूशन ढूंढना होता है तो आसान हो जाता है फिर।
1: बिल्कुल, फ्लेक्सिबल के लिए सलूशन बहुत इजी है, वो क्योंकि एक चीज को पकड़ के कभी नहीं बैठा है।
0: राइट,
1: ही इज ऑलवेज ओपन।
0: तो इसीलिए आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आप खुद भी कुछ नए नए सीख सकते हैं,
1: खुद भी हम संतुष्ट रहेंगे और दूसरों से हमें सीखने को भी बहुत मिलेगा।
0: यस, ओके। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ तो वो क्या अपनी इनोवेटिव थिंकिंग को विकसित कर सकता है, क्रिएटिव बन सकता है?
1: देखिए, क्रिएटिविटी तो हर एक में है, हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता है, कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, तभी हम सब अलग अलग हैं
0: जी।
1: तो मेरी क्रिएटिविटी किस में है
0: वो मुझे ढूंढना
1: है, कि मैं कहाँ क्रिएटिव हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है
0: जी।
1: राइट, एक मछली है वो पानी में है, वो उड़ नहीं सकती
0: जी,
1: बट एक बर्ड है वो पानी में तैर नहीं सकता बट वो उड़ सकता है। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं एंड विच आर यूनिक इन देयर ओन वेज। हम ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे से कोई कम है
0: जी,
1: दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं,
0: अच्छे
1: बेस्ट हैं। तो सिमिलरली हर मनुष्य, हर आत्मा जो है अपने आप में बेस्ट है, वो मेरे अंदर बेस्ट क्या है वो मुझे खुद ही आइडेंटिफाई करना है।
0: ओके,
1: और वो आइडेंटिफाई करने का हमें मार्जिन चाहिए, जैसे हमने पहले भी बात की कि साइलेंस इज द मदर ऑफ इनोवेशन। तो हमें अपने लिए टाइम देना पड़ेगा, खुद से बात करनी पड़ेगी, अपनी विशेषताओं को जानना पड़ेगा, और ना सिर्फ जानना पड़ेगा परंतु उन विशेषताओं को मैं कहाँ कहाँ यूज करूँ
0: जी,
1: वो पता होना चाहिए, और कैसे यूज करें अपनी विशेषताओं को।
0: ओके, तो जो माँ बाप सुन रहे हैं आप उन्हें यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे के अंदर ये क्रिएटिविटी ना देखे कि वो कितने मार्क्स ला रहा
1: जी,
0: है, वो प्रेशर ना डाले, उसकी क्रिएटिविटी में भी दूसरी जगह पे खेल कूद में या संगीत
1: जी,
0: में
1: जी,
0: अलग फील्ड में,
1: अलग फील्ड में, क्योंकि हर एक की अपनी विशेषता है। तो हम कभी भी किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते कि आपको यही काम करना है,
0: इतने मार्क्स लाने,
1: इतने मार्क्स जी, प्रेशर नहीं डाले, कॉम्पिटिशन में ज्यादा नहीं जाए या कंपैरिजन में नहीं जाएं। कई बार कैसे होता है, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं कि वो देखो स्पोर्ट्स में इतना नंबर वन है, तुम क्यों नहीं क्रिकेट खेलते हो या तुम क्यों नहीं फुटबॉल खेलते हो, वो चैंपियनशिप जीत करके ला रहा है, वो यहाँ जा रहा है। हो सकता है आपका बच्चा पेंटिंग में बहुत माहिर हो सकता है आपका बच्चा डांसिंग में बहुत माहिर हो, सिंगिंग में बहुत माहिर हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटीज।
0: तो आप उसे ढूंढे,
1: उसे ढूंढे और उसी के ऊपर वर्क करके अपनी क्वालिटी को ग्रो करें, उसी में ही कुछ इनोवेटिव करें।
0: ओके जी, बिल्कुल। और जो ये सोचते हैं मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, ये नेगेटिव थॉट्स को,
1: ये नेगेटिव थॉट्स हैं। अपने लिए समय दें और समय दे करके हमारे अंदर क्या हीरे छुपे हुए हैं उसको तराशें
0: जी। आपने एक ग्रेटिट्यूड वाली बात कही थी, तो क्या अपने अंदर की अच्छाइयों के प्रति अगर हम कृतज्ञ रहते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी?
1: बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि हम जिस पे फोकस करते हैं तो वो चीज ऑटोमेटिकली बढ़ती है,
0: चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे
1: वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर हम हमेशा नेगेटिव चश्मा पहन रखा है, दूसरों की बुराइयां देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर आ जाती है। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो हम जिस संग में, संकल्पों से भी, नॉट ओनली ह्यूमन हमारा संग है, हम संकल्पों से भी हम जिस संग में रहते हैं तो वो हमारे, हम उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम पॉजिटिविटी के संग में रहेंगे, अपने अंदर पॉजिटिव, दूसरों के अंदर विशेषता देखेंगे, तो हम उस चीज को अपने अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं
0: जी। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जैसा चश्मा हम पहनेंगे वैसे दिखाई देगा दुनिया, तो पॉजिटिव देखने की कोशिश करें। तो बच्चों और युवाओं में इनोवेशन की शक्ति विकसित करने के लिए पेरेंट्स को और टीचर्स को किस तरह से वातावरण को बनाना है, उनके एनवायरनमेंट कैसे रखना है?
1: सी, एनवायरनमेंट को बदलना हमारे ही हाथ में है। कई बार हम बोलते हैं कि हमें ऐसा वातावरण नहीं मिल रहा है कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हम डेवलप नहीं कर पा रहे, हमारा नेगेटिव वातावरण है, या हमें पेरेंट्स या टीचर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं, तो व्हाट आई फील इज कि वातावरण को डेवलप करना वो अपने ही हाथ में है
0: जी।
1: और जहाँ तक ये बच्चों और युवाओं की बात है, डेफिनेटली इसमें पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कहते हैं जैसे संस्कार हम बच्चों को पहले से देते हैं तो वो संस्कार भी उनमें धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं
0: जी।
1: जैसे हमने घर में अपने बचपन से सीखा कि सुबह जैसे ही हमारी आँख खुलती थी तो वो मंदिर की आरतियाँ, घर में ही एक पूजा का स्थान था उसमें ही वो पेरेंट्स आरती कर रहे होते थे, घंटियाँ बज रही होती थी, एक बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स होती थी घर की
0: जी, जी।
1: तो बचपन से ही वो संस्कार हमारे अंदर है कि शाम को मंदिर जाना है, और अगर सामने प्लेट आती है खाने की तो पहले परमात्मा को याद करना है, थैंक्स करना है। तो छोटी छोटी जो बातें हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं अपने बच्चों के अंदर, उनको ये चीजें सिखाएं
0: जी।
1: ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं, घर के अंदर आ रहे हैं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, हर बात पेरेंट्स को बतानी है, परमात्मा का धन्यवाद करना है, या सुबह उठ के ही घर में छोटा सा पूजा का स्थान बना सकते हैं जिससे उनके आदत पड़े, उनके संस्कार पड़े कि वो डेली कम से कम एक बार तो परमात्मा के आगे जाकर के नतमस्तक हो,
0: राइट,
1: ताकि बड़े होकर वो भी अपने बच्चों को वो संस्कार दे सके
0: जी।
1: तो बचपन से अगर हमारे अंदर ऐसे संस्कार है, सिमिलरली आज स्कूल में भी क्यों होता है, स्कूल में भी है, स्टार्ट ही स्कूल प्रेयर से होता है, असेंबली होती है, प्रेयर होता है, कि तो कुछ बेसिक ये संस्कार है जो सबके अंदर होने चाहिए। और स्कूल्स में तो आजकल बहुत ज्यादा इनोवेशन पे फोकस किया जा रहा है कि बच्चा जो है एक नई लर्निंग करे, हर दिन हर पल उसका लर्निंग में बीते
0: जी। प्रोजेक्ट्स बहुत सारे,
1: इवन कुछ भी आप करते हो तो हर चीज में उनकी लर्निंग है, इन एवरीथिंग इवन स्कूल्स में। तो कई स्कूल्स ऐसे मैंने सुना है कि उनका भोजन भी आता है तो उसमें भी उनको कलर सिखाए जाते हैं कि आपको ग्रीन कलर की वेजिटेबल लानी है पूरी क्लास को, तो दिस इज हाउ दे आर लर्निंग कलर्स
0: जी।
1: बिल्कुल जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, प्री नर्सरी के बच्चे होते हैं, तो उनके खाने में भी उनको एक लर्निंग मिल रही है, यू नो। तो ऐसे हर चीज में हम इनोवेशन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, घर की महिलाएं भी हम देखते हैं काम करते करते बोरिंग तरीके से काम कर रही होंगी, कपड़े प्रेस कर रही है या बर्तन मांझ रही है, तो क्यों ना हम ये बदलाव लाएं घर में भजन चलाते हुए, है ना, एक शाम का नुमा, शाम का जो वातावरण है, एक भजनों से, कीर्तन से, आरती से शुरुआत करें सुबह और शाम की, ताकि घर का वातावरण बदले। या हम कुछ काम भी कर रहे हैं तो गीत सुनते सुनते हम काम करें, उसको एंजॉय करें, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको एक बोरिंग तरीके से नहीं करें, लेट्स चेंज
0: जी। बिल्कुल, नए तरीका अपनाते हुए करेंगे तो हम बोर नहीं होंगे, चीज को, और फिर इरिटेशन
1: भी नहीं होंगे, वो माइंड को भी फ्रेश रखता है हमेशा, और काम कैसे चुटकियों में हो जाता है मालूम भी नहीं पड़ता है,
0: राइट। तो ये आप नए नए तरीका ढूंढिए और हमें आप जरूर बताइएगा दोस्तों कि क्या नए तरीके से आज इस हफ्ते आपने काम किया, आज से शुरू किया आपने। तो क्या जो स्पिरिचुअलिटी है, ब्रह्मा कुमारी इसके साथ आप जुड़े हुए हैं, तो हमारे इनोवेटिव थिंकिंग को बढ़ा सकती है?
1: बिल्कुल 100%, क्योंकि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी फोकस इज ऑन स्पिरिट
0: जी।
1: स्पिरिट इज
0: हमारी आत्मा,
1: हु एम आई, हु एम आई, जैसे जानकी दादी भी बोलती थी, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है, फोकस कहाँ है, मुझे क्या करना है, नॉट ऑन तुम क्या कर रहे हो या दूसरे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, नहीं, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, पूरा शिफ्ट खुद के ऊपर है
0: जी।
1: तो जब हम पूरा फोकस और पूरा शिफ्ट खुद के ऊपर अटेंशन देते हैं, सबसे पहली बात, हमें दूसरों के लिए, दूसरों को देखने का मार्जिन ही खत्म, हम दूसरों को देख ही नहीं रहे, दूसरों की बुराइयों पर फोकस कर ही नहीं रहे हैं
0: जी।
1: और अगर हमारा खुद पे फोकस है तो मेरी क्या कमियां हैं उसको मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरी क्या क्वालिटीज है उसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, और कैसे दिन प्रतिदिन हम कुछ नया जीवन में कर सकते हैं
0: जी।
1: मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में ही सब कुछ समाया हुआ है, सारा इनोवेशन इसी में समाया हुआ है कि मुझे क्या करना है, मैं हूँ कौन और मुझे करना क्या है। बिकॉज हमने पहले भी बात की कि गोल सेट
0: जी,
1: अगर हमने गोल सेट कर लिया जीवन के अंदर तो हमारा हर दिन इनोवेटिव है।
0: तो ये पहले अपने आप से पूछना,
1: ये पहले मुझे क्या करना है, राइट
0: जी। जी, जैसे राजयोग करते हैं आप, तो उसे स्वयं को शांत करके, मन को स्थिर करके, तो कैसे आप नए नए इनोवेटिव तरीका निकालते हैं? क्या जीवन के हर सवाल का जवाब भी मिल जाता है?
2: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जब भी कुछ ऐसा लगता है कि मन बहुत भारी है या मन में कुछ उथल पुथल चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन रूम में जाते हैं 5 मिनट के लिए। कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हर चीज का सोल्यूशन साइलेंस में है।
0: जी,
2: साइलेंस में सबसे पहली बात तो हम अपने पुराने जो हमारे बहुत संकल्प चल रहे हैं, वेस्ट थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स, उस पर फुल स्टॉप लगता है। मेडिटेशन स्टार्ट्स विद अ फुल स्टॉप एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप जब हम पुराने जो हमारे उथल पुथल वाले संकल्प हैं उनको हम फुल स्टॉप लगाते हैं, एक माइंड एकाग्र होता है। फिर मुझे क्या करना है, क्लैरिटी आती है, क्योंकि एक शांत मन ही, एक स्थिर मन ही अच्छा सोच सकता है
0: जी,
2: एक सही डायरेक्शन में जा सकता है। अगर मन में ऑलरेडी बहुत सारे सवाल है, हम कुछ अच्छा सोच नहीं सकते, कुछ क्लैरिटी नहीं आ सकती। तो मेडिटेशन इसमें बहुत हेल्प करता है। चाहे हम बीच बीच में भी 1 घंटे के लिए हम ट्रैफिक कंट्रोल करें, अपने सब संकल्पों को स्टॉप करके, उससे क्या है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है
0: जी।
2: तो अपने मन को स्टॉप करके, क्लियर करके, पुरानी सब बातों को फुल स्टॉप लगाकर, मुझे क्या करना है
0: प्रेजेंट में, क्या करना
2: प्रेजेंट में, क्या करना है, जो हुआ सो हुआ। ऑफिस में भी कई बार ऐसा होता है ना, गलतियां हो गई, बॉस ने डांट दिया, माइंड इतना अपसेट है, अभी डांट खाकर आए ऑफिस में केबिन से, बॉस के केबिन से भी डांट खाकर अपनी सीट पर आए, मन हैवी है, फुल स्टॉप। अभी जो होना था हो गया,
0: गलती
2: गिल्ट में नहीं जाए, गलती तो हो गई, अभी मैं पास्ट को बदल नहीं सकता, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, तो उस पे अगर हम फोकस करें तो दिस वे मेडिटेशन जो है हमारी जो मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, हमें क्लैरिटी लाता है और हमें एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देता है।
0: जी बिल्कुल। तो ये मेडिटेशन आप सीखें और करें, अपने नज़दीकी जो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर है वहाँ पर भी आप सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं।
2: जी ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, अभी तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं
0: जिससे आप सीख सकते हैं। अगर घर में हर दिन होने वाला कोई काम बोरिंग लगता है, जैसे आपने कहा कि हम भजन वगैरह चला सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है बहुत समय लेता है, तो उसे कैसे बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
2: कुछ भी काम अगर समय लेता है, हमें लगता है कि हमारा टाइम एनर्जी उसमें ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो हम उसके अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं
0: जी,
2: कि इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, इस काम को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, या अगर हम जल्दी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कई लोगों का एक माइंडसेट है
0: जी,
2: मैं उसमें सहमत, मतलब मेरी बात से सहमत भी हो सकते, नहीं भी सहमत हो सकते, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बता रही हूँ कि जैसे कई सोचते हैं कि कपड़े हाथ से धोते हैं तो ही साफ होते हैं, मशीन से धोते हैं साफ नहीं होते, एक माइंडसेट बना हुआ है और सही भी हो सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी टाइम का शॉर्टेज है, वो अगर वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धोकर और वो टाइम किसी बेटर चीज के लिए यूटिलाइज करता है
0: जी,
2: तो आई थिंक वो एक ज्यादा बेटर आइडिया है, रादर देन फोकसिंग ऑन पुरानी मेंटालिटी कि यही हम इसी चीज को सही मानते चले। कई बार क्या है, हमें टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारे गैजेट्स हैं उनका भी सहारा लेना पड़ता है
0: जी,
2: या अगर कोई ये सोच के चले नहीं फोन तो जो है बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना,
0: खराब चीज है
2: फोन, अगर हम इस माइंडसेट के साथ भी चलते हैं, बिकॉज हमने पहले भी बात की फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम गैजेट्स यूज करते हैं और वो हमें कुछ बेहतर बना रहे हैं, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, हमारा काम आसान हो रहा है, तो हम उसे इनोवेशन के लिए हम जरूर उसका प्रयोग करें
0: जी बिल्कुल। तो इस तरीके से आप अपने टाइम बचा सकते हैं और
2: अपना।
0: हर बार सोचे कि किस तरीके से आप अपना टाइम बचाए, नए तरीके से
2: जी।
0: तो अगर आज हमारे श्रोता अपनी जिंदगी की किसी एक पुरानी समस्या को दूर करना चाह रहे हैं और उसे चुन करके नए नजरिए से देखना चाहते हैं, तो आप ऐसे कौन सा 3-स्टेप इनोवेशन फॉर्मूला बताएंगे उनको प्रैक्टिकली करने के लिए?
2: देखिए अभी तक जो हमने बात की तो उन सभी बातों का जो सार मैं आपको 3 बातों में बताती हूँ। पहली बात, जो हुआ सो हुआ
0: जी,
2: पास्ट इज पास्ट, फोकस ऑन द फ्यूचर, फोकस ऑन प्रेजेंट। जो हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, हमें फ्यूचर पे भी उतना फोकस नहीं करना है जितना हमें प्रेजेंट पे फोकस करना है, राइट
0: जी।
2: सेकेंड, हम अपना फोकस दूसरों की बजाय खुद पे शिफ्ट करें,
0: ओके, अपने ऊपर,
2: दूसरों को देखने के बजाय कि वो क्या कर रहा है, हम खुद पे अपना फोकस शिफ्ट करें।
0: जी
2: कि मुझे क्या करना है, मैं खुद को देखूं, खुद की विशेषताओं को, खुद की कमी कमजोरियों में कैसे दूर कर सकता हूं, फोकस हम खुद पे शिफ्ट करें। एंड द थर्ड इज हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने।
0: ओके जी, तो वर्तमान को देखें, फिर अपने ऊपर
2: देखें और बार बार प्रॉब्लम्स को गाने की बजाय
0: सॉल्यूशन,
2: उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम उस पे फोकस करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं समझती हूँ अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर ये अपने जीवन की हम धारणाएं बना लें तो हम खुद अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज आ गया है। ये तीन बातें अगर हम ज्यादा नहीं, सिर्फ एक हफ्ते का सिर्फ एक्सपेरिमेंट करें अपने ऊपर, एक हफ्ते का प्रयोग करें प्रैक्टिकल, तो हमें समझ में आएगा और उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हम देखेंगे कि मेरे अंदर कितना पॉजिटिव चेंज आया है।
0: जी बिल्कुल, तो अभी तो वक्त हो गया है कि हम यहाँ से अलविदा कहें, लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप, बोनस टिप्स देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को?
2: बोनस टिप इज जस्ट लाइक कि सबसे पहली बात, चेंज से पहले आता है रियलाइजेशन,
0: उसके लिए खुद के साथ बैठना पड़ेगा।
2: जी, जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे कि व्हाई चेंज इज इम्पोर्टेंट, व्हाई चेंज इज नीडेड, कई कहते हैं ना जैसा चल रहा है चलने दो, क्यों नया करना है?
0: जी,
2: व्हाई इनोवेटिव, क्यों करें हम नया, क्यों नवीनता लाएं, जैसा चल रहा है हम संतुष्ट हैं, डोंट बी सैटिस्फाइड, ट्राई समथिंग न्यू। रुक नहीं जाना है हमें अपने जीवन में कि हाँ हम तो संतुष्ट हैं, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है।
0: जी
2: नो, इस सोच को भी बदले और एक नई सोच लाएं कि कुछ नया करना है और रियलाइज करें कि जो भी हम नया करेंगे कि उससे हमें प्राप्ति क्या है,
0: जी
2: उसके कितने बेटर आउटकम्स हो सकते हैं, तब हमें बाद में रियलाइज होगा कि हमने पहले क्यों नहीं किया।
0: जी, चाहे घरेलू महिला भी है, घर में रहते हुए बच्चों को पढ़ाने के तरीका पुराने काम नहीं आ रहा है तो नए तरीका ढूंढें।
2: जी,
0: या आप जॉब में जा रहे हैं, बोरिंग लग रहा है आपको, तो क्या नए?
2: जी, बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर ऑफिस से लेकर परिवार से लेकर हर जगह हम कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं और करना भी चाहिए।
0: तो आप अपनी योगी लाइफ में भी नया करते होंगे?
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी डे टू डे लाइफ में जब हम मेडिटेशन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक वही तरीके से, हम बहुत अलग अलग तरीके से उसको एंजॉय करते हुए, क्योंकि अगर हम नया नहीं करेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। तो इसलिए नवीनता जरूरी है कि अपनी जिंदगी से हम बोर ना हो, हमारे मुंह से कभी ये शब्द ना निकले कि हम तो बोर हो गए।
0: जी,
2: आज तो बड़ा बोरिंग दिन है, क्या करें, वो हम मौका ही नहीं आने दें अपने जीवन के अंदर।
0: जी, सेवा वही होती है, रूटीन वही होती है, लेकिन अलग
2: वही होता है, लेकिन तरीका अलग होता है,
0: तरीका अलग होता है। जी बिल्कुल, तो दोस्तों कभी आप शांतिवन परिसर में आए तो ज़रूर विजिट करिएगा यहाँ के ऑफिसेस में, तो आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग तरीके से यहाँ पर कार्य भी करते हैं और राजयोग के साथ, साधना के साथ, मेडिटेशन के साथ। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं 9414151415 इस नंबर पर मैसेज करके या फिर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो रुचिका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत थैंक यू।
0: तो यहीं पर रुकते हैं, कार्यक्रम जीवन रोशनी है, अगला कार्यक्रम आप जरूर सुनिएगा, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

light. My world is made up of light.

clear instrument for the supreme light.

शांति। आज 26 सितंबर 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को शिक्षाएं भी दी है तो सावधानियां भी दी है। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें अपना चार्ट रोज रखना है। चार्ट रखने से एक तो अपनी अवस्था अच्छी रहेगी, दूसरा हम स्वयं का ही कल्याण करते रहेंगे। साथ ही साथ बाबा सावधान भी करते हैं कि बच्चे आज की दुनिया के अंदर बहुत बुरा संग मिलेगा, इसलिए अपने संग से हमेशा संभाल रखो। कभी भी ऐसी आत्माओं का संग नहीं करना है जो हमें गिरती कला की ओर ले जाए। बाबा कहते, तुम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे बने हो, परमात्मा की गोद ली है, तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हो। बाप ने आकर के हम बच्चों को अडॉप्ट किया है, तो इसलिए कभी भी अपने मन के अंदर कोई भी प्रकार के ऐसी बातें लानी नहीं है जिससे जीवन के अंदर गिरती कला में आ जाए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? उत्तर है, अगर ये स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है वर्षा लेने के लिए, बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं, शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं, यही स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देंगी। ओम शांति। तुम बच्चे यहां बैठे हो शिव बाबा की याद में, तो तुम जानते हो वह हमको सुखधाम का मालिक फिर से बना रहे हैं। बच्चों की बुद्धि के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए, यहां बैठे बच्चों को खजाना मिलता है ना। अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में किसी की भी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती। तुम ही जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, ये खुशी रहनी चाहिए ना। इस समय और सभी ख्यालात निकाल कर एक बाप को ही याद करना है। यहां जब बैठते हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम अभी सुखधाम का मालिक बन रहे हैं। सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। कल्प पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए खत्म हो गए थे, फिर भी ऐसा ही होगा। बच्चे समझते हैं, हमको बाप ने अडॉप्ट किया है, वह हमने शिव बाबा की धर्म गोद ली है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हमने बाबा की धर्म गोद ली है, किस लिए? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने लिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं, हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा लेते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आने चाहिए। बाप भी आकर खुशी की बातें बतलाते हैं ना। बाप जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए हैं, इसलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आता हूं। तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से अमर लोक जाते हैं। बाप कहते हैं, हम मृत्यु लोक में जाता हूं जहां सबकी मृत्यु हो गई है
उनको फिर से अमर लोक में ले जाता हूं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, वह सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकते हैं। परंतु बच्चे जानते हैं, उनको बुलाया ही जाता है कि हे पति पावन बाबा आओ। कुछ भी करने के लिए तो नहीं बुलाया, बुलाया ही है पतित से पावन बनाने के लिए। आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो। इसमें जादू की कोई बात ही नहीं है। बाप आते ही है कांटों से फूल बनाने। तुम जानते हो हम ही सुखधाम के देवता थे, सतो प्रधान थे। हर एक को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है। बच्चों को यहाँ बैठने समय तो और ही मजा आना चाहिए, याद आना चाहिए। बाप को ही सारी दुनिया याद करती है। कैसे याद करती है? हे लिबरेटर गाइड, हे पतित पावन आओ। बुलाते तब है जबकि रावण राज्य में है, सतयुग में थोड़ी बुलाते हैं। बाबा का भी उलझना है कि बच्चे मुझे सतयुग में तो बुलाते नहीं, बुलाते ही तब है जब रावण राज्य में है। यह बातें बड़ी सहज समझने की है। ये किसने सुनाई है? बाप की भी महिमा करेंगे, टीचर सतगुरु की भी महिमा करेंगे, तीनों एक ही है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, ये बाप टीचर सतगुरु भी है। शिव बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। पतित जरूर दुखी होंगे, सतो प्रधान सुखी, तमो प्रधान दुखी होते हैं। इन देवताओं का कितना सतोगुणी स्वभाव है। यहां मनुष्य का कलयुगी तमोगुणी स्वभाव है। बाकी हाँ, मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होते हैं। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि ये खराब है, ये ऐसा है। वहां बुरे लक्षण कोई होते नहीं, वह है ही दैवी संप्रदाय। हाँ, शाहूकार और गरीब हो सकते हैं, बाकी अच्छे व बुरे गुणों की भेंट वहां होती नहीं। सभी सुखी रहते हैं, दुख की बात नहीं। नाम ही है सुखधाम, तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। कहेंगे कोई तो इन्हों को सिखलाने वाला होगा, ये तो भगवान वाच है ना। भगवान को अपना शरीर नहीं है, वह आकर लोन लेते हैं। गाया भी हुआ है भागीरथ, तो जरूर रथ पर विराजमान है, बैल पर थोड़ी आएगा। शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया है तब बैल दे दिया है। तो बाप कहते हैं तुमको कितना खुश होना चाहिए। हम बाप के बने हैं, बाप भी कहते हैं तुम हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है, टीचर तो टीचर है, उनको पढ़ाना है। बाप कहते बच्चे मैं सुख का सागर हूं, अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है। जब हमने तुमको एडॉप्ट किया है तभी बाबा कहते हैं तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है। तो अतीन्द्रिय सुख तभी तो कहा जाता, गोपियों से पूछो, गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। तो बाबा कहते अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है जब हमने तुमको एडॉप्ट किया। एडॉप्शन तो किस्म किस्म की होती है। पुरुष भी कन्या को एडॉप्ट करते हैं, वह समझती है ये हमारा पति है। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। दुनिया में इन बातों को नहीं समझते हैं, उन्हों की वह एडॉप्शन है। एक दो पर काम कटारी चलाने की, समझो कोई राजा बच्चे को गोद में लेता है, एडॉप्ट करता है सुख के लिए। परंतु वह है अल्पकाल का सुख। सन्यासी भी एडॉप्ट करते हैं ना, वह कहेंगे हम तुम्हारा गुरु हूं, वह कहेगा यह हमारा फॉलोअर्स है। शिष्य कहेगा, वह कहेंगे यह हमारा गुरु है।
और गुरु कहेगा यह हमारा फॉलोअर्स है। कितनी अडॉप्शन है, बाप बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उनको सुख तो देते हैं, फिर शादी कराने से जैसे दुख का वर्षा भी दे देते हैं। गुरु की एडॉप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है, यह फिर है ईश्वर की एडॉप्शन। एक है मनुष्य की एडॉप्शन या राजा की एडॉप्शन, दूसरी है गुरु की एडॉप्शन, और तीसरी सर्वोच्च है ईश्वर की एडॉप्शन, आत्माओं को अपना बनाने की। अभी तुम बच्चों ने सबकी एडॉप्शन को देख लिया है, सन्यासियों के होते हुए भी गाते रहते हैं, सन्यासियों के होते हुए फिर भी गाते रहते हैं। क्या गाते हैं, हे पति पावनाओ आकर हमको अडॉप्ट कर पावन बनाओ, सब ब्रदर्स है। परंतु जबकि आकर अपना बनाए ना, कहते बाबा हम दुखी हो पड़े हैं, रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते हैं, एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं, जैसे कोई दुख देते हैं तो समझते हैं इन पर केस चलाना चाहिए, परंतु ये कब से दुश्मन बना है, आखिर ये दुश्मन मरेगा या नहीं। रावण हर साल जलाते हैं, दुश्मन है, कब से बना है और कब मरेगा या नहीं, इस दुश्मन का तुमको ही मालूम है। उन पर जीत पाने के लिए तुमको अडॉप्ट किया जाता है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। विनाश होना है, एटॉमिक बॉम्ब्स भी बने हुए हैं, इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। अभी तुम जानते हो रावण पर विजय पाकर फिर नई सृष्टि पर राज्य करेंगे, बाकी तो सब गुड़ियों का खेल है। रावण की गुड्डी तो बहुत खर्चा कराती है, रावण को हर साल बनाना और जलाना, तो बाबा कहते हैं रावण की गुड्डी तो बहुत खर्चा कराती है, मनुष्य बहुत पैसे फालतू गंवाते हैं, कितना रात दिन का फर्क है, वो भटकते दुखी होते धक्के खाते रहते हैं, और हम अभी श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी सतयुगी स्वराज्य पा रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता विश्व का मालिक बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता है, देवताओं को श्री कहा जाता है, क्योंकि वो पुनर्जन्म में आते हैं ना। वास्तव में श्री विकारी राजाओं को भी नहीं कह सकते हैं, श्री माना श्रेष्ठ, तो इस दुनिया में श्रेष्ठ कौन है, कोई नहीं है। इसलिए बाबा कहते श्री सिर्फ देवताओं को कहा जाता है, बाकी इस दुनिया के विकारी मनुष्य राजाओं को किसी को भी नहीं कह सकते हैं। अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, तुम जानते हो कि हम इस पढ़ाई से डबल सिरताज बनते हैं, हम ये डबल सिरताज थे, अभी नो सिंगल ताज भी नहीं है, अभी तो सिंगल ताज भी नहीं है, पतित है ना, यहां लाइट का ताज किसको लगा नहीं सकते। इन चित्रों में जहां तुम तपस्या में बैठे हो वहां लाइट का ताज नहीं देना चाहिए, तुमको डबल सिरताज भविष्य में बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से डबल सिरताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं, ये खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा को याद करना चाहिए तो पतित से पावन बन स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहां तुम स्टूडेंट बैठे हो, वहां बाहर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है, फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं, माया का फोर्स है ना। हॉस्टल में रहने से पढ़ते अच्छा है, बाहर आने जाने से संग दोष में खराब होते हैं, यहां से बाहर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों को भी वहां बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना यहाँ रहेगा। ये हेड ऑफिस मधुबन है, स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं, उल्टे धंधे कोई नहीं है,
रात दिन का फर्क है। कोई तो सारे दिन में शिव बाबा को याद भी नहीं करते हैं, कोई कोई बच्चे तो बाबा कहते सारे दिन में शिव बाबा को याद भी नहीं करते, शिव बाबा के मददगार नहीं बनते हैं। याद करेंगे तो मददगार भी बनेंगे, बाबा कहते हैं याद ही नहीं करते तो मददगार भी कैसे बनते हैं। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो सर्विस करो, अगर सर्विस नहीं करते हो तो गोया वह कपूत बच्चे हैं। बाबा तो समझते हैं ना, इनका फर्ज है कहना मुझे याद करो, फॉलो करो तो बहुत बहुत कल्याण है। विकारी संबंध तो भ्रष्टाचारी है, उनको छोड़ते जाओ, उनसे संग में नहीं आओ। बाप तो समझाते हैं परंतु किसकी तकदीर में भी होना।

बाबा तो कितना अच्छे से समझाते बच्चे, कोई भी विकारी संग में नहीं फंसो, लेकिन तकदीर में भी हो ना, बाबा कहते हैं चार्ट रखना है, इनसे भी बहुत कल्याण होगा। कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहता होगा, 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है। कर्म योगी तो हो ना, कोई कोई को उमंग कभी कभी आता है तो चार्ट रखते हैं, ये अच्छा है। जितना बाप को याद करेंगे फायदा ही है। गाया हुआ है अंत काल जो हरि को सिमरे, वलवल का अर्थ क्या है? कहते ना अंत काल जो हरि को सिमरे, वलवल वो नारायण योनि में उतरे। तो वलवल का अर्थ क्या है? जो अच्छी रीति याद नहीं करते हैं तो जन्म जन्मांतर का बोझ जो है वह वलवल मना बार बार जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो झट पापों का साक्षात्कार होता है, महसूस करते हैं हम पापों की सजा खाते हैं। बहुत मोचरा खाने वाले हैं, बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते हैं वह सजाओं के लायक है। बाप की सर्विस में बाधा डालते हैं जिसका राइट हैंड धर्मराज है, बाप कहते अपने साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं। बाप प्रतिज्ञा कराते हैं, करो ना करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा, बहुत है जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी बुरे काम करते रहते हैं, भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, परंतु वह बात अभी बुद्धि में आती है कि आत्मा क्यों ऐसे गाती आई है। सारा दिन गाते रहते हैं, मेरा तो एक गिरतर गोपाल दूसरा न कोई, ये तो संगम पर बाप आए तब अपने घर ले जाए। कृष्णपुरी में जाने के लिए तुम पढ़ते हो ना, प्रिंसेस कॉलेज होते हैं वह, जहां प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं, प्रिंसेस कॉलेज होती है तो बाबा कहे वहां प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं। वह तो है हद की बात, कभी बीमार पड़ते कभी मर भी जाते हैं, यह तो है प्रिंस प्रिंसेस बनने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, जहां आधा कल्प तक प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। राजयोग है ना, तुम नर से नारायण बनते हो, तुम बाप से वर्षाले सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप तुम बच्चों को कितनी मजे की बातें बैठ सुनाते हैं, याद रहना चाहिए ना। कोई तो यहां से बाहर निकले तो फंस जाते हैं, बाप को याद भी नंबर वार करते हैं। जो जास्ती याद करते होंगे वो औरों को भी याद कराते होंगे। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्याण करें। बाहर वाले प्रजा में दास दासी, यहां वाले फिर राजाओं में दास दासी बनेंगे। बाहर वाले प्रजा में दास दासी और यहां में यहां पर रह करके विक्रम करते रहे तो राजाओं में दास दासी बनेंगे। आगे चल सब साक्षात्कार होता जाएगा, तुम भी फील करेंगे बरोबर हमने पुरुषार्थ पूरा किया नहीं है। बाबा कहे तुम भी फील करेंगे बरोबर हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है। बहुत चमत्कार देखेंगे, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही नवाब बनेंगे। बाप कितना कहते रहते हैं सेंटर्स को प्रदर्शनी देता हूं तो बच्चों को सिखाकर होशियार बनाए। बाबा सभी सेंटर्स को प्रदर्शनी के सेट देते थे ताकि सिखा करके होशियार बनाए। तब बाबा कहेंगे बीके सर्विस करना जानती है, सर्विस करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, इसलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर जोर दे रहे हैं। ये चित्र बनाना तो बहुत कॉमन चीज है, हिम्मत कर प्रदर्शनी के चित्र बनाने में मदद करनी चाहिए तो समझाने में बच्चों को सहज होगा। बाबा समझाते हैं टीचर्स मैनेजर्स ठंडे हैं, हाँ बाबा समझते हैं कहीं कहीं टीचर्स मैनेजर्स ठंडे हैं, कोई कोई ब्राह्मणिया मैनेजर बनती है
तो दे अभिमान आ जाता है, अपने को मियां मिठू समझती है, हम बहुत अच्छी चलती हैं, दूसरों से पूछो तो 10 बातें सुनाएंगे। माया बड़ा चक्कर में डालती है, बाबा कहते माया बड़ा चक्कर में डालती है। बच्चों को तो सर्विस और सर्विस में रहना चाहिए। बाप रहम दिल, दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी बनना है। सिर्फ बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं माँ एकम याद करो तो नर्कवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप कहते मुझे याद करो तो पतित से पावन बन तुम शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। निश्चय हो तो फिर एकदम लिखवा लेना चाहिए। लिखते भी है बरोबर। ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा लेते हैं तो समझेंगे ऐसे बाप का तो जरूर बनना चाहिए। शरण पढ़ना चाहिए। तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात गोद में आए हो। बाप की शरण पढ़ना अर्थात बाप की गोद में आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप समान रहम दिल, दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरी बात, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल रख करनी है, बहुत बहुत संभाल करनी है। एक बाप को ही फॉलो करना है, बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है, कभी अहंकार में आकर मियां मिठू नहीं बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अंतर्मुखी बन, अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले, विघ्न जीत भव। अंतर्मुखी बन, अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले, विघ्न जीत भव। कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख हर्षित मुख आकर्षण मूरत रहो। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख हर्षित मुख आकर्षण मूरत रहो। कर्म करते भी ये प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। आज का वित्त इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते तुम बच्चों को किसी भी आत्मा से कुछ लेना नहीं है, सिर्फ एक बाप से ही लेना है और जो लिया है वो सबको देना है। जहां देना है वहां लेने की इच्छा नहीं रखना। अगर आत्मा आत्मा द्वारा कुछ भी लेने की इच्छा रखती है तो उन्हें अल्पज्ञ आत्माओं से अल्पकाल की ही प्राप्ति होगी। एक सर्वज्ञ बाप से ही सदाकाल की प्राप्ति होगी। किसी भी प्रकार की लेने की इच्छा अपने स्वमान से गिरा देती है। अच्छा, ओम शांति।